मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। आज मंगलवार है, शक संवत 1948 के श्रावण माह की 20वीं तिथि तदनुसार 11 अगस्त सन 2026। स्टूडियो की घड़ी में 5:57 होने को हैं। आज की प्रातःकालीन सभा आरंभ होती है।

0: मीटर वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 6 बजने वाले हैं। अब आप सुनेंगे दिल्ली केंद्र से प्रसारित समाचार।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने सभी दलों के नेताओं से सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने में सहयोग करने की अपील की है। संसद भवन में कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में श्री बिड़ला ने सदन में जारी गतिरोध पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने सभी दलों के नेताओं से कहा कि सदन की कार्यवाही चलने दे ताकि प्रश्नकाल हो सके और महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा की जा सके। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि सरकार दिल्ली में हुए प्रदर्शन और देशभर में जारी विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन और इससे जुड़े मुद्दों पर संसद में विस्तृत चर्चा के लिए तैयार है। कार्य मंत्रणा समिति की बैठक के बाद

0: संसद परिसर में उन्होंने आश्वासन दिया कि गृह मंत्री अमित शाह हर मुद्दे का जवाब देने के लिए तैयार है। झारखंड में विधानसभा मार्च के दौरान विद्यार्थियों और पुलिस के बीच झड़पों के बाद परीक्षा भर्ती में अनियमितताओं के विरोध में प्रदर्शन तेज हो गया है।
1: जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म्स मंच के नेतृत्व में हजारों अभ्यर्थियों ने विधानसभा की ओर मार्च किया और कई बैरिकेडिंग पार करने का प्रयास किया, जिसके बाद पुलिस ने वाटर कैनन और आंसू गैस का इस्तेमाल किया। प्रदर्शनकारी जेएसएससी सीजीएल परीक्षा की स्वतंत्र सीबीआई जांच और जेपीएससी जेएसएससी परीक्षा व्यवस्था में व्यापक सुधार की मांग कर रहे हैं। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने पुलिस कार्रवाई की आलोचना करते हुए सीबीआई और ईडी जांच की मांग दोहराई है। महविश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
0: सरकार ने 11 और अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाहों और सीमा चौकियों से ई वीजा वाले विदेशी नागरिकों को भारत में प्रवेश की अनुमति दे दी है। गृह मंत्रालय ने बताया कि इनमें 9 जमीनी बंदरगाह और 2 हवाई अड्डे शामिल है। इनमें भोपाल और तिरुपति के हवाई अड्डे और अटारी व अगरतला के जमीनी बंदरगाह शामिल है। अब ई वीजा वाले विदेशियों के प्रवेश के लिए उपलब्ध अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाहों की संख्या बढ़कर 88 हो गई है। इनमें 37 हवाई अड्डे, 38 समुद्री बंदरगाह और 13 जमीनी बंदरगाह शामिल है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस जेम पर सही गुणवत्ता की सही कीमत वाले सही उत्पाद की सही समय पर खरीद होती है। उन्होंने कल नई दिल्ली में जेम के 10 वर्ष पूरे होने के उत्सव में ये बात कही। श्री गोयल ने याद दिलाया कि जेम से पहले सरकारी धन का दुरुपयोग हो रहा था, खरीद में पारदर्शिता नहीं थी और अच्छे शासन की कमी थी। उन्होंने कहा कि जेम ने देश भर के सभी लोगों के लिए सरकारी खरीद में हिस्सा लेने के लिए निष्पक्ष और समान अवसर उपलब्ध कराए। पश्चिमी कोलंबिया में 7.4 तीव्रता के जबरदस्त भूकंप के कारण 111 लोगों की मौत हो गई और सैकड़ों इमारतें क्षतिग्रस्त हुई हैं। कई लोगों के मलबे के नीचे दबे होने की खबर है। कोलंबिया के राष्ट्रपति एबिलार्डो डेला एस्प्रियला ने राहत कार्यों के लिए फंड तेजी से जारी करने के लिए आपातकाल की घोषणा कर दी। भूकंप का केंद्र बोगोटा से लगभग 400 किलोमीटर पश्चिम में चौको क्षेत्र के सेन होस डेल पालमार में था। भूकंप के झटके पड़ोसी देशों इक्वाडोर और पनामा में भी महसूस किए गए, हालांकि वहां बहुत कम नुकसान की खबर है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल नई दिल्ली में नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल के जरिए देशभर के कृषि विद्यार्थियों के लिए स्कॉलरशिप और फेलोशिप राशि जारी की। प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से 21 करोड़ रुपए से अधिक राशि सीधे 6000 से ज्यादा विद्यार्थियों के खातों में भेजी गई। कृषि विद्यार्थियों को अब स्कॉलरशिप हर महीने सीधे बैंक खातों में मिलेगी। आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव ने कहा है कि योग और प्राकृतिक चिकित्सा को आधुनिक चिकित्सा का पूरक होना चाहिए। उन्होंने कहा कि बीमारी से बचाव, स्वास्थ्य को बढ़ावा देने, जीवन शैली में बदलाव, पुनर्वास और आरोग्य पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। उन्होंने नई दिल्ली में आयुष मंत्रालय की संसदीय सलाहकार समिति की 5वीं बैठक की अध्यक्षता करते हुए ये बात कही। FIH हॉकी पुरुष और महिला विश्व कप इस सप्ताह के अंत में नए प्रारूप से शुरू होंगे। प्रतियोगिता के क्वार्टर फाइनल चरण को समाप्त कर दिया गया है और दोनों पूल से शीर्ष दो टीम सीधे सेमीफाइनल में पहुंचेगी। भारतीय पुरुष टीम को पूल डी में इंग्लैंड, पाकिस्तान और वेल्स के साथ रखा गया है, जबकि भारतीय महिला टीम पूल डी में चीन, इंग्लैंड और दक्षिण अफ्रीका के साथ खेलेंगी। ये प्रतियोगिता 15 से 30 अगस्त के बीच बेल्जियम और नीदरलैंड्स की संयुक्त मेजबानी में आयोजित की जाएगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना। खुशियों को पाने का रास्ता है प्रभु का चिंतन। हे प्रभु, मैं आपसे सुख शांति की कामना करती हूँ, आप मेरे कष्टों को दूर कीजिए।

आर्त व्यक्ति ही भगवान की शरण में जाते हैं। आर्त की पुकार ही आरती है। आरती अपने इष्ट देव की प्रसन्नता के लिए की जाती है। पूजा में भूल से या प्रमादवश कोई त्रुटि रह जाती है तो आरती करने से उसकी पूर्ति हो जाती है। 1, 5, 7 आदि विषम संख्या के दीप जलाकर आरती करनी चाहिए। इष्ट देव की प्रतिमा के चरणों में 4 बार, नाभि पर 2 बार, मुख पर 1 बार और नीचे से ऊपर तक 7 बार आरती घुमानी चाहिए।

जिस प्रकार एक धूप जला देने से उसकी खुशबू पूरे घर में फैल जाती है, उसी प्रकार अगर हम प्रभु का ध्यान करते हैं तो उनका आशीर्वाद, उनकी कृपा सदैव हम पर बनी रहती है।

0: अभी आप हरिहरन शर्मा बंधु उमाकांत और रमाकांत के स्वर में ये भक्ति रचनाएं सुन रहे थे। इसी के साथ ही भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना यहीं पर समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं।
1: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
2: सुनो ना।
3: हाँ?
2: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
3: तो रोका किसने है? हाँ?
2: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगू।
3: मुझसे।
2: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
3: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
2: पर उससे मेरा क्या फायदा?
3: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
2: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
3: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 870-001-4242।
2: ओ 870-001-4242। लो अभी फोन लगाता हूँ 870-001-4242 पर।
0: मीटर वीप 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। प्रस्तुत है विचार बिंदु कार्यक्रम। आइए सुनते हैं काका काल लेकर के विचार।
4: एक बूढ़े आदमी ने अपने अंत समय पर अपने लड़कों से कहा कि उनके खेत में कुछ गहराई पर धन गड़ा हुआ है। लड़कों ने सारा खेत खोद डाला मगर वो धन न मिला। लेकिन उस साल फसल इतनी अच्छी आई कि उसके सामने गड़ा हुआ माल मिलता तो भी वह नगण्य मालूम होता। गहरी जुताई का फल मिल गया।

0: सामान्य लोग विचार क्षेत्र में जब तक ऊपर ऊपर से ही हल चलाते हैं तब तक सामाजिक जीवन प्राकृत और क्षीण रहता है। जब जब धीर लोगों ने उक्त बूढ़े के लड़कों की तरह खूब गहराई तक खोदा है तब तब विचार की अपूर्व फसल आई है। श्री कृष्ण जी ने एक बार ऐसा किया था, उसी से भारतीय विचार सागर में इतना ज्वार आया। बुद्ध भगवान ने ऐसा कोई भी प्रमाण मान लेने से इनकार किया जो आत्म प्रतीति से भिन्न हो, जिसके परिणाम स्वरूप आर्य संस्कृति की ज्ञानाग्नि पर जमी हुई राख उड़ गई और आर्य विचार राशि जगमगा उठी। फ्रांस के डिडेरो और दूसरे विश्वकोश लेखकों ने विचार क्षेत्र को खोद खाद कर ये देख लिया कि मनुष्य समाज कौन कौन से तत्वों पर आधारित है, और तब यूरोप में क्रांति होकर आम वर्ग स्वतंत्र हो गया। मार्टिन ल्यूथर ने अपने समय की धर्म व्यवस्था को आग में झोंक दिया, जिससे समाज धर्म की गंदगी साफ होकर स्वाभाविकता प्रतिष्ठित हो गई। इस तरह जब जब मनुष्य अंध परंपरा को फेंक देकर छोटे मोटे हरेक पदार्थ से कोसी, तस्मिंस त्वयि किं वीर्यम् ऐसा सवाल पूछने की हिम्मत करता है, तब धर्म संस्करण होता है, जनता में नया बल आ जाता है, विद्वानों को नई दृष्टि प्राप्त होती है, और इस दृष्टि का असर 14 विद्या और 64 कलाओं पर पड़ता है। आज हिंदुस्तान में इसी तरह की तत्व जिज्ञासा, धर्म जागृति और कर्म विचिकित्सा सुलग उठी है। प्रत्येक वस्तु का रहस्य हम खोजते हैं, जीवन का परम रहस्य नए सिरे से जान लेते हैं और उसे आचरण में लाना चाहते हैं। नई समाज व्यवस्था और नई आचार विधियों द्वारा हम उसे समाज में दाखिल करना चाहते हैं, और यह नया प्राण लेकर हम विचार की दुनिया पर शुद्ध व सात्विक दिग्विजय प्राप्त करना चाहते हैं। संयम संस्कृति का मूल है। विलासिता, निर्बलता और अनुकरण के वातावरण में न संस्कृति का उद्भव होता है और न विकास ही। जिस तरह 25 वर्ष तक दृढ़ ब्रह्मचर्य रखने वाले की संतान सुदृढ़ होती है, उसी तरह संयम के आधार पर निर्माण की हुई संस्कृति प्रभावशाली और दीर्घजीवी होती है। ऋषियों ने तप और ब्रह्मचर्य के द्वारा मृत्यु पर विजय प्राप्त करके एक अमर संस्कृति को जन्म दिया। बुद्धकालीन भिक्षुओं और भिक्षुणियों की तपश्चर्या के परिणाम स्वरूप ही अशोक के साम्राज्य का और आर्य संस्कृति का विस्तार हो पाया। शंकराचार्य की तपश्चर्या से हिंदू धर्म का संस्कार हुआ। महावीर स्वामी की तपस्या से ही अहिंसा धर्म का प्रचार हुआ। सादा और संयमी जीवन बिताकर ही सिख गुरुओं ने पंजाब में जागृति की। त्याग के झंडे के नीचे ही सीधे साधे मराठों ने स्वराज्य की स्थापना की। बंगाल के चैतन्य महाप्रभु मुख शुद्धि के लिए आवश्यकता से अधिक एक भी हर न रखते थे। उन्हीं से बंगाल की वैष्णव संस्कृति विकसित हुई। संयम ही में नई संस्कृतियों को उत्पन्न करने का सामर्थ्य है। साहित्य, स्थापत्य, संगीत, कला और विविध धर्म विधियां संयम की अनुगामिनी हैं।
1: अभी आप सुन रहे थे काका कालेकर के विचार। विचार बिंदु कार्यक्रम अब समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज पर प्रस्तुत है कृषि जगत कार्यक्रम। आइए सुनते हैं धान की फसल में रोग एवं कीट नियंत्रण विषय पर डॉक्टर सर्वेंद्र कुमार से

0: किसान भहरे आप सब के समय खेत में धान के फसल लगभग खड़ी हो चुकी है। जरूरत यह बात का होत है कि आपन फसल रोग मुक्त होए, लेकिन एकरे बदे जरूरी होत है कि हमें कौन कौन से किरौना लागत हैं, कौन कौन से रोग लागत हैं, ताकि आप ओकर उपचार कर लें ताकि अपन फसल बढ़िया होए। तो धान की फसल में रोग एवं कीट प्रबंधन, यह पर विस्तार से जानकारी देवे बदे आज अपने बीच में टेलीफोन लाइन पर डॉक्टर सर्वेंद्र कुमार जी उपस्थित बाटें। डॉक्टर साहब, आपके कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत बाटे। किसान हाई भरन के बतावें कि धान की फसल में रोग एवं कीट प्रबंधन कैसे करें, बतावें।
1: धन्यवाद किसान भाइयों, नमस्कार। इस समय हमारी जो मुख्य फसल है वो धान की फसल है, और इस वक्त जो है हमारी फसल का रोपाई का समय चल रहा है, और मुख्य फसल होने के साथ साथ हमारे लिए ये जरूरी होता है कि इस फसल को हम अपनी फसल को कीट और रोगों से किस प्रकार से बचाएं। हमारी धान की फसल में कई प्रकार के कीट लगते हैं और कई प्रकार की बीमारियां भी लगती हैं, जिनसे अगर हम थोड़ा सा सावधानी बरते हैं तो उनसे बचा जा सकता है। अब हम उनसे बात करते हैं धान की फसल की, तो इसमें बेसिक दो तीन चीजें हैं जिनका हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए। एक चीज जो होती है विशेष कि बीज शोधन, फसल बोने से पहले हम लोगों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम अपनी फसल को बोने से पूर्व बीज का शोधन जरूर कर लें। बीज का शोधन कर लेने से हमें जो फायदा होता है वो ये होता है कि जो बीमारियां अगर हमारे फसल में आने वाले समय में लग भी सकती हैं उनसे हमें बचाव हो जाता है, हमारी फसल बची रहती है। और दूसरी एक और चीज होती है, तो कुछ बीमारियां मृदा से भी हमारी फसल में लग जाती है, उनके लिए भी हमें बचाव करना पहले जरूरी होता है। हमारी फसल बोने से या रोपाई करने से पूर्व हम लोगों को इस बात की आवश्यकता होती है कि हम अपनी फसल को बीमारियां ना लगने दें। अब जैसे बीज शोधन करना है, तो बीज शोधन के लिए बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। कुछ दवाइयां हमारे बाजार में उपलब्ध हैं, जैसे कि थीरम, कार्बोंडाजिम या फिर कुछ बायो पेस्टिसाइड भी उपलब्ध है जिनसे कि हम अपने बीज को शोधित कर सकते हैं। अब अगर हम थीरम से अपने बीज को शोधित करते हैं तो 2.5 ग्राम थीरम प्रति केजी बीज के साथ से हम लोग अपने बीज को शोधित कर सकते हैं, या फिर हमें ट्राइकोडर्मा से शोधित करना है तो 5 ग्राम ट्राइकोडर्मा पाउडर को हम लोग लेकर अपने बीजों को शोधित कर सकते हैं। और कुछ बीमारियों से बचने के लिए हम लोग सेप्टोमाइसिन या सेप्टोसाइक्लिन एक दवा आती है, उससे भी हम अपने बीजों को शोधित कर सकते हैं। अब बीजों को जब हम लोग शोधित करते हैं तो हमें एक विशेष ध्यान देने की जरूरत होती है कि हम अगर दो तीन चीजों से बीज को शोधित कर रहे हैं तो उसको किस प्रकार से शोधित करें। पहली चीज हम लोगों को ध्यान रखना पड़ता है, एक तरीका हम लोग अपनाते हैं FIR। एफ से मतलब होता है फफूंदी नाशक, आई से इंसेक्टिसाइड या कीटनाशी, आर से राइजोबियम कल्चर। तो हम लोग जब बीज शोधित करें तो इस बात का ध्यान रखें कि सबसे सर्वप्रथम फफूंद जाति का इस्तेमाल करें, उसके बाद कीटनाशी दवाई का इस्तेमाल करें, और उसके तुरंत बाद राइजोबियम कल्चर का इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि हम भूमि शोधन कर रहे हैं तो हमें ध्यान देना पड़ेगा कि कुछ बीमारियां और कीट हमारे इससे भी रोके जा सकते हैं, जैसे कि ट्राइकोडर्मा है, इसका हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं किसान भाई। इसमें 2.5 किलोग्राम ट्राइकोडर्मा पाउडर को 60 से 80 किलो गोबर में मिलाकर एक हफ्ता के लिए या 10 दिन तक के लिए रख देते हैं छाया में।

0: जुताई बाकी है, तो आखिरी जुताई से पूर्व हम लोगों को इस ट्राइकोडर्मा जो हमने गोबर में मिला के रखा हुआ है इसका इस्तेमाल हम अपनी भूमि में कर सकते हैं। यह जो है कई प्रकार के कीटों को रोकता है और बीमारियों को भी रोकता है। इसी तरह से एक देवरिया देसियाना पौधा आता है, उसका भी हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि हमारी धान की फसल में मुख्य से कौन कौन से कीट लगते हैं। अब किसान भाई को देख लीजिए, आप लोग पहले से ही जानते हैं कि हमारी फसलों में कौन कौन से कीट लगते हैं। इनमें जो मुख्य कीट है उनमें एक दीमक कीट जो है हमारी फसल में शुरुआत से ही लगता है, तो इसका हमें ध्यान रखना पड़ेगा। दूसरा एक और कीट लगता है जो जड़ की दूरी, जो जड़ के पास लगती है और वो हमारी फसल को नुकसान पहुंचाती है। एक और कीट होता है पत्ती लपेटक। पत्ती लपेटक कीट जो होता है वो पत्तियों को एक तरह से रोम कर देता, लपेट लेता है और हमारे पौधे के जो क्रियाएं हैं वो बाधित हो जाती है। उसके साथ साथ वो उसको लपेट कर उसमें से खाता रहता है। एक कीट होता है तना छेदक, एक सैनिक कीट है। सैनिक कीट जो है हमारा जब बाली आ जाती है उस समय लगता है। एक गंधी कीट होता है जो कि हमारी फसल में जब हमारी फसल दूधिया अवस्था में होती है उस समय लगता है। रोगों की बात करें तो पांच छह मुख्य रोग हैं जो हमारी फसल में लगते हैं। एक सफेदा रोग है जो अधिकतर हमारी नर्सरी में देखा गया है। एक और रोग होता है खैरा रोग। खैरा रोग हमारी फसल में धान की फसल में लगता है। सीट ब्लाइट है, जोका रोग है, भूरा धब्बा रोग है, जीवाणु झुलसा रोग है और एक मुख्य जो रोग लगता है वो कड़ुआ रोग लगता है। तो ये तो बात हुई हमारे रोगों की। अब रोग और कीटों को किस प्रकार से हम अपनी फसल के लिए रोकथाम कर सकते हैं। किसान भाइयों, बहुत ही जरूरी चीजें हैं जिनको हम पूरी अगर ध्यान देंगे तो हम अपनी फसल के हानि को, कीटों से होने वाली हानि को बचा सकते हैं। इनमें क्या मुख्य बिंदु है मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। जो हम लोग बहुत ही सावधानी अगर बरतें तो हमारी फसल इन सारे कीटों से बच सकती है। पहली चीज, खेतों की मेड़ों की सफाई। अधिकतर कीट पतंगे जितने भी हैं जो हमारी फसलों में लगते हैं वो हमारे आसपास की जितनी भी हरियाली होती है उसमें रहते हैं और विशेषकर हमारे खेत के बगल की जो मेड़ होती है उसमें अगर बनेंगे तो उसी में ये सारे कीट पतंगे बने रहते हैं और वहीं पर वहीं से हमारी फसल को अटैक करते हैं। एक और चीज ध्यान देने वाली है कि हम अपनी फसल में खरपतवारों को अधिक ना होने दें। यदि खरपतवार अधिक होंगे तो हमारी फसल को कीट पतंगे भी उनमें बनेंगे और वो हमारी फसल को नुकसान पहुंचाएंगे। एक और चीज ध्यान देने वाली है कि हम लोग रोज ही अपने खेत में विजिट करते हैं, रोज ही जाते हैं, रोज ही निगरानी करते हैं, तो हम लोगों को विशेष ध्यान देने की जरूरत है। जब हम खेत में जाते हैं तो अपनी खेत फसल खड़ी हुई फसल को बारीकी से निरीक्षण करें। बारीकी से निरीक्षण करने का मतलब ये होता है कि हम अपनी फसल में देखते रहें कि कहीं कोई कीट तो नहीं लग रहे हैं, कहीं कोई पौधा हमारा मुरझा तो नहीं रहा है। एक और चीज ध्यान देने वाली है कि जिन क्षेत्रों में दीमक बहुत ज्यादा लगती है उन क्षेत्रों में क्या करें किसान भाई, खेतों में कच्चा गोबर बिल्कुल भी ना डालें और जो हमारी फसलों के अवशेष बच जाते हैं उन अवशेषों को भी हम लोग वहां से अपने खेत में से हटा दें या उनको प्रॉपर्टी सड़ा दें। और इसके साथ साथ जितने भी हम लोग उर्वरकों का इस्तेमाल करते हैं उनका समुचित मात्रा में इस्तेमाल करें।
1: जिन हिसाब से डॉक्टर साहब आप बताएं, जिन हिसाब से अगर किसान भैरे अपने धान के फसल में रोगों कीट नियंत्रण करें निश्चित रूप से उनके धान की फसल बढ़िया हो, ये सब जानकारी दे बदे आपका बहुत बहुत धन्यवाद।

0: अभी आप सुन रहे थे धान की फसल में रोग एवं कीट नियंत्रण विषय पर डॉक्टर सर्वेंद्र कुमार से दिनेश कुमार यादव की बातचीत। कृषि जगत कार्यक्रम अब समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम। आइए सुनते हैं डॉक्टर घनश्याम मिश्र की वार्ता, बच्चों में वायरल फीवर कारण और उपचार।
1: कई बार आप देखते होंगे कि बच्चों को बहुत जल्दी जल्दी सर्दी हो जाती है, या बच्चों को जो डायरिया होता है, छोटे बच्चों को, वो एंटीबायोटिक चलाने के बावजूद ठीक नहीं हो रहा होता है, तो फिर उसको हम लोग कहते हैं कि वो वायरल इन्फेक्शन है। जैसे बैक्टीरिया होते हैं, जैसे फंगस होते हैं, वैसे ही वायरस भी एक ऐसा जर्म होता है जो कि बहुत छोटा होता है और वो उसी सेल पर जाकर रिप्रोड्यूस करता है जहाँ के लिए वो सेंसिटिव होता है, तो मतलब सेल स्पेसिफिक होता है। बहुत सारे वायरसेस के आपने नाम सुने होंगे, जैसे कि हेपेटाइटिस बी वायरस होता है, आम बोलचाल में लोग बोलते हैं, चिकन पॉक्स का वायरस होता है, मम्स का होता है, मीजल्स का होता है, ये सब आपने सुने होंगे। छोटे बच्चों में कभी कभी जैसे सर्दी हुआ, खांसी हुआ, या कई बार फीवर हुआ, कई बार चिड़चिड़ापन हुआ, कभी डायरिया हुआ, ये सारे इन्फेक्शन जो हैं वो छोटे बच्चों में वायरस की वजह से होते हैं। वायरल फीवर होता है, उसमें बहुत तेज बुखार आता है, बच्चा जो है वो खाना पीना कम कर देता है, सर्दी होती है, जुकाम होता है और चिड़चिड़ापन आ जाता है, दूध पीना बंद कर देता है। आप उनको एंटीबायोटिक्स देंगे, उसका कोई असर उस पर नहीं होता है। उस कंडीशन में हमें ये देखना होता है कि क्या हमारे बच्चे को सिर्फ वायरल इन्फेक्शन है, क्योंकि वायरस के अगेंस्ट तो कोई एंटीबायोटिक काम करेगी नहीं ना। तो इसलिए जो शुरुआत में अगर मान लीजिए एक दो दिन का फीवर हुआ है, तो उसको आप यही मानिए कि वो वायरल फीवर है। और हमें सिर्फ क्या क्या ध्यान देना है, हमें देखना है कि बच्चे को बुखार की दवा हम तभी दें जब बुखार 100 से ऊपर जाए। इसका मतलब कि हमें बुखार को थर्मोमीटर से नापना जरूर चाहिए। अंदाज से दवा देने से बच्चे का नुकसान हो सकता है। और कभी कभी अगर मान लीजिए कि हमने पानी में भीगे हाथ है और हमने लाके बच्चे का बदन छुआ और हमें लगा इसको तो बुखार है और दवा दे दी बुखार की, तो हो सकता है कि वो उससे बच्चे का भला ना होकर बच्चे का नुकसान हो जाए। तो ये जो सामान्य तरीके से बच्चे को साल भर में 5-6-7 बार से ज़्यादा सर्दी हो जाए, तो आप ये देखिए कहीं बच्चे को हमारे कॉमन कोल्ड, इन्फ्लुएंजा या रेस्पिरेटरी सिंसेशियल वायरस या राइनो वायरस, पैरा इन्फ्लुएंजा, इसका इन्फेक्शन तो नहीं है। तो वायरस जो है वो हमारे शरीर को बहुत आसानी से कब पकड़ता है, जब हमारी शरीर की प्रतिरोधक क्षमता कम होती है। अब सवाल ये उठता है कि अगर हमको अपने शरीर में वायरस का इन्फेक्शन कम करना है तो हमें क्या करना चाहिए। तो देखिए उसके लिए जो सबसे सामान्य तौर पर है वो तो ये है कि हमें अपनी हाइजीन का मतलब यह है कि हम अपने चेहरे को बार बार अपने गंदे हाथों से ना छुएं, हाथों को धोते रहें खाना खाने से पहले, या बाहर से कहीं आए तो हाथ धो लें। दूसरी चीज की एक होता है शब्द, जब आप खांसी करिए, कॉफ करिए, तो उसके एटिकेट्स होते हैं, कुछ नियम होते हैं। जैसे एकदम से सबके सामने बैठ के मत खांस दीजिए, क्योंकि आपके जो ड्रॉपलेट्स हैं उसमें वायरस होता है जो दूसरे को संक्रमित कर सकता है। तो आपको या तो टिश्यू पेपर लेके उसमें खांस के उसको डिस्ट्रॉय कर देना है, फेंक देना है, या फिर अपनी जो कोहनी है उसको अपनी नाक के सामने लगा के छींकना है, जिससे कि वो ड्रॉपलेट सारी की सारी वहीं पर रहें, फिर बाद में आपके कपड़े धुल जाते हैं। तीसरी चीज़ यह है कि जो आपके जो बहुत पर्सनल आइटम्स हैं, जैसे आपके कप्स हैं, कटलरी है, चम्मच कटोरी है, टूथ ब्रशेज हैं, ये सब शेयर मत करिए, क्योंकि ओरल कैविटी में वायरल का इन्फेक्शन होता है, वो आपका स्प्रेड आउट कर सकता है। इसके अलावा अगर गलती से आपको वायरल इन्फेक्शन हो गया तो आप बाहर नहीं जाएं, दूसरों को नहीं फैलाएं, और अगर किसी आपके मित्र को हुआ है तो उसके पास भी जाना थोड़ा सा रोक दें, बाद में जाएं, और अगर बहुत ज़रूरी हो तो मास्क लगा के जाएं। डाइट बहुत अच्छी होनी चाहिए, फ्रूट्स खाइए, सब्जियां खाइए, नट्स जो हम लोग जिसको कहते हैं कि ड्राई फ्रूट्स, वो खाइए, दही बहुत अच्छा इम्यूनिटी मॉड्यूलेटर है वो खाइए, इसके अलावा सोइए भरपूर, एक अच्छी खासी नींद लीजिए, आपकी शरीर की इम्यूनिटी अच्छी होगी। फिजिकल एक्टिविटी, कोई ना कोई

0: टाइम के लिए, वो भी आपको शरीर के लिए अच्छा हो जाएगा।
1: अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर घनश्याम मिश्र की वार्ता, बच्चों में वायरल फीवर कारण और उपचार, स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम अब समाप्त हुआ।

मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। लीजिए सुनिए हमारे आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों का विवरण। रात 8 बजे सुनिएगा संसद समीक्षा और रात 10 बजे संसद में प्रश्नकाल के कार्यवाही की रिकॉर्डिंग। दोनों कार्यक्रम दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे। सुबह 7 बजे आप सुनेंगे श्रीराम चरितमानस से संगीतमय पाठ। 7:10 पर फिल्मों से भजन प्रसारित किया जाएगा। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में सुबह 7:30 पर उस्ताद आमिर खां का

विशेष कार्यक्रमों का विवरण। रात 8 बजे सुनिएगा संसद समीक्षा और रात 10 बजे संसद में प्रश्नकाल के कार्यवाही की रिकॉर्डिंग। दोनों कार्यक्रम दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे। सुबह 7 बजे आप सुनेंगे श्रीराम चरितमानस से संगीतमय पाठ। 7:10 पर फिल्मों से भजन प्रसारित किया जाएगा। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में सुबह 7:30 पर उस्ताद आमिर खां का गायन और दिन में 12:15 पर पंडित सीआर व्यास का गायन प्रसारित किया जाएगा। सुबह 8:45 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम नमस्कार प्रयागराज। सुगम संगीत के कार्यक्रम में सुबह 9:50 पर आप सुनेंगे अमित कुमार जायसवाल के स्वर में गीत। सुबह 10:05 पर सुनिएगा फिल्म संगीत। सुबह 10:30 पर आप सुनेंगे लोकगीत। कलाकार होंगे त्रिभुवन नाथ गौड़ और साथी। सुबह 11 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम एक ही कलाकार। दिन में 11:30 पर फिल्म संगीत प्रसारित किया जाएगा। हेलो फरमाइश ये कार्यक्रम आप सुनेंगे। दिन में 12:30 पर प्रस्तुति होगी मधु कुमार की। दिन में 1:15 पर पनघट कार्यक्रम में बहनें सुनेंगी प्राची मालवीय से रीता रानी की बातचीत। नशे की लत से कैसे बचें। दोपहर 2:30 पर आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम NCERT। शाम 5 बजे धरती के गीत कार्यक्रम में कलाकार होंगे राम बाबू और साथी।

शाम 5:15 पर युवा श्रोता सुनेंगे कार्यक्रम युववाणी। शाम 6:30 पर पंचायत घर कार्यक्रम में ग्रामीण भाई सुनेंगे राजा राम त्रिपाठी से रामायण पाठ। शाम 6:50 पर प्रायोजित कार्यक्रम सुनिएगा किसान वाणी, जिसे हम लखनऊ केंद्र से रिले करेंगे। शाम 7:31 पर आप सुनेंगे संस्कृत कार्यक्रम में डॉक्टर शक्तिधर नाथ पांडे की वार्ता संस्कृत साहित्य वर्षा वर्णनम। रात 8:15 पर आप सुनेंगे रूपक साहित्य के उन्नायक मुंशी प्रेमचंद, आलेख है रण विजय सिंह सत्यकेतु का। गजलों पर आधारित कार्यक्रम कहकशा आप सुनेंगे रात 9:30 पर। ये थी जानकारी हमारे आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की।

हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 6:55 होने को हैं। अब आप सुनेंगे संस्कृत में समाचार, जिन्हें हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले कर रहे हैं।

सती ने महादेव से छल तो किया, किंतु उनके समाधि में चले जाने के बाद पश्चाताप की आग में स्वयं जलने लगी। शिव की समाधि का एक एक दिन सती के लिए एक एक युग के समान बीतने लगा। मन में ये सोच कि इस दारुण दुख के अथाह और अनंत सागर को कब पार कर सकेंगी। शंकर के विमुख हो जाने के बाद भी विधाता उन्हें क्यों जिला रहा है। विडंबना यह है कि आत्मग्लानि के भेद को किसी पर प्रकट भी नहीं कर सकती। 87,000 वर्ष बीत जाने के बाद शिव की समाधि टूटी। सती ने आकर उनके चरणों में सिर नवाया तो महादेव उन्हें आदर से पास बिठाकर हरि अवतार की कथाएं सुनाने लगे। उन्हीं दिनों सती के

पिता दक्ष को ब्रह्मा ने प्रजापतियों का नायक बनाया। ऐसी प्रभुता का पद पाकर अभिमान किसे नहीं होता। दक्ष को भी अभिमान हुआ और उन्होंने एक महायज्ञ करने की ठानी, जिसमें गंधर्व, किन्नर, शेषनाग, सिद्धों सहित सभी देवताओं को निमंत्रित किया।

अभी आप श्री रामचरितमानस से संगीतमय पाठ सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। मीटर वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर प्रस्तुत है फिल्मों से भजन। लीजिए सुनिए सुबह फिल्म का ये भजन, लता मंगेशकर की आवाज़ में। संगीत दिया है सुधीर फड़के ने और रचना है पंडित नरेंद्र शर्मा की।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं फिल्मों से भजन। लीजिए सुनिए नीलकमल फिल्म का ये भजन। आशा भोसले की आवाज़ में संगीत दिया है रवि ने और रचना है साहिल लुधियानवी की।

अभी आप फिल्म से भजन सुन रहे थे। प्रसारण आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से किया जा रहा था। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज पर। थोड़ी देर में आप सुनेंगे हमारा अगला कार्यक्रम। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं वेद प्रकाश पाठक। पहले मुख्य समाचार। कराधान और अन्य विधियां संशोधन विधेयक 2026 संसद से पारित। डिजिटल बैंकिंग रिकॉर्ड को साक्ष्य के रूप में कानूनी मान्यता देने वाले विधेयक को भी मिली संसद की मंजूरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रदेश के गुलवीर सिंह और अस्मिता डे सहित राष्ट्रमंडल खेलों के पदक विजेताओं से की मुलाकात। कहा, आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बनेगी यह कामयाबी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में तिरंगा यात्रा का किया शुभारंभ। लोगों से अपने घरों पर तिरंगा लगाकर सेल्फी अपलोड करने की अपील की। और प्रदेश के 762 नगरीय निकायों में संपत्ति कर के बकायेदारों के लिए लागू हुई एक मुश्त समाधान योजना। अब समाचार विस्तार से। संसद ने कराधान और अन्य विधियां संशोधन विधेयक 2026 कल पारित कर दिया।
1: राज्यसभा ने कराधान और अन्य विधियां संशोधन विधेयक 2026 को चर्चा के बाद कल लोकसभा को वापस भेज दिया। लोकसभा पहले ही इस विधेयक को पारित कर चुकी है।

0: चर्चा का जवाब देते हुए केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि विधेयक का उद्देश्य भारत के विनिर्माण पारिस्थितिक तंत्र को मजबूत करना, और अधिक निवेश आकर्षित करना, रोजगार सृजित करना और विनिर्माण गतिविधियों को बढ़ावा देना है। वित्त मंत्री ने स्पष्ट किया कि विधेयक में यूपीआई उपयोगकर्ताओं पर कोई कर या लेनदेन शुल्क नहीं लगाया गया है। उन्होंने आश्वासन दिया कि छोटे व्यापारियों और उपभोक्ताओं को यूपीआई पर एमडीआर शुल्क नहीं देना होगा। समाचार कक्ष से विवेक सिंह।
1: संसद ने कल ही बैंककार बहिसाक्ष्य विधेयक 2026 भी पारित कर दिया। इस विधेयक को कल राज्यसभा ने मंजूरी दे दी। लोकसभा इसे पहले ही पारित कर चुकी है। विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि यह विधेयक देश को तेजी से आगे बढ़ने में मदद करेगा।
2: The bill, among various other things that it wants to do,
3: इस विधेयक में अन्य बातों के साथ साथ बैंकों के खातों के लिए एक प्रौद्योगिकी तटस्थ कानूनी ढांचा प्रदान करने का प्रावधान है। यह इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल बैंकिंग रिकॉर्ड को मान्यता देता है और प्रमाणीकरण प्रक्रिया को मानकीकृत करता है, जिससे इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग रिकॉर्ड की स्वीकार्यता आसान होती है। इसके अंतर्गत मैनुअल, डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरों के माध्यम से प्रमाणीकरण की अनुमति दी गई है।
2: परमिट्स ऑथेंटिकेशन थ्रू मैनुअल, डिजिटल एंड इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर्स।
1: लोकसभा ने कल अधिकरण सुधार विधेयक 2026 भी पारित कर दिया। विधेयक और न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि इस विधेयक का उद्देश्य कार्य प्रणाली में दक्षता सुधार, पारदर्शिता और एक रूपता सुनिश्चित करना है।
4: इस विधेयक का उद्देश्य विभिन्न अधिकरणों के अध्यक्षों और सदस्यों की योग्यता, नियुक्ति और प्रशासन तथा कार्यप्रणाली में दक्षता सुधार, पारदर्शिता और एकरूपता सुनिश्चित करना है। साथ ही न्यायाधिकरणों के प्रशासन और कामकाज में सुधार करना, एक राष्ट्रीय न्यायाधिकरण आयोग की स्थापना करना और संबंधित अधिनियमों में परिणामी संशोधन करना भी है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रमंडल खेल 2026 के पदक विजेताओं से रविवार को नई दिल्ली में अपने आवास पर मुलाकात की। उनसे मिलने वालों में प्रदेश के खिलाड़ी गुलवीर सिंह और अस्मिता डे भी शामिल हैं। इस अवसर पर पदक जीतने वाले खिलाड़ियों ने प्रधानमंत्री से राष्ट्रमंडल खेल के अनुभव साझा किए। प्रधानमंत्री ने कहा कि सम्मान केवल पदक जीतने में नहीं, बल्कि एक युवा प्रतिभा के रूप में उत्कृष्ट खेल दिखाने में है।
5: आपके इस अचीवमेंट को सिर्फ आपका अचीवमेंट मानता हूं ऐसा नहीं है, ये आपका विजय आने वाली पीढ़ियों के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा बन जाता है। अगर आप लोग खेलो इंडिया की प्रतिष्ठा बढ़ाते हैं, और प्रतिष्ठा सिर्फ वहां जाकर के रिबन काटने से नहीं होगी, आप वैसे ही खेलेंगे जैसे एक छोटा खिलाड़ी खेलता है, ये बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन करेगा, क्योंकि अभी तो हमें बहुत आगे जाना है।
1: उत्तर प्रदेश पुलिस में सब इंस्पेक्टर पद पर कार्यरत अस्मिता डे से बातचीत करते हुए प्रधानमंत्री ने वाराणसी में खेल सुविधाओं के बारे में जानकारी ली।
5: वाराणसी में खेल तो प्रैक्टिस कर रही थी ना?
6: जी सर, बहुत
5: कैसा बना है स्टेडियम?
6: सर अच्छा बना है। वहाँ पे मैं 10-12 दिन के लिए ट्रेनिंग करने गई थी, क्योंकि मैं मंदिर गई थी तो वहाँ पे ट्रेनिंग करके आई थी, और मैं वहाँ पे मतलब सेटल भी होना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे काशी विश्वनाथ बहुत अच्छा लगता है। सर साई ने भी सर बहुत सपोर्ट किया है मुझे, इसके कारण ही मैं यहाँ तक पहुँची हूँ सर, और मैं खेलो इंडिया स्कीम में भी थी।
5: स्पोर्ट्स व्यवस्था एक बात, लेकिन देश मेडल तब प्राप्त करता है जब देश में स्पोर्ट्स कल्चर बनता है। दोस्तों आपने बहुत बड़ा काम किया है, देश का नाम रोशन किया है, आपको मैं बहुत बधाई देता हूँ।
1: भारत ने 23 जुलाई से 2 अगस्त के बीच ग्लासगो में संपन्न राष्ट्रमंडल खेलों में 13 स्वर्ण, 17 रजत और 9 कांस्य पदक जीतकर चौथा स्थान हासिल किया है। इसमें प्रदेश से जुड़ी अस्मिता डे ने जूडो में स्वर्ण पदक और गुलवीर सिंह ने एथलेटिक्स में रजत एवं कांस्य पदक जीतकर देश का मान बढ़ाया है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। यह समाचार बुलेटिन हमारे YouTube चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR News_GKP पर भी उपलब्ध है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में कल गोरखपुर में तिरंगा यात्रा निकाली गई। हर घर तिरंगा अभियान के तहत इस यात्रा का शुभारंभ करने से पहले मुख्यमंत्री ने गोरखपुर नगर निगम परिसर में स्थापित महारानी लक्ष्मीबाई की प्रतिमा पर

0: माल्यार्पण कर स्वतंत्रता संग्राम में उनके योगदान को याद किया। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत का तिरंगा स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की अमिट गाथा का नाम है।
1: राष्ट्र के महापुरुष और राष्ट्र के क्रांतिकारी किसी भी युवा के लिए प्रेरणा होती है। ये जो तिरंगा है, ये तिरंगा भारत के क्रांतिकारियों, भारत के स्वाधीनता संग्राम सेनानियों के बलिदान की अमिट गाथा का नाम है, उस अमिट गाथा की प्रेरणा है। और इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने हर युवा को गौरव की अनुभूति से जोड़ने के लिए हर घर तिरंगा को अनिवार्य किया है कि हर घर तिरंगा लगे और तिरंगा के प्रति जागरूकता के लिए तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है।
0: मुख्यमंत्री ने लोगों से आह्वान किया कि सभी लोग अपने घर पर तिरंगा लगाएं और उसके साथ सेल्फी लेकर अपलोड करें। उन्होंने कहा कि यह कार्य राष्ट्र के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान देने वाले वीर शहीदों के प्रति सम्मान का प्रतीक है।
1: उत्तर प्रदेश में इस वर्ष हम लोगों ने लक्ष्य रखा है 5 करोड़ घरों में तिरंगा लहराने का। हर संस्था, हर सरकारी, अर्ध सरकारी, निजी इंस्टीट्यूशन में, उद्योगों में, व्यापारिक संस्थानों में, घरों में यह तिरंगा लहराया जाएगा।
0: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज गोरखपुर में करीब 69 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से तैयार सड़क परियोजना का लोकार्पण करेंगे।
2: मुख्यमंत्री गोरखपुर सुनौली मार्ग से ग्रीन सिटी होते हुए माधोपुर बंधा तक सड़क चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण कार्य का लोकार्पण करेंगे। करीब 2 किलोमीटर की लंबाई में इस सड़क के निर्माण पर 69.58 करोड़ रुपए की लागत आई है। गोरखपुर में राष्ट्रीय राजमार्ग 24 से निकलकर यह सड़क ग्रीन सिटी पटनिया होते हुए माधोपुर बंधा तक जाती है। लोकार्पण अवसर पर मुख्यमंत्री नेताजी सुभाष चंद्र बोस नगर में एसटीपी के समीप स्थित मैदान में एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। जीएन चौबे, आकाशवाणी समाचार, गोरखपुर।
0: राज्य सरकार ने प्रदेश के सभी 762 नगरीय निकायों में एक मुश्त समाधान योजना ओटीएस लागू करने का निर्णय लिया है। नगर विकास मंत्री एके शर्मा ने बताया कि एक मुश्त समाधान योजना की अवधि 4 माह निर्धारित की गई है। इसका क्रियान्वयन 15 अगस्त 2026 से 15 दिसंबर 2026 तक किया जाएगा। सरकार ने ओटीएस के अंतर्गत बकाया संपत्ति कर के भुगतान के लिए अधिकतम 3 किस्तों की सुविधा भी प्रदान की है। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। कराधान और अन्य विधियां संशोधन विधेयक 2026 संसद से पारित। डिजिटल बैंकिंग रिकॉर्ड को साक्ष्य के रूप में कानूनी मान्यता देने वाले विधेयक को भी मिली संसद की मंजूरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रदेश के गुलवीर सिंह और अस्मिता डे सहित राष्ट्रमंडल खेलों के पदक विजेताओं से की मुलाकात। कहा, आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बनेगी यह कामयाबी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में तिरंगा यात्रा का किया शुभारंभ। लोगों से अपने घरों पर तिरंगा लगाकर सेल्फी अपलोड करने की अपील की। और प्रदेश के 762 नगरीय निकायों में संपत्ति कर के बकायेदारों के लिए लागू हुई एक मुश्त समाधान योजना। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
3: हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज पर प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम। लीजिए सुनिए उस्ताद आमिर खां का ख्याल गायन राग है बैरागी भैरव।

अभी आप सुन रहे थे उस्ताद आमिर खां का ख्याल गायन राग था बैरागी भैरव। शास्त्रीय संगीत का ये कार्यक्रम अब समाप्त हुआ।

0: हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 8 बजने वाले हैं। अब आप सुनेंगे समाचार प्रभात।
1: सुनिए, क्या आपने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में सुना है?
2: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
1: इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो, और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो pmsuryaghar.gov.in पर।
3: हर घर सूर्य घर।
4: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। संसद ने कराधान और अन्य विधियां संशोधन विधेयक 2026 पारित किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने स्पष्ट किया, उपयोगकर्ताओं के लिए डिजिटल भुगतान निशुल्क रहेगा। सरकार ने ई वीजा धारक विदेशी नागरिकों का भारत में प्रवेश सुगम बनाने के लिए 11 और अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह अधिसूचित किए। झारखंड विद्यार्थी विरोध प्रदर्शन नेता देवेंद्र नाथ महतो तबियत बिगड़ने के बाद अस्पताल में भर्ती। विद्यार्थियों पर लाठीचार्ज के बाद आज भाजपा का बंद का आह्वान। पश्चिमी कोलंबिया में 7.4 तीव्रता के शक्तिशाली भूकंप में 132 लोगों की मौत। मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश और पूर्वी राजस्थान में आज मूसलाधार वर्षा की चेतावनी जारी की। और नाइजीरिया के लेगोस में राष्ट्रमंडल अंडर-23 तलवारबाजी चैंपियनशिप में भारत ने 4 स्वर्ण सहित 17 पदक जीते। अब समाचार विस्तार से। संसद ने कराधान और अन्य विधियां संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। राज्यसभा ने इस विधेयक को चर्चा के बाद लोकसभा को वापस भेज दिया। लोकसभा पहले ही इस विधेयक को पारित कर चुकी है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि विधेयक का उद्देश्य भारत के विनिर्माण

0: तंत्र को मजबूत करना, अधिक निवेश आकर्षित करना, रोजगार सृजित करना और विनिर्माण गतिविधियों को बढ़ावा देना है। वित्त मंत्री ने स्पष्ट किया कि विधेयक में डिजिटल भुगतान पर कोई कर या लेन देन शुल्क नहीं लगाया गया है।
1: छोटे मर्चेंट्स और किराना स्टोर्स हमारे इंक्लूसिव फाइनेंशियल स्कीम्स और सरकार के ये बहुत बड़ा कमिटमेंट है फाइनेंशियल इंक्लूजन का। स्मॉल मर्चेंट्स रिमेन सेंट्रल टू यूपीआई इंक्लूसिव ग्रोथ। उनके ऊपर हम कोई एमडीआर लगाने वाले नहीं है, इरादा नहीं है, इनेबलिंग प्रोविजन का हम ध्यान रखना है।
0: गृह मंत्री अमित शाह आज लोकसभा में केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 और राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक 2026 चर्चा और पारित करने के लिए पेश करेंगे। राज्यसभा में अधिकरण सुधार विधेयक 2026 पर विचार और पारित करने के लिए चर्चा होगी। सरकार ने ई वीजा धारक विदेशी नागरिकों का भारत में प्रवेश सुगम बनाने के लिए 11 और अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह अधिसूचित किए हैं।
2: गृह मंत्रालय की अधिसूचना में 9 जमीनी बंदरगाह और 2 हवाई अड्डे शामिल हैं। इनमें भोपाल और तिरुपति के हवाई अड्डे और अटारी व अगरतला के जमीनी बंदरगाह शामिल हैं। भारत में लगभग 95% ई वीजा आवेदनों को 72 घंटे से भी कम समय में मंजूरी दे दी जाती है। अब ई वीजा वाले विदेशियों के प्रवेश के लिए उपलब्ध अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाहों की संख्या बढ़कर 88 हो गई है। इनमें 37 हवाई अड्डे, 38 समुद्री बंदरगाह और 13 जमीनी बंदरगाह शामिल है। समाचार कक्ष से अमीषा।
0: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस जेम पोर्टल पर उत्तम गुणवत्ता के सही कीमत वाले उत्पाद की सही समय पर खरीद होती है। उन्होंने कल नई दिल्ली में जेम पोर्टल के 10 वर्ष पूरे होने के उत्सव में ये बात कही। श्री गोयल ने कहा कि जेम पोर्टल शुरू होने से पहले सरकारी धन का दुरुपयोग हो रहा था, खरीद में पारदर्शिता नहीं थी और शासन की कमी थी। उन्होंने कहा कि जेम पोर्टल ने देश भर के सभी लोगों के लिए सरकारी खरीद में हिस्सा लेने के लिए निष्पक्ष और समान अवसर उपलब्ध कराए हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। झारखंड की राजधानी रांची में कल विद्यार्थियों के नेतृत्व में विधानसभा मार्च के दौरान छात्र आंदोलन के नेता देवेंद्र नाथ महतो की तबीयत बिगड़ने के कारण उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि ब्लड शुगर लेवल में गिरावट के बाद चिकित्सकों ने श्री महतो की हालत गंभीर बताई है।
3: कल करीब 10 घंटे तक चले विधानसभा घेराव के दौरान प्रदर्शनकारी विधानसभा गेट नंबर 1 के पास पहुंच गए। उन्हें हटाने के लिए पुलिस ने वाटर कैनन, आंसू गैस और लाठी चार्ज का इस्तेमाल किया। पिछले 9 दिनों से अनशन पर बैठे छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो की विधानसभा घेराव के दौरान तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद उन्हें रांची के सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस कार्रवाई के विरोध में बीजेपी ने आज राज्यव्यापी बंद का आह्वान किया है और कथित परीक्षा अनियमितताओं की CBI जांच की अपनी मांग दोहराई है। रांची के उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्री ने लोगों से आज के बंद को शांतिपूर्ण तरीके से मनाने की अपील की है। प्रशासन ने रांची के प्रमुख स्थानों पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी है। महवेश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
0: संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि सरकार दिल्ली में हुए प्रदर्शन और देश भर में जारी विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन तथा इससे जुड़े मुद्दों पर संसद में विस्तृत चर्चा के लिए तैयार है। कार्य मंत्रणा समिति की बैठक के बाद संसद परिसर में श्री रिजिजू ने आश्वासन दिया कि गृह मंत्री अमित शाह हर मुद्दे का जवाब देने के लिए तैयार हैं।
4: मैं बहुत साफ शब्दों से सरकार की ओर से कहना चाहता हूं, सरकार पूरा छात्र का मामले को लेकर के चर्चा के लिए तैयार है और पूरा जवाब देने के लिए तैयार है। गृह मंत्री जी विस्तार से जवाब देने के लिए तैयार है। मैंने बिजनेस एडवाइजरी में भी सार्वजनिक वहां सबके सामने में कह दिया है कि सरकार छात्र को लेकर के पूर्ण रूप से विस्तार से चर्चा के लिए तैयार है।
0: पश्चिमी कोलंबिया में 7.4 तीव्रता के भूकंप के कारण 132 लोगों की मौत हो गई और सैकड़ों इमारतें क्षतिग्रस्त हुई हैं। कई लोगों के मलबे के नीचे दबे होने की खबर है। कोलंबिया के राष्ट्रपति एबेलार्डो दे लास प्रिएजा ने राहत कार्यों के लिए धन तेजी से जारी करने के लिए आपातकाल की घोषणा कर दी है। भूकंप का केंद्र राजधानी बोगोता से लगभग 400 किलोमीटर पश्चिम में चोको क्षेत्र के सैन होस डेल पालमार में था। भूकंप के झटके पड़ोसी देशों

0: इक्वाडोर और पनामा में भी महसूस किए गए, हालांकि वहां बहुत कम नुकसान की खबर है। हिमाचल प्रदेश और पूर्वी राजस्थान में आज मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने आज अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र, गुजरात, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में कुछ स्थानों पर तेज वर्षा का अनुमान लगाया है। हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि हिमाचल प्रदेश के अधिकतर भागों में कल रात से ही रुक रुक कर वर्षा जारी है।
1: हिमाचल प्रदेश में लगातार बारिश से सामान्य जनजीवन प्रभावित हुआ है। कई स्थानों पर भूस्खलन के कारण 106 सड़कें अभी भी अवरुद्ध हैं, जबकि 66 बिजली ट्रांसफार्मर और 19 पेयजल योजनाएं प्रभावित हैं। हालांकि संबंधित विभागों के कर्मचारी इन व्यवस्थाओं को बहाल करने में जुटे हैं। इस बीच मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने आगामी 24 घंटों के दौरान 3 जिलों कांगड़ा, सिरमौर व मंडी में भारी से बहुत भारी वर्षा का ऑरेंज अलर्ट, जबकि 6 अन्य जिलों ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, चंबा, शिमला व सोलन में भारी वर्षा का येलो अलर्ट जारी किया है। प्रशासन ने भारी वर्षा की आशंका के चलते लोगों से एहतियात बरतने की अपील की है। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला।
0: देश भर में हर घर तिरंगा अभियान का आयोजन हो रहा है। उत्तर प्रदेश के सभी मदरसों में हर घर तिरंगा अभियान से जुड़े कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।
2: अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री दानिश अंसारी ने निर्देश दिए हैं कि मदरसों में पढ़ने वाले छात्रों और युवाओं को इस अभियान में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर जिले में तिरंगा यात्रा का नेतृत्व किया। उन्होंने कहा कि हर घर तिरंगा अभियान स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदानों को श्रद्धांजलि है और लोगों से अपने घरों में गर्व और सम्मान के साथ राष्ट्रीय ध्वज फहराने का आग्रह किया। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: राष्ट्र आज क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी खुदीराम बोस के 119वें बलिदान दिवस पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। बंगाल के क्रांतिकारी खुदीराम बोस को 11 अगस्त 1908 को अंग्रेजों ने फांसी दी थी। इस युवा क्रांतिकारी के सर्वोच्च बलिदान को श्रद्धांजलि देने के लिए देश भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। और अब खेल समाचार के साथ हैं सरफिरोजी।
3: नाइजीरिया के लागोस में राष्ट्रमंडल अंडर 23 तलवारबाजी चैंपियनशिप के पहले दिन भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 4 स्वर्ण, 4 रजत और 9 कांस्य पदक सहित 17 पदक जीते। पुरुषों की सेबर स्पर्धा में निखिल वाघ ने स्वर्ण और लक्ष्य बटसेर ने रजत पदक हासिल किया। अश्विनी आर्य और लैशराम मोरांबा ने कांस्य पदक जीते। पुरुषों की फाइल स्पर्धा में तेजस पाटिल ने रजत और हिमांश सनासम ने कांस्य पदक प्राप्त किया। पुरुषों की एपी स्पर्धा में लोकेश विमानी ने रजत और शौर्य अश्विनी तथा गॉडविन एंकबेस ने कांस्य पदक हासिल किया। महिला वर्ग में जॉयस अशिता ने फाइल स्पर्धा में स्वर्ण और कनाग लक्ष्मी ने रजत पदक प्राप्त किया। प्राची लोहान ने एपी स्पर्धा का स्वर्ण और निवेद्या नायर तथा अनुप्रिया ने कांस्य पदक हासिल किए। सेबर स्पर्धा में जेफरलिन ने स्वर्ण और आखिरी शर्मा ने रजत तथा श्रेया गुप्ता ने कांस्य पदक जीता। उधर FIH हॉकी पुरुष और महिला विश्व कप इस सप्ताह के अंत में नए प्रारूप से शुरू होंगे। प्रतियोगिता के क्वार्टर फाइनल चरण को समाप्त कर दिया गया है। भारतीय पुरुष टीम को पूल डी में इंग्लैंड, पाकिस्तान और वेल्स के साथ रखा गया है, जबकि महिला टीम पूल डी में चीन, इंग्लैंड और दक्षिण अफ्रीका के साथ खेलेगी। ये प्रतियोगिता 15 से 30 अगस्त के बीच बेल्जियम और नीदरलैंड्स की संयुक्त मेजबानी में आयोजित की जाएगी।
0: कांवड़ यात्रा के दौरान हरिद्वार में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। कल शाम तक 4,43,78,000 से अधिक श्रद्धालु पवित्र गंगा जल लेकर अपने अपने गंतव्यों के लिए रवाना हो चुके थे। सावन शिवरात्रि के अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु भगवान शिव को जल अर्पित कर कांवड़ यात्रा का समापन कर रहे हैं। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं वैष्णवी।
4: धन्यवाद प्रियंका। झारखंड में युवाओं का अगस्त क्रांति मार्च। राज्य में भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ियों के खिलाफ विद्यार्थियों के उग्र होते आंदोलन को अमर उजाला सहित सभी अखबारों ने प्रमुखता दी है। दैनिक भास्कर ने लिखा है, पहली बार विधानसभा की चौखट तक पहुंचे आंदोलनकारी। दैनिक जागरण के शब्द हैं, लाठी चार्ज और आंसू गैस के गोलों के बीच विद्यार्थियों ने घेरी विधानसभा। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, सरकार ने कहा विद्यार्थियों के मुद्दे पर चर्चा को तैयार, गृह मंत्री अमित शाह देंगे जवाब। वहीं अमर उजाला ने अपने संपादकीय में लिखा है, पूरे मॉनसून सत्र के दौरान सरकार और विपक्ष के बीच बढ़ते मतभेदों ने संसद की कार्यवाही को जिस बुरी तरह से प्रभावित

0: प्रस्तावित किया है वे वाकई चिंताजनक है। सभी को समझना होगा कि संसद का समय राष्ट्रीय संपत्ति है, उसे गंवाना किसी पक्ष के लिए गर्व का विषय नहीं हो सकता। जीन्स पहनना लड़कियों की अपनी पसंद, दखल का किसी को अधिकार नहीं। दिल्ली उच्च न्यायालय के इस अहम फैसले को पंजाब केसरी सहित कई अखबारों ने प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान की खबर है, अमेरिका में H-1B और L-1 वीजा धारकों को वीजा विस्तार के लिए अतिरिक्त शुल्क का भुगतान करना होगा। नए नियम 9 सितंबर से लागू होंगे। हॉर्मुस जलमार्ग की नाकेबंदी से मंडरा रहा पर्यावरणीय खतरा। जनसत्ता ने लिखा है, फारस की खाड़ी में फरवरी से खड़े हैं 1,500 से अधिक जहाज। जहाजों के बाहरी हिस्सों पर समुद्री जीवों और वनस्पतियों की परतें हो रही जमा। बंदूक छोटी, हुनर चमका। राजस्थान पत्रिका ने अपने छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के सम्मेलन में सुकमा जिले की आत्मसमर्पण कर चुकी 9 महिला नक्सलियों की पारंपरिक हथकरघा वस्त्र पहनकर रैंप वॉक करने की खबर को सचित्र प्रकाशित किया है। पत्र की एक और खबर ध्यान खींचती है, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर मौजूद रूस के अंतरिक्ष यात्रियों ने भारत को स्वतंत्रता दिवस की अग्रिम बधाई दी। संदेश में भारत के गगनयान मिशन का जिक्र करते हुए भारत रूस की दोस्ती की सराहना की।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद ने कराधान और अन्य विधियां संशोधन विधेयक 2026 पारित किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने स्पष्ट किया, उपयोगकर्ताओं के लिए डिजिटल भुगतान निःशुल्क रहेगा। सरकार ने ई वीजा धारक विदेशी नागरिकों का भारत में प्रवेश सुगम बनाने के लिए 11 और अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह अधिसूचित किए। झारखंड विद्यार्थी विरोध प्रदर्शन नेता देवेंद्र नाथ महतो तबियत बिगड़ने के बाद अस्पताल में भर्ती विद्यार्थियों पर लाठीचार्ज के बाद आज भाजपा का बंद का आह्वान। पश्चिमी कोलंबिया में 7.4 तीव्रता के शक्तिशाली भूकंप में 132 लोगों की मौत। मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश और पूर्वी राजस्थान में आज मूसलाधार वर्षा की चेतावनी जारी की। और नाइजीरिया के लेगोस में राष्ट्रमंडल अंडर-23 तलवारबाजी चैंपियनशिप में भारत ने 4 स्वर्ण सहित 17 पदक जीते। इसके साथ ही समाचार प्रभात का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning. I am Shagun Chopra. The headlines. Parliament passes Taxation and Other Laws Amendment Bill 2026. Finance Minister Nirmala Sitharaman says digital payment system to remain free for consumers. Government notifies 11 more international ports enabling e-visa holder foreigners to enter India. Jharkhand student protest leader Devendra Nath Mahato hospitalized after his health deteriorates. BJP calls for Jharkhand Bandh today if a lathi charge on students. At least 132 people killed following 7.4 magnitude earthquake in western Colombia. IMD issues orange alert for heavy rainfall in Himachal Pradesh and East Rajasthan today. And India wins 17 medals, including 4 gold at Under-23 Commonwealth Fencing Championship in Lagos, Nigeria. And now the news in detail. Parliament has passed the Taxation and Other Laws Amendment Bill 2026 after Rajya Sabha returned the money bill to Lok Sabha following discussion. The Lok Sabha had earlier passed the bill, which was then sent to Rajya Sabha for discussion. Since it is a money bill, Rajya Sabha can only make recommendations on its provisions and return it to the Lok Sabha, which may accept or reject those recommendations. Replying to the discussion on the bill in the Rajya Sabha, Finance Minister Nirmala Sitharaman made it clear that the legislation does not impose any tax on UPI and the digital payment system would remain free for consumers. The Finance Minister stated that the UPI-related amendment is only an enabling provision and does not itself impose any tax or transaction charge on users. Ms. Sitharaman also said that the government doesn't intend to impose any MDR charges on small merchants as they remain central to UPI's inclusive growth.
3: It does not impose any tax or transaction charge on UPI users. It enables the government to specify through notification the electronic payment modes that will continue to receive statutory protection against charges.

0: reports the song will be rendered upon the Prime Minister's arrival after he will unfold the national flag and deliver his customary address to the nation. Youth power to drive I-Day celebrations, says Economic Times. Yuva Shakti, or youth power, will be a key theme at the upcoming Independence Day celebration. Several young achievers, innovators, 19 Olympiad medalists and startup pros have been invited as special guests. Government ready for Ellis debate over protest? Shah to reply, says Rijiju, informs the Asian Age. Monsoon surplus in city, entire August rain in 10 days, the Times of India. The Delhi monsoon rainfall has turned surplus, recording 25% excess rainfall from June 1st to August 10th. The Indian Express informs physicist Deepak Dhar wins 2026 DRAC medal. The theoretical physicist from Uttar Pradesh has been named the co-recipient of DRAC medal, one of the highest honours in the field. Asiatic land population rises from 523 in 2015 to 891 in 2025, noted Bhupendra Yadav in a social media post, reports The Statesman. India's success in conserving Asiatic lion is a proud testament to the country's commitment to wildlife and biodiversity. And finally, as AI grips world, thrill of collecting vintage iconic computers growing, writes the Times of India. The paper adds the enthusiasm for the history of computers and all the stuff around it is growing. And with that, it's back to you, Shagun.
1: Thank you, Renu. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Parliament passes Taxation and Other Laws Amendment Bill 2026. Finance Minister Nirmala Sitharaman says digital payment system to remain free for consumers. Government notifies 11 more international ports enabling e-visa holder foreigners to enter India. Jharkhand student protest leader Devendranath Mahato hospitalized after his health deteriorates. BJP calls for Jharkhand Bund today over lathi charge on students. At least 132 people killed following 7.4 magnitude earthquake in Western Colombia. IMD issues orange alert for heavy rainfall in Himachal Pradesh and East Rajasthan today. And India wins 17 medals, including 4 gold at Under 23 Commonwealth Fencing Championship in Lagos, Nigeria. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
2: Akashvani se pesh hai khabarnama. आदाब, खबरनामे के साथ मैं कौनैन हैदर। पहले इस वक्त की खास खबरें। पार्लियामेंट ने टैक्सेशन और दीगर कवानीन से मुतालिक तरमीमी बिल 2026 को मंजूरी दे दी है। वजीर खजाना निर्मला सीतारमन ने कहा है कि सारिफीन के लिए डिजिटल अदायगी का निजाम मुफ्त रहेगा। हुकूमत ने मजीद 11 बैनुल अक़वामी बंदरगाहों को नोटिफाई किया है, जिससे ई वीजा रखने वाले गैर मुल्की शहरियों को भारत में दाखिल होने की इजाजत होगी। झारखंड के तलबा एहतजाज के लीडर देवेंद्र नाथ महतो की तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें अस्पताल में दाखिल कराया गया है। तलबा पर लाठी चार्ज के खिलाफ बीजेपी ने आज झारखंड बंद की अपील की है। मगरबी कोलंबिया में 7.4 शिद्दत के जलजले में कम से कम 132 अफराद हलाक हो गए हैं। भारतीय मौसमियात महकमे ने आज हिमाचल प्रदेश और मशरकी राजस्थान में तेज बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। और नाइजीरिया के शहर लागोस में मुनाकिदा 23 साल की उम्र तक की दौलत मुश्तरका फेंसिंग चैंपियनशिप में भारत ने सोने के 4 तमगों समेत कुल 17 तमगे जीते हैं। अब खबरें तफसील से। पार्लियामेंट ने टैक्सेशन और दीगर कवानीन से मुतालिक तरमीमी बिल 2026 को मंजूरी दे दी है। राज्यसभा ने बिल पर बहस के बाद इसे लोकसभा को वापस भेज दिया था। लोकसभा ने इस बिल को पहले ही मंजूर कर लिया था, जिसके बाद इसे बहस के लिए राज्यसभा भेजा गया था। क्योंकि ये एक मालियाती बिल है, इसलिए राज्यसभा इसकी दफात में सिर्फ सिफारिशात कर सकती है और उसे लोकसभा को वापस भेज सकती है। लोकसभा इन सिफारिशात को कबूल या मुस्तरद करने का इख्तियार रखती है। राज्यसभा में बिल पर बहस का जवाब देते हुए वजीर खजाना निर्मला सीतारमन ने वाजे किया कि इस कानून के जरिए यूपीआई पर कोई टैक्स आयद नहीं किया जा रहा है और डिजिटल अदायगी का निज़ाम सारिफीन के लिए बदस्तूर मुफ्त रहेगा। वजीर खजाना ने बताया कि यूपीआई से मुतालिक तरमीम सिर्फ एक कानूनी इल्तिज़ाम फराहम करती है और इसके जरिए खुद सारिफीन पर कोई टैक्स या ट्रांजैक्शन चार्ज आयद नहीं किया गया है। मोहतरमा सीतारमन ने

0: मजीद कहा कि हुकूमत का छोटे ताजरों पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट चार्जेस आयद करने का कोई इरादा नहीं है, क्योंकि छोटे ताजर यूपीआई की जामे और सभी की शमूलियत वाली तरक्की में मरकजी हैसियत रखते हैं। हुकूमत ने ई वीजा रखने वाले गैर मुल्की शहरियों को भारत में दाखिल होने की इजाजत देने की खातिर मजीद 11 बैन अलाक्वामी बंदरगाहों को नोटिफाई किया है। इन नए मकामात में 9 जमीनी बंदरगाहें और 2 हवाई अड्डे शामिल हैं। इस इजाफे के साथ ई वीजा रखने वाले अफराद के दाखिले की सहूलत फराहम करने वाली बैन अलाक्वामी बंदरगाहों की मजमू तादाद 88 हो गई है। तफसील हमारे नामा निगार से।
1: वजारत दाखिला ने कहा कि नए नोटिफाई किए गए मकामात में भोपाल और तिरुपति के हवाई अड्डे और 9 जमीनी पोर्ट अगरतला, अटारी, दारंगा, गेड़े, गोजा डांगा, हरिदासपुर, जयगांव, दाऊकी और मोरे शामिल हैं। वजारत ने कहा कि इस इकदाम से बैन अलाक्वामी मुसाफिरों में ई वीज़ा की सहूलत की मकबूलियत और इसकी इफादियत में मजीद इजाफा होगा। तकरीबन 95% ई वीज़ा दरख्वास्तों पर 72 घंटे से भी कम वक्त में कार्रवाई मुकम्मल कर ली जाती है। 2014 में 43 मुल्कों के शहरियों के लिए शुरू की गई ई वीज़ा सहूलत को अब 172 मुल्कों के शहरियों तक तौसी दे दी गई है। फिलहाल ये सहूलत 17 ज़ैली ज़ुमरों के तहत दस्तियाब है, जिनमें सियाहती, कारोबारी, तिब्बी, तलबा, ट्रांज़िट, क्रूज़ और कोह पैमाई के वीज़े शामिल हैं। वजारत ने बताया कि भारत अब तकरीबन 78% वीज़े इलेक्ट्रॉनिक तरीके से जारी करता है। नई दिल्ली से ईशान यादव की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं मोहम्मद अम्मार।
0: मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह आज लोकसभा में केरला का नाम तब्दील करने से मुतालिक बिल 2026 और कौमी कोऑपरेटिव तरक्याती कॉरपोरेशन तरमीमी बिल 2026 को गौर खोज और मंजूरी के लिए पेश करेंगे, जिसका मकसद कौमी कोऑपरेटिव तरक्याती कॉरपोरेशन एक्ट 1962 में मजीद तरमीम करना है। उधर राज्यसभा में आज ट्रिब्यूनल्स इस्लाहात बिल 2026 को गौर खोज और मंजूरी के लिए पेश किए जाने का इम्कान है। कानून और इंसाफ के वजीर ममलकत अर्जुन राम मेघवाल ये बिल पेश करेंगे। इस बिल का मकसद मुख्तलिफ ट्राइब्यूनल्स में चेयरपर्संस और अराकीन की अहलियत, तकर्रुरी और सर्विस की मुद्दत के साथ साथ ट्राइब्यूनल्स की इंतजामिया और कामकाज में कारकर्दगी, आज़ादी, शफाफियत और यकसानियत को बेहतर बनाना है। इस कानून में कौमी ट्रिब्यूनल्स कमीशन के क्याम की तजवीज़ भी दी गई है। झारखंड में झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन और झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के इम्तिहानात में मुबैना बेजाबतगियों के खिलाफ तलबा का एहतजाज कल तकरीबन 10 घंटे तक जारी रहा। बीजेपी ने कल असेंबली घेराव के दौरान पुलिस कार्रवाई के खिलाफ आज रियासत भर में बंद की अपील की है। पेश है एक रिपोर्ट।
2: कल तकरीबन 10 घंटे तक जारी रहने वाले असेंबली घेराव के दौरान मुजाहिरीन असेंबली के गेट नंबर 1 के करीब पहुंच गए। इलाके को खाली कराने के लिए पुलिस ने वाटर कैनन, आंसू गैस और लाठी चार्ज का इस्तेमाल किया। तलबा के एहतजाज के लीडर देवेंद्र नाथ महतो, जो गुज़िश्ता 9 दिन से भूख हड़ताल पर हैं, असेंबली एहतजाज के दौरान तबीयत खराब होने के बाद रांची के सदर अस्पताल में दाखिल कराए गए। डॉक्टरों के जानिब से इनकी सेहत की देखभाल की जा रही है और उन्हें ऑक्सीजन सपोर्ट पर रखा गया है। बीजेपी ने एहतजाज करने वाले तलबा पर ज़रूरत से ज़्यादा ताकत इस्तेमाल के खिलाफ आज रियासत भर में बंद की अपील की है और इम्तहानात में मुबैना बेजाबतगियों की CBI जाँच के अपने मुतालबे को दोहराया है। रांची के डिप्टी कमिश्नर मंजुनाथ भजंतरी ने लोगों से अपील की है कि वो आज का बंद पुरअमन तरीके से करें। उन्होंने खबरदार किया है कि अमन और आमान में खलल डालने या तशद्दुद को भड़काने की कोशिश करने वालों के खिलाफ मुनासिब कार्रवाई की जाएगी। इंतजामिया ने रांची के अहम मकामात पर सिक्योरिटी के इंतजाम मजीद सख्त कर दिए हैं और मुआशरे के तमाम तबकात से अमन बरकरार रखने और पुलिस और ज़िले इंतजामिया के साथ तआवुन करने की अपील की है। रांची से महविश रहमान की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं शोएबा।
0: यह खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। कोलंबिया के मगरबी खित्ते में कल 7.4 शिद्दत के जलजले में कम 132 अफराद की मौत हो गई, जबकि 570 से ज़्यादा अफराद जख्मी हो गए। अमरीकी जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक इस जलजले का मरकज चोको खित्ते में सैन जोस डेल पाल्मर के करीब वाक़ था, जो राजधानी बोगोटा से तकरीबन 400 किलोमीटर दूर मगरब में वाक़ है। इस जलजले से सैकड़ों इमारतों को नुकसान पहुँचा और कई लोग मलबे के नीचे दब गए। کولمبیا کے صدر ایبلارڈو ڈیلا ایسپریلا نے زلزلے کے بعد بحالی کی کارروائیوں کے لیے

0: माली मदद की फराहमी में तेजी लाने की खातिर इमरजेंसी का ऐलान किया है। इतला है कि मुल्क भर में 20 से ज़्यादा म्यूनसिपल्टियाँ जलजले से मुतासिर हुई हैं। पेरेरा, केपडो, काली और मनीजालेज शहरों को जलजले से नुकसान पहुँचा है। कोलंबिया के पड़ोसी ममालिक इक्वेडोर और पनामा में भी जलजले के झटके महसूस किए गए, अगरचे वहाँ किसी बड़े नुकसान की इत्तला नहीं है। भारत के महकमे मौसमियात IMD ने आज हिमाचल प्रदेश और मशरकी राजस्थान में शदीद से बहुत शदीद बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। IMD के मुताबिक अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मेघालय, छत्तीसगढ़, गंगाई, मगरबी बंगाल, गुजरात, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली के दूर दराज इलाकों में शदीद बारिश होगी। इसी तरह की सूरत हाल जम्मू कश्मीर, लद्दाख, कोंकण, गोवा, वस्ती महाराष्ट्र, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, उड़ीसा, पंजाब, उत्तराखंड, मगरबी मध्य प्रदेश और मगरबी राजस्थान में रहने का इम्कान है। महकमे मौसमियात के मुताबिक हफ्ते के दौरान मगरबी हिमालयी खित्ते के दूरदराज इलाकों में शदीद से इंतहाई शदीद बारिश होने का इम्कान है। हिमाचल प्रदेश के बेशतर हिस्सों में कल रात से वक्फे वक्फे से बारिश हो रही है। शिमला के मौसमियाती मरकज़ ने अगले 24 घंटे के दौरान रियासत के 9 ज़िलों में शदीद बारिश की वार्निंग जारी की है। पेश है एक रिपोर्ट।
1: पूरे हिमाचल प्रदेश में मुसलसल बारिश की वजह से मामूल की ज़िंदगी मुतासिर हुई है। कई मकामात पर तोदे गिरने से तकरीबन 106 सड़कें बंद हैं, जबकि 66 ट्रांसफार्मर्स और 19 पीने के पानी की सप्लाई की स्कीमें भी मुतासिर हुई हैं। शिमला के मौसमियाती मरकज़ ने अगले 24 घंटे के दौरान 3 ज़िलों कांगड़ा, सिरमौर और मंडी में बारिश के ताल्लुक से ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। 6 दीगर ज़िलों ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, चंबा, शिमला और सोलन में भी शदीद बारिश के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। इंतजामिया ने लोगों पर जोर दिया है कि वो शदीद बारिश के इम्कान के मद्देनज़र मोहतात रहें और नदियों, नालों और लैंडस्लाइड के ख़तरे वाले इलाकों से दूर रहें और गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करें। शिमला से रितेश कपूर की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं फहीम अहमद।
0: उत्तर प्रदेश में हर घर तिरंगा मुहिम से मुतालिक प्रोग्राम रियासत के तमाम मदरसों में जोश खरोश के साथ मुनक़िद किए जाएंगे। तफसील हमारे नामा निगार से।
2: अक़लियती बहदूद के वजीर दानिश अंसारी ने हिदायत दी है कि मदरसों में पढ़ने वाले तलबा और नौजवानों को इस मुहिम में शिरकत करने के लिए उनकी हौसला अफजाई की जाए। उन्होंने कहा कि रियासत के मदरसों में कौमी परचम फहराने, कौमी तराना गाने, हुबुल वतनी और अजीम मुजाहिदीन आज़ादी के तावुन से जुड़ी बेदारी के प्रोग्राम का इनेकाद भी किया जाए। कल वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर जिले में तिरंगा यात्रा की क़यादत की। उन्होंने कहा कि हर घर तिरंगा मुहिम मुजाहिदीन आज़ादी को खिराज अकीदत है और लोगों से अपने घरों में फक्र के साथ कौमी परचम लहराने की गुजारिश की। खबरनामे के लिए लखनऊ से सुशील चंद्र तिवारी।
0: सावन शिवरात्रि के मौके पर बड़ी तादाद में अकीदतमंद आज कांवड़ यात्रा के इख्तिताम पर भगवान शिव को जल पेश कर रहे हैं। पेश है एक रिपोर्ट।
3: कांवड़ मेले के 12 दिन कल 63,60,000 अकीदतमंद हरिद्वार से पवित्र गंगा जल लेकर रवाना हुए। हरिद्वार में डाक कांवड़ की बड़ी तादाद मौजूद है। इस यात्रा को महफूज तर बनाने की खातिर स्नान के बड़े घाटों, कांवड़ यात्रा के रास्तों और हसास मकामात पर सिक्योरिटी, ट्रैफिक, सेहत और सफाई सुथराई के इंतजाम का गहराई से जायजा लिया जा रहा है। राजधानी देहरादून में मुख्तलिफ मकामात पर कांवड़ियों की आमदोरफ्त के रास्तों में तब्दीली की गई है। हरिद्वार से पवित्र गंगा जल लेकर रवाना होने वाले अकीदतमंद आज अपने अपने इलाकों में मुख्तलिफ शिव मंदिरों में भगवान शिव को जल पेश कर रहे हैं। इस तरह इस साल कांवड़ यात्रा इख्तिताम को पहुँच रही है। देहरादून से साक्षी सिंह की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं शोएबा।
0: नाइजीरिया के लागोस में 23 साल तक की उम्र के खिलाड़ियों की कॉमनवेल्थ फेंसिंग चैंपियनशिप में भारत ने अपनी मुहिम का जबरदस्त तरीके से आगाज करते हुए 4 सोने के तमगों समेत 17 तमगे हासिल किए। तलवारबाजी की इस चैंपियनशिप का आगाज इतवार को हुआ था, जिसमें भारत ने 4 सोने के, 4 चांदी के और 9 कांसे के तमगे जीते। खवातीन के जुमरे में जॉयस अशिष्टा ने फॉइल में सोने का, जबकि कनक लक्ष्मी ने चांदी का तमगा हासिल किया। प्राची ने AP में सोने का, जबकि निवेदिया नायर और अनुप्रिया ने कांसे के तमगे जीते। सेबर जुमरे में जेफलिन ने सोने का, आकारी ने चांदी का और श्रेया गुप्ता ने कांसे का तमगा हासिल किया। मुल्क आज इनकलाबी मुजाहिद आज़ादी खुदीराम बोस के 119वें यौम शहादत पर उन्हें खराज अकीदत पेश कर रहा है। वो बंगाल के उन भारतीय इनकलाबियों में

0: पहले फर्द थे जिन्हें 1908 में आज ही के दिन बरतानवी हुकूमत की जानिब से फांसी दी गई थी। इस नौजवान इनकलाबी को याद करने और उनकी अजीम कुर्बानी को खराज अकीदत पेश करने के लिए मुल्क भर में मुख्तलिफ प्रोग्रामों का अहतमाम किया गया है। खुदीराम बोस इंतहाई कम उम्र में भारत की तहरीक आज़ादी में शामिल हुए और बरतानवी साम्राज्य के खिलाफ जद्दोजहद के सबसे कम उम्र शहदा में से एक बने। सिर्फ 18 साल की उम्र में उन्होंने बरतानवी नौ आबादियाती राज को ख़त्म करने के मकसद से की जाने वाली इनकलाबी सरगर्मियों में हिस्सा लिया। ये थी खबरें और अब अखबारात के आईने के साथ हैं फहीम अहमद।
1: शुक्रिया कौनन। कौमी राजधानी दिल्ली से शाय होने वाले आज के उर्दू अखबारात की छह सुर्खियां एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। अखबार प्रताप ने पार्लियामानी उमूर के वजीर किरण रिजिजू के हवाले से सुर्खी लगाई है, सरकार तलबा के मसाइल पर बहस के लिए तैयार है, अपोजिशन सरकार के मौकिफ को ध्यान से सुने, हंगामे से बचे। अखबार इनकलाब की एक सुर्खी है, आसाम में सैलाब की सूरत हाल संगीन, गोलाघाट में 52,000 अफराद मुतासर। इसी अखबार ने कोलंबिया में आए तबाहकुन जल्जले और इसमें मुतअद्दिद हलाकतों की खबर को नुमायां तौर पर शाया किया है। एशियाई शेरों की तादाद 10 साल में बढ़कर 891 हो गई, रोजनामा प्रताप ने वजीर माहौलियात और जंगलात भूपेंद्र यादव के इस बयान को सफ़े अव्वल पर जगह दी है।
0: आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। पार्लियामेंट ने टैक्सेशन और दीगर कवानीन से मुतालिक तरमीमी बिल 2026 को मंजूरी दे दी है। वजीर खजाना निर्मला सीतारमन ने कहा है कि सारिफीन के लिए डिजिटल अदायगी का निज़ाम मुफ्त रहेगा। हुकूमत ने मजीद 11 बैन अल-अक़वामी बंदरगाहों को नोटिफाई किया है जिससे ई वीज़ा रखने वाले गैर मुल्की शहरियों को भारत में दाखिल होने की इजाज़त होगी। झारखंड के तलबा एहतजाज के लीडर देवेंद्र नाथ महतो की तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें अस्पताल में दाखिल कराया गया है। तलबा पर लाठीचार्ज के खिलाफ बीजेपी ने आज झारखंड बंद की अपील की है। मगरबी कोलंबिया में 7.4 शिद्दत के जलजले में कम से कम 132 अफराद हलाक हो गए हैं। भारतीय मौसमियात महकमे ने आज हिमाचल प्रदेश और मशरकी राजस्थान में तेज बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। और नाइजीरिया के शहर लागोस में मुनाकिदा 23 साल की उम्र तक की दौलत मुश्तरका फेंसिंग चैंपियनशिप में भारत ने सोने के 4 तमगों समेत कुल 17 तमगे जीते हैं। इसके साथ ही ये खबरनामा खत्म हुआ।

0: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं।
1: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
2: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
1: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
2: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
1: डायल कीजिए 8700014242।
2: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
0: हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम नमस्कार प्रयागराज। श्रोताओं से पहले आपको पढ़कर सुना रहे हैं जो आपने हमें संदेश भेजे हैं। विष्णु टेलर जी का संदेश हमें प्राप्त हुआ है। कहते हैं, सच्ची दोस्ती जिंदगी का वह खूबसूरत रिश्ता है जिसे शब्दों से नहीं बल्कि विश्वास, समझ और साथ के साथ महसूस किया जाता है। अच्छे दोस्त खुशी में मुस्कान बढ़ाते हैं और मुश्किल समय में हिम्मत बनकर साथ खड़े रहते हैं। वक्त बदल सकता है, परिस्थितियां बदल सकती हैं, लेकिन सच्ची दोस्ती हमेशा दिल में जगह बनाए रखती है। प्रवीण चौहान जी का सुविचार हमें प्राप्त हुआ है। कहते हैं, माता पिता का साथ और उनके दिए हुए अच्छे संस्कार ही जीवन की सबसे बड़ी पूंजी होते हैं। महल भी बिना अपनों के उदास लगते हैं, लेकिन एक छोटी सी झोपड़ी खूब खिलखिलाती है जब वहाँ अपनों का मीठा प्यार और ऊंचे संस्कार होते हैं। बहुत अच्छी बात प्रवीण चौहान जी आपने हमें लिखकर भेजी है। इसी क्रम में नीरा त्रिपाठी जी का सुविचार हमें प्राप्त हुआ है। जिंदगी के मायने दूसरों से मत सीखिए, जिंदगी आपकी है, मायने भी आप तय करें। एक ये पीढ़ी है जो इकट्ठा करने के लिए जी रही है, एक वो पीढ़ी थी जो इकट्ठा रहने के लिए जीती थी। जीवन के सबसे सुंदर पड़ाव तक पहुंचने के लिए कभी कभी कठिन परिस्थितियों से होकर गुजरना पड़ता है।

त्रिपाठी जी, आपने बहुत अच्छे सुविचार भेजे और जिन और सभी श्रोताओं ने हमें बहुत ही प्यारे सुविचार भेजे हैं। श्रोताओं, ये तो थी सुविचार की बात और अब आते हैं अपने विषय पर। हमारा आज का विषय है जीवन में रिश्तों का महत्व। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और रिश्ते उसके जीवन को सुरक्षा और खुशी देते हैं। सुख दुख में साथ खड़े होकर हमारे रिश्तों में मजबूती देते हैं। अपनों का साथ हो तो हम डिप्रेशन और तनाव जैसी बीमारियों से दूर रहते हैं। बचपन से लेकर बड़े होने तक माता पिता, भाई बहन, दोस्त, जीवन साथी हमारे हर समस्याओं में हमारी मदद करते हैं। रिश्ते हमें प्यार, त्याग और सहानुभूति जैसे गुण भी सिखाते हैं। हमारी सामाजिक पहचान और समाज में हमारा स्थान हमारे रिश्तों और व्यवहार से ही तय होते हैं। श्रोताओं, जीवन में रिश्तों का बहुत महत्व है। आजकल हमारे रिश्ते उनमें सिर्फ दिखावा रह गया है। लोग रहते तो एक ही शहर में हैं, लेकिन किसी के घर जाने का उनके पास टाइम ही नहीं है। आज हमारे फ़ोन में इतना बैलेंस होता है कि चाहे जितनी बातें की जाएं, पर लोग बात बहुत ही आवश्यकता पड़ने पर करते हैं। सुबह उठे तो व्हाट्सएप पर गुड मॉर्निंग बोल दिया और जब सोने का टाइम आया तो गुड नाइट। आज हमारे रिश्ते सिमट कर रह गए हैं। लोग अपने माँ पिता और अपने बच्चों तक ही ज़्यादा खुश रहते हैं। आज हम खाना भी खाते हैं तो हर एक के हाथ में मोबाइल फ़ोन होता है। श्रोताओं, एक समय था जब लोग अपने सगे संबंधियों से बात करने का, हाल जानने का हफ्ता 10 दिन का इंतज़ार किया करते थे। वो समय था चिट्ठियों का, जब लोग अपने सगे संबंधी या रिश्तेदारों का हाल जानते थे चिट्ठियों के माध्यम से। और जब किसी के घर डाकिया पत्र लेकर आता था तो लोग खुश होकर अपने पत्र में लिखे परिवार वालों का हाल मालूम करते थे।

श्रोताओं, हम बात कर रहे हैं जीवन में रिश्तों के महत्व की। आज के डिजिटल युग में हम भले ही इतने आगे बढ़ गए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे रिश्ते और उन रिश्तों में जो मिठास थी वो खत्म होती सी नज़र आ रही है। एक समय था जब लोग पड़ोसी के सुख में खुशी और दुख में दुख जाहिर करते थे। कभी कोई समस्या आ जाए तो एक दूसरे का साथ देते थे। हमारे आज के जो रिश्ते हैं वो सिर्फ अपनों तक ही सीमित रह गए हैं। ऐसा लगता है कि हम अपनों को भूलते जा रहे हैं। अच्छे रिश्तों को बचाने के लिए हमें आपस में बातचीत करनी चाहिए, अपने परिवार को समय दें, उनका सम्मान करें। रिश्तों में मनमुटाव होना सामान्य बात है, लेकिन छोटी छोटी गलतियों को माफ़ करके हम अपने रिश्तों को बचा सकते हैं। रिश्तों में उतार चढ़ाव आ सकते हैं, लेकिन आपसी प्रेम सहयोग से हमारा रिश्ता और भी मजबूत बन सकता है। हमें अपने रिश्तों को बिखरने नहीं देना है, बल्कि उन्हें सजोना है। जीवन में रिश्तों का महत्व हमारे साथ ही हैं, इनके बिना हम अधूरे हैं। जीवन में रिश्ते असफल होने पर, निराश होने पर और अकेला महसूस करने पर हमारा सहारा बनते हैं, हमें हौसला देते हैं। जीवन में जब कठिन समय आता है तब हमारी सबसे बड़ी ताकत बनते हैं हमारे अपने ही रिश्ते। जीवन में हमेशा परिस्थितियां एक जैसी नहीं रहती। कभी हमें सफलता मिलती है तो कभी असफलता। कभी हम बहुत खुश होते हैं और कभी परेशान। ऐसे में हमारे अपने रिश्ते हमें संभालते हैं। किसी अपने से दो शब्द बात कर लेने से मन हल्का हो जाता है। एक रिश्ता हमें विश्वास दिलाता है कि हम अकेले नहीं हैं। श्रोताओं, हम संकल्प लेते हैं कि हम अपने परिवार और प्रियजनों को समय देंगे, उनकी भावनाओं का सम्मान करेंगे और अपने रिश्तों को हमेशा प्यार और विश्वास से मजबूत बनाए रखेंगे।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम नमस्कार प्रयागराज, प्रस्तुति थी अभयकांत तिवारी की। कल आपसे फिर मिलेंगे नए विषय और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए कार्यक्रम को समाप्त करने की। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं।

0: श्रोताओं, आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत और अभी आपने सुना गुरु फिल्म का ये गीत श्रेय घोषाल और उदय मजुमदार की आवाज़ में, संगीत दिया था A.R. रहमान ने, रचना थी गुलजार की।
1: सुनो ना।
2: हाँ?
1: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
2: तो रोका किसने है? हाँ?
1: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
2: मुझसे।
1: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
2: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
1: पर उससे मेरा क्या फायदा?
2: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ।
1: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
2: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 870-001-4242।
1: ओ 870-001-4242। लो अभी फोन लगाता हूँ 870-001-4242 पर।
3: कम ब्याज पे लोन चाहिए, वो भी ऐप से? वाह, फसा।
4: अनजान ऐप से बचें।
5: RBI कहता है
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: लीजिए सुनिए मोहब्बतें फिल्म का ये गीत, उद्धव मनोहर शेट्टी, ईशान और श्वेता पंडित की आवाजों में, संगीत जतिन ललित का है, रचना है आनंद बख्शी की।

श्रोताओं, अभी आपने सुना मोहब्बतें फिल्म का ये गीत, और इसी गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। हमारा अगला कार्यक्रम होगा बस थोड़ी देर में, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: आकाशवाणी का ये लखनऊ केंद्र है।
1: जिले की हलचल, आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए उन्नाव और बागपत जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं उन्नाव जिले की हलचल। आलेख और स्वर है विकास शुक्ला का।
2: जनपद उन्नाव में श्रावण मास के अवसर पर गंगा घाट और परियर घाट से पवित्र गंगा जल भरकर सिद्धनाथ बाबा मंदिर, लोधेश्वर धाम और जलेश्वर नाथ मंदिर के लिए हजारों शिव भक्त पैदल व टांग कांवड़ यात्रा निकालते हैं। कांवड़ यात्रा को लेकर पुलिस प्रशासन द्वारा कड़े इंतजाम किए गए हैं, जहां कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पूरे जिले को 5 जोन और 38 सेक्टर में बांटा गया है। वहीं पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों की 12-12 घंटे की शिफ्ट में ड्यूटी लगाई गई है। प्रत्येक सेक्टर में पुलिस बल द्वारा लगातार गश्त की जा रही है। सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत बनाने के लिए तकनीक का भी सहारा लिया गया है। एएसपी अखिलेश सिंह के अनुसार जिले में लगे 248 सरकारी सीसीटीवी कैमरे पूरी तरह सक्रिय हैं। इनके अलावा यात्रा मार्ग पर लगे करीब 6000 निजी सीसीटीवी कैमरों की मदद से भी निगरानी की जा रही है। वह संवेदनशील स्थानों पर ड्रोन कैमरों की लगातार नजर रखी जा रही है, ताकि भीड़, यातायात और किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर तुरंत कार्रवाई की जा सके। वहीं गंगा घाटों पर पुलिस बल के साथ गोताखोर की भी तैनाती की गई है। श्रद्धालुओं की सुगम आवाजाही के लिए भारी वाहनों के प्रवेश पर रोक और रूट डायवर्जन लागू किया गया है। यात्रा मार्ग पर पड़ने वाले सभी बिजली के पोल और तारों की जांच संबंधित विभागों से कराई जा रही है, ताकि श्रद्धालुओं को किसी भी तरह का खतरा न हो। इसके अलावा कांवड़ियों के विश्राम स्थलों पर पेयजल, प्रकाश व्यवस्था, चिकित्सा और अन्य आवश्यक सुविधाएं प्रशासन द्वारा की गई है। वहीं जिलाधिकारी घनश्याम मीना व पुलिस अधीक्षक जय प्रकाश सिंह द्वारा घाटों व प्रमुख मार्गों का निरीक्षण कर प्रकाश व्यवस्था, बैरिकेटिंग और साफ सफाई की लगातार जांच की जा रही है। पहाड़ी और मैदानी क्षेत्रों में लगातार हो रही बारिश के साथ नरोरा और हरिद्वार बांधों से भारी मात्रा में पानी छोड़े जाने के कारण जिले में गंगा नदी का जलस्तर चेतावनी बिंदु पार कर गया है, जिससे जिला प्रशासन पूरी तरह अलर्ट है। इस दौरान अपर जिला अधिकारी सुशील कुमार गौड़ ने गंगा घाट क्षेत्र में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि राहत एवं बचाव कार्यों में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वहीं जलस्तर बढ़ने से गोताखोर, तेजीपुरवा, करबला और हुसैन नगर जैसे निचले

0: इलाकों में बाढ़ का पानी घरों तक पहुंच गया है। कई स्थानों पर आवागमन प्रभावित होने से सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। जहां प्रशासन ने लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील की है, तहसील प्रशासन ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत एवं बचाव कार्य के लिए 5 नावें तैनात की है। इसके अलावा गोताखोर बलासाला और पंचायत घर को अस्थायी बाढ़ राहत शिविर के रूप में सक्रिय किया गया है, ताकि जरूरत पड़ने पर प्रभावित लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुँचाया जा सके। जिले में एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत महावृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश महिला आयोग की उपाध्यक्ष अपर्णा यादव मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुई। इस अवसर पर उन्होंने ट्रांसगंगा सिटी में पौधारोपण किया। वहीं उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किए गए इस अभियान की सराहना की। उन्होंने इसे केवल पौधे लगाने का अभियान नहीं बल्कि भावनाओं और जिम्मेदारी से जुड़ा जन आंदोलन बताया। अपर्णा यादव ने कहा,
1: पेड़ को हम पहले भी लगाते थे, पर माँ के साथ जब जुड़ जाता है तो वो बहुत स्पेशल हो जाता है। उसका संरक्षण करना, ये हमारी प्रतिबद्धता बन जाती है। तो मैं प्रधानमंत्री जी का बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि करोड़ों युवाओं को उन्होंने प्रेरित किया है कि वो पेड़ लगाए और इस धरती को हरा भरा बनाए।
0: जनपद में इस अभियान के तहत लगभग 57 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। वहीं इस अवसर पर विभिन्न स्थानों पर जनप्रतिनिधियों, प्रशासनिक अधिकारियों, कर्मचारियों और आम लोगों ने पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण, हरित उन्नाव और प्रदूषण मुक्त वातावरण के निर्माण का संकल्प लिया। जिले के निराला प्रेक्षागृह में मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस चिकित्सा योजना का राज्य मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने दीप प्रज्वलित कर शुभारम्भ किया। इस अवसर पर राज्य मंत्री दिनेश प्रताप सिंह द्वारा जनपद के शिक्षकों को मुख्यमंत्री कैशलेस चिकित्सा सुविधा के कार्ड वितरण कर बधाई दी। जहां जनपद में कैशलेस चिकित्सा योजना के तहत बेसिक व माध्यमिक शिक्षा के 20,265 लाभार्थियों को कैशलेस चिकित्सा योजना का लाभ मिलेगा। इस अवसर पर कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राज्य मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने कहा कि राज्य सरकार ने 5 लाख निःशुल्क चिकित्सा सुविधा का उपहार दिया है, जिसे शिक्षक और उनके आश्रितों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मिल सके। उन्होंने कहा कि आज योग्यता के आधार पर सरकारी नियुक्तियां हो रही हैं, इसी के कारण देश प्रदेश निरंतर प्रगति के पथ पर अग्रसर हो रहा है।
2: उन्नाव जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं बागपत जिले की हलचल। आलेख और स्वर है राजीव कुमार का।
3: किसानों की मेहनत और बदलती कृषि सोच को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली है। कृषि उत्पादों की ब्रांडिंग, प्राकृतिक खेती और किसानों को बाजार से जोड़ने की प्रशासन की पहल, बागपत ब्लूम को बड़ा सम्मान मिला है। नई दिल्ली के इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में आयोजित 3rd नेशनल सस्टेनेबल एग्रीकल्चर समिट एंड अवार्ड 2026 में डीएम अस्मिता लाल को डिस्ट्रिक्ट लेवल सस्टेनेबल इनिशिएटिव अवार्ड से सम्मानित किया गया। समिट की थीम कृषि समृद्धि 2047 रही। डीएम की ओर से बागपत ब्लूम टीम, किसान प्रतिनिधियों और जिला कृषि अधिकारी बाल गोविंद यादव ने पुरस्कार और प्रशस्ति पत्र ग्रहण किया। बागपत ब्लूम के तहत किसानों को सिर्फ फसल उत्पादन तक सीमित न रखकर उपज की ब्रांडिंग, पैकेजिंग, मूल्य संवर्धन और विपणन से जोड़ा जा रहा है। चिया बीज, अलसी, मोरिंगा पाउडर, सरसों का तेल, ऑर्गेनिक शहद, गुड़, खांडसारी, देसी घी और सिरका समेत कई स्थानीय उत्पाद एकीकृत ब्रांड के तहत तैयार किए जा रहे हैं। इस पहल से जिले के 13 किसान उत्पादक संगठन यानी FPO जुड़े हैं। प्रशासन का उद्देश्य फील्ड टू मार्केट मॉडल के जरिए किसानों को व्यापक बाजार उपलब्ध कराना और उनकी आय बढ़ाना है। राष्ट्रीय सम्मान को बागपत के किसानों के नवाचार और कृषि क्षेत्र में बदलती तस्वीर की बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है। गर्भवती महिला और गर्भस्थ शिशुओं की बेहतर निगरानी के लिए स्वास्थ्य विभाग ने महत्वपूर्ण कदम उठाया है। बागपत, पिलाना और बड़ौत विकास खंडों के स्वास्थ्य केंद्रों को कार्डियो टोकोग्राफी यानी CTG मशीन उपलब्ध कराई गई है। यह अत्याधुनिक मशीन गर्भस्थ शिशुओं की हृदय गति यानी फीटल हार्ट रेट की नियमित और सटीक निगरानी करती है। इसके साथ ही मशीन गर्भाशय में होने वाले संकुचन की भी जाँच करती है। इससे गर्भावस्था के दौरान गर्भस्थ शिशु की स्थिति पर नजर रखने और किसी भी संभावित जोखिम या जटिलता का समय रहते पता लगाने में चिकित्सकों की मदद करेगी। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार CTG मशीन विशेष रूप से प्रसव पूर्व उच्च जोखिम वाली गर्भवती महिलाओं की निगरानी में उपयोगी साबित होगी। जांच के आधार पर चिकित्सक समय पर आवश्यक चिकित्सीय निर्णय ले सकेंगे और जरूरत पड़ने पर गर्भवती महिलाओं को बेहतर उपचार कराया जा सकेगा। CMO तीरथ लाल का कहना है कि इस सुविधा से गर्भवती महिला और नवजात शिशुओं की स्वास्थ्य सुरक्षा मजबूत होगी, साथ ही मात एवं शिशु मृत्यु दर में कमी लाने के प्रयासों को भी गति मिलेगी। बागपत परिवहन विभाग ने जुलाई महीने में राजस्व वसूली के साथ सड़क सुरक्षा के मोर्चे पर भी बेहतर प्रदर्शन किया है। विभाग ने जुलाई में शासन द्वारा निर्धारित 8 करोड़ 50 लाख रुपए के लक्ष्य के मुकाबले 8 करोड़ 64 लाख रुपए का राजस्व जुटा

0: कर लक्ष्य को पार कर लिया। पिछले वर्ष की तुलना में भी यह राजस्व में बढ़ोतरी की गई है। जुलाई तक पिछले वर्ष राजस्व वृद्धि 16,64,000 रुपए थी, जो इस वर्ष बढ़कर 25,27,000 रुपए तक पहुंच गई। वहीं सड़क सुरक्षा को लेकर परिवहन विभाग ने सख्ती बढ़ाई है। 1 अप्रैल से अब तक यातायात नियमों का गंभीर उल्लंघन करने वाले 13 वाहन चालकों के ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित किए जा चुके हैं। विभाग की ओर से ओवरलोड वाहनों, बिना परमिट संचालन, बिना वैध दस्तावेज वाहन चलाने, ओवर स्पीड, बिना लाइसेंस ड्राइविंग और हेलमेट व सीट बेल्ट के नियमों की अनदेखी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। ARTO विपिन कुमार के नेतृत्व में विभाग वाहन जांच कर एवं परमिट सत्यापन और फिटनेस निरीक्षण के साथ डिजिटल सेवाओं को भी मजबूत कर रहा है। विकास भवन सभागार में डेयरी विकास विभाग के 50 वर्ष पूरे होने पर स्वर्ण जयंती समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री स्वदेशी गोसंवर्धन योजना के तहत ई लॉटरी से चयनित 28 लाभार्थियों को चयन पत्र वितरित किए गए। इसके अलावा गोसंवर्धन योजना के लाभार्थियों को अनुदान के चेक भी दिए गए। कार्यक्रम में पशुपालकों को डेयरी और पशुपालन से जुड़ी विभिन्न सरकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। इस अवसर पर DM अस्मिता लाल ने कहा कि डेयरी व्यवसाय किसानों और पशुपालकों की बढ़ाने का प्रभावी माध्यम है। सरकार की योजनाओं का उद्देश्य पशुपालकों को आर्थिक रूप से मजबूत करने के साथ आधुनिक और वैज्ञानिक तरीके से डेयरी व्यवसाय को बढ़ावा देना है। CDO अनिल कुमार सिंह ने कहा कि योजनाओं का लाभ पात्र लोगों तक पारदर्शी तरीके से पहुंचाया जा रहा है। उन्होंने अधिकारियों को अधिक से अधिक पशुपालकों को सरकारी योजनाओं से जोड़ने के निर्देश दिए। मेरठ मंडल कार्यालय से वरिष्ठ दुग्ध निरीक्षक अर्चना सिंह ने मुख्यमंत्री स्वदेशी गो संवर्धन योजना और अन्य योजनाओं की जानकारी दी। श्री परशुरामेश्वर पुरा महादेव के जीरो वेस्ट महोत्सव को लेकर सूचना विभाग का सोशल मीडिया चैलेंज तेजी से लोकप्रिय हो रहा है। अभियान के तहत अब तक 1,000 से अधिक व्यक्तिगत डिजिटल पोस्टर तैयार किए जा चुके हैं। फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स, व्हाट्सएप, DP व स्टेटस के जरिए लोग भक्ति भी, प्रकृति भी और आस्था भी, जिम्मेदारी भी का संदेश दे रहे हैं।
1: ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।
2: जिले की हलचल में अभी आपने सुनी उन्नाव और बागपत जिलों की खबरें।

0: प्रस्तुत है उर्दू कार्यक्रम।
1: आप सबके पसंदीदा उर्दू प्रोग्राम के साथ आकाशवाणी रामपुर के मरकज से आपका मेजबान फरीदुल्ला खान हाजिर है। सलाम मोहब्बत कबूल कीजिए। पल भर की मुलाकात है और कुछ भी नहीं है, पल भर की मुलाकात है और कुछ भी नहीं है, सोचो तो बड़ी बात है और कुछ भी नहीं है। जो ये छोटी मुलाकात जो हम उर्दू प्रोग्राम के जरिए करते हैं, ये मुलाकात हमारे लिए बड़ी कीमती है, क्योंकि इस मुलाकात के जरिए ही हम अपने बाज़ौक सामीन से जुड़ते हैं और उनकी अदबी पसंद और उनके शौक को पूरा करने की कोशिश करते हैं। तो सामीन अजीज, आज इस मुलाकात के तहत आपसे मुखातिब हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि माह अगस्त चल रहा है, आज से चार दिन बाद हम यौम आजादी का जश्न मनाएंगे। अगस्त माह की तारीखी अहमियत है। माह अगस्त का एक एक दिन अपने अनोखे कारनामों की वजह से अहमियत रखता है। इस माह के तमाम अय्याम किसी न किसी तारीखी वाक़े, किसी न किसी इनकलाब, किसी न किसी तहरीक से वाबस्ता है। आज के दिन एक नौजवान मुजाहिद अपने वतन पर अपनी जान को कुर्बान करके शहीद हो गए। वो मुजाहिद आजादी थे, शहीद खुदीराम बोस, आजादी की लड़ाई के सच्चे मुजाहिद खुदीराम बोस, जो कि पहले फांसी पर चढ़ने वाले शहीद थे। सबसे कम उम्र मुजाहिद को हम याद करते हुए उनको खिराज तहसीन पेश करते हैं और उन पर लाखों सलाम। किया है खूने जिगर से तेरे शहीदों ने, किया है खूने जिगर से तेरे शहीदों ने, वतन की रेत पे तहरीर नामे आजादी, मेरे वतन के सपूतों तुम्हें मुबारक हो, मेरे वतन के सपूतों तुम्हें मुबारक हो, सुना रही हैं फिजाएं पयामे आजादी। किसी के खूने जिगर की निदा अमानत है, किसी के खूने जिगर की निदा अमानत है, बड़े हसीन है ये सुबह शामे आजादी। तो आइए इस माहे अगस्त की अहमियत को और तफसील से जानने के लिए सुनते हैं ये अहम तकरीर, जंगे आजादी में माहे अगस्त की अहमियत। मुकर्रर हैं डॉक्टर मिसबा अहमद सिद्दीकी।
2: 1857 की

0: इसकी जग में हमेशा शान।
1: डॉक्टर अशफाक जैदी के कलाम के साथ ये महफिल आ पहुंची है इख्तिताम की जानिब। सामीन, ये प्रोग्राम आकाशवाणी रामपुर के मरकज पर तरतीब दिया गया और आकाशवाणी लखनऊ के मरकज से नश्र किया गया। अपने मेजबान फरीदुल्लाह खान को दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे अगर खुदा लाया।
2: अभी आप सुन रहे थे उर्दू कार्यक्रम, हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं।
3: हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं।
4: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
5: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
4: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
5: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
4: डायल कीजिए 8700014242।
5: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
3: हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है सुगम संगीत का कार्यक्रम। आज के कलाकार हैं अमित कुमार जायसवाल।

0: हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 10 बजने वाले हैं। अब आप सुनेंगे हिंदी में समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। गृह मंत्री अमित शाह आज लोकसभा में केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 और राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक 2026 पेश करेंगे। राज्यसभा में अधिकरण सुधार विधेयक 2026 पर विचार और पारित करने के लिए चर्चा होगी। विधि और न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल विधेयक पेश करेंगे। इस विधेयक का उद्देश्य विभिन्न अधिकरणों के अध्यक्षों और सदस्यों की योग्यता, सेवा नियुक्ति, प्रशासन तथा कार्य प्रणाली में दक्षता सुधार, स्वतंत्रता, पारदर्शिता और एकरूपता सुनिश्चित करना है। इस विधेयक में राष्ट्रीय अधिकरण आयोग की स्थापना का भी प्रस्ताव है। संसद ने कराधान और अन्य विधियां संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। राज्यसभा ने इस विधेयक को चर्चा के बाद लोकसभा को वापस भेज दिया। लोकसभा पहले ही इस विधेयक को पारित कर चुकी है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि विधेयक का उद्देश्य भारत के विनिर्माण तंत्र को मजबूत करना, अधिक निवेश आकर्षित करना, रोजगार सृजित करना और विनिर्माण गतिविधियों को बढ़ावा देना है। वित्त मंत्री ने स्पष्ट किया कि विधेयक में डिजिटल विधेयक पर कोई कर या लेन देन शुल्क नहीं लगाया गया है।
2: छोटे मर्चेंट्स और किराना स्टोर्स हमारे इंक्लूसिव फाइनेंशियल स्कीम्स और सरकार के ये बहुत बड़ा कमिटमेंट है फाइनेंशियल इंक्लूजन का। स्मॉल मर्चेंट्स रिमेन सेंट्रल टू यूपीआई इंक्लूसिव ग्रोथ। उनके ऊपर हम कोई एमडीआर लगाने वाले नहीं है, इरादा नहीं है। इनेबलिंग प्रोविजन का हम ध्यान रखना है।
1: सरकार ने ई वीजा धारक विदेशी नागरिकों का भारत में प्रवेश सुगम बनाने के लिए 11 और अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह अधिसूचित किए हैं। गृह मंत्रालय ने बताया है कि इनमें 9 स्थल सीमा चौकियां और 2 हवाई अड्डे शामिल हैं। इनमें भोपाल और तिरुपति के हवाई अड्डे तथा अटारी और अगरतला की स्थल सीमा चौकियां शामिल हैं। भारत में लगभग 95% ई वीजा आवेदनों को 72 घंटे से भी कम समय में स्वीकृति दी जाती है। अब ई वीजा वाले विदेशियों के प्रवेश के लिए उपलब्ध अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाहों की संख्या बढ़कर 88 हो गई है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि सरकारी ई मार्केट प्लेस जेम पोर्टल उचित गुणवत्ता, उचित मूल्य और उचित समय पर सही उत्पाद की खरीद दर्शाता है। श्री गोयल ने कल नई दिल्ली में जेम पोर्टल के 10वें स्थापना दिवस पर यह बात कही। उन्होंने कहा कि जेम के आने से पहले सरकारी पैसे का गलत इस्तेमाल हो रहा था, खरीद में पारदर्शिता नहीं थी और अच्छे सुशासन की कमी थी। श्री गोयल ने कहा कि जेम पोर्टल के माध्यम से 3 करोड़ से अधिक ऑर्डर से 20 लाख करोड़ रुपए से अधिक के सामान और सेवाओं की खरीद में सहायता मिली है। झारखंड की राजधानी रांची में कल विद्यार्थियों के नेतृत्व में विधानसभा मार्च के दौरान

0: छात्र आंदोलन के नेता देवेंद्र नाथ महतो को तबियत बिगड़ने के कारण अस्पताल में भर्ती कराया गया। ब्लड शुगर लेवल में गिरावट के बाद चिकित्सकों ने उनकी हालत गंभीर बताई है। राज्य में भर्ती परीक्षाओं में कथित गड़बड़ियों को लेकर श्री महतो तो 9 दिनों से भूख हड़ताल पर हैं। भारतीय जनता पार्टी ने प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों पर पुलिस की ज्यादती और लाठीचार्ज के विरोध में आज झारखंड बंद का आह्वान किया है। कांवड़ यात्रा के दौरान हरिद्वार में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। ब्योरा हमारी संवाददाता से।
1: कांवड़ मेले के 12वें दिन कल 63,60,000 शिव भक्त हरिद्वार से पवित्र गंगा जल लेकर अपने गंतव्यों की ओर रवाना हुए। आज सावन शिवरात्रि के अवसर पर हरिद्वार में कांवड़ियों की भारी भीड़ है। मुख्य रूप से डाक कांवड़ियों की आवाजाही से शहर शिवमय हो गया है। कांवड़ यात्रा को सुरक्षित और सुव्यवस्थित बनाए रखने के लिए प्रमुख स्थान घाटों, कांवड़ मार्गों और संवेदनशील स्थानों पर सुरक्षा, यातायात और स्वास्थ्य और स्वच्छता व्यवस्थाओं की निगरानी की जा रही है। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, देहरादून।
0: राष्ट्र आज क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी खुदीराम बोस के 119वें बलिदान दिवस पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। बंगाल के क्रांतिकारी खुदीराम बोस को 1908 में आज ही के दिन अंग्रेजों ने फांसी दी थी। मौसम विभाग ने राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश में आज घनघोर वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। गुजरात, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अगले 2 दिनों तक बहुत तेज वर्षा की आशंका है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय शगुन चोपड़ा।
3: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। प्रस्तुत है फिल्म संगीत, लीजिए सुनिए प्रेम रतन धन पायो फिल्म का ये गीत शान और साथियों की आवाजों में। संगीत दिया है हिमेश रेशमिया ने और रचना है इरशाद कामिल की।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत। लीजिए अब सुनिए सुल्तान फिल्म का ये गीत। सलमान खान की आवाज़ है, संगीत दिया है विशाल शेखर ने, रचना है इरशाद कामिल की।

आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत। लीजिए अब सुनिए परिणीता फिल्म का ये गीत सोनू निगम और श्रेया घोषाल की आवाजों में। गीत और संगीत है शांतनु मोइत्रा का।

श्रोताओं, अभी आपने सुना चेन्नई एक्सप्रेस फिल्म का ये गीत, और लीजिए अब सुनिए पैडमैन फिल्म का ये गीत। अरिजीत सिंह की आवाज़ है, संगीत दिया है अमित त्रिवेदी ने।

अभी आपने पैडमैन फिल्म का ये गीत सुना। अरिजीत सिंह की आवाज़ थी, संगीत दिया था अमित त्रिवेदी ने और रचना थी कौशल मुनीर की। इसी गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब समाप्त हुआ। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर। प्रस्तुत है लोकगीत, कलाकार हैं त्रिभुवन नाथ गौड़ और साथी। आइए सुनते हैं ये देवी गीत।

अभी आप त्रिभुवन नाथ गौड़ और साथियों के स्वर में लोकगीत सुन रहे थे। लोकगीतों का ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं।

मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़, FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ और न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है फिल्म संगीत का विशेष कार्यक्रम एक ही कलाकार। आज के कलाकार हैं सुनील वीरप्पा शेट्टी यानी सुनील शेट्टी। ये कार्यक्रम आपकी सेवा में प्रस्तुत कर रहा है आपका रेडियो दोस्त डॉक्टर कुंवर तौकीर अहमद खान। प्रस्तुति प्रदीप मिश्र की है।

सुनील शेट्टी के नाम से मशहूर सुनील वीरप्पा शेट्टी का जन्म 11 अगस्त 1961 को तुलुभाषी बंत परिवार में 11 अगस्त 1961 को मुल्की मैंगलोर कर्नाटक में हुआ था। आप खासकर बॉलीवुड फिल्मों में सक्रिय रहते हैं, इन्हें इस काम को करते हुए 25 साल से ज़्यादा हो चुके हैं और अब तक ये 110 से ज़्यादा फिल्मों में काम कर चुके हैं। उन्होंने सबसे ज़्यादा काम मारधाड़ और हंसाने वाली फिल्मों में किया है। इन्होंने हिंदी के साथ साथ मलयालम, तमिल और अंग्रेजी भाषा की फिल्मों में भी काम किया है। फिल्म फेयर पुरस्कार के लिए इनका 5 बार नामांकन हो चुका है और 1 बार विजेता भी रहे हैं। सुनील शेट्टी ने फिल्मों में अभिनय की शुरुआत बलवान फिल्म से की थी जो 1992 में आई थी, जिसमें उनके साथ दिव्या भारती थी। ये फिल्म हिट रही और इन्हें एक्शन हीरो के रूप में पहचान मिली। इसी कार्यक्रम का पहला गीत हम आपको इसी फिल्म से सुनवा रहे हैं।

इस फिल्म के लिए गीत लिखा था देव कोहली ने और संगीत निर्देशन महेश का था। आवाज दी थी कुमार सानू और कविता कृष्णमूर्ति ने।

आप सुन रहे हैं देश का सबसे लोकप्रिय आकाशवाणी केंद्र प्रयागराज से एक ही कलाकार कार्यक्रम के अंतर्गत सुनील शेट्टी की जिंदगी और उनकी कुछ फिल्मों के गीत। 1992 में आई फिल्म बलवान की सफलता के बाद मनोबल तो बढ़ना ही था, अगली फिल्म भी हिट रही दिलवाले। उसके पहले वक्त हमारा भी आई थी, दिलवाले आई थी 1994 में। इस फिल्म के गीतों ने भी सुनील शेट्टी को एक पॉपुलर हीरो के रूप में प्रतिष्ठित किया। कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको उसी फिल्म से सुनवा रहे हैं, गेस कीजिए वो गीत कौन सा हो सकता है।

इस गीत को आवाज दी है उदित नारायण और अलका याग्निक ने, रचना समीर की है और संगीत निर्देशन था नदीम श्रवण का, और ये फिल्म एसपी क्रिएशंस के बैनर तले आई थी।

1994 में एक फिल्म आई थी मोहरा, त्रिमूर्ति फिल्म्स के बैनर तले, और इस फिल्म ने भी धूम मचाई थी। इसका एक गीत बहुत पॉपुलर हुआ था, ना कजरे की धार, पंकज उधास और साधना सरगम की मिलीजुली आवाज़ों में। गीत लिखा था इंदिवर ने और संगीत निर्देशन विजू शाह का था। तो कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको यही वाला सुनवा रहे हैं।

0: सुनील शेट्टी की फिल्मों की जीवन यात्रा में एक फिल्म आई थी धड़कन, इसके गीत बहुत हिट हुए थे, उसी फिल्म से ये गीत हम आप तक पहुंचा रहे हैं।
1: मोहब्बत के दावे करते हो और फिर मरने की बातें करते हो, बात में दम नहीं है।
2: कौन साला मरता है, कौन साला मरता है? और अगर मर भी गया अंजलि, और अगर मर भी गया मेम साहब, तो हमेशा के लिए धड़कूंगा तुम्हारे सीने में, तुम्हारी धड़कन बनकर।
1: इतनी मोहब्बत करते हो तुम मुझसे देव?
2: मुझसे क्या पूछ रहे हो अंजलि, अपनी धड़कन से पूछो। और जानती हो तुम्हारी हर धड़कन क्या कहेगी?
1: क्या कहेगी?

आप सुन रहे हैं देश का सबसे लोकप्रिय आकाशवाणी केंद्र प्रयागराज और कार्यक्रम है एक ही कलाकार और आज के कलाकार हैं सुनील शेट्टी। सुनील शेट्टी अपनी फिल्मों को लेकर के बहुत ही ज़्यादा संजीदा रहते हैं। ताज़ा स्थिति ये है कि फिलहाल ये बिहार के दौरे पर हैं अपनी अगली फिल्म की शूटिंग के लिए। लगातार सफलता इनका मुकद्दर बन चुकी है। कार्यक्रम का अगला गीत हम ले रहे हैं बॉर्डर फिल्म से। बॉर्डर एक ऐसी फिल्म जिसने पूरी दुनिया को सोचने के लिए मजबूर किया। जेपी फिल्म्स के बैनर तले आई इस फिल्म ने तमाम लोगों को सोचने के लिए मजबूर किया युद्ध होते क्यों हैं। खैर वो एक बड़ी बात हो जाएगी। फिलहाल कार्यक्रम का गीत सुनिए और अंदाज लगाइए कि हम आपको कौन सा गीत सुनवाने जा रहे हैं और ये कार्यक्रम की अंतिम पेशकश भी है।

इस कार्यक्रम में आज आपने जिन फिल्मों के नगमे सुने उनके नाम हैं बॉर्डर, दिलवाले, मोहरा, धड़कन और बॉर्डर। बलवान फिल्म से शुरू हुआ फिल्मों का ये सफ़र बॉर्डर पे ख़त्म हुआ, अब ये कार्यक्रम भी ख़त्म हो रहा है। तो दीजिए इजाज़त अपने रेडियो दोस्त डॉक्टर कुंवर तौकीर अहमद खान को, प्रस्तुति प्रदीप मिश्र की थी। एक बात और कहना चाहूँगा कि हमारी ये प्रस्तुति आपको कैसी लगी, आप हमें दिल खोलकर अपनी प्रतिक्रिया से अवगत कराएं ताकि हम आपके लिए और अच्छे से बेहतर से कार्यक्रम का निर्माण कर सकें। हमारे आकाशवाणी का व्हाट्सएप नंबर है, नोट कीजिए 8004926250, यानी 800-492-6250। अब दीजिए डॉक्टर कुंवर तौकीर अहमद खान को इजाज़त।

मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़, FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ और न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। आज सुनते हैं फिल्म संगीत फिर तेरी कहानी याद आई। पंकज उदास ने आवाज़ दी है इस गीत के लिए, रचना कतील शिफाई की है और संगीत निर्देशन अनु मलिक का।

दिल दिया दर्द लिया। कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको इसी फिल्म से सुनवा रहे हैं, मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। रचना शकील बदायूं ने की है और संगीत निर्देशन नौशाद का।

कार्यक्रम का अगला गीत गाइड फिल्म से मोहम्मद रफी की आवाज में, शब्द रचना शैलेंद्र की है और सुरों से सजाया है SD बर्मन ने।

कार्यक्रम का अगला गीत मिलन फिल्म से मुकेश और लता मंगेशकर की मिली जुली आवाजों में, रचना आनंद बख्शी की है और संगीत निर्देशन है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

0: करे शोर,
1: पवन करे शोर।
0: अरे बाबा शोर नहीं, शोर शोर शोर,
1: पवन

आई मिलन की बेला कार्यक्रम का अगला गीत इसी फिल्म से मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की मिली जुली आवाज़ों में, रचना शैलेंद्र की है और संगीत निर्देशन शंकर जयकिशन का।

इन्हीं युगल सरों में कार्यक्रम का अंतिम गीत जंगली फिल्म से, रचना हसरा जयपुरी की है और संगीत निर्देशन है शंकर जयकिशन का।

0: चार मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़, FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ और न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र आपकी सेवा में है। मध्याह्न के 12 बजने वाले हैं, अब समाचार होंगे हमारे दिल्ली केंद्र से, पहले हिंदी में फिर अंग्रेजी में, बने रहें हमारे साथ।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही, विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई समेत कई मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के बाद स्थगित कर दी गई है। लोकसभा की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक और राज्यसभा की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित करनी पड़ी। दिन में 11 बजे जब लोकसभा की कार्यवाही शुरू हुई तो अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रश्नकाल शुरू करने का प्रयास किया, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई का मुद्दा उठाया। विपक्ष के सदस्य इस संबंध में गृहमंत्री अमित शाह के बयान की मांग कर रहे थे। श्री बिरला ने विपक्षी सदस्यों से सदन के सुचारू संचालन में सहयोग करने की अपील की।
2: सदन में चर्चा हो, प्रश्नकाल हो और महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा होना चाहिए। ये विधेयक देश और राष्ट्र के साथ बहुत बड़े परिवर्तन लाने के विधेयक होते हैं, इस पे अच्छी चर्चा संवाद होना चाहिए। लेकिन कल BSC की मीटिंग में भी आग्रह किया, आज फिर आग्रह कर रहा हूँ कि जिस विषय पर आप छात्रों के विषय पर मांग कर रहे थे, सरकार संसदीय कार्य मंत्री ने कल BSC की बैठक में स्पष्ट रूप से कहा कि गृह मंत्री इस बात पर जवाब देने को तैयार हैं, सदन चलना चाहिए।
1: श्री बिरला ने संसद में बार बार हो रहे व्यवधान पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि सदन में लगातार इस तरह की स्थिति से वे व्यक्तिगत रूप से आहत हैं। हंगामा जारी रहने पर श्री बिरला ने सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। उधर राज्यसभा में भी ऐसी स्थिति देखने को मिली। विपक्ष के हंगामे के बाद सदन की कार्यवाही 12 बजे तक के लिए स्थगित करनी पड़ी। इस समय सदन की कार्यवाही जारी है। गृहमंत्री अमित शाह आज लोकसभा में केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 और राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक 2026 पेश करेंगे। राज्यसभा में अधिकरण सुधार विधेयक 2026 पर विचार और पारित करने के लिए चर्चा होगी। विधि और न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल विधेयक पेश करेंगे। इस विधेयक का उद्देश्य विभिन्न अधिकरण के अध्यक्षों और सदस्यों की योग्यता, सेवा नियुक्ति और प्रशासन तथा कार्यप्रणाली में दक्षता सुधार, स्वतंत्रता, पारदर्शिता और एकरूपता सुनिश्चित करना है। इस विधेयक में राष्ट्रीय अधिकरण आयोग की स्थापना का भी प्रस्ताव है। संसद ने कराधान और अन्य विधियां संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। राज्यसभा ने इस विधेयक को चर्चा के बाद लोकसभा को वापस भेज दिया। लोकसभा पहले ही इस विधेयक को पारित कर चुकी है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि विधेयक का उद्देश्य भारत के विनिर्माण तंत्र को मजबूत करना, अधिक निवेश आकर्षित करना, रोजगार सृजित करना और विनिर्माण गतिविधियों को बढ़ावा देना है। वित्त मंत्री ने स्पष्ट किया कि विधेयक में डिजिटल भुगतान पर कोई कर या लेनदेन शुल्क नहीं लगाया गया है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन NDA संसदीय दल की साप्ताहिक मंगल मिलन बैठक आज नई दिल्ली में संसद भवन परिसर में हुई। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन और अन्य नेताओं ने तिरंगा लहराया। झारखंड की राजधानी रांची में कल विद्यार्थियों के नेतृत्व में विधानसभा मार्च के दौरान छात्र आंदोलन के नेता देवेंद्र नाथ महतो की तबीयत बिगड़ने के कारण उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि झारखंड विधानसभा के पास कल हुई झड़प में कई प्रदर्शनकारी और 4 पुलिसकर्मी घायल हो गए।
3: कल करीब 10 घंटे तक चले विधानसभा घेराव के दौरान प्रदर्शनकारी विधानसभा गेट नंबर 1 के पास पहुंच गए। उन्हें हटाने के लिए पुलिस ने वाटर कैनन, आंसू गैस और लाठीचार्ज का इस्तेमाल किया। पुलिस कार्रवाई के विरोध में BJP ने आज राज्यव्यापी बंद का आह्वान किया है और कथित परीक्षा अनियमितताओं की CBI जाँच की अपनी मांग दोहराई है। रांची के उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्री ने लोगों से आज के बंद को शांतिपूर्ण तरीके से मनाने की अपील की है। महवेश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
1: महाराष्ट्र के सतारा जिले में एक सड़क दुर्घटना में 2 लोगों की मृत्यु हो गई और 2 घायल हो गए। आज तड़के पुणे बंगलुरु राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक कार डिवाइडर से टकराने के बाद ट्रक से जा टकराई। पुलिस दुर्घटना के कारणों की जांच कर रही है। राष्ट्र आज क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी खुदीराम बोस के 119वें बलिदान दिवस पर

0: Today, the Sensex slipped 431 points to 78,111, while the Nifty dropped 135 points to 24,449 when reports last came in. And with that, we end this news bulletin.
1: आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र मीडियम एम 212.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़, FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ और न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर। खोए हुए व्यक्तियों के बारे में सूचना सुनिए। थाना पट्टी प्रतापगढ़ से प्राप्त सूचना के अनुसार आशु सरोज, पुत्री रामनाथ सरोज कहीं लापता हैं। इनका विवरण इस प्रकार है। आयु 21 वर्ष, आंखें भूरी, चेहरा गोल। इन्होंने हरा सूट और भूरी सलवार पहन रखी है। इनके बारे में कोई भी सूचना थाना पट्टी जनपद प्रतापगढ़ को दी जा सकती है। एक और सूचना सुनिए। थाना पट्टी जनपद प्रतापगढ़ से प्राप्त सूचना के अनुसार रागनी यादव, पुत्री जगदीश यादव, जिनकी उम्र 14 वर्ष है, ये कहीं लापता हैं। इनके बारे में विवरण इस प्रकार है। ये गहरा बदन, चेहरा गोल, कद औसत, रंग गेहुआ। इनके बारे में कोई भी सूचना थाना पट्टी जनपद प्रतापगढ़ को दी जा सकती है। खोए हुए व्यक्तियों के बारे में सूचना समाप्त हुई।

हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण। श्रोताओं, आपको अपने केंद्र से प्रसारित होने वाले आज के शेष प्रमुख कार्यक्रमों के बारे में संक्षिप्त जानकारी दे दें। संसद में प्रश्नकाल की कार्रवाई की रिकॉर्डिंग रात 10 बजे और संसद समीक्षा रात 8 बजे, ये दोनों कार्यक्रम हमारे दिल्ली केंद्र से रिले होंगे। रात 8:15 पर रूपक सुनिएगा साहित्य के उन्नायक मुंशी प्रेमचंद। आलेख रणविजय सिंह सत्यकेतु का है। वाचन स्वर अतुल कुमार यादव और निकाह सिद्दीकी का। प्रस्तुति दीपक राय की है। गजलों पर आधारित कार्यक्रम कहकशां प्रसारित करेंगे रात 9:30 पर।

अमृता मालवीय के गीत और भजन आप सुन सकते हैं सुगम संगीत कार्यक्रम में शाम 7:45 पर। संस्कृत कार्यक्रम होगा शाम 7:31 पर। इस कार्यक्रम में डॉक्टर शक्तिधर नाथ पांडे की वार्ता सुनिएगा, संस्कृत साहित्य वर्षा वर्णनम। प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी हम अपने लखनऊ केंद्र से रिले करेंगे शाम 6:50 पर। पंचायत घर कार्यक्रम होगा शाम 6:30 पर। इस कार्यक्रम में त्रिभुवननाथ गौण और साथियों के लोकगीत के अलावा राजाराम त्रिपाठी का रामायण पाठ हम आपको सुनवाएंगे।

युवाणी रोज की तरह शाम 5:15 पर। धरती के गीत कार्यक्रम में ऐसी कलाकार हैं राम बाबू यादव और साथी। उस कार्यक्रम का प्रसारण समय होगा हमारी सायंकालीन सभा के आरंभ में 5:00।

प्रायोजित कार्यक्रम NCERT सुनिएगा दोपहर 2:30 पर, ग्रामीण महिलाओं कार्यक्रम पनघट 1:15 पर। इस कार्यक्रम में आस्था सिंह के गाए लोकगीत हम आपको सुनवाएंगे। नशे की लत से कैसे बचें, प्राची मालवी से रीता रानी की बातचीत भी हम आपको सुनवाएंगे इसी कार्यक्रम में। श्रोताओं की फोन कॉल्स पर आधारित फरमाइशी फिल्मी नगमों का कार्यक्रम हेलो फरमाइश 12:30 पर, प्रस्तुति मधु कुमार की होगी। अब से थोड़ी देर बाद यानी 12:15 पर शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम में पंडित CR व्यास का राग शुद्ध सारंग में ख्याल गायन हम आपको सुनवाएंगे। अभी आप हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले आज के शेष प्रमुख कार्यक्रम के बारे में संक्षिप्त जानकारी प्राप्त कर रहे थे। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज, FM 100.3 MHz और न्यूज ऑन AIR ऐप पर। शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम में आइए सुनते हैं पंडित CR व्यास का राग शुद्ध सारंग में ख्याल गायन।

सुन रहे थे पंडित सी आर व्यास का राग शुद्ध सारंग में ख्याल गायन। अब ये कार्यक्रम समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम 192.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़, FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ और न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर। प्रस्तुत है श्रोताओं की फोन कॉल्स पर आधारित फरमाइशी फिल्मी नगमों का कार्यक्रम हेलो फरमाइश। प्रस्तुति मधु कुमार की है।

0: इस समय आप सुन रहे हैं हेलो फरमाइश कार्यक्रम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से, और मैं हूं मधु आपके गीतों के साथ। अपना नाम बताइए।
1: हम गुलाब चंद मिश्रा, ग्राम पचोखर, पोस्ट रामजालगंज, जिला जौनपुर, उत्तर प्रदेश से बोल रहे हैं। जी
0: जी जी, बोलिए गुलाब जी, कौन सा गीत सुनना चाहते हैं?
1: हम फिल्म अवतार का गीत सुनना चाहते हैं, चलो बुलावा आया है, माता जी बुलाया है।
0: अच्छा, आपको भक्ति गाने बहुत पसंद है।
1: भक्ति गाने में सलकम तो उसमें बार दे दीजिए।
0: जी जी,
1: एक आपसे अनुरोध है
0: जी,
1: मतलब आप जो है कार्यक्रम के अंत में अपना फोन नंबर बता दिए थे, हिंदी अंग्रेजी दोनों।
0: जी जी, बिल्कुल बता देंगे नंबर आपको।
1: और हमारा जो है आपका नंबर जो है कहीं खो गया था, मतलब उड़ गया था, जो मोबाइल है कोई बटन दब गई थी।
0: अच्छा अच्छा,
1: तो कल जो आपका पंगड़ कार्यक्रम था उसमें जो है नंबर बताया गया, तुम नोट करवाए बच्चे से।
0: अच्छा अच्छा,
1: और हम टोटली ब्लाइंड करके चले जाते हैं, उसमें दिक्कत होती है, तो आपके बिना निवेदन है कि आप फोन नंबर अपना बता दिए।
0: जी जरूर, आपकी इस बात को ध्यान में रखते हुए पहले तो हम अपने श्रोताओं को बता देते हैं इस कार्यक्रम का नंबर। तो श्रोताओं और गुलाब जी, आप दोनों लोग सुन लीजिए। पहला है 0532-2970-462, 0532-2970-462। दूसरा नंबर है 0532-242-3649, 0532-242-3649। और अब हम सुनवाते हैं गुलाब जी की पसंद का अवतार फिल्म का ये गाना।

0: नमस्कार मैडम, मैं चिरमिर कुरासिया कालरी जिला कोरिया छत्तीसगढ़ से इंद्रभान सिंह बोल रहा हूँ।
1: जी इंद्रभान जी, बताइए कौन सा गाना सुनेंगे?
0: फिल्म का नाम है मिलन, गीत के बोले सावन का महीना पवन करे शोर, मुकेश और लता मंगेशकर गीत आवाज में गीत।
1: जी तो इंद्रभान जी ने पसंद किया है मिलन फिल्म का ये गाना, आइए सुनते हैं।

करे शोर। अरे बाबा, शोर नहीं, शोर, शोर, शोर।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम में आपका स्वागत है। अपना नाम बताएं।
1: संगम नगरी प्रयागराज निधि कला बनपुगरा से पवन निषाद बोल रहे हैं। मैम नमस्कार।
0: नमस्कार पवन जी, कौन सा गीत सुनेंगे?
1: फिल्म का नाम है 20 साल बाद।
0: जी
1: अब गाने का बोल है, हम तुम्हें इतना प्यार करेंगे, लोग हमें याद करेंगे।
0: जी जी डिंपल कपाड़िया और मिथुन चक्रवर्ती की ये फिल्म थी।
1: जी मैम।
0: तो चलिए आपकी इस पसंद को पूरा करते हुए सुनवाएंगे गीत, लेकिन अगर आपको किसी अपने मित्रों के नाम लेने हैं तो ले लीजिए।
1: दीपक निषाद है
0: जी,
1: पिंटू निषाद, हमारा भतीजा है शेखर निषाद।
0: तो आइए सुनते हैं 20 साल बाद फिल्म का ये गाना।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम, अपना नाम बताइए।
1: पोस्ट हंडिया, तहसील हंडिया, थाना हंडिया, गांव मगरा, जिला प्रयागराज से प्रेमचंद यादव बोल रहे हैं। मैम नमस्कार।
0: नमस्कार प्रेमचंद यादव जी, हंडिया से बात कर रहे हैं, तो कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?

0: फिल्म का नाम है तू झूठी मैं मक्कार। रणवीर कपूर और श्रद्धा कपूर की फिल्म है ये। गाने को गाया है अरिजीत सिंह ने। गाने के बोल हैं ओ बेदर्दिया।
1: ओ बेदर्दिया, तो भाई इस गाने की फरमाइश प्रेमचंद जी ने की है। हम आपको सुनवाने जा रहे हैं आपकी पसंद का ये गाना।
0: मैम नाम लेना चाहते हैं कुछ?
1: हाँ जी ले लीजिए।
0: हमारे दोस्त हैं साहब लाल यादव, सुमित यादव, हरिओम यादव, प्रियांशु यादव, एक और मित्र है प्रियांशु यादव, हमारे परिवार के हैं पिता रामचंद्र यादव, मम्मी का नाम चित्ररेखा देवी यादव, हमारी तीन बहनें हैं आंचल यादव, काजल यादव, शिखा यादव, हमारे छोटे भाई अंकित यादव।
1: तो सुनिए अपनी पसंद का ये गाना।

0: हेलो, फरमाइश कार्यक्रम, अपना नाम बता दीजिए।
1: पुतनी कुंडा प्रसाद में राजेन बात कर रहा हूँ। नमस्कार।
0: नमस्कार जी। नमस्कार, बताइए राजेन जी, कौन सा गीत सुनना चाहते हैं?
1: तो मैम, सावन का महीना आ गया है। जीवन मृत्यु फिल्म का नाम है। आने के बोले रिम झिम बरसता समुद्र।
0: जी हाँ, मोहम्मद रफी और लता जी की आवाज में ये गाना पसंद किया है राजेंद्र जी ने, तो आइए सुनते हैं।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही, विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई समेत कई मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित करनी पड़ी। दिन में 11 बजे जब लोकसभा की कार्यवाही शुरू हुई तो अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रश्नकाल शुरू करने का प्रयास किया, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई का मुद्दा उठाया। विपक्ष के सदस्य इस संबंध में गृहमंत्री अमित शाह के बयान की मांग कर रहे थे। श्री बिरला ने विपक्षी सदस्यों से सदन के सुचारू संचालन में सहयोग करने की अपील की।
1: सदन में चर्चा हो, प्रश्नकाल हो और महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा होना चाहिए। ये विधेयक देश और राष्ट्र के साथ बहुत बड़े परिवर्तन लाने के विधेयक होते हैं, इस पर अच्छी चर्चा संवाद होना चाहिए। लेकिन कल बीएससी की मीटिंग में भी आग्रह किया, आज फिर आग्रह कर रहा हूँ कि जिस विषय पर आप छात्रों के विषय पर मांग कर रहे थे, सरकार संसदीय कार्य मंत्री ने कल बीएससी की बैठक में स्पष्ट रूप से कहा कि गृह मंत्री इस बात पर जवाब देने को तैयार हैं, सदन चलना चाहिए।
0: राज्यसभा में भी ऐसी स्थिति देखने को मिली। दिन में 11 बजे सदन की कार्यवाही शुरू होने पर मंत्रियों ने अपने अपने मंत्रालयों के दस्तावेज सदन के पटल पर रखे। विपक्ष के हंगामे के बीच सभापति सीपी राधाकृष्णन ने शून्यकाल शुरू किया। केवल बीजेडी के डॉ. संतृप्त मिश्रा ने ही सार्वजनिक महत्व के मुद्दे उठाए। हंगामा जारी रहने के कारण सदन की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए ने आज संसद परिसर में झारखंड में छात्रों के खिलाफ पुलिस की कथित कार्रवाई के विरोध में मार्च निकाला। सांसदों ने आरोप लगाया कि सरकार के इस आश्वासन के बावजूद कि गृहमंत्री अमित शाह छात्र विरोध प्रदर्शनों पर प्रतिक्रिया देने के लिए तैयार हैं, विपक्ष चर्चा से बच रहा है। एनडीए संसदीय दल की साप्ताहिक मंगल मिलन बैठक के बाद ये मार्च निकाला गया। केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने विपक्ष पर जानबूझकर संसद का कामकाज बाधित करने का आरोप लगाया।
2: पेपर लीक को लेकर भी जो तमाम बातें हुई, सरकार ने हर मांग को स्वीकार किया, एक नया कड़ा कानून बनाया। गृह मंत्री जी के वक्तव्य को लेकर लगातार ये मांग करते रहे हैं और हमारी सरकार ने स्पष्ट किया है। माननीय गृह मंत्री जी सदन के अंदर अपने चर्चा भी करना चाहते हैं, अपनी बात भी रखना चाहते हैं, लेकिन ये सुनने के लिए तैयार नहीं है, चर्चा में भाग लेने के लिए तैयार नहीं है। इनका एक ही मकसद है कि सदन को बाधित करना है।
0: नई दिल्ली से भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर संसदीय कार्यवाही में बाधा डालने, चर्चाओं का रुख बदलने और दोहरा राजनीतिक रवैया अपनाने का आरोप लगाया। झारखंड में जेपीएससी जेएसएससी भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के विरोध में कल रांची में छात्रों के नेतृत्व में विधानसभा मार्च के दौरान झारखंड छात्र आंदोलन के नेता देवेंद्र नाथ महतो की तबीयत बिगड़ने के कारण उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। श्री महतो झारखंड विधानसभा के पास पुलिस लाठीचार्ज के दौरान घायल हो गए। भारतीय जनता पार्टी ने प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस की ज्यादती और लाठीचार्ज के विरोध में आज झारखंड बंद का आह्वान किया है। सर्वोच्च न्यायालय ने आज निर्वाचन आयोग से पश्चिम बंगाल की मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर के दौरान मतदाताओं के नाम हटाए जाने से संबंधित याचिकाओं पर सुनवाई की। न्यायालय ने नियुक्त न्यायाधिकरणों द्वारा निपटाई गई अपीलों का विवरण देने को कहा। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी की एसआईआर से संबंधित अपीलों के शीघ्र निपटारे की याचिका पर संज्ञान लिया। अगली सुनवाई 25 अगस्त को होगी। शहरी विकास विभाग के सचिव सत्येंद्र सिंह ने कहा है कि किफायती आवास व्यवस्था को योजना आधारित दृष्टिकोण से विकसित करके एक सतत व्यवस्था में बदलना होगा, जो स्वामित्व और किराए सहित आवास के विकल्प प्रदान करे। नई दिल्ली में आज आयोजित किफायती आवास की पुनर्कल्पना योजना से सतत व्यवस्था तक विषय पर राष्ट्रीय सम्मेलन में उन्होंने ये बात कही। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में 0.5% की कमी आई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 413 अंक गिरकर 78,130 पर और निफ्टी 133 अंक गिरकर 24,451 पर आ गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

अभी शुरू होता अपने फ़ोन कार्स पर आधारित फरमाइशी फिल्मी नगमों का प्रोग्राम हैरो फरमाइश सुन रहे थे। प्रस्तुति मधु कुमार की थी। प्रसारण आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से किया जा रहा था।

मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़, FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ और न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर। इस समय आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र आपकी सेवा में है। 1 बजने वाले हैं, अब समाचार होंगे हमारे दिल्ली केंद्र से, उसके बाद इलाकाई खबरें नशर की जाएंगी लखनऊ केंद्र से। बने रहें हमारे साथ।

0: वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने आज गोरखपुर में NH-24 सुनौली नौतनवा गोरखपुर रोड से माधवपुर बंधा तक ग्रीन सिटी कॉलोनी पटानिया तक दो लेन सड़क को चौड़ा और मजबूत करने का इफ्तिताह किया। इफ्तिताह के बाद एक अवामी इज्तिमा से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि तरक्याती कामों का सिलसिला अब बदलते हुए गोरखपुर को जाहिर करता है। यहाँ की हर सड़क को चार लेन वाली सड़क से जोड़ा जा रहा है और बड़े पैमाने पर फ्लाईओवर और ओवरब्रिज बनाए जा रहे हैं। जारी तरक्याती काम और उसके नतीजे में जिंदगी की आसानी ने गोरखपुर को एक नई शिनाख्त दी है। हुकूमत हर शहरी के लिए जिंदगी की आसानी को यकीनी बनाने के लिए पुरअज़्म है। वज़ीर आला ने कहा कि इस इलाके में लोग अरसे दराज से रह रहे हैं, यहाँ कोई स्कूल भी वाक़ हैं, ताहम सड़क तंग होने की वजह से लोगों को आने जाने में काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता था। भारी गाड़ियां यहां आने से कासिर थीं। तकरीबन 70 करोड़ रुपए की लागत से तकरीबन 2 किलोमीटर तवील इस सड़क की तामीर से बहुत से मसाइल हल हो गए हैं। इससे लोगों की नकलो हरकत में आसानी हुई है और पानी जमा होने का सिलसिला और मसला भी खत्म हुआ है। उन्होंने कहा कि इस सड़क के रबते के साथ वाराणसी, लखनऊ, नेपाल, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, बलरामपुर वगैरह जैसे मकाम का सफर करने वालों को अब शहर के अंदर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उन्होंने कहा कि चार लेन वाला होबर्ट डैम और माधोपुर पुश्ता जो कि राजघाट से गुजरता है तैयार किया जा रहा है। डोमनगढ़ में फ्लाईओवर भी बनाया जाएगा। वज़ीर आला ने कहा कि हुकूमत गोरखपुर के लोगों को बेशुमार सहूलियात फराहम कर रही है। उन्होंने कहा
1: पूरे गोरखपुर शहर के अंदर अब बदलता हुआ गोरखपुर दिखाई देता है। पहले संकरा मार्ग था, लोग चल फिर नहीं पाते थे, जल जमाव होता था। अब विकास के ढेर सारे कार्य आज गोरखपुर को एक नई पहचान दिला रहे हैं। आज गोरखपुर का हर मार्ग चार लेन की सड़क से जुड़ चुका है, फ्लाईओवर बन रहे हैं, बहुत सारे बन करके तैयार हो भी गए हैं। ये सभी कार्य इसलिए जिससे आपके जीवन में सुगमता हो, आसानी हो, आपको इन सभी सुविधाओं का लाभ प्राप्त हो सके।
0: वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने सावन शिवरात्रि के मौके पर तमाम शहरियों को मुबारकबाद और नेक ख्वाहिशात का इजहार भी किया। उत्तर प्रदेश में रियासत भर के तमाम मदारिस पुरजोश अंदाज में हर घर में तिरंगा मुहिम से मुतालिक तकरीबात का अहतमाम करेंगे। अक़लियती बहबूद के वज़ीर दानिश अंसारी ने हिदायत दी है कि मदारिस में ज़ेर तालीम तलबा और नौजवानों को मुहिम में हिस्सा लेने की तरगीब दी जाए। उन्होंने कहा कि रियासत के मदारिस में कौमी परचम लहराने, कौमी तिराना गाने, हुबुल वतनी की सरगर्मियाँ और अजीम आज़ादी पसंदों की खिदमत को उजागर करने वाले बेदारी के इकदामात से मुतालिक प्रोग्राम भी मुनक़िद किए जाएंगे। कल चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर ज़िले में तिरंगा यात्रा की क़यादत की। उन्होंने कहा कि हर घर तिरंगा मुहिम आज़ादी पसंदों की कुर्बानियों को खराज तहसीन है और लोगों पर जोर दिया कि वो फ़ख्र और एहतराम के साथ अपने घरों में कौमी परचम लहराएं। तकरीबन 2.5 किलोमीटर का यह मार्च म्यूनसिपल कॉरपोरेशन कॉम्प्लेक्स से रेलवे स्टेशन चौक तक शुरू हुआ, जिसमें वज़ीर आला ने तिरंगा झंडा हाथ में थामा। कौम सबसे पहले के जज्बे के साथ उन्होंने हाथ में तिरंगा झंडा लेकर पदयात्रा में हिस्सा लिया। जनाब योगी आदित्यनाथ ने बहादुर मलका लक्ष्मीबाई को म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के अहाते में उनके मुजस्मे पर फूल चढ़ाकर खराज अकीदत भी पेश किया और जद्दोजहद आज़ादी में उनके तावुन और कुर्बानी को याद किया। उन्होंने कहा कि 2022 में शुरू की गई हर घर में तिरंगा मुहिम हर साल अपने उरूज पर पहुंच रही है। महाराजा सुहेलदेव यूनिवर्सिटी आजमगढ़ की तीसरी कॉन्वोकेशन की तकरीब उत्तर प्रदेश की गवर्नर और रियासती यूनिवर्सिटियों की चांसलर मोहतरमा आनंदीबेन पटेल की सदारत में इख्तिताम पजीर हुई। मजमूई तौर पर 74 तुलबा को डिग्रियां दी गईं, जिनमें 26 लड़के और 48 लड़कियां शामिल थीं। इनमें से 11 तुलबा ने अंडर ग्रेजुएट UG डिग्रियां हासिल की और 63 ने पोस्ट ग्रेजुएट PG डिग्रियां हासिल की। बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले तुलबा को मजमूई तौर पर 20 मेडल्स से नवाजा गया। राम मंदिर के पहले CEO का इंटरव्यू आज से राम मंदिर के अहाते में शुरू हो रहा है। इंटरव्यू के लिए 18 उम्मीदवार फाइनल राउंड में पहुंच चुके हैं। यह इंटरव्यू 2 दिन 11 और 12 अगस्त को होगा। इस साल के 80वें यौम आज़ादी की तकरीबात में यूथ पावर और 2047 तक तरक्की याफ्ता हिंदुस्तान की तामीर में मुल्क के नौजवानों के तावुन को उजागर किया जाएगा। कौमी गीत वंदे मातरम की 150वीं सालगिरह भी मनाई जाएगी। एक रिपोर्ट।
2: रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि स्वतंत्रता दिवस समारोह का नेतृत्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐतिहासिक लाल किले से करेंगे। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे और राष्ट्र को संबोधित करेंगे। इस वर्ष के समारोह का एक प्रमुख आकर्षण वंदे मातरम के 150 वर्ष पूर्ण होने का उत्सव होगा। पहली बार स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान लाल किले की प्राचीर से राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम का

0: सामूहिक गान होगा। समारोह की दूसरी प्रमुख थीम युवा शक्ति विकसित भारत एट 2047 की यात्रा का नेतृत्व है।
1: इसी के साथ आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ। अगला बुलेटिन दोपहर 2 बजे FM पर नष्ट किया जाएगा।
2: मीडियम वेव 252.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़, FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ और न्यूज ऑन AIR ऐप पर हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। ग्रामीण बहनें अपना कार्यक्रम सुने पनघट।

0: सरस्वती बहनी, राम राम।
1: अपन गट सुने बैठी सब बहनी हरन के सरस्वती अगुंजा के
0: राम
1: राम राम।
0: और सरस्वती बहनी, का हाल चाल बाटे तुहर?
1: गुंजा सब एकदम बढ़िया बा। देखा, मौसम का इतना साथ मिला था, इतना सहयोग मिला था, तो बहुत आराम हुई गबा।
0: बिल्कुल सही कहो बनी, कहे कि देखा ये जो हरियाली मौसम है, कुल कितना मन के आधा सुख तो ऐसे मिल जाता बनी, क्योंकि जब प्राकृतिक बाहर दे थी,
1: हाँ।
0: चाहे जल के होए, चाहे हरियाली के होए, चाहे शुद्ध वातावरण के हो, तो ये प्राकृतिक हम सबे के कितने दिन है देत है, और किस शुक्राना हमको बहुत करे के चाहिए, कहे कि जीवन है प्रकृति से बना बाटे।
1: बिल्कुल सही बात है तुहार गुंजा, हम इसे एकदम सहमत है। तो देखा, तू पूछत रहू का हाल चल बा। जानत हूँ जब हाँ। मौसम जब अपने पक्ष में हो जात है ना,
0: हाँ
1: है ना, तो जैसे काम कती के काम करे के गति बढ़ जात है।
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: है ना, मानत हूँ ना।
0: बिल्कुल मैंने कहा कि देखा, जब कहते नहीं कि जब प्राणी अंदर से खुश रहा है, तो उके जो विचार होते हैं वो भी कुल सब कुछ खुशनुमा हो जाते हैं। और देखा, जैसे कि पावन अवसर चलाता है, अपने सबके देखा भोले बाबा के सब कावड़िया ले ले जाते हैं, और कुल हम कल गए गए रहे बहनी गंगा जी मुला, देखा कितने लोगन वहाँ कावड़िया भरत रहे हैं, और भोले बाबा के जो भक्त हैं, जो भी अपन मानवती मानत हैं, वो जात हैं बहनी, देख के अति आनंद मिला रहा है, कि समझना कि वो एक छोरी गंगा के और एक छोरी शहर के, कुल कितना अलग अलग आनंद है, कि इतनी शांति रही बहनी। कहते नहीं कि धर्म भी एक शांति के मार्ग है।
1: बिल्कुल सही कहतू। इतनी तू बात बतावत हूँ कैसे, मतलब एकर हमके ये समझ में आवत है कि तू बढ़िया से खूब सावन का मन लगाए के आनंद ले थू।
0: बिल्कुल देखा, कहे कि ये जो अवसर है, जो ने सावन चला था बहनी, एमिन कुल कजरी के तो बाहर रहते हैं, हम सभी बहनी के सोलह सिंगार के बाहर रहते हैं, मुला जो भोले बाबा ये मौसम के खुशनुमा बनाए बाटे, उनके पीछे भी एक रहस्य है। कहे कि देखा, जो सावन के मौसम बाटे, देखा चार चार मौसम बाटे, बारह मौसम बना बाटे, मुला जो सावन है केवल एक ही महीना रहते, ई बदे कहे कि जब जब हमार प्रकृति के निर्माण हुआ, मंथन हुआ, तो उनमें से जो बीज निकला, तो हमार प्रभु
1: भोलेनाथ
0: भोलेनाथ ग्रहण करें, ये बदे कि प्रकृति में ये सब चीजें ना फैलें, कुल ठंडक रहे सबके जीवन में, तो उनका उनका ठंडक दे के बदे कुल देवी देवता वहाँ पर जल बरसाएं भोले बाबा पे, जेके वजह से आज ही सावन महोत्सव मना हाँ,
1: देखा हम सब भोले बाबा के जल अर्पण कर थी, और हाँ? पलट के भोले बाबा हम सब के भर भर के कितना बढ़ाई के दे देते हैं।
0: तो देखा ये इतना पावन अवसर बाटे, मुला देखा हर चीज समय समय पे निक लगा थी, और हर समय जब हम अपने समय के अनुसार चलते, चाहे हमारे घर गृहस्थी हो, चाहे हमारा रोजगार हो, चाहे बनी खेती खलियानी हो, कुल समय अगर हम कहते ना अंग्रेजी में बनी जैसे मैनेज करके, कहा कि प्रबंधन बनाए के, या उका सही योजना से अगर जीवन चलाए तो ही, तो कोनो चीज के गड़बड़ी ना ही हो, देर सबेर ना ही हो, मुला समय से हम हर जगह पहुंच जाए थे, तो ये सब अगर हम अपने जीवन में चलाए थे, तो अपने जीवन के तो साधते ही बहनी दूसरों के प्रति प्रेरणा बन जाते।
1: हमें लगा था गुंजा आज तू कुछ विशेष बात पे चर्चा करे चाहत हूँ, है ना?
0: बिल्कुल बहनी,
1: तो चला बहनी हरन संगे विस्तार से एकरी बात पे चर्चा कर लीन जाए कि समय प्रबंधन कैसे।

0: से करें।
1: हाँ,
0: है ना,
1: बिल्कुल।
0: देखा गुंजा बहनी, जैसे हाँ तू बतावत रहो कि समय बहुत कीमती है और काम तो देखा सबके है,
1: हाँ,
0: है ना,
1: बिल्कुल।
0: तो और काम सब करब भी जरूरी है, है ना। ओमा हम सबे के ई देखे के हा देखा, और सबके पजरे वही 24 घंटा है, केहू के पजरे 25 या 26 नहीं है,
1: बिल्कुल।
0: है ना।
1: हाँ,
0: अब हम सबे भागा दौड़ी में आजकल के जीवन तो तू देखते ही हो, है ना,
1: पूछा ना,
0: कबो काम का कमी नहीं रहत। तो हम सबे का करत ही देखा, इतना काम हो जाए, हम सबे गृहिणी है।
1: हाँ,
0: तो चाहे देखा हम सबे के खेत में जाए के होते, किसानी देखे के होता,
1: बिल्कुल,
0: और हम सबे के घर भी देखे के होता, घर में अपन परिवार है, लड़का गदेला है, है ना, और
1: बिल्कुल।
0: बुजुर्ग भी हैं, तो पूरे परिवार के साथ लेके गृहस्थी संहार के खेती किसानी देख के एमा कबो कबो ऐसा लगा था कि बहुत
1: हाँ
0: काम पीछे छूट गया, है ना, और
1: हाँ
0: वो
1: बहनी,
0: छूटत जाते और हमार मन कचोटत है अंदर अंदर कि देखा ए काम के हम साध नहीं पावत है,
1: बिल्कुल
0: ए
1: कर
0: काम
1: नहीं
0: के हम
1: पावत है,
0: काहे नहीं कर पावत
1: बिल्कुल
0: है,
1: बिल्कुल।
0: देखा
1: हाँ
0: हम ए का संहार नहीं पावत है। आ कौनो कौनो बहुत अच्छे से संभारत ही,
1: बिल्कुल,
0: तो उनका देख के एक मन में ऐसे लगा था कि देखा वो कितने अच्छे से संभारत है और हम काहे नहीं संभार
1: तो
0: पावत
1: जाना
0: है।
1: तो मैंने ओके पीछे भी एक बात है, काहे से कि देखा समय प्रबंधन के बदे हर रोज रात में अगले दिन के जो काम में बांटे ओके सूची बनाए रहे हैं, जिससे काम के करे में कम समय लागत है और जल्दी हो जाते है। मूल जौने काम विशेष बांटे यानी जौने जरूरी काम बा ओका सबसे पहले कर लें, और हो सके तो काम के बदे एक निश्चित समय तय करें जिससे आपके कामों के समय पर पूरा हो जात है। और साथ ही साथ बहनी जोने हम सब पहले अगले दिन के समय जरूरी कामन के एक हिसाब किताब लिख ले कि बहनी देखा हमका ई क्षेत्र में इतना लगा इतना लागत लाए।
0: देखा एक सूची
1: हाँ
0: बनाए ले कि देखा ई काम है और ई काम बहुत जरूरी बा,
1: हाँ
0: और ओहू में कौन काम हमके सबसे पहले जरूरी बा। जैसे लड़कन के देले नहीं स्कूल से आए, तो पहले देखा अगर हम उनका लड़का लड़कन के कपड़ा लत्ता नहीं धोअब तो वो सूखे कब, अगले दिन बदे तैयार कब होए,
1: हाँ
0: है
1: बहनी,
0: ना। तो
1: हाँ
0: देखा वही हिसाब से देख लें कि कौन काम के हम पहले कह लें तब ठीक रही, और कौन काम के हम बाद में कह लें तो ठीक
1: अब
0: रही।
1: देखा बहनी कहा थी ना कि जैसे हम घर गृहस्थी भी देखते तो के बदे जैसे साग सब्जी आए हम खरीदते है या गदेलन के फीस आए भरते है, तो कुल सूची अगर हम डायरी में लिख लेते है कि अगले महीना हम इतना स्कूल में दिया विद्यालय में दिया इतने हम सब्जी वाले के दूध वाले के हिसाब करे बनी, तो कुल हमारे पैसे के हिसाब की गड़बड़ी भी नहीं होत और सबके हिसाब भी टाइम से मिल जात बहनी।
0: अब मन हर चीज सोच समझ के अपने दिमाग में डाल लें,
1: बिल्कुल
0: और जब हम ओका लिख ले थी एक जगह, तो हमारा दिमाग और धीरे धीरे खुले लगत है
1: हाँ
0: कि जौन चीज नहीं समझ में आवत है यहाँ वहाँ दौड़त है दिमाग में, वो धीरे धीरे समझ में आवे लगत है ना। तो जब दिमाग में कोई चीज अच्छे से हम डाल दे थी उसके समझ जाती,
1: हाँ
0: तो
1: हाँ
0: ओका सक्रिय रूप से हम जब सामने करे के होता तो उमा आसानी हो जाता और
1: बिल्कुल
0: जल्दी हो जाता है, और
1: देखा।
0: बहुत सारी हमें बातें भी पता लगा था। जैसे अभी तू कहत रहो हमें अंदाजा एक लग जाता है कि एक काम में इतना समय लगे वाला बा,
1: हाँ
0: तो
1: बिल्कुल
0: इतना समय हमरे पजरे और बची,
1: बची
0: है ना।
1: हाँ।
0: तो ये सब जब समझ आ जाए हमें तो काम हमार आसान हो जाए।
1: अब देखा बहनी हम तो कहा काम तो जीवन भर लगा है, मुला अपने के भी एक निश्चित समय पे आराम देवे के चाहिए, वो चाहे 5 मिनट हो चाहे 10 मिनट हो बहनी, काहे कि अगर हम अपने आप के शरीर के थोड़ा सा आराम देव तो वो शरीर फिर से हमार ऊर्जावान बन जाती।
0: बिल्कुल सही कहा तू गुंजा बहनी। आ देखा चाहे गृहिणी हो चाहे लड़कन बच्चन पढ़े लिखे वाला हो, समय प्रबंधन तो सबके बदे जरूरी है।
1: बिल्कुल
0: जैसे लड़कन गदेलन के भी ई समस्या आवत ना कि उनका समझ में ना ही आवत कि हम पहले खेल लें कि
1: हाँ
0: मतारी लोग घरे कहती तो पहले आराम करा पहले सुत जा तब फिर
1: बिल्कुल
0: उठ के सब अपन काम करिया, तो
1: हाँ
0: उनके इतना स्कूले में भी काम मिल जात है, वो सब भीतरे भीतरे गड़बड़ाए रहा था कि का पहले करी का
1: अस
0: छोड़ी, है
1: बिल्कुल
0: ना, कौन विषय पढ़ी और कौन विषय बाद में पढ़ी,
1: बिल्कुल
0: काल पता चला कौनो चीज के परीक्षा बाटे। तो और एक तरफ ये कहा जात कि देखा जोन पढ़ावा गया ओके पढ़ा, तो लेकिन समझ ना आई पौती करी का,
1: बिल्कुल
0: समय इतना कम इतना छोटा सा समय, वही में घरे में केहू कुछ कहते जा ई करके आ जा ई करके आ जा, तो लड़कियों अथुआ हो जाते हैं जिसे कुछ समझ में ना आवत का करें।
1: तो पहले
0: तो
1: देखा ये भी कारण है ना कि अगर गदेला पे विशेष ध्यान दिया जाए कि वो केवल पढ़ाई पे ही कॉन्सेंट्रेट रहा है जिम्मेदार रहा है, और देखा साथ ही साथ आजकल तो कितना डिजिटली जो चल गया है तकनीकी शिक्षा उसे भी कुछ गदेलन पढ़ा दें तो कितो अच्छा है, लेकिन लंबे समय तक मोबाइल टैबलेट या

0: और भी तकनीकी डिजिटल चीजन के इस्तेमाल जो करत है उ समय के बर्बादी होत है।
1: तो
0: लंबे समय तक
1: सबसे
0: रील चलावे उ अधिक जो है तो खराबी होते आँख के लिए भी, शरीर के लिए भी, और जो हमारा निंद्रा भंग होते उसे भी बहुत ही परेशानी होती।
1: देखा गुंजा, हम सबे बात करत ही ना कि कैसे कैसे हमें अपने समय के अच्छी तरह से
0: बिल्कुल
1: नियमित करे के है कि सब काम हमार चलत रहे, कौनो काम रुके नहीं, हमार मन में अफसोस ना आवे कि ई
0: बिल्कुल
1: काम हमारा पूरा नहीं
0: नहीं हो
1: भावा
0: पाए।
1: बाटे, है ना।
0: तो
1: तो
0: देखा बहनी
1: अपने
0: ये चाहिए ना कि अगर हम सुबह उठत है तो कुछ समय अपने शरीर के दें, व्यायाम करें, नित्य के काम करें, फिर बहनी अपने समय अनुसार जो भी रोजगार है जो भी है उसका करें, फिर समय अनुसार अपन एक नियमित कुछ भी कार्य है उसका अपने समय से दें। तो बहनी ये सब जो है ना कोनो देर ना ही होता है और ना ही कोनो परेशानी
1: देखा
0: होती है
1: गुंजा बहनी,
0: सोच के चले तो।
1: पुरुष भैया लोग और लड़कन उनकर तो समय जो है मतारी काफी हद तक संभार लेती। सबसे बड़ी दिक्कत गृहिणीन बदे आवेला, बहुत काम उनकर जो है सवेरे लड़कन के भैया लोगन के नाश्ता पानी बनाए के करावे में, घरे के बुजुर्गन के देखे में निकल जाते हैं
0: बिल्कुल
1: सही।
0: बिल्कुल
1: और वो आपन अपने बदे समय बिल्कुल भी प्रबंध नहीं कर पौती और उनकर निजी काम निजी शौक
0: छूट
1: पीछे
0: जाते
1: छूट
0: हैं।
1: जात है।
0: बिल्कुल बहनी
1: तुम्हार बहनी हरे एक पीछे न छोड़ें, अपने ऊपर भी ध्यान दें।
0: बिल्कुल
1: अब तो एकरे बदे जरूरी है कि अपने समय के प्रबंध अच्छे से करें, है ना। जौन काम अगर तुका लगत है भीड़ भाड़ में तुहार कमुआ छूट जात है तो ओके समय निकाले संझक बेरी, लेकिन अपने आप के समय जरूर दें। और जौन जौन समय तोहरे बदे जरूरी बा ओके खींच के कहीं ना कहीं से हियाँ से ले आए। ये नहीं कि आलस कर दिए चला बहुत काम हो गया, और नहीं तो ऐसे सोचे कि चला अब तो हमार उम्र होगी अब हम छोड़ देती एका। नहीं, अपने मानसिक शारीरिक स्वास्थ्य बदे अपने समय के प्रबंधन जरूर करें।
0: देखा इतनी नीक नीक बातचीत के बाद चला एक ठी आस्था सिंह बहनी से गौने सुन लीन जाए।
1: चला सुन लीन जाए, एक ठे ददरा मंगिया सुन सुन लागे।

0: गुंजा देखा इतनी बढ़िया गवनई तो का सुनाए है
1: वैनी
0: खूब तो झूमत रहो तू।
1: अच्छा देखा अब तू गीत गवनई तो बढ़िया सुनायो बोला अब तू आगे का बताए चाहतू बेनी अरेन का।
0: देखा अब हम तो का एक बातचीत सुनाओ बहुत जरूरी
1: अच्छा
0: बातचीत है ना। नशे की लत से कैसे बचे
1: हाँ।
0: और प्राची मालवीय से बात करे है रीता रानी जी तो चला सुन लीन जाए
1: बहनी अरे भी सुने।
2: देखो बहनी हरेन कहा जाता है कि लत कोनो भी चीज़ का हो अच्छी नहीं हो कोनो भी चीज़ चाहे जितनी भी अच्छी हो अगर ओकर लत पड़ जाता है तो सब परेशानी का सबक बन जाता है। तो बहनी आप सब बतावें कि नशा अच्छी चीज़ कैसे हो सकत है जबकि ऐसे हजार नुकसान होता। तो देखा आज अपने पनौती में बुलाए बाटी बहनी प्राची मालवीय के। सबसे पहले प्राची बहनी आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत बा। आप नशे की लत से कैसे बचे एकरे बारे में हमरे बहनी हरन के और भैया हरन के का बतावे चाहती हैं।
3: नशा शब्द ही समाज में एक कोड़ की तरह होता है। यह बहुत तेजी से चारों तरफ फैल जाता है। मनुष्य इसी में जकड़ जाता है और सभी जानते हैं कि नशा एक बुरी चीज है।
2: अच्छा
3: तब भी इसको करते हैं और वो शरीर को नुकसान पहुंचाता है।
2: बिल्कुल सही कहें बहनी कि नशा मने इतनी खराब चीज होता है कि ओकरे सेवन से जौन बा पूरा शरीर नुकसान हो जाता है शरीर का
3: परिवार भी नष्ट हो जाते हैं क्योंकि इसकी चपेट में जब परिवार आ जाता है तो चारों तरफ दुख ही दुख होता है।
2: हाँ।
3: हमारे प्रधानमंत्री मोदी ने भी हाल में ड्रग्स फ्री इंडिया कैंपेन की बात कही। मन में ठान लें और सही तरीके से कोशिश करें तो ऐसी किसी भी लत से छुटकारा पाया जा सकता है।
2: अच्छा
3: शराब सिगरेट ड्रग्स

0: शख्स गुटखा आदि का सेवन जीवन को नष्ट कर देता है। जीवन में कभी भी निराश नहीं होना चाहिए और अपने आप को नशे की लत की ओर नहीं ढकेलना चाहिए। नशा एक ऐसी चीज है जो किसी को लग जाए तो वह उस मनुष्य को घुन की तरह चाट जाती है।
1: बिल्कुल सही कहीं प्राची बहनी कि नशा जो न ऐसा चीज होता कि अगर जेकरे जनबर लग जाए तो समझ ले कि ओकर घर द्वार खेती बाड़ी किसानी सब कुछ खत्म हो जात है और वो जौन बा आदमी सड़क पर आ जात है।
0: जो बहुत ज़्यादा अपने आप को नशे में डुबो देते हैं उन्हीं का जीवन ज़्यादा ही कष्टमयी हो जाता है और शारीरिक और मानसिक रूप से भी। नशा हमारे शरीर को अंदर से खोखला बना देता है। नशा को रोकने के लिए उसको धीरे धीरे छुड़ाया जाता है।
1: अच्छा।
0: न कि एक बारगी।
1: बिल्कुल सही कहें कि अगर आदमी के जिसे कोनो नशा बटे हैं तो अगर हम वो आदमी के एकाएक अगर नशा छोड़ाऊ तो वो आदमी बीमार हो जाए, वो जौन बा बहुत सोचे लगे। तो अगर हमके कोनो आदमी का नशा छोड़ावे के बा तो हमके धीरे धीरे धीरे धीरे ऊपर पहल करे के पड़े, तभी जौन बा ओकर नशा जौन बा छूटे।
0: वह एक बार की, क्योंकि अगर मनुष्य किसी भी नशे का आदि है तो वह पहली बार में तो नहीं छोड़ पाएगा, लेकिन जब तक लोगों को इसके बुरे होने की बात समझ में आती है तब तक तो काफ़ी देर हो चुकी होती है। अनेकों प्रकार की बीमारियां भी घेर लेती हैं और आर्थिक समस्याओं से वह घिर जाता है।
1: अच्छा।
0: तो नशे की लत के कारण अपने आप को कमजोर भी समझने के कारण वो कुछ करता भी नहीं। आर्थिक स्थिति उसके यहाँ की बहुत दयनीय हो जाती है।
1: भाई दयनीय काहे के ना हो, दयनीय इसलिए हो बहनी कि जब आदमी नशा करता और ऊ जौन बा चार पैसा कमाता है और वो में चार पैसा बचावे के जगह जौन बा ऊ पैसा जौन बा ऊ जाए के अपने नशा पत्ती का सामान खरीद लेता है, तो निश्चित बाटे कि जब वो नशा पत्ती करे तो परिवार में एक पैसा न बचा पाए तो परिवार तो गर्त में जावे करे।
0: नशे की लत को छोड़ने के लिए सबसे पहले हमें अपने अंदर मजबूती धैर्यता लाना पड़ेगा, तभी हम इससे छुटकारा पा सकते हैं।
1: बिल्कुल सही कहें।
0: अपने आप को एक पूरी प्रक्रिया में लाना पड़ेगा कि हम कैसे मजबूत बनेंगे, और लक्ष्य ही आपको यह सहारा भी देता है। अगर आप अपने अंदर एक दृढ़ता रख लेंगे कि हमको इस नशे को छोड़ना है तो आप अपने आप इस लत की लत से दूर होते जाएंगे। अपने आपको अपने हानिकारक दुष्परिणाम को भी देखना चाहिए कि हमारा जीवन बर्बाद हो रहा है, मेरी शारीरिक और मानसिक क्षमताएं नष्ट हो रही हैं।
1: हाँ बिल्कुल सही कहें बहनी, उनका शारीरिक और मानसिक माने वो हर चीज हर तरह से जौन बा वो आदमी टूटाता है और उनके साथे साथे उनका परिवार भी जौन बटे एकदम गर्त में चला जाता है। काहे कि देखा प्राची बहनी, जौन हमारे घर एक मनई कमाता है वो परिवार चलावे के लिए अगर वो नशा पत्ती करे लगी और चार पैसा ना बचा पाई तो समझो परिवार तो हमारे जौन बा एकदम कगार पे पहुंच जाए ना।
0: जब शारीरिक रूप से कमजोर महसूस हो जाएगा तो वो आदमी स्वयं ही अपने आप को बीमार महसूस करता है और वो अपना परिवार भी नहीं चला पाता, कोई काम भी नहीं कर पाता है। तो सबसे पहले तो धीरे धीरे उसको नशे की लत को छोड़ना पड़ेगा और नशे के कारण उसके परिवार को कोई अच्छे ढंग से देखता नहीं है।
1: अच्छा।
0: इसलिए उसे अपने परिवार को अगर सुरक्षित रखना है तो नशे की लत से छुटकारा लेना पड़ेगा।
1: बिल्कुल सही कहें बहनी कि अगर उनके अपने परिवार के सुरक्षित रखे के बाटे तो उनके जौन बा नशा जौन बा त्याग के पड़े। ये तो बात बिल्कुल बहनी प्राची बहनी आप सही कही हैं।
0: आजकल तो हमारे गांव में भी लोग नशा बहुत अधिक करते हैं क्योंकि उन्हें अपना भला बुरा समझने में नहीं आता। इसलिए सबसे पहले हमें गांव में भी जाकर एक एक परिवार को नशे के बारे में बताना पड़ेगा। जो आप घर में शराब ताड़ी गांजा भांग आदि का सेवन करते हैं उससे आपकी सेहत बुरी तरह से प्रभावित हो जाती है।
1: बिल्कुल सही कहते हैं कि भाई जब देखा शराब कोनो भी नशे वाली चीज प्राची बहनी बा तो उ जौन बा हमारे शरीर के माने ओके अच्छा ना करे, हमारे शरीर के नुकसान करे। तो जब जहाँ पर हमारा नुकसान होता तो ओकर हम जौन बा ओकर आदि काहे के बनी, ओके हम छोड़ दई ताकि हमारा शरीर जौन बा स्वस्थ हो सके।
0: आपकी नशे की लत से ही हमारा समाज भी विकलांग होता जा रहा है। आजकल जो बच्चे पैदा हो रहे हैं वे विकलांगता की चपेट में है।
1: अच्छा।
0: नशा आपको अंदर से कमजोर बना ही रहा है और साथ में परिवार भी शिकार हो रहा है। हम लोग समाचार पत्रों, रेडियो, टीवी और सिनेमा घरों के माध्यम से आपको बार बार चेतावनी देते हैं कि नशा करना एक बुरी चीज है, इसका सेवन करना हानिकारक है।
1: बिल्कुल सही कहा मैंने कि देखा जौन बा जे भी नशा पत्ती करा था तो वही नहीं जाना था कि हाँ ये जौन हम शराब खरीदत है ये जौन बा सही बा कि नहीं। उनमें देखा आदमी भाई आदमी के अपन कारोबार चलावे के बटे तो वो कुछ भी मिलाए के भेजे, लेकिन तुह के पिए के अगर लत लगी बा तो तू ही न देखबा कि वो शराब सही बाटे कि वो गलत बाटे, तू पीबा तो ओकर सेवन करे से तुहार नुकसान ही बाटे।

0: अपना प्राकृतिक वातावरण शराब या नशा करने वाला नहीं है, कुछ लोग सेवन करते हैं दवा के रूप में या सर्दी न लगे इसके लिए प्रयोग किया जाता है। आर्थिक संकट को भी समझना चाहिए कि हमारा घर कैसे चलेगा अगर हम बहुत ज्यादा नशा करने लगेंगे। देश में नशाबंदी से बहुत से लाभ भी हो सकते हैं और हमारा चारित्रिक पतन भी होने लगता है।
1: बिल्कुल सही कहा।
0: कानून भी जो है हमें देश में नशा करने के लिए नहीं कहता है, सभी जगह पर ये लिखा होता है अगर हम नशा करते हैं तो ये हमारे शरीर को हानि पहुंचाएगा और हजारों घर उजाड़ देते हैं नशे ही।
1: अच्छा अच्छा, माने अगर हम शराब के नशे की लत के अगर हम छोड़ दे तो जान ले कि हम जौन बा बहुत ज्यादा सुखी हो जाबे। हाँ बहनी और बताएं।
0: आज हम आपको नशा छोड़ने के संबंधित एक अचूक उपाय भी बता रहे हैं।
1: क्या बताओ बहनी?
0: कि यह एक प्रकार की दवा होती है जो हर तरह नशा छुड़ाने में सहायक होती है।
1: क्या होता?
0: जैसे शराब, गुटखा, तंबाकू आदि किसी तरह के नशे से छुटकारा पाया जाता है तो क्या होता है कि अदरक जो होता है उसके छोटे छोटे टुकड़े कर लीजिए।
1: अच्छा।
0: और उसमें सेंधा नमक डालें और साथ में नींबू निचोड़ दें।
1: अच्छा।
0: और अंत में टुकड़ों को धूप में सूखने के लिए रख दें। और जब टुकड़े सूख जाते हैं तो उन्हें डिब्बे में रख लें।
1: अच्छा।
0: और जब नशे की लत लगे तो उसको उसी टुकड़े को एक मुंह में रख लीजिए और चूसते रहिए।
1: अच्छा।
0: अदरक मुंह में सुबह से शाम तक रख सकते हैं क्योंकि यही अदरक मुंह में घुलती नहीं है।
1: अच्छा।
0: इसका प्रयोग करने से दूसरे हम नशे की तरफ भी मन नहीं करेगा कि हम जाएं। नशा युक्त पदार्थों में भारी मात्रा में सल्फर पाया जाता है।
1: अच्छा।
0: और अदरक से बनी हुई बनी यह दवा भी सल्फर युक्त होती है।
1: अच्छा।
0: इसीलिए जैसे ही शरीर को सल्फर की मात्रा मिल जाएगी तो किसी अन्य नशे की ओर देखने का मन भी नहीं करेगा।
1: अच्छा।
0: जब भी आपका शराब पीने का मन करे तो किशमिश का दाना चूसने लगे।
1: अच्छा।
0: ऐसा करने से भी दिमाग को भी ताकत मिलती है और शराब पीने की लत छूटने लगती है।
1: अच्छा।
0: सल्फ्यूरिक एसिड से 2-3 बूंदे शराब के गिलास में डाल दें तो धीरे धीरे शराब की लत छूटती जाएगी।
1: अच्छा।
0: शिमला मिर्च का जूस निकाल करके सुबह शाम भोजन के बाद लें, धीरे धीरे नशे की लत दूर हो जाएगी।
1: अच्छा।
0: हमारी सरकार ने नशाबंदी कानून भी बनाए हैं और जगह जगह पर नशा मुक्ति केंद्र खोल रखे हैं।
1: हाँ हाँ।
0: वहाँ पर लोगों को यह बताया जाता है कि आप जो नशा करते हैं उससे आपके कितना हानिकारक है, कितना इसका दुष्परिणाम होता है। इससे हमारा परिवार ही नहीं, समाज और राष्ट्र सभी को नुकसान होता है।
1: बिल्कुल सही कहें प्राची बहने कि अगर आदमी नशा कर रहता है तो उसे जौन बा हमार समाज, हमार देश, हमार सब माने कहे के मतलब कि हर जगह जौन बा नुकसान ही नुकसान बाटे। तो देखा प्राची बहनी, आप हमारे कार्यक्रम में आईन और नशा के से संबंधित इतनी अच्छी अच्छी जानकारी दीन, एक लिए आपके बहुत बहुत धन्यवाद।
2: देखा सरस्वती बहनी, रीता रानी बहनी से कितनी अच्छी बातचीत प्राची मालवीय बहनी करीन। देखा इतनी नेक नेक जानकारी देने कि सच में एक घर बनावे के बदे कितना जिम्मेदारी, कितनी मेहनत लग जाते, मुला बिगाड़े के बदे एक समय नहीं लगत।
3: बिल्कुल सही कहा तू। और देखा इतनी अच्छी बातचीत सुने के बाद तो हर मन करत हुई अब कुछ गवनाई सुने के का है ना।
2: हाँ
3: तो चला तो का एक ठे आस्था सिंह बहनी से 12 मासा सुनवाई दे थी। सखीरी कौने बनवा डोले मनवा,
2: चला सुन लीन जाए।

0: गुंजा बतावा कौने बनवा।
1: देखा वे नहीं कुल गौन है तो मन के एकदम खुशी देत बाटे। मुला हमरा जो है कुछ भिनी भिनी सी खुशबू आवत
0: अच्छा, तुहार इशारा हम
1: हाँ।
0: समझ गए ही।
1: तो
0: देखा
1: सखी
0: तू,
1: हो तो समझियो तो है।
0: हाँ अब तू तो का हम बढ़िया बढ़िया गाना सुनवाए देती ना, तो तू खुशी के मारे जो ना और पागल हो जा तू। चल अब तो के खुशबू आवत है, तो हम का करी, हमें तो हर बात माने के पड़बई करी। चला।

0: जौन चीज के खुशबू आवत ही ओकरे बारे में बताई। तो हम आज लेके आई ही तोहरे बदे और अपनी सब बहनी हरे बदे पालक का निमोना।
1: अच्छा बहनी,
0: अच्छा ये बताओ तोहका बनावे आवत है पालक का निमोना कि नहीं गुंजा?
1: देखा सरस्वती बहनी, आज तू बताबू तो हम जान जब और बहनी हरे भी जान दी तो जो तू लाए हो पकवान ओका जल्दी जल्दी बतावा।
0: हाँ हम तो का जल्दी जल्दी बतावा थे। तो देखा पहले सब बहनी रे सामग्री लिख ले। पालक दुई गड्डी ले ले, आलू एक चाहे दुई ठे ले ले, टमाटर एक ठे ले ले और अदरक का एक छोटा सा टुकड़ा ले ले, हरी मिर्च ले ले दुई ठे, जीरा आधा चम्मच, हींग एक चुटकी, हल्दी आधा चम्मच, लाल मिर्च जौन हिसाब से पसंद हो वो हिसाब से ले ले और नमक भी अपने स्वाद के अनुसार, और 2 बड़ा चम्मच तेल ले ले। हाँ और सबसे पहले देखा जौन पालक है दुगड्डी ओका अच्छे तरह से धो ले 3-4 पानी से, है ना। और
1: कैसे देखा बनी सरस्वती, जब हम सभी पालक लाए थे तो कब को जड़े में धूल गर्दा माटी लगा रहा था,
0: बिल्कुल लगा रहा था,
1: अच्छे से धो ले बढ़िया से पानी ओके रिस जाए तब बहनी ओके कटाई करें चाहे पिसाई करें।
0: अब देखा ओका धो लिए है हम सब है, अब जो है ओका मोटा मोटा काटे है ना, कौन सब्जी नहीं बनावे के की पातर पातर काटे की जरूरत है, एक पीस ही के बाद तो का जरूरत है इतना मेहनत करे के, मोटा मोटा टुकड़ा ओकर काट ले और ओका फिर पीस ले, बस ध्यान रखेंगे बहुत महीन नहीं पीसे के बाद।
1: देखा सरस्वती उम्मीद हो सके तो पानी ना डाला, काहे से कि वो खुद पानी
0: पानी रहा थे,
1: और पतला हो जी भाई नहीं तो कुल
0: जब देखा वो ओका धोवात है ना तो कुछ पानी वही में फंसा रह जाते, बस वो तो नहीं पानी पर्याप्त है, और अगर पीसत के लगे कि पीसे में दिक्कत हो तो थोड़ा बहुत पानी डाल दें अपने हिसाब से, है ना। और फिर ओका मतलब बहुत महीन ना आए पीसे के बाद, है ना। फिर ओकरे बाद में अपने कड़ाही का गरम करें, ओ माँ जौन 2 चम्मच तेल बताई ही ओका डाल दें और तेल का गरम कर लें। हाँ अब जौन तू आलू तो का कह रही है 1-2 आलू ले ला, हाँ अपने हिसाब से वो आलू के काट ला, काट के वही तेलवा में आलू का भून ला।
1: अच्छा।
0: अब आलू तो हर भुनाएगा, अब ओमा का करा 2 मिनट तक तू आलू के भूनबू।
1: अच्छा
0: अब ओमा तू अपन जौन अदरक है ओका कूच के डाल ला, अपने टमाटर के बारीक बारीक जौन काट के रखे हो ओका डाल ला, हरी मिर्ची चौर तोहार जौन रही दूठे ओका डाल ला, है ना, एका सबका डाल के भूना।
1: अच्छा।
0: और फिर धीरे धीरे ओमा हल्दी डाला, धनिया का पाउडर डाल दा,
1: रोजमर्रा के जौन मसाला हम सब डाला, हाँ, बेसिक ओका डाल,
0: ओका डाल के सबका अच्छे से भून ला 1-2 मिनट तक। अब जौन तोहार पीसा हुआ पालक है अब ओका डाल दा,
1: अच्छा
0: पीसा हुआ पालक डाल के 4-5 मिनट तक ओका अच्छी तरह से भूना। फिर जब अगर तोहका लगे कि थोड़ा सा पानी डाल दे, काहे उमे आलू भी बा, है ना, आलू अच्छा। पकाए बदे कुछ चाहिए ना,
1: बिल्कुल
0: हाँ, तो थोड़ा सा पानी डाल दे, आँच के धीमा कर,
1: हाँ तो नीचे नीचे लपटे लगा
0: था, हाँ
1: तो एकरे बदे थोड़ा सा पानी डाल दे,
0: हाँ हाँ बिल्कुल
1: गले जाए,
0: हाँ आलू या गले बदे पानी डाल के फिर ओका ढक्कन लगाए देबू और आँच के धीम कह दा। अब थोड़ी देर में तोहार 4-5 मिनट में अलुइयो एकदम पक जाए और जो पालक भी तोहार तोहार है गाढ़ा हो जाए, है ना।
1: जब सब्जी तोहार बन जाए तो पालक तो जब पालक से थोड़ा थोड़ा तेल छोड़ाए लगा तो बहनी,
0: हाँ
1: बोले बढ़िया ओके देखे में भी सुंदर लगा,
0: और उसे समझ में आ जाती कि देखा अब हमार पालक भुनाए गए अच्छे से पक गया है ना। अब जब हम सब खाब तो कसैला कसैलापन न आए,
1: हाँ सोंदा सोंदापन आए,
0: हाँ
1: के अच्छे से भुनाए जाए।
0: तो बस देखा अब तोहार पालक का निमोना हो गया तैयार। अब ओका उतार ला,
1: हाँ।
0: ओमा घी डाल के
1: अच्छा।
0: बढ़िया से चावल के साथ खाए,
1: हाँ।
0: बहुत अच्छा लगा था, और चाहे तो तू पराठा रोटी के साथ भी अच्छा। खाए सकत हो।
1: देखा
0: अब तो तू काल बनाई भुना गुंजा,
1: बिल्कुल बहनी देखा तू बतावत रहो कुले हम सब सामग्री नोट करत रहे, और जानत हो आमार गदेला तो शौकीन है मुला पालक के नहीं,
0: अच्छा।
1: तो लेकिन अभी जैसे तू विधि बताया ऐसे बनाओ तो हमार गदेला जरूर खाए, मुला तू इतनी बढ़िया बढ़िया बताए, हाँ अब सोचा था कि अपनी बहनी हरेन का एक ठीक बढ़िया से गौनाई सुनाए दी फिल्म मिलन से, तो है सवरिया चला सुन लीन जाए बहनी हरेन सुनाए।

0: गुंजा,
1: हाँ
0: चला एक ठे महत्वपूर्ण ईमेल संदेश सुन लिन जाए
1: हाँ
0: तो उन बहनियरन के पता लग जाए कि हम तक अपने बात के कैसे पहुंचावे का है।
1: बिल्कुल।
2: पनघट जहाँ बातन में होत है अपनेपन का मिठास, माटी की खुशबू और दिल से दिल का जुड़ाव, जहाँ मिलके हम हंसी थे, बोली थे और आपन सुख दुख बांटी थे, ये हम सब का आपस में जोड़े के एक अदृश्य डोर है। बहनी हरिन, हमें बहुत खुशी हुए अगर आपो पनघट का हिस्सा बनी है।
3: तो हमका जरूर बतावें कि आप सबके हमारे कार्यक्रम कैसन लागत है, कौन बात आपका ज्यादा पसंद आवत थी और इमा आप नवा का जोड़े चाहत थी। आपन प्यारी प्यारी प्रतिक्रिया और सुझाव हमका ईमेल संदेश और व्हाट्सएप के जरिए भेजे।
4: हमार ईमेल एड्रेस है
5: pangatprogram@gmail.com।
1: तो दिखा बहनी चले बेला होती है बहनी हरे से राम राम की जाए। राम राम बहनी
0: राम राम बहनी हरे।

0: पन्नर कार्यक्रम समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का इलाहाबाद केंद्र है। 2 बजने वाले हैं अब समाचार होंगे हमारे दिल्ली केंद्र से।
1: गुड आफ्टरनून, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम वल्सा विलियम्स विद द मिड डे न्यूज। The headlines. Disruption continues in Parliament amid opposition uproar on several issues. Both houses adjourned till 2 p.m. Supreme Court clarifies immediate FIR must be registered for every missing person, irrespective of age or gender. 9 people killed in overnight Russian airstrikes across Ukraine. IMD issues alert for heavy to very heavy rainfall in parts of Himachal Pradesh for today and in Odisha for next

0: अब समाचार विस्तार से। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही, विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई समेत कई मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित करनी पड़ी। दिन में 11 बजे जब लोकसभा की कार्यवाही शुरू हुई तो अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रश्नकाल शुरू करने का प्रयास किया, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई का मुद्दा उठाया। विपक्ष के सदस्य संबंध में गृहमंत्री अमित शाह के बयान की मांग कर रहे थे। श्री बिरला ने विपक्षी सदस्यों से सदन के सुचारू संचालन में सहयोग करने की अपील की।
1: सदन में चर्चा हो, प्रश्नकाल हो और महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा होना चाहिए। ये विधेयक देश और राष्ट्र के साथ बहुत बड़े परिवर्तन लाने के विधेयक होते हैं, इस पे अच्छी चर्चा संवाद होना चाहिए। लेकिन कल बीएससी की मीटिंग में भी आग्रह किया, आज फिर आग्रह कर रहा हूँ कि जिस विषय पर आप छात्रों के विषय पर मांग कर रहे थे, सरकार संसदीय कार्य मंत्री ने कल बीएससी की बैठक में स्पष्ट रूप से कहा कि गृह मंत्री इस बात पर जवाब देने को तैयार हैं, सदन चलना चाहिए।
0: राज्यसभा में भी ऐसी स्थिति देखने को मिली। दिन में 11 बजे सदन की कार्यवाही शुरू होने पर मंत्रियों ने अपने अपने मंत्रालयों के दस्तावेज सदन के पटल पर रखे। विपक्ष के हंगामे के बीच सभापति सीपी राधाकृष्णन ने शून्यकाल शुरू किया, लेकिन केवल बीजेडी के डॉ. संतृप्त मिश्रा ने ही सार्वजनिक महत्व के मुद्दे उठाए। विपक्ष के हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित करनी पड़ी। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही इस समय जारी है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए ने आज संसद परिसर में झारखंड में छात्रों के खिलाफ पुलिस की कथित कार्रवाई के विरोध में मार्च निकाला। सांसदों ने आरोप लगाया कि सरकार के इस आश्वासन के बावजूद कि गृह मंत्री अमित शाह छात्र विरोध प्रदर्शनों पर प्रतिक्रिया देने के तैयार हैं, विपक्ष चर्चा से बच रहा है। केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने विपक्ष पर जानबूझकर संसद का कामकाज बाधित करने का आरोप लगाया।
2: पेपर लीक को लेकर भी जो तमाम बातें हुई, सरकार ने हर मांग को स्वीकार किया, एक नया कड़ा कानून बनाया। गृह मंत्री जी के वक्तव्य को लेकर लगातार ये मांग करते रहे हैं और हमारी सरकार ने स्पष्ट किया है। माननीय गृह मंत्री जी सदन के अंदर अपने चर्चा भी करना चाहते हैं, अपनी बात भी रखना चाहते हैं, लेकिन ये सुनने के लिए तैयार नहीं है, चर्चा में भाग लेने के लिए तैयार नहीं है। इनका एक ही मकसद है कि सदन को बाधित करना है।
0: केंद्रीय मंत्री और रांची से भाजपा सांसद संजय सेठ ने संसद परिसर में आकाशवाणी समाचार से बातचीत में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर असंवेदनशीलता का आरोप लगाया।
3: जो दमनकारी नीति, जो बर्बरता झारखंड की पुलिस ने किया, जो बर्बरता हेमंत सोरेन के निर्देश पे हुआ, दिन में लाठी चलाई, रात में बेटियों को पीटा गया, कितना कोई असंवेदनशील हो सकता है। मुख्यमंत्री ट्वीट कर रहे हैं, बधाई दे रहे हैं किसको, झारखंड पुलिस को बधाई दे रहे हैं, जिला प्रशासन रांची को कि आपने बहुत शांतिपूर्वक बहुत धैर्य से काम लिया।
0: नई दिल्ली में आकाशवाणी से बातचीत में भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर संसदीय कार्यवाही में बाधा डालने, चर्चाओं का रुख बदलने और दोहरा राजनीतिक रवैया अपनाने का आरोप लगाया। नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए राज्यसभा सांसद और भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने दावा किया कि कांग्रेस चर्चा नहीं चाहती और अपनी मांगे बदल रही है। कांग्रेस सांसद पवन खेड़ा ने कहा है कि विपक्ष लगातार गृहमंत्री अमित शाह से प्रदर्शनकारी छात्रों के खिलाफ पुलिस की कथित कार्रवाई पर बयान की मांग कर रहा है। श्री खेड़ा ने आरोप लगाया कि गृहमंत्री इस मामले पर बयान देने से बच रहे हैं।
4: सदन में फिर से हमारी मांग वही रही, गृहमंत्री आए, चंदा चोरी जो छात्रों पर अत्याचार हुआ वो उन सब पे बयान दें, प्रधानमंत्री आकर माफी मांगे। लगातार विपक्ष यह मांग पिछले 17-18 दिन से कर रहा है, लेकिन गृह मंत्री किसी वजह से डरे हुए हैं।
0: उधर झारखंड में जेपीएससी जेएसएससी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर राजनीति तेज हो गई है। इस मुद्दे पर हंगामे के कारण विधानसभा की कार्यवाही भी बाधित हुई है। एक रिपोर्ट।
5: झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षा विवाद को लेकर सियासी घमासान तेज हो गया है। परीक्षाओं में सुधार की मांग को लेकर अभ्यर्थियों का आंदोलन आज 18वें दिन भी जारी है। कल विधानसभा घेराव के दौरान हुए लाठीचार्ज और झड़प के बाद छात्र नेताओं ने आंदोलन और तेज करने का ऐलान किया है। छात्रों पर लाठीचार्ज के विरोध में भाजपा का झारखंड बंद आज रांची समेत कई इलाकों में प्रभावी रहा। प्रमुख बाजारों में प्रतिष्ठान बंद रहे और यातायात प्रभावित हुआ। राजधानी में पुलिस गश्त भी बढ़ा दी गई है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने सरकार पर युवाओं के साथ अन्याय का आरोप लगाया है। इधर झामुमो नेता मनोज पांडे ने छात्रों पर लाठीचार्ज से

0: इनकार करते हुए कहा कि पुलिस ने आत्मरक्षा में न्यूनतम बल का इस्तेमाल किया। उन्होंने भाजपा पर छात्रों के मुद्दे का राजनीतिकरण करने का आरोप लगाया। उधर विधानसभा के मानसून सत्र के चौथे दिन भी ये मुद्दा छाया रहा। सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायकों की नारेबाजी और हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही बार बार स्थगित करनी पड़ी। महवेश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
1: गृहमंत्री अमित शाह आज लोकसभा में केयर नाम परिवर्तन विधेयक 2026 और राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक 2026 पेश करेंगे। राज्यसभा में न्यायाधिकरण सुधार विधेयक 2026 विचार विमर्श और पारित करने के लिए पेश किया गया। लोकसभा पहले ही इसे पारित कर चुकी है। विधि और न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने विधेयक प्रस्तुत किया। इस विधेयक का उद्देश्य विभिन्न न्यायाधिकरणों के अध्यक्षों और सदस्यों की योग्यता, नियुक्ति और सेवा में दक्षता सुधार, स्वतंत्रता, पारदर्शिता और एकरूपता सुनिश्चित करना है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए संसदीय दल की साप्ताहिक मंगल मिलन बैठक आज नई दिल्ली के संसद भवन परिसर में हुई। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन और अन्य नेताओं ने तिरंगा लहराया। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsoneair.gov.in पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि गुमशुदा व्यक्तियों की उम्र या लिंग चाहे जो हो उसकी गुमशुदगी पर तुरंत प्राथमिकी दर्ज करना अनिवार्य है। न्यायमूर्ति एहसानुद्दीन अमानुल्ला और न्यायमूर्ति आर महादेवन की पीठ ने इसका पालन न करने वाले राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को यह निर्देश दिया है। एक रिपोर्ट।
2: शीर्ष न्यायालय ने इसका अनुपालन न करने वाले राज्यों के मुख्य सचिवों और पुलिस प्रमुखों को अदालत के समक्ष पेश होकर ये बताने का निर्देश दिया है कि उनके खिलाफ अवमानना की कार्रवाई क्यों नहीं शुरू की जानी चाहिए। मामले की अगली सुनवाई 5 अक्टूबर को होगी। न्यायालय ने इससे पहले पुलिस को सभी गुमशुदा व्यक्तियों के मामलों में बिना किसी प्रारंभिक जाँच के तुरंत प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया था। अदालत ने गुमशुदा बच्चों का पता लगाने और उनकी सुरक्षा के लिए भी उपाय लागू किए थे। समाचार कक्ष से मैं कुमार बल।
1: सर्वोच्च न्यायालय ने आज निर्वाचन आयोग से पश्चिम बंगाल की मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के दौरान मतदाताओं के नाम हटाए जाने से संबंधित याचिकाओं पर सुनवाई की। न्यायालय ने नियुक्त न्यायाधिकरणों द्वारा निपटाई गई अपीलों का विवरण देने को कहा। अगली सुनवाई 25 अगस्त को होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकारी ई मार्केटप्लेस जेम व्यापक भागीदारी, पारदर्शी खरीद और बेहतर अवसरों के माध्यम से सार्वजनिक खरीद प्रक्रिया में बदलाव ला रहा है। श्री मोदी ने ये बात वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल द्वारा जेम के 10 वर्ष पर लिखे गए एक लेख को साझा करते हुए कही। शहरी विकास विभाग के सचिव सत्येंद्र सिंह ने कहा है कि किफायती आवास व्यवस्था को योजना आधारित दृष्टिकोण से विकसित करके एक सतत व्यवस्था में बदलना होगा, जिसमें स्वामित्व और किराए सहित आवास के लिए विभिन्न विकल्प हों। नई दिल्ली में आज आयोजित किफायती आवास की पुनर्कल्पना योजना से सतत व्यवस्था तक विषय पर राष्ट्रीय सम्मेलन में उन्होंने ये बात कही। इस अवसर पर नीति आयोग के सदस्य राजीव गौबा ने कहा कि आवास को एक अलग कल्याणकारी उपाय के बजाय शहरी नियोजन और आर्थिक विकास के अभिन्न अंग के रूप में देखा जाना चाहिए। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय तथा उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग DPIIT ने भारत के GI टैग प्राप्त उत्पादन के व्यवसायीकरण और वैश्विक बाजारों तक उनकी पहुंच को गति देने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इसका उद्देश्य GI उत्पादों की गुणवत्ता मानकीकरण, व्यापक बाजार पहुंच और डिजिटाइजेशन को बढ़ावा देना और एक जिला एक उत्पाद तंत्र को मजबूत करना है। सरकार ने कहा है कि फरवरी 2024 में शुरू हुई प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से अब तक 5 लाख से अधिक परिवारों को लाभ मिला है। आज लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने ये बात कही। सरकार ने कहा है कि मौसम विभाग के समन्वय से मानसून की बदलती स्थिति और अलिनो के कृषि पर पड़ने वाले संभावित प्रभावों की लगातार निगरानी की जा रही है। कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री रामनाथ ठाकुर ने आज लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में ये बात कही। झारखंड में राज्य पुलिस ने पश्चिम सिंहभूम जिले के सारंडा, कोल्हान और पोराहट वन प्रभागों को पूर्णतः नक्सल मुक्त घोषित कर दिया है। उप महानिरीक्षक अनुरंजन किस्पोट्टा ने बताया कि पिछले एक वर्ष में 52 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है।

0: स्वतंत्रता दिवस से पहले राष्ट्रव्यापी अभियान हर घर तिरंगा के अंतर्गत पंजाब में तिरंगा यात्रा निकाली गई। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस यात्रा में सैकड़ों युवाओं ने भाग लिया।
1: पंजाब भाजपा प्रधान केवल सिंह ढिल्लों की अगुवाई में कल शाम रोपड़ जिले में सैकड़ों युवाओं ने हाथ में तिरंगा लेकर देशभक्ति और राष्ट्रीय एकता का संदेश दिया। श्री ढिल्लों ने कहा कि पंजाब का इतिहास देश की आजादी के लिए दिए गए अनगिनत बलिदानों से भरा हुआ है। उन्होंने कहा कि तिरंगा यात्रा युवा पीढ़ी में देशभक्ति की भावना जगा रही है, राष्ट्रीय एकता को मजबूत कर रही है और आजादी की लड़ाई के दौरान सबसे बड़ी कुर्बानी देने वाले महान शहीदों को याद कर रही है। चंडीगढ़ प्रशासन ने हर घर तिरंगा वंदे मातरम के 150 वर्ष कैंपेन के तहत एक सांस्कृतिक प्रोग्राम आयोजित किया। आकाशवाणी समाचार के लिए जलंधर से मैं राजेश बाली।
0: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता और अन्य विधायकों ने दिल्ली विधानसभा परिसर में तिरंगा यात्रा में हिस्सा लिया। राष्ट्र आज क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी खुदीराम बोस के 119वें बलिदान दिवस पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। बंगाल के क्रांतिकारी खुदीराम बोस को सबसे पहले 1908 में आज ही के दिन अंग्रेजों ने फांसी दी थी। इस युवा क्रांतिकारी के सर्वोच्च बलिदान को श्रद्धांजलि देने के लिए देश भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने ओडिशा में अगले 3 दिन के दौरान तेज बारिश और बिजली गिरने की चेतावनी जारी की है। अगले 2 दिन में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और राजस्थान में भी तेज बारिश और बिजली गिरने की संभावना व्यक्त की गई है। हिमाचल प्रदेश में मूसलाधार बारिश के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है।
2: हिमाचल प्रदेश के कुल्लू उपमंडल में आज भारी बारिश की संभावना को देखते हुए सभी शिक्षण संस्थानों को आधिकारिक तौर पर बंद रखा गया है। राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र की रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश में भूस्खलन और बारिश के कारण 259 सड़कों पर यातायात बंद है। इसके अलावा 161 बिजली ट्रांसफार्मर और 54 पेयजल योजनाएं भी प्रभावित हैं। मंडी कुल्लू राष्ट्रीय राजमार्ग 21 झलोगी के पास शूटिंग स्टोन गिरने से अवरुद्ध है। इस बीच मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने प्रदेश के 5 जिलों शिमला, सिरमौर, कांगड़ा, हमीरपुर मंडी में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट, जबकि 4 अन्य जिलों चंबा, कुल्लू, सोलन और बिलासपुर में भारी वर्षा का येलो अलर्ट जारी किया है। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला।
0: यूक्रेन में रूस के हमलों में 9 लोगों की मौत और कई लोगों के घायल होने की खबर है। क्षेत्रीय गवर्नर इवान फेडोरोव ने बताया कि ज़ापोरिज़्या में 6 लोग मारे गए और 19 घायल हुए। निप्रो पेत्रोवस्क क्षेत्र में 3 लोग मारे गए और 5 घायल हुए। कीव में भी हमला हुआ है। विश्व की पूर्व नंबर 1 खिलाड़ी इगा स्वियातेक कनाडा ओपन टेनिस टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। स्वियातेक ने रूस की डायना श्नाइडर को पराजित किया। 6 बार की ग्रैंड स्लैम विजेता स्वियातेक का सामना यूक्रेन की 9वीं वरीयता प्राप्त एलिना स्वितोलिना से होगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही कई मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण बाधित। लोकसभा की कार्यवाही दिनभर के लिए स्थगित। सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया, हर लापता व्यक्ति के संबंध में तत्काल प्राथमिकी दर्ज होना जरूरी, चाहे उसकी उम्र या लिंग कुछ भी हो। यूक्रेन में रात भर हुए रूस के हवाई हमलों में 9 लोगों की मौत। मौसम विभाग ने आज हिमाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों और ओडिशा में अगले 3 दिन के लिए तेज बारिश की चेतावनी जारी की और कनाडा ओपन टेनिस प्रतियोगिता में पोलैंड की इगा स्वियातेक ने रूस की डायना श्नाइडर को हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्स, FM 100.3 मेगाहर्ट्स और न्यूज आने IR ऐप पर। प्रस्तुत है NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम

0: उमंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग, उमंग।
2: सभी श्रोता मित्रों को विमलेश का नमस्कार। स्वागत है आप सबका आज के उमंग कार्यक्रम में।
3: और अजीत का भी नमस्कार और जोहार। धमधा ग्राम सुखरी कला छत्तीसगढ़ से अमित जंघेल, शकुन जंघेल, आरुषि, ओशिका आदित्य और अंजलि जंघेल जी ने सुविचार भेजा है। लिखते हैं,
2: धरती केवल हमारी नहीं आने वाली पीढ़ियों की भी अमानत है। आइए इसे स्वच्छ, हरा भरा और सुरक्षित रखने का संकल्प लें।
3: बहुत सुंदर विचार आपने भेजा, हमारा आभार कीजिए स्वीकार। आइए अब सुनते हैं श्रोताओं के नाम और उनके प्यारे प्यारे संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है गांव गणेश धाम परसुली पोस्ट खेरथा बाजार जिला बालोद छत्तीसगढ़ से जितेंद्र दास मानिकपुरी, मिलव दास, जय दास, देवेश दास, धनवंतीन बाई और मोतिम बाई मानिकपुरी जी का। लिखते हैं,
2: सर अजीत जी, मैडम विमलेश जी, सप्रेम नमस्ते जी। उमंग कार्यक्रम में कहानी न्याय की कुर्सी एवं लालच नाटक के रूप में सुनी एवं पसंद आई। कहानी शिक्षाप्रद लगी और सुखद संदेश देने में भी कामयाब हुई। ये दोनों कहानी सुनवाने के लिए आपका बहुत बहुत आभार।
3: अगला संदेश हमें मिला है गुजरात गांधीग्राम से प्रवीण सोनी और कलावती सोनी जी का।
2: कोकाबिलाई से उत्तम सिंह जंघेल, मूरज जंघेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष जंघेल और नंदिनी जंघेल के साथ इनके बच्चे।
3: बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशनलाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता और डिंपल देवांगन।
2: खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा और अंकुश अरोड़ा जी लिखते हैं,
3: सर अजीत जी, मैडम विमलेश जी, सप्रेम नमस्ते जी। उमंग कार्यक्रम में ये भी जानिए श्रृंखला में पारंपरिक मेला उत्सव पर जो जानकारी सुनाई जा रही है बेहद पसंद आ रही है। जोनबिल मेला और हॉर्नबिल मेला पर जानकारी बहुत ही अच्छी लगी। आगे आपने लिखा है,
2: आप जब मेला उत्सव पर कार्यक्रम प्रसारित कर रहे होते हैं तो हम इतने मग्न हो जाते हैं, सचमुच हम मेले में ही घूम रहे हों और मेले का आनंद ले रहे हों। मेला उत्सव पर कार्यक्रम सुनवाने के लिए सर अजीत जी, मैडम विमलेश जी एवं समस्त उमंग टीम का हम हृदय से आभार प्रकट करते हैं।
3: आप सभी श्रोताओं को उमंग कार्यक्रम की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। श्रृंखला ये भी जानिए श्रृंखला में आप सबका एक बार फिर से स्वतंत्रता दिवस के इस विशेष महीने में स्वागत है। श्रोताओं, अगले सप्ताह हम अपने देश का स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। इस विशेष सप्ताह में हम चर्चा करेंगे भारत की आजादी की लड़ाई में शामिल कुछ ऐसे लोगों की जिनकी चर्चा कम होती है।
2: आंदोलन के बड़े बड़े और मुख्य नेताओं को तो हम सभी जानते हैं, लेकिन इस सप्ताह उमंग कार्यक्रम का प्रयास रहेगा उन लोगों को सामने लाना जो बहुत ज्यादा चर्चित नहीं रहे।
3: तो करते हैं शुरुआत और आज करते हैं बात एक महान जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी बिरसा मुंडा के बारे में। तो विमलेश जी, अब आपकी बारी।
2: जी अजीत जी, बिरसा मुंडा भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी, आदिवासी जननायक और समाज सुधारक थे। उन्हें आदिवासी समाज में श्रद्धापूर्वक धरती आबा यानी धरती का पिता कहा जाता है। आबा मुंडारी और संथाली भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है पिता।
3: जी श्रोताओं, उन्होंने अंग्रेजी शासन और शोषण के विरुद्ध आदिवासी समाज को संगठित किया तथा सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक सुधारों का नेतृत्व किया। आइए अब लेते हैं जानकारी उनके प्रारंभिक जीवन की। उनका जन्म 15 नवंबर 1875 को उलीहातू नामक गांव में हुआ था जो तत्कालीन बंगाल प्रेसिडेंसी में स्थित था और अब झारखंड राज्य में है।
2: बचपन में उनका परिवार आर्थिक कठिनाइयों से जूझता रहा। उन्होंने कुछ समय तक मिशन स्कूल में शिक्षा प्राप्त की, लेकिन बाद में अपनी संस्कृति और परंपराओं के संरक्षण का संकल्प लिया। आदिवासियों की दुर्दशा देखकर उनका मन हमेशा विचलित रहता था।
3: वे चाहते थे कि उनकी दशा में सुधार हो, वे शिक्षित हों और उनका शोषण न हो।
2: जी।
3: उन्होंने एक आंदोलन शुरू किया जिसमें उन्होंने आदिवासी समाज से कहा कि वे अंधविश्वास और सामाजिक बुराइयों को छोड़ें, स्वच्छता और शिक्षा को अपनाएं,
2: नशाखोरी से दूर रहें,
3: अपनी संस्कृति और परंपराओं का सम्मान करें
2: और एकजुट होकर अपने अधिकारों की रक्षा करें।
3: जी, तो श्रोताओं, उनकी शिक्षाओं ने आदिवासी समाज में आत्मविश्वास और जागरूकता की भावना पैदा की।
2: ये वो समय था जब अंग्रेजी शासन जमींदारों और महाजनों द्वारा आदिवासियों का शोषण कर रहा था। उनकी भूमि छीनी जा रही थी और उन पर भारी कर लगाए जा रहे थे।
3: बिरसा मुंडा ने लोगों को संगठित कर एक सामूहिक विद्रोह आयोजित किया जिसे

0: उलगुलान कहा जाता है। उलगुलान शब्द का अर्थ है महाविद्रोह। यह आंदोलन केवल अंग्रेजों के विरुद्ध नहीं था बल्कि अन्याय, शोषण और भूमि अधिकारों के लिए भी था। उनका नारा था,
1: अबुआ दिसुम अबुआ राज, यानी हमारा देश हमारा शासन। यही नारा प्रसिद्ध जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी सिदो और कानू द्वारा भी दिया गया था।
0: श्रोताओ, बिरसा मुंडा के नेतृत्व में उलगुलान आंदोलन बहुत प्रभावशाली बन गया और इसके कारण अंग्रेजी हुकूमत परेशान हो गई। अंत में अंग्रेज सरकार ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। जेल में रहते हुए 9 जून सन 1900 को रांची केंद्रीय कारागार में मात्र 25 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया।
1: उनके आंदोलन का प्रभाव इतना व्यापक था कि बाद में अंग्रेजों को आदिवासियों के भूमि अधिकारों की रक्षा के लिए कानूनों में परिवर्तन करना पड़ा।
0: श्रोताओं, उनकी जन्मतिथि 15 नवंबर को पूरे देश में जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाई जाती है। उनके नाम पर अनेक विश्वविद्यालय, संस्थान, संग्रहालय और हवाई अड्डे के साथ साथ कई सरकारी योजनाएं भी संचालित होती हैं।
1: बिरसा मुंडा का जीवन हमें सिखाता है कि अन्याय के विरुद्ध साहसपूर्वक खड़े होना, अपनी संस्कृति का सम्मान करना और समाज की भलाई के लिए कार्य करना ही सच्ची देशभक्ति है। वे भारतीय इतिहास के ऐसे अमर नायक हैं जिनका संघर्ष आने वाली पीढ़ियों को सदैव प्रेरित करता रहेगा।
0: जी हाँ श्रोताओ, धरती आबा बिरसा मुंडा का जीवन स्वाभिमान, संगठन और राष्ट्र प्रेम का अद्वितीय उदाहरण है। तो अब सुनिए आज का प्रश्न। आज की ही जानकारी से हमारा आज का प्रश्न है,
1: बिरसा मुंडा द्वारा अंग्रेजों के विरुद्ध प्रारंभ किए गए विद्रोह का क्या नाम था। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
0: बिरसा मुंडा द्वारा अंग्रेजों के विरुद्ध प्रारंभ किए गए विद्रोह का क्या नाम था। 8800440559 हमारा IVRS नंबर है। आप इस पर या हमारे ईमेल पर यानी audio@cieet.nic.in पर भी अपना संदेश या प्रश्नों के उत्तर भेज सकते हैं।
1: श्रोताओ, यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकों को डाउनलोड करना चाहते हैं तो किसी भी सर्च इंजन में जाकर टाइप कीजिए NCERT बुक्स PDF। वेबसाइट में दिए गए विकल्पों और निर्देशों का पालन कीजिए और मनचाही पाठ्य पुस्तक डाउनलोड कर लीजिए।
0: और हाँ, यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकों को ऑडियो बुक्स यानी ध्वनि पुस्तकों के रूप में सुनना चाहते हैं तो टाइप कीजिए NCERT YouTube ऑफिशियल चैनल। वहाँ आपको हमारी पाठ्य पुस्तकों का ध्वनि रूपांतर उपलब्ध हो जाएगा। साथ ही साथ उमंग कार्यक्रम में प्रसारित कार्यक्रम भी आप इस चैनल पर सुन सकते हैं।
1: तो श्रोताओ, आइए अब चलते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की ओर
0: और सुनते हैं कार्यक्रम जलियांवाला बाग।
1: इस कार्यक्रम में जलियांवाला बाग के बारे में जानकारी दी गई है कि किस प्रकार यहां आजादी की लड़ाई में भाग लेने वाले असंख्य देश प्रेमियों को स्वतंत्रता की बलिवेदी पर अपने प्राणों को न्योछावर करना पड़ा और इस भीषण जनसंहार की घटना का आंदोलन पर क्या असर पड़ा।

0: ये बात उस वक्त की है जब पहले महायुद्ध में हिंदुस्तानियों ने विदेशी सरकार की तन मन धन से सहायता की और इसके बदले में भारतीयों को मिला रॉलेट बिल।
1: रॉलेट बिल ने पुलिस को बिना वारंट के लोगों को गिरफ्तार करने, नजरबंद करने और तलाशी लेने के पूरे अधिकार दे दिए। अदालतों में पैरवी करने की मनाही कर दी गई।
0: इस कानून का सीधा सा मतलब था व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अंत। 6 फरवरी 1919 को रॉलेट बिल नाम के दो बिलों को बड़ी काउंसिल में पास करने के लिए पेश किया गया। 24 फरवरी के दिन गांधी जी ने ऐलान किया कि अगर बिलों को पास कर दिया गया तो सारे देश में सत्याग्रह होगा और 30 मार्च 1919 को रॉलेट बिल के विरोध में देशव्यापी हड़ताल की योजना बनाई गई। लेकिन इस हड़ताल की तिथि बढ़ाकर 6 अप्रैल कर दी गई, पर दिल्ली खबर न पहुंचने की वजह से 30 मार्च को ही हड़ताल हुई।
1: लेकिन इसी बीच पहला बिल मार्च के तीसरे सप्ताह में पास कर दिया गया, जो रॉलेट एक्ट कहलाया।
2: मांगे पूरी करो,
3: हमारी मांगे
2: पूरी करो।
4: हमारा पहला प्रस्ताव है कि काला कानून रॉलेट एक्ट वापस लिया जाए।
2: रॉलेट एक्ट वापस।

0: पूरे देश में हड़ताल हुई। पंजाब के सभी नगरों में यह हड़ताल शांतिपूर्वक रही। 9 अप्रैल के दिन रामनवमी थी। रामनवमी के अवसर पर अमृतसर में हिंदू मुसलमानों ने जुलूस निकाला।
1: महात्मा गांधी की जय।

0: ये हिंदू मुसलमानों की कौमें एक होकर तो हमारा सरदर्द बन जाएंगी। क्यों नहीं डॉक्टर किचलू और डॉक्टर सत्यपाल को गिरफ्तार कर लिया जाए? इससे आवाम का जोश भी ठंडा पड़ जाएगा। Yes. Hey, you, come up!
1: इसी बीच गांधी जी भी पंजाब जाना चाहते थे, लेकिन उन्हें वहां पहुंचने से पहले ही पलवल स्टेशन पर गिरफ्तार कर वापस बंबई भेज दिया गया। नेताओं की गिरफ्तारी से पंजाब और ज्यादा उत्तेजित हो उठा और अमृतसर को सेना के हाथों सौंप दिया गया। सेना का सर्वे सर्वा था जनरल डायर। 11 अप्रैल को अमृतसर में जनता ने हड़ताल की और जुलूस निकाला। 12 अप्रैल को अमृतसर एक सैनिक कैंप बन गया। जनरल डायर ने हवाई जहाज से शहर का निरीक्षण किया और गली गली फौजी मार्च कराया गया।

0: तुम्हें तार के सामने नारे लगाने की ऐसी हिम्मत? जी चाहता है इन्हें गोलियों से भून डालूं। नो नो नो, मुझे इससे बेहतर मौके का इंतजार करना होगा।
1: इंतजार, जनरल डायर ने और ज्यादा इंतजार नहीं किया। 12 अप्रैल को जुलूस के नेताओं को गिरफ्तार करके उन्हें हथकड़ियां पहनाई गईं और रामबाग ले जाकर उन्हें पेड़ों से बांध दिया गया। निगरानी के लिए डायर ने गोरखों को तैनात कर दिया। दमन चक्र सख्त होता जा रहा था। तेरह अप्रैल 1919 बैसाखी का दिन था। अमृतसर में आसपास के गांव से लोग बैसाखी का त्योहार मनाने पहुंचे थे। बैसाखी के मेले में भाग लेने आए इन लोगों ने अपना डेरा जलियांवाला बाग में जमाया हुआ था। इसी बीच जनरल डायर ने यह ऐलान कराया था कि शहर में कोई मीटिंग न की जाए, लेकिन यह ऐलान सब लोगों तक पहुंचा नहीं। जलियांवाला बाग में नेताओं की रिहाई के लिए एक मीटिंग का आयोजन किया गया। बैसाखी मनाने आए लोगों ने जब मीटिंग की भीड़ देखी तो कौतूहलवश वे भी इसमें शामिल होने पहुंच गए। शाम 4:30 बजे के लगभग जलियांवाला बाग में 10,000 के करीब लोग जमा हो चुके थे, जिसमें बच्चे भी शामिल थे। वातावरण में विरोध था, तनाव अपनी चरम सीमा पर था।
2: भाइयों और बहनों, सुनिए सुनिए, भाइयों और बहनों, माताओं और बच्चों, आज की सभा में हम कुछ जरूरी प्रस्ताव रखना चाहते हैं। हमें उम्मीद है

0: के पास भेजेंगे ताकि हमारी मांगे फौरन पूरी की जा सके।
1: हमारी मांगे पूरी करो,
2: हमारी मांगे पूरी करो,
1: हमारी मांगे
2: पूरी करो।
0: हमारा पहला प्रस्ताव है कि काला कानून रोलेट एक्ट वापस लिया जाए।
2: रोलेट एक्ट
3: वापस लो,
2: रोलेट एक्ट
3: वापस लो,
2: रोलेट एक्ट
3: वापस लो।
0: ये सभा 10 अप्रैल के दिन हुए गोलीकांड की निंदा करती है और शहीदों के परिवार के साथ सहानुभूति प्रकट करती है।
1: मारो,
0: सभा सरकार से अनुरोध करती है कि डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर किचलू को फौरन रिहा किया जाए।
1: सत्यपाल को
3: रिहा करो,
1: किचलू को
3: रिहा करो,
1: सत्यपाल को
3: रिहा करो।
4: सभा चल रही थी और उधर जनरल डायर अपने सिपाहियों के साथ जलियांवाला बाग के एकमात्र दरवाजे पर आ डटा। जलियांवाला बाग के चारों ओर दीवारें थीं और केवल एक ही दरवाजा था जिससे अंदर आया जाया जा सकता था। इसी दरवाजे पर डायर के सैनिकों ने अपनी खूनी बंदूकें तान ली। लोग एकमात्र दरवाजे की ओर भागे और गोलियां उन्हें बीनती रही। कुछ लोग दीवारों पर चढ़े जिससे कि दूसरी ओर कूदा जा सके, लेकिन कोशिश बेकार रही। गोलियों की बौछारों से बचने के लिए कुछ कुएं में भी कूदे, लेकिन मौत उनका वहां भी इंतजार कर रही थी। पूरे 10 मिनट तक मौत का नंगा नाच होता रहा।
5: गोली चलाना बंद क्यों कर दिया? आई से फायर, फायर अगेन।
6: सर, सर कारतूस खत्म हो गए हैं।
5: और शट अप। ठीक, ये सबक काफी है। अबाउट टर्न, फायर।

0: मौत का दरिंदा जब दरवाजे से हटा, तब रतन देवी उस मौत के मैदान में अपनों को खोजती हुई पहुंची।
1: मासी, मासी मेरी लत सीधी कर दे, मासी, मासी, मासी मेरी लत सीधी कर दे।
2: कर दिया, कर दिया।
0: जब कोई हिंदुस्तानी किसी अंग्रेज अफसर

0: को मिले तो उसे सलाम करें, अगर घोड़े पर सवार हो तो हिंदुस्तानी अंग्रेज की शान में घोड़े से उतर जाए, अगर हिंदुस्तानी छाता लगाए हो तो नीचे झुका ले। पूरे पंजाब में मार्शल लॉ लागू कर दिया गया। पंजाब की खबरों के बाहर जाने पर रोक लगा दी गई।
1: और यही वजह थी कि जलियांवाला बाग हत्याकांड की खबर कांग्रेस के नेताओं को कई हफ्ते बाद मिली।
0: इस खबर के मिलते ही भारतीयों के मन दुख, ग्लानि और आक्रोश से भर गए। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी सर की उपाधि का त्याग कर दिया। उन्होंने कहा कि अब वो समय आ गया है कि जब सम्मान पदक शर्म पदक लग रहे हैं। डायर की मनमानी करतूतों के कारण पूरे पंजाब में विद्रोह भड़क उठा और इसी के साथ ही अंग्रेजी हुकूमत के बढ़ते दमन चक्र की वजह से कसूर, गुजरावाला और लाहौर में भी विद्रोह की आग भड़क उठी। ये सब देखते हुए अंग्रेजी हुकूमत ने जलियांवाला बाग हत्याकांड के 6 महीने बाद अक्टूबर 1919 में हंटर जांच समिति नियुक्त की, जिसको जलियांवाला बाग में हुए हत्याकांड की जांच करनी थी।
2: जनरल डार।
3: यस सर।
2: आप जब जलियांवाला बाग में पहुंचे तो आपने क्या किया?
3: मैंने गोली चलाने का हुक्म दिया।
2: क्या ये हुक्म आपने फौरन दिया?
3: यस, मैंने पहुंचते ही गोली चलाने का हुक्म दिया।
2: क्या वार्निंग नहीं दी?
3: नो, क्योंकि हमारे सुबह के ऐलान के बावजूद भी लोग जलियांवाला बाग में इकट्ठे हुए थे। उन्हें कोई भी मीटिंग करने से मना कर दिया गया था। वैसे उन्हें मेरे आने की चेतावनी तो मिल ही गई होगी।
2: फिर गोली चलाने का क्या मकसद था?
3: मेरा मकसद गोली चलाकर फीट को टिटर बिटर करना नहीं था। मैं चाहता था कि इस तरह की फायरिंग के बाद पूरे पंजाब के लोगों में कुछ ऐसा डर बैठ जाए कि दोबारा ऐसा करने की हिम्मत ही ना हो।
0: जनता को डराने धमकाने के इस शर्मनाक तरीके को हंटर जांच समिति ने दाग पर रख दिया। हंटर जांच समिति की कार्यवाही केवल इस हत्याकांड पर लीपापोती करती रही और डायर को बरी कर दिया गया।
1: लेकिन कांग्रेस ने पंजाब की घटनाओं की सही जानकारी लेने के लिए अपनी एक समिति नियुक्त की, जिसके प्रमुख सदस्य थे सर्वश्री मदन मोहन मालवीय, महात्मा गांधी, देशबंधु चितरंजन दास, मोतीलाल नेहरू, बदरुद्दीन तैयब जी और जयकर। इस समिति ने 3 महीने तक पंजाब की घटनाओं का अध्ययन किया। समिति ने पंजाब के प्रशासकों की घोर निंदा की, प्रमुख रूप से पंजाब के गवर्नर माइकल ओडायर और सेना के जनरल डायर की भर्त्सना की गई।
4: कांग्रेस का दिसंबर अधिवेशन सन 1919 में पहले से ही अमृतसर में होना निश्चित हुआ था और वहीं हुआ। इस अधिवेशन में कुछ सदस्यों ने जलियांवाला बाग के अमानवीय एवं निर्मम हत्याकांड के खिलाफ जबरदस्त आवाज उठाई।
5: हम मांग करते हैं कि जनरल डायर को अपने पद से हटा दिया जाए।
6: पंजाब के अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए।
7: अब भारतीयों का विश्वास वायसराय कोर्ट से उठ गया है, उन्हें अब ब्रिटिश सरकार द्वारा वापस बुला लेना चाहिए।
5: आज के इस अधिवेशन में हम संकल्प लेते हैं कि जलियांवाला बाग के शहीदों की याद हम अमर करेंगे और जलियांवाला बाग को राष्ट्रीय शहीद स्मारक बनाएंगे।

0: जलियांवाला बाग हत्याकांड में लगभग 1000 शांतिप्रिय निहत्थे एवं असहाय लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। इस हत्याकांड ने भारतीय जनमानस को स्तब्ध कर दिया और इस तरह जलियांवाला बाग हत्याकांड भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक निर्णायक मोड़ बन गया।
1: अभी आप सुन रहे

0: स्वतंत्रता संग्राम का एक निर्णायक मोड़ बन गया।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम जलियांवाला बाग।

0: दीक्षा शिक्षा की डिजिटल आधारिक संरचना, पीएम ई विद्या कार्यक्रम और आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत एनसीईआरटी शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार की एक पहल। दीक्षा, दीक्षा।
1: खत्म हुआ झगड़ा।
2: मैं नहीं सिखाता पहाड़ा।
3: माँ देखो, भैया मुझे पहाड़ा नहीं सिखा रहा।
2: मैं खेलने नहीं जाऊँ, जैसे ही मैं खेलने जाऊँगा वैसे ही पहाड़े की रट लगा देगी। मैं तो जा रहा हूँ।
3: मैं फेल हो जाऊंगी, सब हंसेंगे।
2: ये तेरा रोज रोज का नाटक। अच्छा बाबा, मैं खेलने नहीं जाता। छह एकम छह,
3: छह एकम छह,
2: छह दुनी बारह,
3: छह दुनी बारह।
4: राहुल, खेले नहीं आ रहे?
2: अरे यार, तुम लोग जाओ, मैं नहीं आ सकता। छह ती अठारह,
3: छह ती अठारह,
2: छह चौक चौक।
1: क्या ये आदर्श स्थिति है? क्या आप इसे यूं ही चलने देंगे? क्या आप बच्चों को दूसरे के हितों से अपने हितों को जोड़ना नहीं सिखाएंगे?
5: अरे मीना, तू रो क्यों रही है? और राहुल, तू खेलने नहीं गया?
2: माँ, मीना कहती है मुझे पहाड़ा सिखा।
5: तो क्या इसलिए तू खेलेगा नहीं?
2: मैं क्या करूं, क्या मीना को पहाड़ा ना सिखाऊं?
5: पहाड़ा तो जरूर सिखाओ, पर तुम्हारा खेलना भी तो जरूरी है।
2: ये कैसे होगा, मैं खेलूं भी पहाड़ा भी सिखाऊं?
5: ये तो तुम दोनों जानो, लेकिन रोना धोना झगड़ा नहीं।
1: वाह, क्या बात है! लेकिन क्या बच्चे हल निकाल पाएंगे?
3: जब भी मैं पहाड़ा सिखाने को कहती हूँ तुम खेलने चले जाते हो।
2: तू पहाड़े की बात ही तब करती है। अच्छा अब रो मत। अच्छा बता, तू किसी और समय पहाड़ा याद नहीं कर सकती? तेरा मन शाम को खेलने को नहीं करता?
3: करता है, पर पहाड़ा
2: तो ये नहीं हो सकता कि हम दोनों ही शाम को खेल लें।
3: फिर पहाड़ा कब?
2: देख, मैं रात को देर तक पढ़ता हूँ, तू जल्दी सो जाती है, तो तू जल्दी उठा भी कर, सुबह एक दो घंटे मुझसे पढ़ लिया कर।
3: तब तू कहेगा कि मैं सो रहा हूँ।
2: नहीं कहूँगा ना, मैं भी सुबह जल्दी उठा करूँगा और तुझे पहाड़ा सिखाऊंगा।
3: पक्का?
2: पक्का।
3: फिर गुस्सा तो नहीं करेगा?
2: क्यों करूँगा, तू तो मेरी छोटी बहन है।
3: हाँ सच, तो फिर मैं खेलने जाऊँ?
2: चप्पल तो पहन लो, मैं भी आ रहा हूँ।
1: कमाल है भाई, ठीक ही है, दूसरे की जरूरत को समझे बिना अपनी जरूरतें पूरी करना कहां तक ठीक है? क्या उमा देवी की तरह आप अपने बच्चों को अवसर देते हैं कि वे विवाद का ऐसा हल स्वयं निकालें जिसमें दोनों पक्षों का फायदा हो?
6: तो श्रोताओं, इसी कार्यक्रम के साथ अब हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब मुझे यानी अजीत को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम यानी कुसुम लता, जगबंधु
7: और मंजू जी के साथ विमलेश को कल तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
8: उमंग, उमंग, उमंग।
9: अभी आप एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग सुन रहे थे। प्रसारण आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से किया जा रहा था। मीडियम एफ 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़, FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ और न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर।

श्रोताओ, अपराह्न के 3 बज चुके हैं और संपन्न होती है हमारी ये सभा। शाम की सभा धरती के गीत कार्यक्रम से शुरू होगी, जिसमें हम आपको सुनवाएंगे रामबाबू यादव और साथियों के गाए लोकगीत। इस बीच हमारे विविध भारती के नेशनल नेटवर्क कार्यक्रम FM 100.3 MHz पर जारी रहेंगे।

मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलो हर्ट्स पर और एफएम 100.3 मेगा हर्ट्स पर। आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। हमारे स्टूडियो की घड़ी में 5 बजने को हैं। हमारी आज की सायंकालीन सभा आरंभ होती है। ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। सभा के आरंभ में सुनते हैं कार्यक्रम धरती के गीत। आज के कलाकार हैं राम बाबू यादव और साथी। पहले सुनते हैं इनसे देवी गीत।

राम बाबू यादव और साथियों से भी आप सुन रहे थे देवी गीत। अब आइए सुनते हैं राम बाबू यादव और साथियों से ही झूमर। कार्यक्रम है धरती के गीत।

राम बाबू यादव और साथियों के गाए इस लाचारी के साथ ही कार्यक्रम धरती के गीत अब समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलो हर्ट्स पर और FM 100.3 मेगा हर्ट्स पर।

0: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
1: युवा साथी, सुने अपना कार्यक्रम युववाणी।

0: हेलो नमस्कार आदाब सत श्री अकाल, मैं हूँ आपकी अपनी दोस्त माही
1: और मैं हूँ आपका साथी अभिषेक।
0: अभिषेक, तुमको यहाँ पे किसने बुलाया? मैं तो दोस्तों से मिलने आई हूँ, बातें करने आई हूँ, लेकिन चलो ठीक है, अगर तुम आ ही गए हो तो यू कैन ज्वाइन मी। ओके,
1: हमारे जो लिसनर्स हैं महिमा, जो हर रोज़ हमारा इंतज़ार करते हैं, और हमारा जो प्यारा सा रेडियो स्टेशन है वो, उसके साथ इतनी सारी यादें जुड़ी हैं और हमें अपने दोस्तों से बहुत सारी करनी होती है बातें, तो ये सारी चीज़ें हैं जो हमें रेडियो स्टेशन तक खींच लाती हैं।
0: पर क्या ही बातें करूँ, मैं तो बड़ी दुखी हूँ।
1: वो भला क्यों?
0: पता है मेरे दिल में इतना दर्द है, इतना दर्द है, इतना दर्द है। हाय, आजकल मैं उसका साझा भी किसी से नहीं करती हूँ, लेकिन तुम ना इतने मेरे प्यारे दोस्त हो, तुम हमेशा मेरी परेशानी सुनते हो, तो मैं सोच रही हूँ मैं अपना थोड़ा सा दुखड़ा तुम्हें आज भी सुना देती हूँ।
1: बिल्कुल
0: यार अभिषेक, पता है मैंने इतनी इतनी सारी मैंने पढ़ाई करके रखी है, मतलब मैंने ग्रेजुएशन किया है, मैंने पीजी किया है, वो भी मैंने दो दो सब्जेक्ट से पीजी किया है, है
1: अरे
0: ना।
1: वाह।
0: और सोचो मैंने जो टीचिंग, मतलब टीचर बनने के लिए जो एबिलिटी चाहिए, जो कोर्स चाहिए, मैंने वो भी करके रखा है। और मतलब मैंने अलग अलग कंप्यूटर के कोर्सेज भी किए हैं, मेरे पास तमाम डिग्री है। और ऐसा नहीं कि मेरे पास स्किल नहीं है, मेरे पास स्किल भी है। मैं देखो ना कितना अच्छा बोलती हूँ,
1: अरे बहुत
0: पढ़ाई
1: अच्छा।
0: भी अच्छा कर लेती हूँ, मैं काम भी अच्छा करती हूँ, मैं कुकिंग भी अच्छा करती हूँ। और आज के टाइम में जो स्किल होनी चाहिए कि लाइक थोड़ा सा आप स्मार्ट हो, डिजिटल मार्केटिंग की तरफ आपका एक अच्छा इन्फ्लुएंस हो, सोशल मार्केटिंग आपको आना चाहिए, तो मेरे को वो भी आता है। लेकिन मैं फिर भी ना अपना करियर नहीं डिसाइड कर पा रही हूँ, मतलब समझ नहीं पाती हूँ कि मुझे डिग्री के जरिए नौकरी चाहिए कि मुझे स्किल को डेवलप करके अपने आप को क्या करना।

0: है, ग्रो करना है. और मैं ना इन बातों में फंस जाती हूँ, तो मैं एक दिन डिसाइड करती हूँ कि अब मैं सिर्फ पढ़ूंगी, फिर दूसरे दिन मैं डिसाइड करती हूँ नहीं यार स्मार्ट होना भी जरूरी है, चलो थोड़ा सा टेक्नोलॉजी सीखते हैं. अब इन दो चीज़ों में ना मैं ऐसे ही मतलब ऐसे क्या बोलते हो सर्किल की तरह मेरी चीज़ें घूम रही हैं और मैं कहीं पर ऐसे रुक नहीं पा रही हूँ, ठहर नहीं पा रही हूँ. तो ऐसा सिर्फ मेरे ही साथ होता है या तुम्हारे साथ भी होता है?
1: महिमा, मुझे लगता है ये तुम्हारी और मेरी बात नहीं है, ये बहुत सारे युवाओं की बात है जो अपने करियर में, जो अपनी पढ़ाई के बाद इस चीज़ को महसूस करते हैं कि आखिर डिग्री और स्किल्स के बीच में क्या रिश्ता है, कि हमें आखिर डिग्री की इतनी आवश्यकता क्यों होती है, या फिर हमारे लाइफ में स्किल्स का भी उतना ही योगदान होता है. जैसे मैं कहूँ कि एक सिक्का होता है, एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, तो ठीक उसी तरह से डिग्री और स्किल्स दोनों ही हमारे लिए बहुत ज़रूरी होती हैं, क्योंकि डिग्री हमें उस काम के काबिल बनाती है, हमें योग्य बनाती है. लेकिन स्किल्स, जब हम अपने अंदर छुपे हुनर को तराशते हैं, जो भी प्रतिभा हमारे अंदर होती है, वो ये डिसाइड करता है कि आखिर हम किस फील्ड में अपना इंटरेस्ट रखते हैं और क्या कर सकते हैं. यानी कि डिग्री के साथ साथ स्किल्स का होना बहुत ज़रूरी है, तभी हम अपनी फील्ड में, अपनी लाइफ में कुछ आगे बढ़ सकते हैं, कुछ ग्रो कर सकते हैं.
0: मीन्स यू वॉन्ट टू से डैट बोथ पार्ट्स आर एसेंशियल, राइट?
1: एग्जैक्टली.
0: तो आज हम बात भी इसी के बारे में करने वाले हैं. जी हाँ, आज की थीम है, आज के दौर में नौकरी डिग्री देती है या स्किल? क्योंकि एक समय था जब हम लोग सुना करते थे और हंसी हंसी इस बात को कहा भी करते थे कि पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, लेकिन आज ये सवाल थोड़ा बदल गया है. आज सिर्फ यह पूछना काफ़ी नहीं है कि आपने क्या पढ़ा है, आज दुनिया ये पूछती है आप क्या कर सकते हैं. आपके पास डिग्री है लेकिन क्या आपके पास स्किल है? आपके पास तो क्वालिफिकेशन है लेकिन क्या आपके पास प्रॉब्लम सॉल्व करने की ट्रिक, मतलब एबिलिटी है? और सबसे बड़ा सवाल अभिषेक, क्या आज की दुनिया में सिर्फ डिग्री आपके सपनों की गारंटी है? तो इसी पे बात करेंगे आज हम आपके साथ. तो अभिषेक जी बताइए, इस सवाल का क्या है जवाब?
1: भाई जवाब ये है कि आजकल बहुत सारे हमारे युवा साथी हैं जो ये कहते हैं कि भाई हमारा आगे क्या होगा, हमारे पास ढेर सारी डिग्रीज हैं, स्किल्स हैं, लेकिन उसके बाद क्या होगा. तो साथियों, डिग्री का फ़ायदा अगर बात करें उसके फ़ायदे की, स्किल्स की, तो जो जितना ज़्यादा स्किल्स सीखेगा अपनी डिग्रियों के साथ साथ अलग अलग फील्ड में, जो अपने आप को आजमाएगा, तो भाई वो उतना ही आगे बढ़ेगा. तो क्या सच में डिग्री की एक और बात आती है कि वैल्यू ख़त्म हो गई, स्किल्स इतने ज़्यादा मायने रखती हैं कि डिग्री की वैल्यू डिवैल्यूएशन उसका हो रहा है? जवाब है नहीं. मेरे हिसाब से सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि डिग्री और स्किल्स एक दूसरे के विरोधी बिल्कुल नहीं है. महिमा, डिग्री आपको एजुकेशन देती है और स्किल्स आपको उस एजुकेशन को इस्तेमाल करने का सही रास्ता सिखाती है.
0: डिग्री आपके CV पर लिखी हो सकती है लेकिन स्किल आपके काम में दिखाई देती है. अब बात यह है कि अगर आप कहीं पे जाते हैं किसी ऑफिस में आप, तो स्किल से आप वहाँ ग्रो करेंगे, लेकिन ऑफिस तक पहुँचने के लिए आपको डिग्री की ज़रूरत होगी. यानी डिग्री दरवाज़ा खोल सकती है लेकिन अंदर जाकर अपनी जगह बनानी है तो आपके अंदर स्किल होनी चाहिए.
1: बिल्कुल, और यही आज की सबसे बड़ी रियलिटी है, क्योंकि दुनिया सिर्फ ये नहीं देखती कि आपने क्या पढ़ा है, क्या लिखा है, दुनिया ये भी देखती है कि आप उस ज्ञान को कैसे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं और उससे कैसी प्रोडक्टिविटी की ओर आप आगे जा रहे हैं.
0: बिल्कुल, जैसे अभिषेक अपने दोस्तों से जुड़ने का ये रास्ता हमारा आकाशवाणी केंद्र है.
1: हाँ.
0: जहाँ पर युवाणी के माध्यम से हम दोस्तों से मिलते हैं, उनसे तमाम बातों की बात करते हैं, लेकिन हमारे दोस्त हमें तब सुनते हैं जब उन्हें उनके काम की कुछ फैक्चुअल और कुछ ऐसी बातें सुनने को मिलती हैं जो उनसे हमें कनेक्ट करती हैं.
1: हाँ.
0: यानी कि ऐसे बहुत सारे सवाल हमारे युवाओं के मन में होते हैं कि अगर उनके पास शानदार डिग्री है लेकिन प्रैक्टिकल स्किल नहीं है, और दूसरी तरफ अगर किसी के पास बड़ी डिग्री नहीं है लेकिन वह अपने काम में एक्सपर्ट है, तो आगे कौन जाएगा?
1: तो भाई वही जवाब, आगे वही जाएगा जो सीखेगा, जो काम करेगा, जिसके पास हुनर होगा, स्किल्स होंगी. क्योंकि आज की दुनिया में दोस्तों सबसे बड़ी स्किल्स शायद कोई एक टेक्निकल स्किल ही नहीं है, सबसे बड़ी स्किल्स है लर्निंग एबिलिटी, जो व्यक्ति हर दिन सीख सकता है, अपनी गलतियों से सीख सकता है, टेक्नोलॉजी से सीख सकता है, नई चीज़ों के साथ वो सीख सकता है. और महिमा वही बात की आगे वही जाएगा, सबसे बड़ी बात की जो पीछे हटेगा नहीं और निरंतर चलता रहेगा.
0: सही कहा आपने. तो शायद आज की शायद नहीं, सर्टेनली श्योरिटी रियलिटी में आज की जो क्वालिफिकेशन है वो ये है कि मैं सीख सकता हूँ. क्योंकि दुनिया बदल रही है, टेक्नोलॉजी बदल रही है, जॉब्स बदल रही हैं, इंडस्ट्रीज बदल रही है. जो इंसान पहले आपसे 6 घंटे या 8 घंटे में 12 घंटे का काम चाहता था, अभी वो इंसान 8 घंटे में आपसे 24 घंटे का काम चाहता है.
1: हाँ.
0: और ये आप तब कर पाएंगे.

0: होंगे जब आपको उसकी करने की स्किल होगी। इसलिए आज स्किल बहुत महत्वपूर्ण है। हो सकता है कुछ साल बाद उसकी जगह कोई नई स्किल ले ले, लेकिन सिर्फ एक डिग्री लेकर बैठ जाना तो पर्याप्त नहीं है ना। डिग्री के बाद भी लर्निंग बंद नहीं होनी चाहिए। पहले के समय में देखो ना योगेश, अगर कोई इंसान अच्छा कैमरा हैंडलिंग कर लेता था तो केवल फोटो वो खींचता था। अगर कोई अच्छा एंकर बोल लेता था तो वो केवल एंकरिंग करता था। लेकिन आज इंसान के अंदर लोग मल्टी टैलेंट ढूंढते हैं। हमें आज एक ऐसी बंदी की तलाश होती है जो एंकरिंग भी कर ले, जो कैमरा हैंडलिंग भी कर ले, जो वीडियो एडिटिंग भी कर ले। जॉब में देखो हमें ऐसा टीचर चाहिए। अगर हम अपने बच्चे के लिए ट्यूशन के लिए किसी को बुलाते हैं तो हम कहते हैं आप इसको मैथ साइंस इंग्लिश और तीनों पढ़ा दो। लेकिन एक इंसान तो केवल एक सब्जेक्ट में परफेक्ट होता है ना, तो फिर हम तीनों चीज क्यों सोचते हैं? क्योंकि उसके पास डिग्री है। डिग्री में जब उसने पास किया है तो उसने इन इन विषयों में ग्रेजुएशन किया है, तो वहां पर उसे हम ये नहीं कहेंगे कि आप किस सब्जेक्ट में एक्सपर्ट हैं। अगर हम आपको एज अ ट्यूटर अपने बच्चे के लिए, अपने घर के लिए या खुद सीखने के लिए ज्वाइन करते हैं तो हम उसे ये डिमांड करते हैं कि अगर हम आपको पैसा दे रहे हैं, आपके लिए हम इतना फिनेंस कर रहे हैं चीज़ें, तो हमें पूरे की पूरी चीज़ें चाहिए। मतलब आप हर भाग में उतने ही उपयुक्त होने चाहिए।
1: और साथ ही महिमा, मुझे लगता है कि युवाओं की एक बड़ी समस्या ये भी सामने आती है कि हम अक्सर सर्टिफिकेट को स्किल समझ लेते हैं, या कोई हम कोर्स कर लेते हैं तो उसे हम अपना सर्टिफिकेट समझ लेते हैं, डिग्री समझ लेते हैं।
0: और ये तो मतलब बहुत पुरानी वाली पूरा हमारे साथ प्रॉब्लम है। सर्टिफिकेट मिल गया और हमें लगता है कि स्किल आ गई। जैसे हम कोई कंप्यूटर कोर्स कर रहे हैं और अगर हमने 3 महीने का कोई कोर्स कर लिया तो लगते हैं बस अब तो गूगल बाबा अपने ही हैं। मतलब जो भी हम चाहेंगे हम फटाफट सर्च करेंगे और सब कुछ हम जान लेंगे। लेकिन ज़रूरी ये है कि जब भी कोई आपको काम दे तो आप उसे सिर्फ पूरा काम करके दिखाए नहीं, बल्कि जो आपकी एक्सपर्टीज है इसमें आप उसे भी शामिल करें। अगर आपने ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीखी है तो सिर्फ सर्टिफिकेट होना ज़रूरी नहीं है। आपने क्या डिज़ाइन किया? अगर कोडिंग सीखी है तो आपने क्या बनाया? अगर कम्युनिकेशन सीखा है तो आप अपनी बात कितनी प्रभावी तरीके से कह सकते हैं? अगर मार्केटिंग सीखी है तो क्या आप किसी प्रोडक्ट को लोगों तक पहुंचा सकते हैं? यही असली स्किल है।
1: यानी सर्टिफिकेट बताता है कि आपने सीखा तो है, लेकिन काम आपका बताता है कि आप उस काम को कितना जानते हैं।
0: क्या हर युवा को एक ही रास्ता चुनना चाहिए? यह एक सवाल है, क्योंकि हर रास्ता अलग है। किसी के लिए डिग्री ज़रूरी हो सकती है, और अगर आपको डॉक्टर बनना है तो आपको एजुकेशन और प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन ज़रूरी है। इंजीनियर बनना है तो आपको फॉर्मल एजुकेशन की ज़रूरत है। और तुम्हें पता है अभिषेक, अगर हमें दोस्तों को अपने साथ जोड़े रखना है
1: तो
0: मुश्किल तमाम बातें करते
1: ज़रूरी है,
0: तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है। तो हम अपनी और अभिषेक की बातों को रखेंगे जारी, क्योंकि आज की बातें आपकी ज़िंदगी को आपसे ही कनेक्ट करती हैं, और इन बातों को जानना और सीखना बहुत ज़रूरी है। चलते हैं हम लोग प्यारी से कड़क अध्ययन की चाय भी कराते हैं और दोस्तों को सुना देते हैं। शुरू करिए पहला प्यार।

0: यानी कि मैं इतनी बात तो समझ गई हूँ कि प्रैक्टिकल स्किल सीखना बहुत जरूरी है, चाहे डिजिटल मार्केटिंग की बात हो, चाहे कंटेंट क्रिएशन की बात हो, वीडियो एडिटिंग की बात हो, डिजाइनिंग की बात हो, कोडिंग की बात हो, सेल्स की बात हो, कम्युनिकेशन की बात हो, या फिर एंटरप्रेन्योरशिप की बात हो, इन सब जगह अभिषेक स्किल्स ही काम आती है।
1: बिल्कुल, तो हमें साथियों ये नहीं भूलना चाहिए कि डिग्री जरूरी है स्किल, हमें बल्कि ये पूछना चाहिए कि मेरे करियर के लिए कौन सी एजुकेशन और कौन सी स्किल जरूरी है।
0: क्योंकि समस्या डिग्री में नहीं है, समस्या तब है जब हम डिग्री को पूरी क्षमता समझ लेते हैं। एक लाइन जो हर युवा को याद रखनी चाहिए कि अपनी डिग्री को मंजिल मत समझो, उसे अपनी शुरुआत समझो। क्योंकि डिग्री आपको एक फाउंडेशन दे सकती है, लेकिन उस फाउंडेशन पर करियर की इमारत आपको आपकी स्किल से ही मिलता है। और इसमें मैं एक बात और जोड़ना चाहूंगी कि आज के समय में सिर्फ क्वालिफाइड मत बनिए, कैपेबल बनिए।
1: क्योंकि क्वालिफिकेशन साथियों आपको लोगों से मिलवा सकती है, लेकिन कैपेबिलिटी लोगों को आपके साथ काम करने के लिए मजबूर करती है। तो स्किल का मतलब सिर्फ नौकरी ही नहीं, और स्किल का मतलब सिर्फ नौकरी पाना भी नहीं, और स्किल आपको एंटरप्रेन्योरशिप बना सकती है, स्किल साथियों आपको फ्रीलांसर बना सकती है, स्किल आपको क्रिएटर बना सकती है, स्किल आपको किसी ऑर्गेनाइजेशन में लीडरशिप पोजिशन तक ले जा सकती है।
0: और बस इसका मतलब ये है कि स्किल आपको हम लड़कियों की तरह आत्मनिर्भर बना सकती है। क्योंकि जब आपके पास कोई ऐसा हुनर होता है जिसकी दुनिया को जरूरत है, तो आपके पास अवसर पैदा करने की क्षमता भी होती है। लेकिन एक और चीज है जो युवाओं को रोकती है, फेलियर का डर। बहुत सारे युवा सोचते हैं, अगर मैंने यह स्किल सीख ली और यह काम नहीं आया तो, अगर मैं सफल नहीं हुआ तो फिर दूसरी बार कोशिश क्या करना पड़ेगा।
1: बिल्कुल, क्योंकि स्किल सीखने का सबसे बड़ा फायदा यही है कि वो आपके अंदर कॉन्फिडेंस पैदा करती है। जब आप कोई काम पहली बार करते हैं तो ये जो स्किल्स होती हैं वो कहीं ना कहीं हमारे आत्मविश्वास को मजबूत करती हैं और हमें आगे बढ़ाती हैं। हो सकता है आपसे कोई गलती हो जाती हो काम करते वक्त, लेकिन हम दूसरी बार उसे फिर से बेहतर कर सकते हैं, तीसरी बार और बेहतर कर सकते हैं, और धीरे धीरे फिर वही काम आपकी पहचान बन जाता है।
0: यानी कि फेलियर आपकी कहानी का फुल स्टॉप नहीं है, वह सिर्फ अगला चैप्टर शुरू करता है। अगर कोई युवा अभी हम लोग की बातें सुन रहा है, कोई वीडियो बना रहा है, कोई कुछ देख रहा है और सोच रहा है कि मैं शुरुआत कहाँ से करूँ, तो मेरी सलाह बहुत सिंपल है। पहले खुद से पूछिए मुझे किस काम में इंटरेस्ट है, फिर पूछिए
1: उस काम में मार्केट को किस स्किल की जरूरत है, फिर एक स्किल सेलेक्ट कीजिए, उसे सीखिए, प्रैक्टिस कीजिए और छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स पर काम कीजिए।
0: अपना काम लोगों को दिखाइए, फीडबैक लीजिए और फिर लगातार इम्प्रूव करिए। मतलब सिर्फ लर्न, प्रैक्टिस, अप्लाई एंड इम्प्रूव, यही साइकिल है। तो अभिषेक, अगर हमें आज इस पूरी चर्चा को एक सवाल में समेटना हो तो सवाल क्या होगा?
1: सवाल ये नहीं कि मेरे पास डिग्री है या नहीं, सवाल ये है मेरे पास एक ऐसी कौन सी क्षमता है जिसकी दुनिया को जरूरत है।
0: और शायद यही आज की जनरेशन को समझना होगा, यानी कि हम लोगों को समझना होगा। डिग्री आपकी पहचान का एक हिस्सा हो सकती है, लेकिन आपकी असल पहचान आपके काम

0: से बनती है, आपके नॉलेज से बनती है, आपके स्किल से बनती है, आपकी सोच से बनती है, और सबसे बढ़कर आपके सीखते रहने की इच्छा से बनती है।
1: इसलिए डिग्री लीजिए लेकिन स्किल्स भी सीखिए, एजुकेशन पाइए लेकिन एक्सपीरियंस भी लेते रहिए, ड्रीम देखिए लेकिन उसे पूरा करने की एबिलिटी भी डेवलप कीजिए।
0: क्योंकि आने वाला समय सिर्फ उन लोगों का नहीं होगा जिनके पास ज्यादा डिग्री होंगी, बल्कि उन लोगों का होगा जो सीखेंगे, बदलेंगे, अपडेट करेंगे, अपने हुनर से अपनी जगह बनाएंगे। और हाँ, ऑलवेज रिमेम्बर डैट, डिग्री आपको यह बताती है कि आपने क्या पढ़ा है, लेकिन आपका स्किल दुनिया को ये बताता है कि आपके अंदर डिग्री के साथ, डिग्री के मुकाबले से या फिर डिग्री की सतह से आपके अंदर क्या करने की क्षमता है।
1: तो अगली बार जब कोई आपसे पूछे तुम्हारी क्वालिफिकेशन क्या है, तो सिर्फ अपनी डिग्री मत बताइए, अपने हुनर की तरफ भी इशारा कीजिए, क्योंकि भविष्य उन लोगों का है जो सिर्फ नौकरी खोजते नहीं बल्कि अपनी काबिलियत से अवसर पैदा करते हैं।
0: और अभिषेक, आज जब हम लोग सर से डिस्कस कर रहे थे तो उन्होंने कितनी प्यारी हम लोगों से एक बात कही ना, कि आप अपने दोस्तों को ये भी बताना कि आप पढ़ाई लिखाई करके सिर्फ एक नौकरी तक पाकर नौकरी तक सीमित हो सकते हो, लेकिन अगर आप कोई बिजनेस करते हो, और जैसे हमने भी डिजिटल मार्केटिंग की बात की, आप कोई ऐसा काम करते हो, कोई बिजनेस डेवलपमेंट करते हो, कोई फाउंडेशन बनाते हो, तो आप अपने से जुड़े ना जाने कितने लोगों को रोजगार दे सकते हो।
1: और साथ ही इसमें ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जब आप कोई बिजनेस करते हैं तो आपकी जो अगली जनरेशन है उस बिजनेस को और आगे तक ले जा सकती है, लेकिन नौकरी की जब तलाश हम करते हैं तो हम हर बार जीरो से शुरू करते हैं। तो कहीं ना कहीं कि ये सीखना कि नौकरी के साथ साथ हमें, अच्छी बात है नौकरी तलाशते रहना चाहिए, लेकिन अपने स्किल्स के दम पर अपने बिजनेस और व्यवसाय की तरफ भी हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए।
0: जी माय डियर, ऐसे सफर जीरो से लेकर हमें हीरो तक पहुंचाते हैं, राइट? वैसे सुनो ना, चलो ये तो तुमने मेरा ही नहीं, मेरे तमाम दोस्त जो थोड़े से उदास थे उनका तुमने दुख दूर कर दिया है ना, लेकिन पता है अभी मेरे पास दूसरी दुख वाली चीज नहीं है, मैं थोड़ा एक्साइटमेंट हूँ चीज को लेकर।
1: वो क्या है?
0: देखो मैंने आज जो इतना अच्छा बैंड पहन रखा है, इसमें तीन कलर है, एक थोड़ा सा ये देखो मतलब ऐसा है ना केसरिया कलर है, बीच में वाइट है, फिर ग्रीन है, और इस पे जो ब्लू ब्लू के डॉट हैं, तो इनको मैं देख रही थी तो मुझे याद आ रहा था कि बहुत जल्दी वो दिन आ गया जब हमें लड्डू खाने को मिलेगा।
1: यानी कि 15 अगस्त।
0: हाँ जी।
1: हाँ, तो क्यों ना अपने दोस्तों को सुनवाते चले कुछ ऐसा ही गीत जो उस दिवस की वाइब से मैच करता हो।
0: हाँ बिल्कुल।

0: है तो अब हम आपको बताते हैं कि आज हम जिनके बारे में बात करने जा रहे हैं उनका नाम है स्वतंत्रता सेनानी खुदीराम बोस। कभी कभी इतिहास की सबसे बड़ी कहानियाँ उन नामों से लिखी जाती हैं जिनकी उम्र बहुत छोटी होती है, और कभी कभी किसी नौजवान की आंखों में दिखाई देने वाला पूरा सपना एक पूरी पीढ़ी के भीतर आज़ादी की लौ जगा देता है। कभी कभी देश के लिए जीने और मरने का जज्बा इतना गहरा होता है कि उम्र की सीमाएं भी छोटी पड़ जाती हैं।
1: साथियों, हम बात कर रहे हैं हमारे आज के प्रेरणापुंज के रूप में उस युवा क्रांतिकारी की जिसने महज 18 वर्ष की उम्र में देश की आज़ादी के लिए अपना जीवन न्यौछावर कर दिया। एक ऐसा नाम जिसे सुनते ही युवा साहस, राष्ट्रप्रेम और अदम्य संकल्प की तस्वीर सामने आती है। यानी हम बात कर रहे हैं हमारे अमर स्वतंत्रता सेनानी भूले बिसरे नायक खुदीराम बोस जी की, जिन्हें हम अपने कार्यक्रम के जरिए याद कर रहे हैं और उनके क्रांतिकारी जीवन को नमन कर रहे हैं।
0: साथियों, खुदीराम बोस का जन्म 3 दिसंबर 1889 को तत्कालीन
1: मिदनापुर जिले में हुआ था, जो आज के पश्चिम बंगाल का हिस्सा है।
0: उनका बचपन ऐसे दौर में बीता जब भारत ब्रिटिश शासन के अधीन था और देश के अलग अलग हिस्सों में अंग्रेजी शासक के खिलाफ असंतोष लगातार बढ़ रहा था।
1: खुदीराम जी ने बहुत छोटी सी उम्र में ही देश की गुलामी को केवल किताबों की बात नहीं बल्कि अपने आसपास की वास्तविकता के रूप में महसूस किया।
0: बंगाल उस समय राष्ट्रीय चेतना का एक महत्वपूर्ण केंद्र बन चुका था। 1905 में बंगाल विभाजन, जिसे हम खूब पढ़ते हैं किताबों में, पूरे देश में स्वदेशी और राष्ट्रवादी आंदोलन को एक नई ऊर्जा मिल रही थी।
1: साथ ही युवाओं में ये भावना बलवती होने लगी कि भारत को अपनी स्वतंत्रता स्वयं हासिल करनी होगी, और इसी वातावरण में एक किशोर के भीतर भी राष्ट्र के लिए कुछ करने की बेचैनी जन्म लेने लगी।
0: बस फिर क्या था, खुदीराम लगभग 15 वर्ष की उम्र में ही अनुशीलन समिति से जुड़ गए। यह संगठन युवाओं में शारीरिक, मानसिक और नैतिक अनुशासन विकसित करने के माध्यम से युवाओं में एक समर्पण की भावना और लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रहा था। अब चूंकि इसमें खुदीराम बोस जाके जुड़ गए तो उनके लिए केवल क्रांति नहीं बल्कि संगठन का एक ऐसा हिस्सा बन गया उनके जीवन की दिशा को बदलने के लिए। ये कदम था क्योंकि वह समझ चुके थे आजादी केवल एक सपना नहीं है, उसके लिए साहस, त्याग, दृढ़ संकल्प की हमें अत्यंत आवश्यकता है।
1: और खुदीराम के लिए ये केवल किसी संगठन का हिस्सा बनना मात्र नहीं था बल्कि साथियों, आज हम और आप जिस उम्र में करियर, पढ़ाई और भविष्य की योजनाओं के बारे में सोचते हैं, उसी उम्र में खुदीराम बोस अपने देश के भविष्य के बारे में सोच रहे थे, और यही उन्हें इतिहास के पन्नों में एक अलग स्थान देती है।
0: एग्जैक्टली, 20वीं शताब्दी के शुरुआती वर्षों में बंगाल में क्रांतिकारी गतिविधियां तेज हो रही थी। ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा राष्ट्रवादी आंदोलनों को दबाने की कोशिशों ने युवाओं के एक वर्ग में एक तीव्र आक्रोश पैदा कर दिया था।
1: और इसी समय एक ब्रिटिश अधिकारी था डगलस किंग्सफोर्ड, जो राष्ट्रवादियों के बीच कठोर कार्यवाही करने के लिए जाना जाता था। खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चंद्र चाके मिलकर किंग्सफोर्ड की हत्या की तैयारी कर रहे थे। तभी किंग्सफोर्ड को सुरक्षा कारणों से बंगाल से स्थानांतरित कर मुजफ्फरपुर बिहार भेज दिया गया। मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड को निशाना बनाने की कोशिशें की गई, लेकिन यहीं पर एक गलती हो गई। जिस गाड़ी को किंग्सफोर्ड की गाड़ी समझा गया था उसमें किंग्सफोर्ड था ही नहीं। उस घटना में 2 ब्रिटिश महिलाओं की मृत्यु हो गई। ये घटना स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में मुजफ्फरपुर षड्यंत्र के मामले के रूप में जानी जाती है।
0: फिर क्या हुआ, फिर पता है?
1: हाँ,
0: इस घटना के बाद ब्रिटिश पुलिस ने व्यापक कार्यवाही शुरू की। प्रफुल्ल चाकी बाद में पुलिस से घिर गए और उनकी मृत्यु

0: हो गई, जबकि खुद ही राम को गिरफ्तार कर लिया गया।
1: साथियों, स्वतंत्रता आंदोलन का इतिहास केवल सफलताओं का इतिहास नहीं, ये गलतियों का, संघर्षों, विचारों और बलिदानों का इतिहास है।
0: खुद ही राम बोस पर मुकदमा चलाया जाता है। उनकी ओर से कई वकीलों ने बचाव भी किया, लेकिन अंततः अदालत ने उन्हें मृत्युदंड की सजा सुना दी।
1: बिल्कुल। और अब आता है साथियों वो क्षण जिसने खुदीराम बोस को भारतीय इतिहास में अमर कर दिया। कहा जाता है जब उन्हें कैपिटल पनिशमेंट की सजा सुनाई दी गई थी, तब उनके चेहरे पर भय के बजाय एक अद्भुत शांति और मुस्कुराहट थी। एक 18 वर्ष का युवा क्रांतिकारी जिसके सामने जीवन की पूरी दुनिया हो सकती थी, उसने अपने विश्वास और इरादों के लिए मृत्यु को स्वीकार कर लिया।
0: 11 अगस्त 1908 मुजफ्फरपुर में खुदीराम बोस को मात्र 18 वर्ष की उम्र में फांसी दे दी गई। उनके लिए जीवन का अर्थ अपने लिए जीना था ही नहीं, उनके लिए राष्ट्र ही सर्वोपरि था।
1: साथियों, इतिहास में उनका बलिदान बंगाल सहित पूरे भारत के युवाओं के बीच गहरी प्रेरणा बन गया। उनका नाम लोक स्मृति में वीरता और बलिदान के प्रतीक के रूप में स्थापित हो गया।
0: और जो ये खुदीराम बोस के बारे में हमने जाना, सुना, सीखा और बचपन से सुनते आ रहे हैं, अभिषेक, आज के कंसर्न में ये बात करना बहुत जरूरी है। जैसे हमने भी डिग्री की बात की, स्किल की बात की, व्हाटएवर, अपने प्रोग्राम में हम अलग अलग चीजों पे बात करते हैं, लेकिन जरूरी ये है समझना कि हम राष्ट्र के बारे में तो सोच ही नहीं पाते। हम अपनी परेशानियों में इतनी उलझे हैं, छोटी छोटी चीजों में हम कहते हैं मेरी किस्मत खराब है, मेरे साथ ही हमेशा बुरा आता है, मेरी लाइफ में कुछ अच्छा होगा ही नहीं। सोचो ना कि 15 साल 20 साल के बच्चे ऐसे ऐसे काम कर रहे हैं जो हम सच सोचने में भी हमारे हाथ पैर कांपते हैं कि चोरी, डकैती, बदमाशी, हम सब कुछ कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे हैं उसके बारे में हम सोचते ही नहीं है। और इसके बारे में सिर्फ बच्चे को नहीं, हमारे पेरेंट्स को भी सोचना होगा कि आखिरकार हम किस दिशा में जा रहे हैं। एक समय फोन था, फोन हमें मिला था पढ़ने के लिए, सीखने के लिए। ये दूर संचार का माध्यम है कि हम कैसे एक दूसरे से अपनी हाल खबर दे सके, लेकिन आज फोन ही साइबर क्राइम का सबसे बड़ा जरिया बन गया है। पहले हम लोग पढ़ने लिखने जाते थे, इंस्टीट्यूट जाते थे, कोचिंग जाते थे, तो हमें लगता था कि वहां से कुछ सीख के आएंगे, लेकिन आजकल जो बच्चे केवल 15-20 साल के हैं वो इतनी बड़ी बड़ी गलतियां कर रहे हैं, इतने बड़े बड़े फॉल्ट कर रहे हैं। कहना नहीं चाहिए, लेकिन भी बात सही है कि हमें वो बहुत सारी चीजें जिनसे हमें दूर रहना चाहिए, आजकल वो हमारी जिंदगी का हिस्सा बन गए।
1: कहने का मतलब यही है कि जो भी हमारे पास टेक्नोलॉजी है, जो भी चीजें वर्तमान समय में है, उनका सही सदुपयोग करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि एक वो दौर था महिमा जब एक 18 वर्ष का व्यक्ति अपने देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दे सकता है। और आज जब हम इस परिप्रेक्ष्य में बात कर रहे हैं कि 15 से 20 वर्ष के जो युवा हैं, हमारे साथी हैं, वो अपनी शक्तियों का, अपने विवेक का सही इस्तेमाल कर पा रहे हैं या नहीं, तो ये जानना
0: और सटीक जवाब है कि हनन कर रहे हैं, दोहन कर रहे हैं। हमें जिन चीजों का प्रयोग एक सही दिशा में करना था, उस दिशा में ना प्रयोग करके अपने ऊपर सारे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं।
1: बिल्कुल, क्योंकि ये बहुत जरूरी होता है कि जब हम इंडिविजुअल तौर पर एक एक व्यक्ति अपने ऊपर काम करता है, अपने लिए सोचता है, अपने लिए समय निकालता है, तभी हम राष्ट्र के लिए भी कुछ कर सकते हैं।
0: और पता है अभी ऐसा भी होता है ना कि अगर हमने कोई गलती की, अगर हमें पहली बार में नहीं टोका गया, तो दोबारा वो गलती करते समय हमें पछतावा भी नहीं होता है। और हम कहते हैं अरे आज के टाइम में ये चलता है। नहीं चलता है भाई, नहीं चलता है। आपको अपनी पहली गलती पर ही अल्प विराम नहीं बल्कि पूर्ण विराम लगा देना है और खुद से मन में संकल्प लेना है कि चाहे मुझे कोई इर्द गिर्द देख रहा हो ही नहीं, ईश्वर देख रहे हो कि नहीं, माता पिता, भाई बहन, दोस्त यार कोई देख रहे हो कि नहीं, आप अपने मन को खुद तराशिए और अपने मन से कहिए कि ये गलत है एंड आई नेवर डू इट अगेन, मैं कभी नहीं करूंगा।
1: बिल्कुल,
0: ये अपने अंदर हम नहीं डेवलप करेंगे तब तक हम कुछ भी बेहतर नहीं कर पाएंगे।
1: और साथियों, जब आज हम बात कर रहे हैं, स्वतंत्र फिजाओं में सांस ले रहे हैं और बात कर रहे हैं खुदीराम बोस जी के जीवन के बारे में, तो हमारा एक कर्तव्य है कि उनके बलिदानों को याद रखें, उनके कामों को याद रखें और अपनी इस स्वतंत्रता के मूल्य को सदैव समझें जिसे इस देश के नायकों ने महिमा अपनी कुर्बानियों से दिया है ना।
0: एंड वन थिंग इज मोर कि ये कुर्बानी हमेशा अमर रहे, उसके लिए जरूरी है कि स्वतंत्रता हमेशा स्वतंत्रता ही रहे, ना कि वो बनी स्वच्छंदता।
1: तो क्यों ना अपने साथियों को इसी संदर्भित विषय से जुड़ा एक प्यारा सा गीत सुना दिया जाए।
0: जी बिल्कुल, ये तो वही बात हुई कि नेकी और पूछ पूछ कर।

0: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे। सो इजी।
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
4: सुना आपने संदेश में क्या कहा गया? अभी जानकार रहिए, सतर्क बनिए, तो थोड़ा जानकार रहा करो और थोड़ा देख लिया करो कि वैकेंसियां क्या क्या चल रही है। करियर की बात भी करना जरूरी है। तुम्हें पता है यूपी 2020 पेट का फॉर्म आ चुका है?
5: तो बिल्कुल साथियों, आप अप्लाई कर सकते हैं। इसकी डेट शुरू हो चुकी है 3 अगस्त 2026 से, और बात करें आखिरी डेट की तो
4: वो है 1 सितंबर 2026। एग्जाम कब होगा इसकी आपको अपडेट जल्दी मिल जाएगी, लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि आपकी जो न्यूनतम उम्र है वो 18 वर्ष हो, जो आपकी अधिकतम उम्र है वो 40 वर्ष हो, और एलिजिबिलिटी की बात करें तो आप 10th पास होने चाहिए। हाँ, इन्हें क्या पता, मैंने बताया आपको, तो बाकी भी बात मैं ही बता देती हूँ। इसके अलावा BPSC स्कूल टीचर TRE 4.0 की वैकेंसी भी आपको जल्दी देखने को मिलेगी। तो ऐसा कहा गया है कि ऑनलाइन अप्लाई जो स्टार्ट डेट है वो अगस्त में मोस्ट प्रोबेबली शुरू हो सकती है। जो लास्ट डेट रहेगी वो रहेगी सितंबर 2026 तक। एग्जाम डेट भी इसके लिए जल्दी अपडेट किया जाएगा। इसके लिए आपकी मिनिमम एज होनी चाहिए 18 साल, मैक्सिमम आपकी जो एज होनी चाहिए वो होनी चाहिए 21 साल, और अगर हम एलिजिबिलिटी की बात कर ले तो आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, साथ में आपका DLED यानी कि डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन होना चाहिए, साथ में आपने CTET का फर्स्ट पेपर पास किया हो फॉर प्राइमरी स्कूल वैकेंसी, और जूनियर के लिए आपको सेकेंड पेपर भी पास करना होगा।
5: और महिमा, अगर बात करें रेलवे डिपार्टमेंट की, तो रेलवे से ICF अप्रेंटिस का फॉर्म चल रहा है, जिसमें कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, और उसकी डेट शुरू हो चुकी है 8
4: अगस्त 2026 से,
5: और उसकी आखिरी डेट है 7 सितंबर 2026। एग्जाम डेट

0: जल्द ही नोटिफाई होगी और आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं, जिसके लिए मिनिमम एज है 15 वर्ष और मैक्सिमम एज है 24 यानी 24 वर्ष।
1: मेरी तो एज नहीं है इतनी बड़ी हो गई।
0: तो भाई मैं, तुम्हारी एज नहीं है, तो जिन भी साथियों की एज होगी वो ज़रूर इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। और बात करें अगर एलिजिबिलिटी की, तो आपका 10th पास होना बहुत ही जरूरी है, वो भी 50।
1: ये भी है कि 12th क्लास में आपके सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में मैथ्स और साइंस होना चाहिए
0: और विद 50% मार्क्स। तो दोस्तों ये थी कुछ जरूरी बातें हमारे करियर की। और
1: पता है अभिषेक, जो आपने अच्छी बात बोली कि इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है, मैं जाके वहाँ चेक करना चाहिए कि आपका किस फॉर्म में आपकी आपकी क्या आपकी एज है, या फिर किसी की डेट क्या है, लास्ट डेट क्या है, ओपनिंग डेट क्या है, फॉर्म की एग्जाम्स कब है। तो मुझे ऐसा लगता है ना, जब हम एक दूसरे से पूछते हैं कि हमें जरा देख के बता दो, तो यहाँ पे भी अपनी स्किल को हम डाउन करते हैं। कोशिश करिए कि अपने काम आप खुद से करिए, ताकि आप चीज़ों को सीखते रहिए।
0: हमें अपडेट होना इसलिए भी ज़रूरी होता है क्योंकि कई बार हमें चीज़ों की जानकारी नहीं होती है ना, कि हमारा सिलेबस क्या है, हमारी डेट्स कब, एग्ज़ाम्स कब आ रहे हैं। तो अचानक से चीज़ें जब हमें पता चलती हैं तो हमारा माइंड बहुत पजल होता है, फिर घबराता है।
1: और बस मेरे दोस्त बहुत स्मार्ट है मेरी तरह। तुम ये बताओ, तुम्हारे पास कोई और सवाल है क्या? तुम क्या रहते, माँ ही भी मैं तुमसे एक सवाल पूछूंगा।
0: सवाल तो नहीं।
1: ओके, सवाल नहीं है?
0: नहीं,
1: पर मेरे पास तुम्हारे लिए सवाल है।
0: वो क्या है?
1: मेरे पास तुम्हारे लिए ये सवाल है कि देखो, अभी थोड़ा मौसम अच्छा अच्छा हो गया ना, मतलब बारिश हो जा रही है बीच बीच में, थोड़ा सा कूल कूल मौसम हो गया, लेकिन जो हमारा आंतरिक मन है, जो अंतःपटल है, उसको तुम कूल रखने के लिए क्या करते हो?
0: संगीत सुनते हैं
1: और
0: योगा करते हैं
1: और
0: दोस्तों से प्यारी प्यारी बातें करते हैं।
1: तुम इतने अच्छे काम कब से करने लगे हो?
0: तुम्हारे साथ रह के।
1: ओके, तो दोस्तों बहुत ज़रूरी है कि हम जीवन में खुश रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, और फिर से वही बात कि अपने आप को जितना ज़्यादा हो सके अपडेट करते रहें, है ना? जैसे मोबाइल में होता है ना कि आपको अपडेट करने की ज़रूरत है, तो मोबाइल बढ़िया से चलता है। वैसे अगर आपको अपनी ज़िंदगी की गाड़ी बढ़िया से चलानी है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि खुद को अपडेट करते रहिए, वो भी सही दिशा में।
0: हाँ, खुद को अपडेट करें, अपनी स्किल्स को अपडेट करें, तभी तो जाके हम करियर में आगे बढ़ पाएंगे।
1: तो क्यों ना अपने प्रोग्राम को भी थोड़ा सा अपडेट कर दें, थोड़ा सा लास्ट फेज में हम चल रहे हैं, तो क्या हुआ, गीत संगीत तो हमारे मतलब मन को सुकून देते ही हैं, तो क्यों ना चलते चलते एक प्यारा सा गीत हो जाए।
0: बिल्कुल।

0: बीमा चलते चलते बात कर लेते हैं हमारे क्वेश्चनर सेगमेंट की। तो साथियों, हमारा कल का सवाल था, अजंता की गुफाएं किसके शासन काल में बनाई गई थी। तो साथियों, जवाब है अजंता की गुफाओं का निर्माण मुख्य रूप से सातवाहन राजवंश और वाकाटक राजवंश के काल में हुआ था।
1: जी हाँ, और आज भी हमारे पास आपके लिए सवाल है। सवाल ये है कि खुदी राम बोस को फांसी कब और कहाँ दी गई। तो अब जरा

0: जो आपको चेक करिए, क्योंकि आज हमने आपको बताया और हमें आप रिप्लाई करिए। और तरीका वही है, हमारी ईमेल आईडी है bayubvniald@gmail.com। तो आप अपना जवाब हमें जरूर भेजिएगा। तो सुनो ना, आज 11 तारीख हो गई है, चलो हम लोग भी घूमते हैं, बड़ा बाजार की रौनक देखते हैं कि 15 तारीख की क्या तैयारियां हो रही है। और अभी दोस्तों को टाटा बाय बाय कर लेते हैं, क्योंकि फिर मिलेंगे अगली बार बहुत सारी बातों के साथ। तब तक लिए मैं आपकी प्यारी सी दोस्त माही
1: और मैं आपका साथी अभिषेक।

0: अभी युवा साथी सुन रहे थे अपना कार्यक्रम युववाणी। आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज पर और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज पर 6 बजने को हैं। अब आप समाचार सुनेंगे जिन्हें हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले कर रहे हैं।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। संसद ने अधिकरण सुधार विधेयक 2026 पारित कर दिया है। इसे आज राज्यसभा ने मंजूरी दे दी। लोकसभा इसे पहले ही पारित कर चुकी है। विधेयक का उद्देश्य विभिन्न अधिकरणों के अध्यक्षों और सदस्यों की योग्यता, नियुक्ति और प्रशासन तथा कार्यप्रणाली में दक्षता सुधार, स्वतंत्रता, पारदर्शिता और एकरूपता सुनिश्चित करना है। विधेयक में राष्ट्रीय अधिकरण आयोग की स्थापना का भी प्रस्ताव है। विधि और न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि आधुनिक, स्वतंत्र और एकरूप अधिकरण प्रणाली स्थापित करने के लिए विधेयक लाया गया है। लोकसभा ने केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। विधेयक के अंतर्गत संविधान की प्रथम अनुसूची में केरल राज्य का नाम बदलकर केरलम करने का प्रावधान है। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि केरल विधानसभा ने 2024 में एक प्रस्ताव पारित कर केंद्र सरकार से राज्य का नाम बदलने का अनुरोध किया था, क्योंकि मलयालम में राज्य का नाम केरलम है। उन्होंने केरल के कांग्रेस सांसदों पर विधेयक का समर्थन नहीं करने का आरोप लगाया।
2: कांग्रेस के कुछ सांसद जब आज पारित करने का प्रस्ताव करा रहे थे तो केरल के कांग्रेस के लोगों ने इसका समर्थन नहीं किया है। कांग्रेस स्पष्ट करे कि क्या केरल का नाम केरलम करने में उनको क्या आपत्ति है।
1: लोकसभा ने राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक 2026 भी पारित कर दिया है। ये विधेयक निगम को औद्योगिक वस्तुओं के क्षेत्र में अपनी गतिविधियां संचालित करने की अनुमति देता है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कांग्रेस और विपक्षी दलों पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन पर चर्चा से भागने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि सरकार इस मुद्दे पर विस्तृत चर्चा के लिए तैयार है। संसद परिसर में श्री रिजिजू ने कहा कि सरकार ने कल विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन से संबंधित हर मुद्दे पर विस्तृत चर्चा का प्रस्ताव रखा था। उन्होंने कहा कि गृहमंत्री अमित शाह भी विपक्ष द्वारा उठाए गए मुद्दों का जवाब देने के लिए तैयार हैं, लेकिन विपक्ष सदन चलने नहीं दे रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से स्वतंत्रता दिवस को गर्व, सम्मान और धूमधाम से मनाने का आह्वान किया है। उन्होंने लोगों से विकसित भारत के निर्माण का संकल्प लेने को कहा। श्री मोदी ने सभी नागरिकों से एकजुट होकर देश के स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि अर्पित करने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री ने देशवासियों से हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत अपने घरों पर तिरंगा फहराने का भी आह्वान किया। भारत ने दोहराया है कि अरुणाचल प्रदेश भारत का अविभाज्य तथा अभिन्न अंग है और इस निर्विवाद वास्तविकता को कोई बदल नहीं सकता। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने ये बात कही।
3: भारत और चीन के बीच सीमावर्ती क्षेत्रों से जुड़े मामले में हमने हमेशा चीन के साथ चर्चाओं में यह बात पर जोर दिया है कि हम इन मुद्दों को बेहद गंभीर मानते हैं। द्विपक्षीय संबंधों के समग्र विकास के लिए सीमावर्ती

0: क्षेत्रों में शांति और स्थिरता बनाए रखना बहुत आवश्यक है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर गलतफहमी और गलत आकलन से बचने और बाकी बचे हुए मुद्दों को सुलझाने के लिए स्थानीय कमांडर स्तर की बैठकें और अन्य तंत्रों सहित मौजूदा कूटनीतिक माध्यमों का उपयोग जारी रखा जाएगा।
1: श्री जायसवाल ने कहा कि पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में बड़े पैमाने पर मानवाधिकारों का हनन हुआ है। इस बीच पाकिस्तान सरकार प्रायोजित आतंक को दुनिया के सामने लाने के लिए पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में 13 अगस्त से वैश्विक स्तर पर विरोध प्रदर्शन किए जाएंगे। अवामी एक्शन कमेटी ने अंतर्राष्ट्रीय ध्यान आकर्षित करने के लिए दुनिया भर के कश्मीरियों से रैलियां आयोजित करने का आह्वान किया है। अमरीकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो को अपने चंद्र बेस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है। ये आमंत्रण आर्टेमिस समझौते के अंतर्गत दोनों देशों की साझेदारी को और मजबूत करता है। दोनों देशों ने समझौते के अंतर्गत वैज्ञानिक आंकड़े साझा करने पर सहयोग के लिए चर्चा को आगे बढ़ाने पर सहमति जताई है। झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षा विवाद को लेकर छात्रों का आंदोलन 18वें दिन भी जारी है। कल विधानसभा घेराव के दौरान हुए लाठीचार्ज और झड़प के बाद छात्र नेताओं ने आंदोलन और तेज करने की घोषणा की थी। लाठीचार्ज के विरोध में भाजपा का झारखंड बंद आज रांची सहित कई इलाकों में प्रभावी रहा। बंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स आज 388 अंक गिरकर 78,154 पर बंद हुआ। निफ्टी 112 अंक की गिरावट के से 24,472 पर दर्ज हुआ। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलो हर्ट्स पर और एफएम 100.3 मेगा हर्ट्स पर। श्रोताओं, ये आपको जानकारी दे दें हमारे आज के शेष और कल के मुख्य मुख्य कार्यक्रमों के बारे में। रात 8 बजे संसद समीक्षा, 10 बजे संसद में प्रश्नकाल की कार्यवाही की रिकॉर्डिंग और 6:50 पर किसान वाड़ी और 10:06 से खेल दर्पण। ये दो कार्यक्रम हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे और खेल दर्पण और किसान वाणी अपने लखनऊ केंद्र से रिले करेंगे। 6:30 पर पंचायत घर कार्यक्रम में ग्रामीण भाई सुनेंगे इंदु शेखर से रामायण पाठ और त्रिभुवन नाथ गौड़ और साथियों से लोकगीत। 7:31 पर संस्कृत कार्यक्रम में डॉक्टर शक्तिधर नाथ पांडे की वार्ता होगी संस्कृत साहित्य वर्षा वर्णनम। सुगम संगीत के कार्यक्रम में अमृता मालवी से भजन और गीत सुनिएगा 7:45 पर। 8:45 पर सुनिएगा रणविजय सिंह सत्य केतु का लिखा रूपक साहित्य के उन नायक मुंशी प्रेमचंद। 9:30 पर गजलों पर आधारित कार्यक्रम कहकशा होगा और 10:30 पर शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में हम आपको सुनवाएंगे पंडित ब्रज नारायण का सरोद वादन। तो ये थे हमारे कल आज के शेष कार्यक्रम। अब सुनिए कल के मुख्य मुख्य कार्यक्रमों के बारे में। रात 9:30 पर चर्चा का विषय है, रात 8 बजे संसद समीक्षा और 10 बजे संसद में प्रश्नकाल की कार्यवाही की रिकॉर्डिंग। ये तीनों ही कार्यक्रम हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। सुबह 6:35 पर कृषि जगत कार्यक्रम में किसान भाई सुनेंगे अनिल कुमार सिंह से की गई बातचीत, कृषि रसायनों के प्रयोग से सावधानियां। स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में डॉक्टर आरपी सिंह की वार्ता होगी स्लिप डिस्क कारण लक्षण और समाधान। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में हम आपको सुनवाएंगे 7:30 पर पंडित रामकृष्ण का क्लैरोनेट वादन और दोपहर 12 बजे पंडित गुरु प्रसाद शर्मा का वायलिन वादन। कार्यक्रम नमस्कार प्रयागराज 8:45 पर। फिल्म संगीत का आनंद लीजिएगा 9 बजे, शाम 5 बजे और रात 8:15 पर।

सुगम संगीत के कार्यक्रम में अरुण गोलवाड़ी से भजन सुनिएगा 9:50 पर, वॉइस ऑफ प्रयागराज 10:05 पर होगा। लोकगीतों के कार्यक्रम लोक माधुरी में कलाकार होंगे सुरेंद्र प्रताप सिंह और साथ ही 10:30 पर कार्यक्रम एक ही कलाकार से दिन में 11:00। फिल्म अपना पसंदीदा कार्यक्रम हेलो फरमाइश सुनिएगा 12:30।

20 मिनट पर प्रस्तुति होगी मधु कुमार की। 1:15 बजे गृहलक्ष्मी कार्यक्रम में बहनें सुनेंगी डॉक्टर मनीष कुमार सिंह की वार्ता, क्या होती है सामाजिक पूंजी और सांस्कृतिक पूंजी, प्रायोजित कार्यक्रम NCERT। 2:30 पर सुनिएगा। युवा साथियों का कार्यक्रम युववाणी 5:15 पर। 6:30 पर पंचायत घर कार्यक्रम में ग्रामीण भाई सुनेंगे नीति वचन, साथ ही सुरेंद्र प्रताप सिंह से लोकगीत। और शाम 7:31 पर कार्यक्रम सुनिएगा बोलते नगमे, प्रस्तुति होगी नेहा गुप्ता की। 8:30 पर सबरस कार्यक्रम होगा। तो ये थे हमारे कल के मुख्य कार्यक्रमों की रूपरेखा। आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है।

अभी आप सुन रहे थे देश गान, आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलो हर्ट्स पर और FM 100.3 मेगा हर्ट्स पर।

आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है, मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर, और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर। 6:20 होने को हैं, अब आप संस्कृत में समाचार सुनेंगे जिन्हें हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले कर रहे हैं।

0: ततोप्यधिकजनानाम् आघातमधिकृत्य पाकिस्तानीदूतावासानां पुरतः प्रदर्शनस्य योजना अस्ति। नासासंस्थया चन्द्राधारकार्यक्रमे इसरोसंस्था सहभागी भवितुम् आमन्त्रिता। बेंगलुरुनगरे भारत अमेरिका अन्तरिक्षकार्यदलस्य नवम्यां गोष्ठ्याम् इसरो अध्यक्षः डॉक्टर वी नारायणन् तथा अमेरिकीय राजदूतः सर्गियो गोरः भागम् अगृह्णीताम्। अवसरे निसारभियानस्य सफलतायाः अनन्तरम् आगामी मानव अन्तरिक्ष प्रौद्योगिकीषु परस्पर सहयोगस्य विस्तारः स्वीकृतः। ऋतुविज्ञान विभागेन आगामिषु द्वित्रिदिवसेषु ओडिशा राज्ये वज्रपात मेघगर्जनाभ्यां सह अतीव तीव्र वृष्ट्यै नारंगवर्णीया संचेतना प्रख्यापिता। विभागेन तावत् आगामि दिनद्वयोः अण्डमान निकोबार द्वीपसमूहे अरुणाचल प्रदेशे असमे मेघालये नागालैंड मणिपुर मिजोरम त्रिपुरा राजस्थानेषु च वज्रपात मेघगर्जनाभ्यां सह अतितीव्रतर वृष्टिः भविष्यतीत्यपि अनुमानितम्। कनाडा ओपन टेनिस प्रतियोगितायां पोलैंड देशस्य पूर्व विश्व प्रथम वरीया इगा स्वीटेक रशिया देशस्य डायना श्नाइडर इत्येताम् 6-2, 6-1 इति अंकैः केवलं चतुष्षष्टि निमेषेषु पराजित्य उपान्त्यचक्रं प्राविशत् इति वार्ताः।
1: आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलो हर्ट्ज पर और FM 100.3 मेगा हर्ट्ज पर। ग्रामीण भाई सुने अपना कार्यक्रम पंचायत घर।

चो राम राम। देखा भैया, इस समय खरीफ ऋतु चलत बे। इस समय भैया खरीफ का जौन मुख्य फसल बा धान, तो भैया देखा धान जौन बा अपने खेत में भैया देखा लहलहात बाटे। मुला जरूरत ई बा भैया कि देखा एक देख रेख कैसे किया जाए, एमन कौन सा बीमारी लागत है, कौन सा रोग लागत है, कौन कौन सा कीट लागत है, ई सब के भैया देखा अपने खेतवाई मेड़वाई करत रही हैं। तो भैया देखा उनका ये जानकारी हुई और हम तो कहब देखा ई सब के जानकारी लई के भैया देखा अगर कौनों भी समस्या अपने धान के फसल में आवत बा तो भैया देखा ब्लाकन पे अपन कृषि रक्षा इकाई बनी हैं, वहाँ भैया विशेषज्ञ लोग रहत हैं और ओका लई आई के भैया देखाई के एक निदान करा सकत हैं। और साथे साथे भैया देखा जौन खरीफ में दलहन तिलहन वाली फसल हैं उहू में जैसे अरहर है, तिल है, एक भी खेती किसान भैया हरे करें हैं। साथे साथे अपन बाजरा है, ज्वार है, मक्का है। मुला इमन देखे कि ये जरूरत बटे कि भैया देखा कोनो खरपतवार हैं ओका भैया निराई गुड़ाई कराई दें और तबे जौन है उनके फसल बढ़िया होई और उत्पादन अच्छा मिले। साथे साथे अगर कोनो रोग बीमारी भी लागत पर चाहे दलहन हो चाहे तिलहन को हो चाहे मक्का वाली फसल बे भैया अगर कोनो भी समस्या आवत बे तो एकर भैया विशेषज्ञ लोगन से जरूर राय लई के तबे भैया देखा कोनो ओकर उपचार करें। और साथे साथे देखा अपन खेती किसानी में एक कहब कृषि वानिकी, ये कृषि वानिकी जो है भैया यानी कि खेती और पशुपालन के साथे साथे अगर हम पेड़ पौधा या झाड़ी वाला पौधा के भी खेती करत हई तो उसे एक किसान भैया हरन के अतिरिक्त आमदनी हो जात बटे। काहे से कि कुछ ऐसा जोन अपन पौधा हैं पेड़ हैं ओकरे साथे साथे जोन है अपन खेती किसानी किया जा सकत है। जैसे आंवले बा, अब आंवला के बाग अगर किसान भाई हरे करे हैं तो उमन देखा अपन कौनों भी फसल चाहे गेहूं हो या सब्जी वाली फसल भी लिया जा सकत है। साथे साथे करौदा है तो उहू के फसल के साथे अपन कौनों भी अनाज वाली चाहे साग सब्जी के खेती कई जा

सकत है। एक बात और कहा कि किसान भैयारन के सरकार समय समय पे लाभ देवे बदे तरह तरह के योजना परियोजना चलावत रहा था। जैसे बाटे कि किसान फार्मर रजिस्ट्री, किसान फार्मर रजिस्ट्री किसान भाई हरे जरूर बनवा लें, काहे से कि ऐसे जवन है उनका खाद उर्वरक मिले में आसानी होए। भैया एके बनवावे के बहुत आसान तरीका बा कि जे किसान भाई के नाम से जमीन बाटे, आपन खतौनी आधार और मोबाइल नंबर लई आए के जौन आधार में रजिस्टर्ड मोबाइल बा, ऐसे जौन है जन सेवा केंद्र भैया देखा जगह जगह खुला बाटे, वहाँ आपन एक के जौन है फार्मर रजिस्ट्री जरूर कराए ले। हम तो कहब देखा अगर फार्मर रजिस्ट्री में किसान भाई के अगर खतौनी में नाम अगर मुख्य पृष्ठ पे बाय और तबे जौन है फार्मर रजिस्ट्री होत बाटे, अगर मुख्य पृष्ठ पे ना बाय तो भैया अपन आधार खतौनी लई के भैया देखा तहसील में चला जाए, अपन ओके मुख्य पृष्ठ पे अपन नाम कराई के और तब फार्मर रजिस्ट्री जरूर किसान भाई हरे कराई लेवे के चाही। देखा बात बत कही होत रहे मुला पंचायती में आज का हम सुनवाऊ ओका बताए दी। आज देखा भैया रोज के तरह से गीत गौन होई जौन है त्रिभुवन नाथ गौड़ और संघातिन के, साथे साथे आज मंगलवार के दिन बा तो रामायण पाठ के दिन बा भैया इंदु शेखर त्रिपाठी का रामायण पाठ भी सुनवावा जाई। मुला हम तो कहब आवा जौन है पंचायती में एक ठे त्रिभुवन नाथ गौड़ और संघातिन के विकास गीत बाटे, सुनला फिर आगे बात बतकई होत रहे।

0: हाँ भैया देखा हो, विकास गीत रहे त्रिभुवन नाथ गौड़ और संघातिन के। अब देखा हम जवन कहते रहे कि आज देखा रामायण पाठ का दिन बटे, तो आवा इंदु शेखर त्रिपाठी का रामायण पाठ पंच भैयारे सुने।
1: रामायण में मित्र की महिमा अभूतपूर्व गाई गई है। भगवान श्री राम के प्रथम मित्र निषाद राज मिलते ही अपना सब कुछ समर्पित कर देते हैं। देव धरणी

हमारा धन घर परिवार धरती राज्य सब मित्र आपका है। कितना सुंदर समर्पण है। और जब अपने आवास में चलने की सलाह देते हैं तो भगवान अपने मन की पीड़ा सखा से बतलाते हैं। भगवान का मन भर गया, करुणा में डूब गए और कहते हैं, कहे ओ सत्य सब सखा सुजाना, पिता दीन मोहियाय सुवाना, वरिष चार दस बास बन मुनि व्रत बेसहार, ग्राम बास नहीं उचित सुनी गुहि भयो दुख भार। अत्यंत दुखी हृदय से निषाद राज भगवान से बोले, से रघुबीर के कानन जोगु, कर्म प्रधान सत्य कहलोगु, कै कै नंदन मंद मति कुटिल कठिन पन केन, जय रघुनंदन जान के सुख अवसर दुख दीन। मित्र के दुख को सहन न कर सकने निषाद राज जी और अयोध्या के सभ्यता पर प्रहार कर बैठे। कैकेयी को निशाना बना लिया। भगवान के दूसरे मित्र सुग्रीव की कथा सुनने के लिए जो अनुपम कथा है, बेमिसाल मित्रता की यह कहानी। वन में जब सुग्रीव से मित्रता हो जाती है तो सारी कहानी सुनने के बाद सीताहरण की, उन्होंने अपने आप भगवान राम से दैन्य भाव में कहते हैं, कह सुग्रीव सुनहु रघुवीरा, ताजहु सोच मनया नहु धीरा, सब प्रकार करि हो सेवकाई, जेहि विधि मिलहि जानकी आई। भगवान श्री राम प्रभु प्रसन्न हो गए और स्वयं मित्र की दर्द भरी कहानी सुनने के लिए आतुर हो गए। करुणा निधान करुणा सागर में डूब गए और बोलते हैं, बताओ सखा, वन में तुम्हारे भटकने का क्या उद्देश्य है। सखा वचन सुनि हर्षे, कृपा सिंधु बल सिंह, कारण कौन बसहु बना मोहि कहो सुग्रीव। सुग्रीव ने सारा वृत्तांत अपने और बाल के प्रति सब सुना दिया। मित्र की पीड़ा न सक सके प्रभु और मित्र के प्रति इतने उदार हो गए और स्वयं अपने मन के भाव को प्रकट करके बोलते हैं,

जय दुख गिरि शम रज कर जाना मित्र के दुख है रज मेरु समानो। मित्र के कष्ट से मित्र द्रवीभूत नहीं होता तो उस मित्र को

0: देखने मात्र से ही बड़ा पातक लगता है। अपना दुख पहाड़ के समान हो तो धूल के समान मानना चाहिए, और मित्र का दुख धूल के समान हो फिर भी पहाड़ के बराबर मानना चाहिए। गुण प्रगट ही आए गुण ही दुराबा। मित्र के दुख को, मित्र के अवगुण को छिपाना चाहिए और गुण को प्रकट करना चाहिए। कौपथ निवार सुपंथ चलावा, लेत दे तो मन शंकन धरही, बलय अनुमान सदाहित करही। सदैव मित्र के प्रति उदार रहना चाहिए। वस्तुओं का आदान प्रदान लेन देन हो तो उसके प्रति सदैव निर्माण की भावना, त्याग की भावना रखनी चाहिए। जाकर चित आहे गति सम भाई, आशक मित्र परिहरे भलाई। सेवक सठ कृप निर्भिन कुनारे, कपटी मित्र सूल समचारी। जिस मित्र की मति सर्प के समान टेढ़ी मेढ़ी हो, ऐसे मित्र का त्याग कर देना ही उचित होता है और उसी में भलाई भी होती है। सेवक यदि क्रूर हुआ, आज्ञाकारी न हुआ, राजा यदि कृपण हुआ और धर्मपत्नी यदि अनुगामनी न हुई और मित्र कपटी हुआ, तो ये चार के चारों कांटे के समान हृदय में चुभते हैं। इनका परित्याग कर देना ही अत्यंत उचित माना गया है। और भगवान अपने मित्र सुग्रीव के प्रति पुनः बोलते हैं, एकदम भुजा उठा के, सखा शोक त्याग हो बल मोरे, असब विधि घटब काज मैं तोरे। हे सखा सुग्रीव, अब तुम मेरे बल पर भरोसा रखो और मैं तुम्हारे समस्त कार्य स्वयं निपटा दूंगा, और उसके लिए अब चिंता मत करना। याद रखना, भगवान के तीसरे मित्र जब विभीषण जी लंका को छोड़कर, अपने भाई रावण को छोड़कर भगवान के शरण में आते हैं, तो भगवान कितने प्रेम के साथ सुग्रीव को अपनाते हैं। आगे जैसे ही विभीषण जी महाराज शिविर के समक्ष खड़े होकर देखते हैं और भगवान के बगल में बैठे हुए सुग्रीव जी भगवान से बोल बैठते हैं, देखिए लंका के तरफ से कोई आया है। भगवान कहते हैं कि जाकर देखो सखा, फिर भी बैठे ही बैठे वो बोल देते हैं, वेद हमार लेन सठयावा, राखी बांध मोहे यस भावा। सुग्रीव जी ने बांधने का आदेश देते हैं, भगवान मुस्कुरा देते हैं। मुस्कुराने के बाद कहते हैं, ठीक है, आपके सलाह को, आपके परामर्श को मैं मानता हूँ, लेकिन याद रखना मेरा एक नियम है, मेरे शरण में जो आता है वो कैसा भी हो मैं अपने प्राण के समान उसे रखता हूँ। सखा नेत तो मने एक बिचारे, मम अपन शरणागत भयहारी। हे मित्र, तुमने बहुत सुंदर सलाह दी, लेकिन शरणागत मुझे प्राणों से भी प्यारा है, जाकर उसे ले आओ। और जैसे हनुमान जी और अंगद जी जाकर मित्र को साथ में लेकर भगवान के समक्ष खड़ा कर देते हैं, भगवान कितनी उदारता के साथ अपनी कृपा दृष्टि मित्र पर रखकर अपने पास बैठाते हैं और बड़े प्रेम के साथ बोलते हैं, कह लंकेश सहित परिवार कुशल कुठार बा।
1: हाँ भैया, देखा

0: रामायण पाठ इंदु शेखर त्रिपाठी के भैया कितना बढ़िया से बताएं जौन है। अब भैया जौन बात बत कही होत रही ने खेती किसानी में, कि भैया देखा खेती किसानी में जौन है मौसम का बहुत महत्व बाटे। तो मौसम के भैया जौन महत्व बा, भैया मौसम के देख के अगर खेती किसानी करी हैं तो भैया उनके खेती किसानी बढ़िया होए जौन है। और साथे साथे अपन जौन है भैया देखा समय के जौन है ध्यान दें कि कब जौन है अपने खेती में पानी लगावे के बे, और कब भैया ओकर जौन है देख रेख दवा दर्पण के छिड़काव करे के बे। तो इसलिए भैया अगर बढ़िया तरीके से समय से करत हैं तो उनके खेती किसानी बढ़िया तरीके से होत रहे जौन है। अब देखा हो अगर भैया जौन है के कोनो भी हमारे कार्यक्रम में सुझाव या प्रतिक्रिया अपन देवे के बा तो हमार व्हाट्सएप नंबर बाटे 800 42650। तो भैया देखा अब पंचन से विदा लेवे के बेला हो गए, तो पंचो राम राम।
1: अभी ग्रामीण भाई सुन रहे थे अपना कार्यक्रम पंचायत घर। आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है, मीडियो वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलो हर्ट्स पर और FM 100.3 मेगा हर्ट्स पर। हमारा अगला कार्यक्रम बस थोड़ी ही देर में।
2: इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

0: पंचो जय हिंद।
1: रत्ना बहनी,
2: हाँ भैया,
1: देखो हम पंचो यू सोचित हन की अपने ख्यात मैया बढ़िया ते बढ़िया फसल उत्पादित हुए।
2: सही बात कहा, तो वो के कारण सबसे ज्यादा जरूरी है कि हमारे खेत का पानी जो है जरूर मिले।
1: बिल्कुल सही कहते हो, अपनी फसल का जब पानी मिली तो फसल बढ़िया तरह वैसे हुई। कबो कबो हम पंचे सोचित हन कि बढ़िया तरह पानी मिल जाए लेकिन ना ही मिल पावत है।
2: सही बात कहा, तो वो पानी हम पंचन का समय ते मिलत रहे, वही के खातिर हमारी जो सरकार है वह यू प्रयास करत रहते कि हमारे खेत का पानी मिले, यानी कि हर फसल का हर खेत का जो है पानी जरूर से जरूर मिले, वही के खातिर प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना लाई है।
1: बिल्कुल सही कह रहे हो बहनी, और देखो ऐके अंतर्गत जो हर खेत के यहाँ पानी मिले और वही के साथ साथ प्रति बूंद ज्यादा फसल हो।
2: हाँ सही बात कहा, तो बस यू है कि जितना जरूरत है जरूरत भर पानी जरूर मिले रहे, कायस की कबो कबो कहा होता है पानी की कमी के कारण हमारी फसल जो है खराब हो जाते हैं या उतनी बढ़िया ना हो पावत है।
1: हाँ, और देखो जब ये सब चीजें जरूरी हो जाती हैं तो जरूरी यह हो जाते हैं कि जो आज की खबरें हैं वही जान लीन जाए।
2: बिल्कुल, आओ जाना जाए।
3: यूपी में 10 रुपए लीटर खरीदा जा रहा गौमूत्र, 15 गांवों में पायलट प्रोजेक्ट। उत्तर प्रदेश में गौ संरक्षण को ग्रामीण अर्थव्यवस्था, महिला सशक्तिकरण और जैविक खेती से जोड़ने की पहल शुरू हुई है। बुलंदशहर में FPO के जरिए पायलट प्रोजेक्ट के तहत किसानों और पशुपालकों से 10 रुपए प्रति लीटर की दर से गौमूत्र खरीदा जा रहा है। सयाना तहसील के नरसेना गांव में शुरू हुए इस प्रोजेक्ट में 15 गांव जुड़े हैं और रोज करीब 500 लीटर गौमूत्र एकत्र किया जा रहा है। गांव में 200 लीटर क्षमता के टैंक लगाए गए हैं। संग्रह में सहयोग करने वाली महिलाओं को प्रति लीटर 2 रुपए कमीशन दिया जा रहा है और करीब 300 महिलाओं को शेयर होल्डर बनाया गया है। एकत्र गौमूत्र में जड़ी बूटियां मिलाकर खेती में इस्तेमाल होने वाले उत्पाद तैयार किए जा रहे हैं। आगे खरीद दर 20 रुपए प्रति लीटर करने और सफलता के बाद इस मॉडल को प्रदेश के दूसरे हिस्सों में विस्तार देने की योजना है।

0: संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है।
1: अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं,
2: अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं,
3: क्योंकि हमने यह है।

0: प्रधानमंत्री फसल बीमा।
1: बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा।
2: योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी।
1: नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण।
2: फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण।
1: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।
3: रत्ना बहनी।
4: हाँ ओम भैया।
3: देखो हम पंचे अपन जब फसल के यहाँ तैयार करी थन तो कबो कबो ऐसे ऐसे चीजें वहमा हो जाती हैं फसल में यहाँ दिख जाते हैं, कहूँ पाती पीली पर रही है, कहूँ और कोने समस्या आ रही, तो वह चीज हम पंचे जाने नहीं पाए थन।
4: सही बात कहा, तो उनके खातिर जो है विशेषज्ञ भैया आवत है, वह बता सकते हैं कि भाई इनमें क्या समस्या है, उनका दिखाए सुनाए के हम पंच जान सके थे।
3: हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो। देखो ये सब पोषक तत्व की कमी तरह होते विशेषज्ञ भैया बतावा करते हैं, तो आओ आज की बात में यहाँ जान लीजिए।
4: बिल्कुल, तो खरीफ फसलों में पोटाश और गंधक प्रबंधन के बारे में यहाँ जाना जाए।
5: नमस्कार किसान भाइयों बहनों, इस समय आप खरीफ अभियान में लगे हैं। खरीफ फसलों में पोटाश और गंधक की भूख कैसे मिटे, इसके लिए क्या प्रबंधन करना है आपको, इसी विषय पर जानकारी के लिए आज हमारे साथ हैं वरिष्ठ कृषि वैज्ञानिक प्रोफेसर केएन तिवारी साहब। स्वागत है कार्यक्रम में। डॉक्टर साहब ये बताएं कि इस समय बहुत जगह बुआई और रोपाई हो चुकी है, किसान भाई बहन जो खरीफ फसलों में पोटाश और गंधक पोषक तत्व की कमी है उसकी भूख कैसे मिटाएं।
6: नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, आज की ये चर्चा जो पोटाश और गंधक के महत्व और उसकी जो कमी फसलों में हो रही है उसके बारे में हो रही है। आम तौर पर किसान जो है यूरिया और डीएपी का प्रयोग खरीफ फसलों में करता है और उसका नतीजा ये होता है कि पोटाश की कमी सारी फसलों में खरीफ की
5: जी
6: दिखाई दे रही है,
5: चाहे धान हो, दलहन हो, तिलहन हो, मक्का हो,
6: सब में आप देखिए उसकी नोके पुरानी पत्तियों की पीली होती हैं और किनारे किनारे वो झुलस जाती हैं।
5: तो किसान भाई अगर खेत पर पहुंचे तो पहचाने कैसे।
6: अभी पहचान ऐसे कर सकता है ना कि जो पुरानी पत्तियां हैं उसकी नोके पीली होनी शुरू होती हैं
5: जी,
6: और उसके बाद में वो पीलापन किनारे किनारे बढ़ता है और बाद में पोटाश की कमी की वजह से वो पीलापन झुलसा सा दिखाई देता है। ये पोटाश की कमी का लक्षण है और इसी तरह के लक्षण सारी फसलों में दिखाई देते हैं,
5: चाहे वो मक्का है, धान है, दलहनी फसलों में बाजरा, अरहर, उड़द, मूंग है,
6: बाजरा, ज्वार, अरहर, मूंग, लोबिया, ये सारी फसलों में आप इस तरह के लक्षण देखते हैं।
5: और तिलहनी फसलों में,
6: तिलहनी फसलों में जैसे मूंगफली है, तिल है, तो सोयाबीन बहुत सारे क्षेत्र में है, यूपी में तो कम है,
5: बुंदेलखंड में,
6: हाँ, तो इसमें भी इसी तरह के लक्षण दिखाई देते हैं।
5: तो डॉक्टर साहब जहाँ पोटाश की कमी के लक्षण दिख रहे हैं या जहाँ बुआई चल रही है, रुपाई चल रही है, तो पोटाश का प्रबंधन कैसे करें किसान भाई बहन।
6: पोटाश के प्रबंधन के लिए जो यूरिया डीएपी डालते हैं बुआई के समय या रुपाई के समय, उसमें पोटाश का प्रयोग अवश्य करना चाहिए
5: बेसल डोज में।
6: बेसल डोज में अगर बेसल डोज में नहीं कर पाए हैं, बहुत सारे धान की रुपाई हो गई है, मक्के की बुआई हो गई है, मूंगफली की बुआई हो गई है, तो खड़ी फसल में जिस फसल में टॉप ड्रेसिंग करते हैं,
5: हाँ,
6: जैसे धान है, अनाज वाली और फसलें हैं, ज्वार, बाजरा, मक्का, इनमें जो यूरिया की टॉप ड्रेसिंग करते हैं उसी के साथ पोटाश, म्यूरेटा पोटाश है, नेचुरल पोटाश भी अब उससे बन रहा है, सीरे से, शुगर इंडस्ट्री से, तो उसका प्रयोग कर दें टॉप ड्रेसिंग में।
5: कितनी मात्रा एकड़ पीछे डॉक्टर साहब।
6: अब एक एकड़ में मेरे ख्याल से कम 25 किलो तो डालें
5: जी।
6: लाल वाला पोटाश है,
5: हाँ, पूरे खेत में बिखेरना
6: और नेचुरल पोटाश को भी यूरिया के साथ डाल दें, उससे पोटाश की कमी दूर होने की संभावना पूरी रहती है। नहीं तो अगर इसके बाद भी इस तरह के लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो पोटेशियम सल्फेट जो 0050 आता है,
5: एनपीके जल
6: विलेय, हाँ, ये जल विलेय उर्वरक है, बड़ा कारगर उर्वरक है, इसका प्रयोग करना चाहिए।
5: तो इसकी कितनी मात्रा कितने पानी में।
6: देखिए इसका 1% का घोल बनाया जाता है, इसका मतलब कि 1 लीटर में 10 ग्राम और एक टंकी जो 15 लीटर की है उसमें 150 ग्राम, इतना मिला करके घोल बना लें और छिड़काव कर दें।
5: तो ये तो खड़ी फसल में कभी भी जब लक्षण दिखे कमी के पोटाश की तो
6: बिल्कुल
5: पानी छिड़काव,
6: हाँ बिल्कुल, ये बड़ा कारगर है और इससे

0: पोटास की भी कमी दूर हो जाती है और जो दूसरा तत्व इसमें है गंधक की भी हो जाती है।
1: कोई क्रांतिक अवस्था जिस पर इसका प्रयोग ज्यादा फायदेमंद होगा डॉक्टर साहब?
0: देखिए, जब फसल करीब करीब एक महीने की हो जाती है तो पोटास की कमी की वजह से इस तरह के लक्षण दिखाई देते हैं। और धान में जो क्रांतिक अवस्था है किले निकलने की, बढ़ने की फसल के, उस समय तो इसका प्रयोग, जब यूरिया का प्रयोग करते हैं इस तरह के लक्षण दिखाई दें तो पोटास का प्रयोग अवश्य करना चाहिए।
1: डॉक्टर साहब, अगर फसल में पोटास की आपूर्ति

0: फसल के, उस समय तो इसका प्रयोग, जब यूरिया का प्रयोग करते हैं इस तरह के लक्षण दिखाई दें तो पोटाश का प्रयोग अवश्य करना चाहिए।
1: डॉक्टर साहब, अगर फसल में पोटाश की आपूर्ति समय से है तो क्या क्या फायदा होगा, फसल में क्या दिखेगा?
0: देखिए, पोटाश बड़ा महत्वपूर्ण तत्व है।
1: तीसरा,
0: एक तो पौधे की वृद्धि अच्छी होगी और जो कीड़े बीमारी की समस्या आती है उससे फसल बच जाती है पोटाश की वजह से,
1: प्रतिरोधक क्षमता।
0: हाँ, इसके बाद जो सूखे और पाले की समस्या आती है, अब खरीफ में तो सूखे की समस्या आएगी या जल भराव की समस्या आएगी,
1: दोनों में।
0: हाँ, दोनों में ये बड़ा कारगर होता है।
1: और जो क्वालिटी है,
0: गुणवत्ता। हाँ, देखिए, अब इसके बाद उपज बढ़ेगी और जो उत्पाद की गुणवत्ता है उससे जो उत्पाद मिलेगा उसकी गुणवत्ता बढ़ जाएगी। और पोटाश को इसीलिए क्वालिटी न्यूट्रिएंट कहा जाता है कि माने अच्छी उपज भी और अच्छी गुणवत्ता भी।
1: डॉक्टर साहब, किसान भाइयों बहनों के मन में अभी भी ढेर सारे सवाल होंगे खरीफ फसलों में पोटाश और गंधक पोषक तत्व प्रबंधन के बारे में। अगर इसके लिए आपसे सीधे संपर्क करना चाहें तो अपना मोबाइल नंबर बता दें।
0: 750-510-3059 7505-103059।
1: चलते चलते और क्या आह्वान करना चाहते हैं किसान भाइयों बहनों का, खरीफ फसलों में पोटाश और गंधक पोषक तत्व प्रबंधन के बारे में? डॉक्टर साहब,
0: देखिए, ये दोनों पोषक तत्व जो हैं, पोटाश और गंधक, इनकी मिट्टी में भी कमी हो गई है और उस कमी की वजह से फसलों में इसके लक्षण दिखाई दे रहे हैं कमी के। और ये दोनों पोषक तत्व तो ऐसे हैं कि बीमारी कीड़े से बचत होती है, गंधक जो है वो प्रोटीन को बढ़ाता है, तेल की मात्रा को बढ़ाता है। इसके अलावा जो सबसे बड़ा फायदा गंधक का है कि जो फंगस रोग और इस तरह की बीमारियां हो रही हैं उसमें गंधक बहुत ही महत्वपूर्ण पोषक तत्व तो माना जाता है,
1: यानी फफूंदी नाशक के रूप में भी।
0: फफूंदी नाशक के रूप में भी। तो हमारा तो किसान भाइयों बहनों से ये निवेदन है कि आप किसी भी तरह से खाली यूरिया और डीएपी पर आश्रित न रहें, इन पोषक तत्वों की जमीन में कमी हो गई है तो ये दोनों पोषक तत्व तो यूरिया डीएपी के साथ में डालें और उसका लाभ उठाएं।
1: प्रोफेसर केएन तिवारी साहब, आज आप कार्यक्रम में आए और जो फसलों के आवश्यक पोषक तत्व हैं नाइट्रोजन और फास्फोरस के बाद तीसरा और चौथा पोषक तत्व है वो पोटेशियम यानी पोटाश और गंधक है, और इसका खरीफ फसलों में कैसे प्रबंधन करें किसान भाई बहन ताकि माटी और फसल की भूख मिट सके और फसल का पोषण अच्छा हो, उसकी अच्छी पैदावार मिले, अच्छा लाभ मिले। डॉक्टर साहब, आज कार्यक्रम में आने के लिए और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
2: रत्ना बहनी।
3: हाँ ओम भैया।
2: देखो, जब इतनी नीक नीक जानकारी मिल जाती है और अगर गीत गौनाई सुनाई मिल जाए तो कितना आनंद आ जाता है।
3: बिल्कुल सही बात कहा। तो काहे ना पंच भाई बहन का सबका जो है एक बढ़िया सी गौनाई सुनवा दिन जाए।
2: हाँ,
3: जो विकास गीत है चंद्रभूषण तिवारी की आवाज में।
2: हाँ बिल्कुल, आओ सुना जाए और पंचो सुने और आनंद ले।
3: बिल्कुल।

0: रत्ना बहनी।
1: हाँ भैया।
0: देखो अपने बीच मैया बहुत किसान पंच भाई होते हैं, जो उन अपन विशेषक भैया बतावत हैं वो अपनी खेती मैया नवाचार अपनाए किया, अपनी खेती मैया बढ़िया बढ़िया फसल उत्पादित करते हैं।
1: सही बात कहा तो ओ वैसे जो है हमहू पंच सीखे थे कि भाई कैसे बढ़िया करते हैं ये पंच, तो हमहू पंच करी हुई का।
0: तो आज देखो अपन किसान भैया आ चुके हैं और उनकी बतकही सुना जाए।
1: बिल्कुल।
2: नमस्कार किसान भाइयों बहनों, आज हमारे साथ एक ऐसे किसान हैं जो किसी परिचय के मोहताज नहीं, बहराइच जनपद के मिहपुरवा ब्लॉक के परवानी गौढ़ी गांव के शिवशंकर सिंह भैया, स्वागत है कार्यक्रम में। भैया आप प्राकृतिक खेती के लिए जाने जाते हैं, ये बताएं कि इस समय खरीफ में कौन कौन सी फसल आपके खेत में है?
3: किसान साथियों सबको नमस्कार। मैं काला नमक धान की खेती करता हूं। मैं इस साल 3 एकड़ काला नमक धान जो पारंपरिक है उसकी खेती किया हूं। मैं खेती प्राकृतिक विधि से गाय के मूत्र और गोबर से करता हूं। रासायनिक दवा रासायनिक खाद का उपयोग नहीं करता हूं।
2: तो ये शुरुआत कब से हुई काला नमक धान उत्पादन की आपकी?
3: मैं किसान दिवस में बहराइच आया था, वहाँ एक हमारे फखरपुर विधानसभा क्षेत्र के जागरूक किसान जयंकर सिंह जी थे, उन्होंने मुझे बताया प्राकृतिक कृषि के विषय में। मैं गाय पहले से ही पालता था, उन्होंने मुझे बताया कि एक गाय से 30 एकड़ की खेती की जा सकती है। मैंने इसको अतिशयोक्त मान करके उनके साथ जा करके सुभाष जी पालेकर जो प्राकृतिक वैज्ञानिक हैं उनका प्रशिक्षण लिया, लखनऊ में प्रशिक्षण लिया, झांसी में प्रशिक्षण लिया और भरतपुर राजस्थान में जाकर के प्रशिक्षण लेकर के मैं प्राकृतिक विधि खेती 2015 से शुरू किया।
2: यानी लगभग 11 साल हो गए प्राकृतिक खेती करते।
3: जी।
2: कुल खेती की जमीन कितनी है?
3: 6 एकड़।
2: 6 एकड़।
3: जी।
2: और 6 एकड़ में आप 3 एकड़ धान लगा रहे हैं?
3: मैं 3 एकड़ धान लगाया हूँ, 3 एकड़ खेत पलिहर रखा हूँ जिसमें कार्बनिक शक्ति बढ़ाने के लिए ढैंचा बो रखा हूँ।
2: अच्छा, बाद में पलटाई करेंगे?
3: हाँ, पलट करके उसमें सरसों की खेती लेंगे, सरसों के बाद उसमें मक्के की खेती लेंगे
2: गर्मी में।
3: जी।
2: तो ये आप सुगंधित धान में जो पारंपरिक काला नमक है उसको पैदा कर रहे हैं, ये कितने दिन से कर रहे हैं?
3: ये मैं 2015 से कर रहा हूँ।
2: यानी 11 साल उसको भी हो गए।
3: जी।
2: तो नर्सरी से लेकर के और रोपाई और फिर फसल की देखभाल में कौन कौन सी महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखते हैं?
3: महत्वपूर्ण विषय हमारे सामने प्राकृतिक खेती का है जिसमें गाय के मूत्र और गाय के गोबर

0: गुड़ बेसन से जीवामृत बनाता हूँ और खेती में डालता हूँ, और उसके बाद मैं पोषण के लिए, शक्ति के लिए उसमें गाय के गोबर का घन जीवामृत बनाता हूँ और बना करके खेत में डालता हूँ और धान की बैठौनी करता हूँ।
1: यानी फसल की भूख मिटाने के लिए आप जीवामृत और घन जीवामृत दोनों का प्रयोग करते
0: जी
1: हैं।
0: दोनों का प्रयोग करते।
1: लेकिन नर्सरी में कुछ खास?
0: नर्सरी में कुछ नहीं, केवल खेत को जोत करके पानी डाल करके घास को मार देता हूँ और उसके बाद उसमें वही जीवामृत डाल करके बीजामृत बनाता हूँ बीज संशोधन के लिए, और बीज संशोधित के बाद मैं उसी में धान को अंकुरित करके बीज डालता हूँ, नर्सरी तैयार करता हूँ।
1: तब तक जिस खेत में आपको काला नमक धान जो पारंपरिक वैरायटी है उसकी रोपाई करनी है उसकी तैयारी भी करते होंगे?
0: जी गेहूं कटने के बाद खेत को पलेवा करके जोत करके उसमें सनई या ढैंचा बो देता हूं और धान का बीज इतने अंतर पर डालता हूं कि कम से कम 50 दिन का ढैंचा हो जाए, उसके बाद पलट करके कार्बनिक शक्ति बढ़ाने के लिए पानी भर करके सड़ा देता हूं और नर्सरी तैयार हो जाता है। फिर लाइन से लाइन की दूरी 9 इंच, पौध से पौध की दूरी 8 इंच करके श्री विधि से मैं काला नमक धान लगाता हूं।
1: तो आपकी काला नमक धान की रोपाई हो गई पूरी?
0: काला नमक धान की पूरी रोपाई हो गई।
1: तो जब आप ढैंचा या सनई की पलटाई करते होंगे तो खेत का हीमोग्लोबिन बढ़ जाता होगा?
0: जी।
1: इस समय आपका खेत कैसा है, फसल कैसी है?
0: फसल हमारी बहुत बढ़िया है, उसमें हम जीवामृत डाल करके तब धान बैठाते हैं और फिर दूसरी सिंचाई करके उसमें जीवामृत डालेंगे। 3 बार मैं धान में सिंचाई के, या बरसात होती है तो जीवामृत बना बना करके प्रति एकड़ 200 लीटर
1: अच्छा।
0: डालता हूँ, और डाल करके 3 बार के बाद फिर जीवामृत बना करके हर 15 दिन पर अपने धान की फसल या गेहूं की फसल में उसका छिड़काव करता हूँ।
1: तो उसका असर क्या दिखता है खेत में?
0: खेत में, हमारे खेत में केचुआ बहुत हैं, जमीन हमारी बहुत बढ़िया उपजाऊ है और हमारा पैदावार घटता नहीं, रासायनिक खेती से ज़्यादा मुझे इसमें मुनाफा है, लाभ है, खर्चा मेरा कुछ नहीं है, जमीन मेरी ताकतवर है, शक्तिशाली है।
1: जो बिन बुलाए मेहमान खेत में उगते हैं यानी खरपतवारों का प्रबंधन कैसे करते हैं?
0: आच्छादन से।
1: अच्छा।
0: हमारे यहाँ एक आच्छादन विधि है, आच्छादन विधि का लाभ यह है कि घास नहीं जमेगी, ह्यूमस तैयार होगा, उसके नीचे छाए में केचुआ पैदा होगा।
1: तो रोपाई के कितने दिन बाद मल्चिंग यानी आच्छादन बिछाते हैं?
0: आच्छादन 3 तरह का होता है, एक आच्छादन होता है सजीव आच्छादन जो फसल के साथ होता है, एक आच्छादन होता है काष्ठ आच्छादन, एक आच्छादन होता है गर्मी में जोताई करके मल्चिंग करके। मैं इस वक्त जो करता हूँ, जैसे ढैंचा, कुछ ढैंचा तो मैं खेत में बो देता हूँ और बोने के बाद काट करके उसको सुखवा लेता हूँ। वो जो धान की रोपाई लाइन से लाइन की दूरी 9 इंच होती है, उस बीच में मैं अपने उस ढैंचे को बिछा देता हूँ ताकि उसके छाए में घास जमने न पावे।
1: तो ढैंचे का डंठल?
0: हाँ, डंठल
1: सुखा के रखते?
0: सुखा के रखते हैं और उसी को उसमें बिछा देता हूँ ताकि हमारी काष्ठ आच्छादन हो जाए जिसमें ह्यूमस बने, केचुआ तैयार हो और हमारे खेत में घास न जमने।
1: चूंकि आप पिछले 11 वर्षों से प्राकृतिक खेती से जुड़े हैं और काला नमक धान पैदा भी कर रहे हैं, तो एकड़ में लागत कितना गिरती है, उत्पादन कितना ले लेते हैं एकड़ में, और आपका मुनाफा होता कितना है?
0: किसान साथियों, 1 एकड़ में मेरा ज़्यादा से ज़्यादा खर्च 1 ट्राली गोबर, 200 लीटर जीवामृत, ये लगता है कुल मिलाकर के मेरा लागत मूल्य 5,000 से 6,000 रुपया प्रति एकड़ आता है। और मेरा धान यदि 10 क्विंटल एकड़ का हुआ या 7.5 क्विंटल प्रति एकड़ हुआ तो हमारा 1,00,000 रुपया एकड़ का धान पैदा हो गया, तो हमें 1 एकड़ में 1,00,000 रुपया उत्पादन हुआ और खर्चा हुआ 5,000 से 7,000 रुपया, तो मुझे मुनाफा तिगुना होता है।
1: बहुत सारे किसान भाई बहन उत्सुक होंगे आपसे मिलने के लिए या आपसे बात करने के लिए, तो अपना मोबाइल नंबर बता दें।
0: मेरा मोबाइल नंबर 89 48 97 91 8948 89 97 51 89 48 89 97 51।
1: चलते चलते और क्या कुछ कहना चाहते हैं अपनी कहानी के बारे में?
0: किसान भाइयों, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि हम किसानों का खुशहाल जीवन तभी होगा जब हम प्राकृतिक खेती अपनाएंगे। इससे हमारा भविष्य सुरक्षित होगा, हमारी आने वाली संतानें सुदृढ़ होंगी, सुरक्षित होंगी। इसलिए

0: सबसे निवेदन है कि आप गौ पालन करिए और प्राकृतिक खेती ही करिए।
1: शिव शंकर सिंह भैया, आज आप कार्यक्रम में आए लगभग 11 साल पहले से, आप 6 एकड़ में प्राकृतिक खेती कर रहे हैं। इस समय काला नमक धान 3 एकड़ आपके खेत में खड़ा है, जिसको आप प्राकृतिक खेती के तरीके से उत्पादन कर रहे हैं। कुल मिला जुला करके आप खुशहाल हैं। आज कार्यक्रम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
2: प्रधानमंत्री किसान मानधन।

0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित
1: और 60 वर्ष की आयु से 3000 रुपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित।
0: 55 रुपए से 200 रुपए की मासिक किस्त देकर प्रवेश कर सकते हैं 18 से 40 वर्ष तक के किसान।
1: इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान।
0: सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं
1: और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं।
0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर।
2: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: ओम भैया।
4: हाँ रत्ना भैया।
3: देखो हम पंच खेती जो करी थे वह जो है अपने मौसम के आधार पर करी थे और मौसम की अगर नीक नीक जानकारी रहा थे तो वही के हिसाब से जो अपन खेती होते वह बहुत नीके से हुई जाते है। तो काहे न पंच भाई बहन इनका मौसम की जानकारी दिवा दी जाए।
4: तो रत्ना बहनी जो मौसम के हाल प्रादुर्भाव है भारत सरकार पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय भारत मौसम विज्ञान विभाग प्रादेशिक मौसम केंद्र लखनऊ तेरे अगले 7 दिनन का जो वर्षा का पूर्वानुमान है 11 अगस्त 12 13 14 15 16 अगस्त तक का पश्चिमी उत्तर प्रदेश का पहले बताया दी संभाग में कुछ स्थानन पर वर्षा गरज चमक के साथ बौछारे पड़े की बहुत संभावना है। वही के साथ जो है पूर्वी उत्तर प्रदेश में संभाग में कहूँ कहूँ पर वर्षा गरज चमक के साथ बौछारे पड़े की बहुत संभावना है। वही के अलावा जो 15 अगस्त का है पूर्वी उत्तर प्रदेश में संभाग में लगभग सभी स्थानों पर वर्षा गरज चमक के साथ बौछारे पड़े की बहुत संभावना है।
3: और देखो भैया जो मौसम संबंधी चेतावनी है वो जरूर जान लें कि 11 अगस्त यानी कि आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश में यहाँ जो है संभाग में कहूँ कहूँ मेघ गर्जन के साथ वज्रपात की संभावना है तो बहुत सावधानी से रहें। और 14 अगस्त से लगाए के 17 अगस्त तक में कहूँ कहूँ संभाग पर बर्खा होने की संभावना है। साथ ही में यहाँ पूर्वी उत्तर प्रदेश में आज 11 और कल 12 में कोई चेतावनी नहीं है लेकिन वही के बाद कहूँ कहूँ बर्खा होने की संभावना है तो वही हिसाब से काम करें।
4: तो रत्ना बहनी यू तो रहा मौसम का हाल। जब मौसम का हाल हम पंचन का पता चल जाते हैं तो हम पंचे अपने खेती पाती का काम वही अनुसार निपटाए लेते हैं जैसे हम पंचन का कोनो नुकसान ना हो फसल में या अपनी और वही के साथ साथ जो नपज छप्पा छानी है वह हम पंचे ठीक ठाक कर लेते हैं। ना तो कबो कबो कहा होते कि जब सही तरह हम पंचे तैयारी नहीं कर पाए थे अचानक मान लो बसे लाग जानकारी नहीं है तो बड़ी समस्या हो जाते।
3: ओम भैया अपने पंच भाई बहनी जो उनका कुछ नीक लागत है या कुछ कहा चाहते हैं तो उनके खातिर जो है हम पंचन का अपनी चिट्ठी पत्री के माध्यम से बता सकते हैं तो उसके खातिर आप पता बता दो।
4: बिल्कुल रत्ना बहनी देखो पता है अपने कार्यक्रम का कार्यक्रम किसानवाड़ी द्वारा केंद्र निदेशक 18 विधानसभा मार्ग आकाशवाणी लखनऊ जो पिन कोड है 226001
3: और साथ में यहाँ ईमेल आईडी बता दो।
4: हाँ ईमेल आईडी जरूर नोट कर ले काहे तेरे दन दे भेजे सन दे अपने तीर पहुँचे ईमेल। तो ईमेल आईडी है farmandhomeairlko@gmail.com। रत्ना बहनी।
3: हाँ ओम भैया।
4: देखो घड़ी कर रही अब इशारा और चले खोए रही बिरिया और पंचन तेरे लीन जाए आज्ञा।
5: जय हिंद।

0: किसान भाई, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम किसान वाणी। आकाशवाणी का ये लखनऊ केंद्र है।
1: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुरकुरदास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे,
2: अरे रमुआ ये पंखा क्यों खुला छोड़ा, बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा।
1: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं।

क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है। और हुकुम सिंह भी, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in पर।

0: पीएम फसल बीमा योजना से करीब 2 लाख करोड़ रुपए क्लेम के रूप में किसानों को मिले हैं।
1: मैं 15-20 वर्षों से खेती कर रहा हूँ, मेरे पास 3 हेक्टेयर लगभग जमीन है। प्रधानमंत्री फसल बीमा हमें आर्थिक मदद करती है। समय 23-24 में खरीफ की फसल में 48,900 रुपए मिला। हमारे जो संपर्की किसान है मैं उनको समझाऊंगा बताऊंगा, जैसे मुझे सहायता प्राप्त हुई है ऐसे अन्य लोगों को भी हो।
2: खरीफ फसल बीमा के लिए शीघ्र पंजीकरण कराएं।
3: बैंक शाखा, बीमा कंपनी, कृषि ऋण समिति, जन सेवा केंद्र से संपर्क करें।
2: फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 1-4447 पर कॉल करें।
4: फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ।
5: आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत के संकल्प के साथ हर घर पर तिरंगा फहराने का किया आह्वान। प्रदेश भर में निकाली जा रही हैं तिरंगा यात्राएं। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सीईओ की नियुक्ति के लिए आज से साक्षात्कार शुरू। 2 सितंबर को ट्रस्ट की बैठक में होगा ऐलान। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संत कबीर नगर को 684 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की दी सौगात। कहा, बहराइच से खलीलाबाद तक निर्माणाधीन रेलवे लाइन बनेगी जनपद के विकास का आधार। और सावन की शिवरात्रि पर प्रदेश के शिव मंदिरों में उमड़ी भक्तों की भीड़। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच जलाभिषेक कर रहे हैं श्रद्धालु। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं शैलेंद्र, और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागरिकों से स्वतंत्रता दिवस को गर्व के साथ मनाने का आह्वान किया है। एक वीडियो संदेश में प्रधानमंत्री ने सभी से स्वतंत्रता सेनानियों का सम्मान करने और विकसित भारत के संकल्प के साथ हर घर पर तिरंगा फहराने की अपील की।
0: आइए 15 अगस्त को आन बान शान से मनाएं, स्वतंत्र सेनानियों को श्रद्धांजलि दें, विकसित भारत का संकल्प लें। हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा, हर मन तिरंगा।
5: प्रदेश में भी हर घर तिरंगा अभियान के तहत सभी जनपदों में कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। प्रदेश के अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने कहा कि हर घर तिरंगा अभियान में प्रदेश के सभी मदरसे भी भाग लेंगे। उन्होंने बताया, मदरसों में तिरंगा फहराने, राष्ट्रगान और देशभक्ति से जुड़े कार्यक्रम आयोजित करने के निर्देश दे दिए गए हैं।
6: इस अभियान से उत्तर प्रदेश के जो तमाम मदरसे वो भी जुड़ेंगे। हमने मदरसा के तमाम छात्रों से भी अपील की है, अपने प्रमुख सचिव को भी निर्देशित किया, डिपार्टमेंट को भी निर्देशित किया है कि उत्तर प्रदेश के हर मदरसे इस अभियान से जुड़े, अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों में इस अभियान को हम ले जाएं और हर व्यक्ति देशभक्ति के भावना से ओतप्रोत हो। इस अभियान का जो मकसद है उसको हम धरातल पर ले जाएंगे।
5: उधर इटावा में हर घर तिरंगा अभियान के तहत भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने तिरंगा बाइक यात्रा का आयोजन किया। वाराणसी में भी इस अभियान के तहत चिरई गांव विकास खंड में तिरंगा यात्रा निकाली गई। तिरंगा यात्रा से पहले खंड विकास अधिकारी रिया सैनी ने छात्र छात्राओं को सम्मानित किया। उधर जौनपुर के परिषदीय विद्यालयों में हर घर तिरंगा अभियान के तहत रंगोली, पोस्टर मेकिंग, कविता लेखन जैसी रचनात्मक और देशभक्ति से जुड़ी गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है। अयोध्या में श्री राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के पहले मुख्य कार्यकारी अधिकारी की नियुक्ति के लिए आज से साक्षात्कार शुरू हो गया है। इस पद के लिए करीब 5,200 आवेदन आए थे, जिनकी स्क्रीनिंग के बाद 18 अभ्यर्थियों को अंतिम चरण के लिए चुना गया है। पेश है एक रिपोर्ट।
7: राम मंदिर ट्रस्ट के सीईओ पद के लिए राम मंदिर परिसर स्थित पिलग्रिम फैसिलिटेशन सेंटर में आज 9 लोगों का साक्षात्कार लिया गया। बाकी बचे 9 लोगों को इंटरव्यू के लिए कल बुलाया जाएगा। 3 सदस्यीय चयन समिति इंटरव्यू के बाद चयनित

0: व्यक्ति की जानकारी ट्रस्ट को सौंपेगी। इस फैसले पर 2 सितंबर को होने वाली ट्रस्ट की बैठक में अंतिम मोहर लगेगी। तन्मय सोनी, आकाशवाणी समाचार, अयोध्या।
1: वहीं राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में जेल में बंद 8 आरोपियों की न्यायिक हिरासत 12 दिन और बढ़ा दी गई है। विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम रजत वर्मा की अदालत में कल हुई सुनवाई के बाद आरोपितों को 22 अगस्त तक न्यायिक हिरासत में रखने का निर्देश दिया गया। इस मामले में बचाव पक्ष के वकील ने न्यायालय में आरोपियों पर से भ्रष्टाचार निवारण की धाराओं को हटाने की भी अर्जी दी है, जिस पर कल सुनवाई होगी। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि गुमशुदा व्यक्तियों की उम्र या लिंग चाहे जो भी हो, उसकी गुमशुदगी पर तुरंत प्राथमिकी दर्ज करना अनिवार्य है। न्यायमूर्ति एहसानुद्दीन अमानुल्लाह और न्यायमूर्ति आर महादेवन की पीठ ने इसका पालन नहीं करने वाले राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को ये निर्देश दिया है। पेश है एक रिपोर्ट।
2: शीर्ष न्यायालय ने इसका अनुपालन न करने वाले राज्यों के मुख्य सचिवों और पुलिस प्रमुखों को अदालत के समक्ष पेश होकर ये बताने का निर्देश दिया है कि उनके खिलाफ अवमानना की कार्रवाई क्यों नहीं शुरू की जानी चाहिए। मामले की अगली सुनवाई 5 अक्टूबर को होगी। न्यायालय ने इससे पहले पुलिस को सभी गुमशुदा व्यक्तियों के मामलों में बिना किसी प्रारंभिक जाँच के तुरंत प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया था। अदालत ने गुमशुदा बच्चों का पता लगाने और उनकी सुरक्षा के लिए भी उपाय लागू किए थे। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
1: ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज संत कबीरनगर में 684 करोड़ रुपए की लागत वाली 201 विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि बहराइच से खलीलाबाद तक बन रही रेलवे लाइन संत कबीरनगर के विकास का आधार बनेगी। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में संत कबीरनगर में भी विकास प्राधिकरण के गठन की कार्यवाही को आगे बढ़ाया जाएगा, जिससे जिले के विकास को गति मिलेगी।
3: आज जो ये सड़कें बन रही हैं, ये जो बाईपास बन रहे हैं, ये जो बस स्टेशन बन रहे हैं, बहराइच से लेकर के बांसी होते हुए खल्लाबाद तक जो ये रेलवे लाइन बन रही है, ये रेलवे लाइन ये विकास करेगी, बेहतर कनेक्टिविटी देगी। और हम लोगों ने तय किया है, लैंड बैंक जैसे ही यहाँ का तैयार होगा तो हम लोग संत कबीर नगर में भी एक विकास प्राधिकरण के गठन की कार्रवाई को आगे बढ़ाएंगे।
1: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज गोरखपुर में 70 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित सुनौली नौतनवा गोरखपुर मार्ग से माधोपुर मंदिर तक टू लेन मार्ग का लोकार्पण किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इस मार्ग की कनेक्टिविटी से अब वाराणसी, लखनऊ, नेपाल, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, बलरामपुर आदि स्थानों पर जाने वालों को शहर के अंदर जाने की जरूरत नहीं होगी। उन्होंने कहा कि आज गोरखपुर का हर मार्ग 4 लेन से जुड़ रहा है। यहां लगातार हो रहे विकास कार्यों से गोरखपुर की नई पहचान बनी है।
4: अब बदलता हुआ गोरखपुर दिखाई देता है। पहले संकरा मार्ग था, लोग चल फिर नहीं पाते थे, जल जमा होता था। अब विकास के ढेर सारे कार्य आज गोरखपुर को एक नई पहचान दिला रहे हैं। आज गोरखपुर का हर मार्ग 4 लेन की सड़क से जुड़ चुका है, फ्लाईओवर बन रहे हैं, बहुत सारे बनकर के तैयार हो भी गए हैं। ये सभी कार्य इसलिए जिससे आपके जीवन में सुगमता हो, आसानी हो, आपको इन सभी सुविधाओं का लाभ प्राप्त हो सके।
1: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे कल ग्रेटर नोएडा में 3 दिवसीय इंडिया बायो एनर्जी एंड टेक एक्सपो 2026 का उद्घाटन। इससे पहले आज ऊर्जा मंत्री ने इस एक्सपो का अनौपचारिक शुभारंभ किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए ऊर्जा मंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश आज देश में ऊर्जा परिवर्तन, हरित विकास और निवेश का सबसे बड़ा केंद्र बन रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य का लक्ष्य न केवल बायो एनर्जी में भारत का नेतृत्व करना है, बल्कि प्रदेश को हरित ऊर्जा प्रौद्योगिकियों के लिए वैश्विक स्तर पर मान्यता प्राप्त गंतव्य के रूप में स्थापित करना है। सावन के शिवरात्रि के पावन अवसर पर आज प्रदेश के शिव मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ रही है। बागपत के ऐतिहासिक परशुरामेश्वर महादेव मंदिर में जलाभिषेक करने के लिए भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। वाराणसी के श्री काशी

0: विश्वनाथ धाम में भी बाबा के जलाभिषेक के लिए श्रद्धालुओं और कांवड़ियों का सैलाब उमड़ रहा है। भोर में मंगला आरती के बाद से ही बाबा विश्वनाथ के पावन ज्योतिर्लिंग के जलाभिषेक और दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की लंबी कतारें लग गई हैं। जलाभिषेक के लिए पहुंचे श्रद्धालुओं में बड़ी तादाद में प्रयागराज से आए कांवड़िये शामिल हैं। हापुड़ के गढ़मुक्तेश्वर समेत अन्य शिव मंदिरों में भी श्रद्धालु जलाभिषेक कर मंगल कामना कर रहे हैं। पेश है एक रिपोर्ट।
1: जनपद हापुड़ में सावन मास की महाशिवरात्रि पर मंदिरों में सुबह से ही भगवान आशुतोष को जलाभिषेक करने के लिए कांवड़ियों और श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी, जिससे वातावरण शिवमय बना रहा। जनपद हापुड़ के गढ़मुक्तेश्वर के मुक्तेश्वर महादेव, कल्याणपुर के कल्याणेश्वर महादेव, प्राचीन शिव मंदिर सबली, सरावा के झाड़खंडी महादेव के अलावा जनपद के सभी शिवालयों में श्रद्धालुओं ने गंगा जल, बेलपत्र, आंख धतूरा, चंदन आदि से भगवान आशुतोष का अभिषेक किया। मंदिरों की सुरक्षा व्यवस्था के पुलिस प्रशासन द्वारा पुख्ता इंतजाम किए गए। रविन्द्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, हापुड़।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत के संकल्प के साथ हर घर पर तिरंगा फहराने का किया आह्वान। प्रदेश भर में निकाली जा रही हैं तिरंगा यात्राएं। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सीईओ की नियुक्ति के लिए आज से साक्षात्कार शुरू। 2 सितंबर को ट्रस्ट की बैठक में होगा ऐलान। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संत कबीर नगर को 684 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की दी सौगात। कहा, बहराइच से खलीलाबाद तक निर्माणाधीन रेलवे लाइन बनेगी जनपद के विकास का आधार। और सावन की शिवरात्रि पर प्रदेश के शिव मंदिरों में उमड़ी भक्तों की भीड़। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच जलाभिषेक कर रहे हैं श्रद्धालु। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
2: ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। पीडीएम वेब 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर प्रस्तुत है संस्कृत कार्यक्रम। आज इसमें सुनिए डॉक्टर शक्तिधर पन्नाथ पांडे की वार्ता संस्कृत साहित्य वर्षा वर्णनम।
3: संस्कृत वाङ्मयम् खलु विशालम् अत्र वेदोपनिषत् पुराणानि महाकाव्यानि खण्डकाव्यादीनि समुल्लसन्तीति को न जानाति। वाङ्मयस्यास्य वर्णन वैविध्येन सहैव प्रकृति वर्णन बाहुल्यं दर्शं दर्शं तत्सौन्दर्यं माधुर्यं च पायं पायं तल्लालित्यं स्मारं स्मारं नभ्यतां भवितां श्रावं श्रावमत्सये न लौकिकम् अनुपमं परमानंद मनुभवन्ति न केवलं भारतीय मनीषिणः अपि तु वैदेशिकाः विद्वांसश्च। लोकरंगे सौंदर्यमयी सुरूपमयी प्रकृतिनटीयं मुहुर्मुहुः अवलोक्यते। सा प्रकृतिनटीयं यस्योत्संगे नरी नर्ति सा जनजीवनहितसंदर्शिनी कृषक कार्य निर्देशिनी सर्वसमुन्नति कारिणी सर्वप्रसादयित्री समृद्धि साधयित्री जीवन संचारयित्री अपार संसार धात्रीव जलमयी शिवमूर्तिः केषां मनो नरमयति। ग्रीष्मर्तोः तापातिशयादुद्विग्नाः न केवलं सामान्याः जनाः किन्तु संतो महान्तो धीमन्तः श्रीमन्तोऽपि हसन्तः सन्तः मेघाडम्बरं प्रतीक्षन्ते। वर्षर्तोः मेघमालेयं यदा नौ वारिबिन्दुभिः प्रीणाति पुष्णाति तदा सामान्या अपि आबालनरनार्यः आमोदन्ते तरामिति तदा सहृदयानां सुकुमारमतीनां कवीनां कथं न रंसते चेतः। अतएव हि प्रत्नादिवाङ्मयवेदारभ्याधुना काव्यपर्यन्तं कविवरैर्महतोत्साहेन वर्षावर्णनकृतमित्यत्र नास्ति शङ्कावसरः। अवसरेऽस्मिन् प्रथमं तावत् विविधज्ञानविज्ञानभूतेषु संस्कृतेराधाररूपेषु वेदेषु वर्षर्तोः स्वरूपं प्रस्तूयते। यत्र वर्षावर्णनाय पर्जन्यसूक्तमेव समुल्लसतीत्यनेन सुकुमारमतीनां ऋषीणां महर्षीणां प्रकृतिप्रेम प्रेमैवाभिलक्ष्यते। उपमालङ्कारसहकारमिश्रोऽयं मन्त्रः यत्र रथस्वामी

धरई सुरेन्द्र वर्षर्तौ मेघाडम्बरे नभसि जलातिशय प्लुतायां धरायां तमसावृतासु दिक्षु तत्शब्दचित्रं प्रस्तौति चादिकवि घनोपगूढं गगनं न तारा न भास्करो दर्शनमभ्युपैति न वैर्जलौघैर्धरणी प्रतृप्ता तमो विलिप्ता न दिशः प्रकाशः एवमेव पुराणमूर्धन्ये श्रीमद्भागवत महापुराणेपि वर्षर्तो भूरिशो वर्णनमस्ति विशेषतो ध्यातव्यमस्ति एतद् वर्णन वैशिष्ट्याधारीकृत्यैव भक्त कवि गोस्वामी पदभाजा तुलसीदासेन स्वामर महाकाव्ये रामचरित मानसे किष्किंधाकांडे वर्षर्त वर्णनम कृतमिति सूर्यान सूर्योद्भासते संदर्भेस्मिन् प्रस्तूयन्ते कच्चित् श्लोकाः श्रुत्वा परजन्य निनदं मंडूका विसजन गिरः तूष्णीं सयाना प्राग यद्वद् ब्राह्मण नियमाते भाषानुवादः चौपाई पद्ये।

सुहाई, वेद पढ़ई जनु बटु समुदाई। किरयो वर्ष धाराभिर्हन्यमानान बिभथु, अविभूयमाना व्यसनै यथा धोक्षज चेतसः। हिंदी पद्यानुवाद। बूंद अघात सहि गिरि कैसे, खल के वचन संत सहजैसे। मार्गा बभू संदिग्धास्तृणैश्छन्ना हि संस्कृताः, नाभ्यस्यमाना श्रुतयो दुजै कालहतायुव। हिंदी पद्यानुवाद। हरित भूमि तृण संकुल समुझ परई नहीं पंथ, जिमि पाखंड विवादते गुप्त हुई सदग्रंथ। आसन्न उत्पथ वाहिन्यः क्षुद्र नद्यो नुसुस्ती, पुंसो यथा स्वतंत्र से देह द्रविण संपदः। भावानुवाद। हिंदी भाषायां। क्षुद्र नदी भरी चली तोराई, जस थोरे उधन खलई तराई। लोकबंधु सुमेघेशु विद्युतश्चल सौहृदा, स्थैर्यम न चक्रु कामिन्यः पुरुषेषु गुणिषु। तदनुवाद। दामिनी दमक रहे न घन माही, खल की प्रीति यथा थिर नाही। किम बहुना संपूर्णाध्याय वर्षर्तो हो मनोहारी वर्णम, सहृदयानाम मनांसि आवर्जयति। तस्यैव एक मनोद्यम पद्यम साहित्याध्वनीना नाम कृते अतीव रमणीयं मनोहरञ्च वरीवर्ति। यत्र उत्प्रेक्षालंकार झंकारेण कविर वर्णयति, यत् लोहितैरिन्द्रगोपैः हरितैः घासैः धौलोच्छिलीन्द्रैरेवं प्रतिभाति, यत् कस्यचित् नृपस्यानीकनी बहुवर्णिका अग्रसरेति सौंदर्य माधुर्या कूति। हरिता हरिभिषस्पै रिन्द्रगोपैश्च लोहिता, उच्छलीन्द्रकृतच्छायानृणां श्रीर्विभूरभूत्। अस्पष्टमेव यथा श्रीमद्भागवतस्य श्लोकार्धे वर्षत्वर्णम् उत्तरार्धे नीतिवर्णम्, तथैव रामचरितमानसेऽपि कविनाङ्गीकृतमिति श्रीमद्भागवतस्य महत्त्वातिशयमेवावलोक्यते। कविता कामनी कान्तः कविकुल गुरुः कालिदासः, कस्य नावर्जयति चेतः सचेतसः। सन्दर्भेऽस्मिन् कालिदासानवद्यानि पद्यानि विना वर्णनमिदं निश्चयमेव अपूर्णतां यास्यति। मेघदूतमहाकाव्यं मेघसमर्पितमेवानेन तस्य महाकवेः मेघालोकं प्रति विशेषाग्रहोऽभिलक्ष्यते। गीतकाव्यस्य मन्दाक्रान्ता छन्दोबद्धा श्लोकोऽयं निश्चयमेव सहृदयानां चेताः चमत्करिष्यति। यत्र वर्षारम्भे नवजलबिन्दुनिपातेन औत्सुक्येन कृषकबालाः कृषैराधारभूतान् श्यामलान् अम्बुबाः नवलोकयन्ति। त्वय्यायत्तं कृषिफलमिदं भ्रूविलासानभिज्ञै, प्रीतिस्निग्धैर्जनपदवधूलोचनै पीयमानः। सद्यः शीरोत्कषणसुरभिक्षेत्रमारुह्यमालं, किञ्चित्पश्चात् व्रजलघुगतिर्भूय एवोत्तरेण। कालिदासस्य प्रथमे काव्ये ऋतुसंहारे वर्षर्तोः सत्सु श्लोक बहुलेषु दिङ्मात्रोदाहरणानि उपस्थाप्यन्ते। भूयो भूयो गर्जं गर्जं मेघाडम्बरं विलोक्य मोदमानाः शोभमानाः मयूराः, कथं भ्रामं भ्रामं मयूरीभिः समं बर्हान् प्रसारे नृत्यन्तीत्यहो काव्यानन्दमयं मनोहरं पद्यं। सदा मयोग्यं स्वनदुत्सवोत्सुकम्।

परिणाम वर्षर्तो प्रवासिनाम प्रवासित्वेन क्लेश मन भूए मानानाम प्रमदा जनानाम मनोहरम दृश्यमवलोक्यताम विलोचनेन्दी वरवारि बिंदुवी निषिक्त बिंबाधर चारु पल्लवा निरस्त माल्या भरणानुलेपना स्थिता निराशा प्रमदा जनानाम। श्रृंगार

0: रसोप्रोतम पद्महो श्रावयितुम उत्सुकोहम यत्र मणीनाम भूषणो लसितेषु स्तनेषु मुक्ताभरणानि शोभन्ते तराम सौमेव नववर्षाम्बुभि रोमराजयः परहसिता अवलोक्यन्ते इति महाकवेः कल्पना प्ररोहा समुल्लसतीति दधति वरकुचाग्रैरुन्नतैर्हारयष्टि प्रतनु शितदुकूलान्यायतैः श्रोणबिम्बैः नवजलकणसेकादुद्गतां रोमराजीं ललितबलिविभङ्गैर्मध्यदेशश्च नार्यः गद्यकाव्यमपि काव्यस्य महत्वपूर्णः पक्षः संस्कृतगद्यकाव्येषु प्रकृतिवर्णक्रमे महाकविः वर्षतोः वर्णनमपि कृतमिति निश्चयं सत्यञ्च वचः।
1: संस्कृत कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर शक्तिधर नाथ पांडे की वार्ता संस्कृत साहित्य वर्षा वर्णनम। आकाशवाणी का यह प्रयागराज केंद्र है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर प्रस्तुत है सुगम संगीत का कार्यक्रम। आज की कलाकार हैं अमृता मालवीय। पहले सुनते हैं इनसे भजन, रचना है मीराबाई की।

अमृता मालवीय के गाए इस वचन के साथ ही सुगम संगीत का ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। हमारा अगला कार्यक्रम बस थोड़ी ही देर में, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

मंत्री अर्जुन राम मेघवाल द्वारा जवाब दिए जाने के बाद विधेयक को ध्वनिमत से पारित कर दिया। इससे पहले सदन ने विपक्ष द्वारा पेश संशोधनों को ध्वनिमत से खारिज कर दिया। लोकसभा इस विधेयक को पहले ही पारित कर चुकी है। चर्चा के दौरान कांग्रेस सहित कई विपक्षी दलों के सदस्यों ने अयोध्या के राम मंदिर से चढ़ावे की कथित चोरी पर चर्चा और प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों पर पुलिस की कार्रवाई पर गृहमंत्री अमित शाह के जवाब की मांग को लेकर नारेबाजी करते हुए सदन से वॉकआउट किया। विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए श्री मेघवाल ने कहा कि ये विधेयक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में चल रही सुधार एक्सप्रेस का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि ये विधेयक न्यायाधिकरणों के अधिकार क्षेत्र को बदलने का नहीं है, बल्कि इसका प्रमुख उद्देश्य विभिन्न न्यायाधिकरणों के अध्यक्षों और सदस्यों की नियुक्ति के लिए दक्षता बढ़ाने के साथ स्वतंत्रता, पारदर्शिता और पात्रता संबंधी मानदंडों में एकरूपता सुनिश्चित करना है। विधेयक पर हुई चर्चा में भाग लेते हुए सदस्यों ने कहा कि देश में न्यायाधिकरण व्यवस्था को मजबूत करने से अदालतों में लंबित बोझ को कम करने में मदद मिलेगी। कुछ सदस्यों ने कहा कि राष्ट्रीय आयोग के गठन से न्यायाधिकरणों के गठन में पारदर्शिता बढ़ेगी। आम आदमी पार्टी के संजय सिंह ने कहा कि उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय में अनुसूचित जाति तथा जनजाति के न्यायाधीशों की बहुत कम नियुक्ति की जा रही है। इस पर चर्चा में हस्तक्षेप करते हुए संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि उच्च न्यायपालिका में न्यायाधीशों की नियुक्ति कॉलेजियम करता है। इस मामले में केंद्र सरकार की भूमिका केवल कॉलेजियम की सिफारिशों को मंजूरी देना भर ही है। उन्होंने कहा कि वह देश के पहले ऐसे आदिवासी हैं जो कानून मंत्री बने तथा डॉ बी.आर. अम्बेडकर के बाद कानून मंत्री बनने वाले दूसरे बौद्ध हैं। श्री मेघवाल ने कहा कि इस विधेयक में राष्ट्रीय न्यायाधिकरण आयोग के गठन का भी प्रावधान किया गया है। प्रस्तावित आयोग का मुख्यालय राष्ट्रीय राजधानी में होगा और इसमें एक अध्यक्ष तथा चार सदस्य होंगे। इनमें दो न्यायिक और दो तकनीकी सदस्य होंगे। उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश या उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश इस प्रस्तावित आयोग के अध्यक्ष पद के लिए पात्र होंगे। विधेयक के मसौदे के अनुसार उच्चतम न्यायालय ने हाल में न्यायाधिकरण सुधार अधिनियम 2021 के कुछ प्रावधानों को इस आधार पर निरस्त कर दिया था कि वे शक्तियों के पृथककरण और न्यायिक स्वतंत्रता के सिद्धांतों के विपरीत हैं। उच्चतम न्यायालय ने एक ऐसे राष्ट्रीय न्यायाधिकरण आयोग के गठन का भी निर्देश दिया था जो स्वतंत्र हो, जिसमें पेशेवर विशेषज्ञता हो तथा विभिन्न न्यायाधिकरणों के अध्यक्षों और सदस्यों के चयन तथा नियुक्ति के लिए पारदर्शी प्रक्रिया और निगरानी व्यवस्था अपनाई जाए। इस विधेयक के कानून का रूप लेने के बाद 2021 का अधिनियम निरस्त हो जाएगा। चर्चा में बीजत के सस्मित पात्रा, द्रमुक के तिरुचि शिवा, वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के एस निरंजन रेड्डी, आम आदमी पार्टी के संजय सिंह, रांगकापा के राजेंद्र हीरालाल जैन, तेलुगु देशम पार्टी के भाष्यम रामकृष्ण, भाजपा के सुभाष बराला, डॉ सतीश पुनिया, सुजीत कुमार, महेश केवट, स्वाति मालीवाल, मयंक कुमार नायक, बसपा के रामजी, बीएसआर के रविन्द्र चंद्र वद्दे राजू और अन्ना द्रमुक के आईएस इनबादुरे ने भी हिस्सा लिया। विधेयक पर चर्चा में हिस्सा लेते हुए द्रमुक के तिरुचि शिवा ने कहा कि आयोग के अध्यक्ष का मनोनयन भारत के प्रधान न्यायाधीश के परामर्श से किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि यह भी देखना चाहिए कि न्यायाधीश के न्यायाधिकरण के आदेश का पालन किया जा रहा है या नहीं। बीजत के सस्मित पात्रा ने विधेयक का समर्थन करते हुए कहा कि न्यायाधिकरण सुधार केवल न्यायाधिकरण सुधार ही नहीं है, बल्कि यह प्रशासनिक सुधार भी है। उन्होंने कहा कि नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल को भी इस विधेयक में शामिल किया जाना चाहिए।

वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के एस निरंजन रेड्डी ने विधेयक का समर्थन करते हुए कहा कि प्रस्तावित आयोग में एक अध्यक्ष तथा चार सदस्य होंगे। इनमें दो न्यायिक और दो तकनीकी सदस्य होंगे। इनका चयन सावधानी से और उत्कृष्टता के आधार पर किया जाना चाहिए। अन्नाद्रमुक सदस्य आईएस इन्बादुरे ने कहा कि नेशनल ट्रिब्यूनल डेटा ग्रिड कामकाज में पारदर्शिता लाने में मददगार होगा। उन्होंने कहा कि न्यायाधिकरण में रिक्तियों को यथाशीघ्र भरा जाना चाहिए। बीआरएस के रविचंद्र वद्दीराजू ने कहा कि आयोग को निष्पक्ष तथा स्वतंत्र होकर काम करना चाहिए और समय समय पर उसके काम की समीक्षा की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि न्यायाधिकरणों की पीठ में पर्याप्त सुविधाएं होनी चाहिए। भाजपा की स्वाति मालीवाल ने कहा कि राष्ट्रीय न्यायाधिकरण आयोग को यह अधिकार दिया जाए कि वह समय समय पर यह विश्लेषण करे कि किन न्यायाधिकरणों में क्षेत्रीय पीठों की जरूरत है। मंत्री के जवाब के बाद विधेयक को ध्वनि मत से मंजूरी दे दी गई। इससे पहले जब न्यायाधिकरण सुधार विधेयक पर चर्चा शुरू हुई तब उपसभापति हरिवंश ने सदस्यों से केवल विधेयक से जुड़े विषय पर बोलने का आग्रह किया। उन्होंने शुरुआत में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे को बोलने की अनुमति नहीं दी। इस पर विपक्षी सदस्यों ने नेता प्रतिपक्ष बोलने दो के नारे लगाए और हंगामा किया। विपक्षी सांसदों ने व्यवस्था के प्रश्न उठाने का प्रयास किया। उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह के सदन में आने की भी मांग की तथा राम मंदिर में चंदे की कथित चोरी को लेकर नारा लगाए। उपसभापति हरिवंश ने श्री खड़गे को बोलने की अनुमति दी लेकिन उन्हें सदन में चल रहे कार्य यानी विधेयक पर ही अपनी बात रखने को कहा। श्री खड़गे ने राम मंदिर मुद्दे पर बोलने का प्रयास किया लेकिन आसन ने इसकी अनुमति नहीं दी। उपसभापति ने अगले वक्ता का नाम पुकारा। इस पर विरोध व्यक्त करते हुए INDI गठबंधन दलों के सदस्यों ने सदन से बहिर्गमन किया। हालांकि विधेयक पर चर्चा जारी रही और कानून मंत्री के जवाब के बाद उसे ध्वनि मत से पारित कर दिया गया। इसके बाद उच्च सदन में विशेष उल्लेख लिया गया। विशेष उल्लेख के जरिए अन्नाद्रमुक के IS इन्बादुरे, भाजपा के ब्रजलाल, जोगेन मोहन, डॉक्टर के लक्ष्मण, लक्ष्मी वर्मा, कविता पाटीदार, सुभाष बराला, सुष्मिता देव, स्वाति मालीवाल, एस सिल्वा गनबेती, मनोनीत सुधा मूर्ति और YSR कांग्रेस पार्टी के गिल्ला बाबूराव ने लोक महत्व से जुड़े विभिन्न मुद्दे उठाए और सरकार से उनके समाधान का अनुरोध किया। इसके बाद शाम 4:30 पर उच्च सदन की बैठक को कल सुबह 11 तक के लिए स्थगित कर दिया गया। इससे पहले अयोध्या स्थित राम मंदिर में चढ़ावे की कथित चोरी के मुद्दे को लेकर विपक्षी सदस्यों के लगातार हंगामे के

संबंधित नया मुद्दा उठाने की मांगी। नेता प्रतिपक्ष के इतना कहते ही सत्ता पक्ष के सदस्यों ने विरोध शुरू कर दिया। हंगामे के बीच सभापति ने सदन की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। जब सदन की कार्यवाही दोबारा शुरू हुई तो सभापति राधाकृष्णन ने प्रश्नकाल शुरू करने को कहा। इसी दौरान कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे खड़े हुए और राम मंदिर में चंदे की कथित चोरी का मुद्दा उठाने की मांग की। सभापति ने उन्हें इसकी अनुमति नहीं दी और कहा कि उन्होंने सत्ता पक्ष के सदस्यों को भी झारखंड से जुड़ा मुद्दा उठाने की अनुमति नहीं दी थी, क्योंकि वह राज्य का विषय है। राधाकृष्णन ने कहा कि विपक्ष के नेता राज्य से जुड़े विषय को उठा रहे हैं, इसलिए इसे प्रोत्साहित नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि विपक्ष को हर दिन एक ही विषय उठाकर सदन की कार्यवाही बाधित करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। सभापति ने कहा कि आप जिस विषय को उठा रहे हैं वह राज्य का विषय है और इसे स्वीकार नहीं किया जाएगा। सत्तापक्ष के सदस्य भी कुछ राज्य से जुड़े मुद्दे उठाना चाहते थे, लेकिन मैंने उन्हें भी यह अनुमति नहीं दी। वे झारखंड का मुद्दा उठाना चाहते थे और मैंने कहा कि यह राज्य का विषय है, मैं किसी भी राज्य के विषय को उठाने की अनुमति नहीं दूंगा। सभापति ने श्री खड़गे और हंगामा कर रहे अन्य सदस्यों से अपनी सीट पर बैठने को कहा और सूचीबद्ध प्रश्न लेकर कार्यवाही आगे बढ़ाने का प्रयास किया। इसके बाद भी विपक्षी सदस्यों का हंगामा और नारेबाजी जारी रहने पर सभापति ने सदन की कार्यवाही

0: दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। अब सुनिए लोकसभा में हुई कार्यवाही की समीक्षा। लेखक हैं पीटीआई भाषा के वैभव माहेश्वरी। अयोध्या के राम मंदिर में कथित चढ़ावा चोरी के मुद्दे पर चर्चा और दिल्ली में प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों पर पुलिस कार्रवाई को लेकर गृहमंत्री अमित शाह के बयान की मांग कर रहे कांग्रेस और समाजवादी पार्टी समेत विपक्षी दलों के हंगामे के कारण आज लोकसभा की कार्यवाही एक बार के स्थगन के बाद अपराह्न 2:25 पर दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। हंगामे के बीच ही सदन ने केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 और राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक 2026 को चर्चा के बिना ध्वनि मत से पारित कर दिया। संसद के मॉनसून सत्र के चौथे सप्ताह के दूसरे दिन की कार्यवाही भी पिछले 3 सप्ताह की तरह हंगामेदार रही और आज भी सदन में प्रश्नकाल तथा शून्यकाल नहीं चल सके। एक बार के स्थगन के बाद अपराह्न 2 बजे सदन की बैठक शुरू हुई तो गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 चर्चा और पारित करने के लिए पेश किया। उन्होंने कहा कि केरल की 15वीं विधानसभा ने 14 जून 2024 को संकल्प पारित कर केंद्र सरकार से अपील की थी कि संविधान के अनुच्छेद 3 के अनुसार राज्य का नाम बदलकर केरलम करने के लिए तत्काल कदम उठाए जाए। श्री राय ने कहा कि केरल सरकार ने इसका कारण दिया कि मलयालम भाषा में राज्य का नाम केरलम है, लेकिन संविधान की पहली अनुसूची में इसे केरल दर्ज किया गया है। इस दौरान विपक्षी दलों के सांसद अयोध्या के राम मंदिर से चढ़ावे की कथित चोरी पर सदन में चर्चा और प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों पर पुलिस की कार्रवाई पर गृहमंत्री शाह की जवाब की मांग को लेकर नारेबाजी कर रहे थे। हंगामे के बीच ही सदन ने ध्वनिमत से विधेयक को पारित कर दिया। इसके बाद सहकारिता राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल ने राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक 2026 को चर्चा और पारित करने के लिए पेश किया। इस विधेयक का उद्देश्य राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम एनसीडीसी के अधिकार क्षेत्र का विस्तार करना है। उन्होंने कहा कि एनसीडीसी का कार्य सहकारी समितियों के माध्यम से कृषि उपज, खाद्य पदार्थों, औद्योगिक उत्पादन और पशुधन संबंधी सेवाओं तक सीमित था, लेकिन अब एनसीडीसी प्रसंस्करण, भंडारण, विपणन, आयात और निर्यात से संबंधित योजना बनाने और उन्हें लागू करने का भी काम कर रहे हैं। विधेयक के अंतर्गत एनसीडीसी को सहकारी समितियों या इस क्षेत्र के विकास में लगी किसी भी इकाई को सीधे ऋण और अनुदान देने का अधिकार मिल सकेगा। सदन ने इस विधेयक को भी चर्चा के बिना ध्वनि मत से पारित कर दिया। पीठासीन सभापति कृष्ण प्रसाद तेनेट्टी ने हंगामा कर रहे विपक्षी सदस्यों से अपने स्थान पर जाकर बैठने और विधेयकों पर चर्चा में भाग लेने का बार बार आग्रह किया। उन्होंने कहा कि बहुत महत्वपूर्ण विधेयक पारित हो रहे हैं, आप लोग सीट पर जाकर बैठिए। तेनेट्टी ने कहा कि विपक्षी सांसदों ने केरल का नाम बदलकर केरलम करने से संबंधित महत्वपूर्ण विधेयक पर भी नहीं बोला। हंगामा नहीं थमने पर उन्होंने सदन की कार्यवाही सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। इससे पहले आज सदन की कार्यवाही 11 बजे शुरू हुई तो कांग्रेस और सपा समेत विपक्षी दलों के सदस्य अयोध्या के राम मंदिर में कथित चढ़ावा चोरी के मुद्दे पर चर्चा और दिल्ली में प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों पर पुलिस कार्रवाई के मुद्दे पर गृहमंत्री अमित शाह के बयान की मांग करते हुए हंगामा करने लगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने विपक्षी दलों से सदन की कार्यवाही चलाने में सहयोग की अपील करते हुए कहा कि जब विद्यार्थियों के आंदोलन पर गृहमंत्री अमित शाह के जवाब की मांग पर सरकार ने सहमति दे दी है तो फिर विपक्ष को सदन चलने देना चाहिए। श्री बिरला ने कहा कि सदन सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों को मिलकर चलाना चाहिए। देश की जनता चाहती है कि सदन चले और सभी विषयों पर चर्चा हो। उन्होंने कहा कि सोमवार को कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में भी उन्होंने सभी दलों से सदन चलाने का आग्रह किया था। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि मैंने व्यक्तिगत रूप से कई बार आग्रह किया कि प्रश्नकाल सबसे महत्वपूर्ण होता है, इसमें सत्ता की जवाबदेही तय होती है और कार्यपालिका में पारदर्शिता आती है। विपक्ष की विद्यार्थियों से संबंधित प्रमुख मांग का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में स्पष्ट किया कि गृह मंत्री इस विषय पर जवाब देने के लिए तैयार हैं, इसलिए अब आप सदन चलने दें। उन्होंने सदन के भीतर तख्तियां लाने पर भी आपत्ति व्यक्त की और कहा कि यह संसदीय मर्यादाओं के अनुरूप नहीं है। लोकसभा अध्यक्ष ने विपक्षी सदस्यों से सहयोग की अपील करते हुए कहा कि आप लोग सहयोग करें, सदन नहीं चलने से मन व्यथित होता है। हंगामा नहीं थमने पर उन्होंने 11:04 पर सदन की बैठक अपराह्न 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। अभी आप संसद में हुई आज की कार्यवाही की समीक्षा सुन रहे थे।
1: आकाशवाणी का ये लखनऊ केंद्र है।

आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर। लीजिए सुनिए रूपक साहित्य के उन नायक मुंशी प्रेमचंद। आलेख है रण विजय सिंह सत्य केतु का।

0: 31 जुलाई 1880 श्रावण शुक्ल षष्ठी शनिवार को लम्ही में गुरु सहाय राय के पोते के जन्म पर महिलाएं सोहर गा रही थीं। हस्त नक्षत्र और सिद्धि योग के शुभ संयोग में बच्चे के आगमन पर गांव घर में खुशियां छाई हुई थीं। पिता अजय राय और माता आनंदी देवी की प्रसन्नता का कोई ठिकाना नहीं था। चाचा महावीर ने गर्व से कहा, हमारे घर नवाब पधारे हैं।
1: सावन का महीना भारतीय संस्कृति में नवजीवन, करुणा, हरियाली और सृजन का प्रतीक माना जाता है। शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि वृद्धि, विकास और मंगल की सूचक है। मानो प्रकृति स्वयं एक ऐसे साहित्य मनीषी के आगमन की तैयारी कर रही थी, जिसकी लेखनी किसानों की मेहनत, मजदूरों के श्रम, स्त्रियों की पीड़ा, दलितों की वेदना और सामान्य जन के संघर्ष को अमर कर देगी।
0: सचमुच धनपत राय उर्फ नवाब राय उर्फ प्रेमचंद का आगमन परिवार, समाज और साहित्य के लिए आवश्यक बारिश की तरह साबित हुआ, जिसने समझदारी के सूखेपन को एकरस बौछार से खत्म करने में महती भूमिका निभाई। अपनी सर्जना से वैचारिक हरियाली फैलाने वाले प्रेमचंद को हालांकि जीवन भर कष्टकारी और चुनौती भरे बादलों की टकराहटों का सामना करना पड़ा, लेकिन सच का रास्ता कभी नहीं छोड़ा।
1: संघर्षपूर्ण और अभावग्रस्त जीवन को कलात्मक आधार देकर बाहर भीतर के यथार्थ को साहस और प्रतिबद्धता के साथ उद्घाटित करने का श्रेय प्रेमचंद को जाता है। जीवन की विसंगतियों, समाज की रूढ़ियों, धर्म के पाखंडों, राजनीति के कुचक्रों को ठीक ठीक पहचानने के साथ प्रेमचंद ने अपने विचार और व्यवहार से उन पर करारा प्रहार किया। मनोरंजन में डूबे, प्रशस्तियों में खोए साहित्य को हकीकत का आधार दिया।
0: बालक धनपत को कहानियां सुनने का बहुत शौक था, जिसे उनकी दादी पूरा करती थीं। कहानियां सुनने के बीच में वह सवाल भी खूब किया करते थे। दादी समझ गईं कि धनपत बहुत जिज्ञासु हैं।
2: धनपत, दादी कह रही थी कि तुम पढ़ाई करना चाहते हो।
3: जी बाबूजी, मैं पढ़ना चाहता हूँ, नई बातें सीखना चाहता हूँ, अच्छी अच्छी कहानियां जानना चाहता हूँ।
2: ठीक है, कल ही तुम्हारा दाखिला करवा देता हूँ, ध्यान लगाकर सीखना।
3: जी बाबूजी, मैं मन लगाकर पढ़ूंगा।
1: 7 वर्ष की आयु में बालक धनपत राय का दाखिला पास के मदरसे में करवा दिया गया, लेकिन अगले ही वर्ष परिवार में मातम छा गया। धनपत की माँ आनंदी देवी दुनिया से चल बसी। इतना ही नहीं, कुछ ही समय बाद धनपत को पालने वाली दादी का भी निधन हो गया। जल्द विवाह होने से बहन ससुराल चली गई, बालक धनपत अकेला रह गया।
0: घर चलाने के लिए पिता अजय राय ने दूसरा विवाह कर लिया और 9वीं कक्षा में पढ़ रहे धनपत राय की शादी भी करवा दी। लेकिन धनपत को न सौतेली माँ से प्यार मिला, न ही पत्नी से अपनापन हासिल हुआ। घर में रोज रोज झगड़े होने लगे। इसी बीच पिता भी दुनिया छोड़ गए। 17 साल के धनपत राय पर परिवार चलाने की पूरी जिम्मेदारी आ गई।
1: छोटे से जीवन की इस उठापटक में धनपत का

0: मैट्रिक का रिजल्ट खराब हो गया, आगे की पढ़ाई छूट गई। ऐसे में धनपत ने बनारस के एक वकील साहब के बेटे को पढ़ाना शुरू किया। उसके एवज में उन्हें 5 रुपए महीना मिलता था, 3 रुपए घर भेजता, 2 रुपए में अपना काम चलाता। कुछ समय बाद चुनार के एक मिशनरी स्कूल में 18 रुपए महीने की पगार पर पढ़ाने का काम मिला। इसके अलावा एक छात्र को 5 रुपए माहवार पर पढ़ाना शुरू किया।
1: जब धनपत 20 साल के हुए, बहराइच के सरकारी जिला विद्यालय में सहायक शिक्षक के रूप में 20 रुपए महीने की नौकरी मिल गई। 3 महीने बाद प्रतापगढ़ के सरकारी जिला विद्यालय में उनका तबादला हो गया। फिर इलाहाबाद में ट्रेनिंग के बाद कानपुर ट्रांसफर हुआ, जहां वह 1905 से 1909 तक रहे। यहां उन्होंने 1906 में फतेहपुर की शिवरानी देवी से दूसरा विवाह किया, जो बाल विधवा थी। इस क्रांतिकारी कदम के लिए धनपत राय को सामाजिक विरोध का सामना करना पड़ा।
2: अरे ये तो सरासर गलत है, अनैतिक है। अरे विधवा से विवाह धर्म और संस्कृति का सरासर अपमान है।
3: अरे भैया हमारे समाज के लिए कलंक है भाई, इसका बहिष्कार किया जाना चाहिए।
4: अरे तो इतना उबल काहे रहे हो भैया, सुना है लेखक है, खुले विचारों का है।
2: अरे तो क्या हम बंद विचारों के हैं? अरे रीति रिवाज तोड़ना कैसे खुला विचार हो गया?
3: अरे भैया देख लो एक बात बता दें, विशुद्ध भारतीय परंपरा का मखौल उड़ाना अगर खुला विचार है तो हमको नहीं चाहिए।
4: अरे तो अब क्या कर लेंगे, शादी तो हो ही गई है, और ये भी बात है बहुत सख्त आदमी है, हिलेगा नहीं।
0: कई मायनों में कानपुर प्रवास धनपत राय के लिए युगांतकारी सिद्ध हुआ। वहां उनकी मित्रता जमाना के संपादक मुंशी दया नारायण निगम से हुई, जिन्होंने धनपत राय के कई लेख, कहानियां और धारावाहिक उपन्यास प्रकाशित किए। हालांकि उसके पहले भी वो नवाब राय के नाम से असरारे माबिद, हम खुरमाओ हम सवाब, कृष्णा जैसे उपन्यास लिख चुके थे। गुलामी का दौर था, आजादी के प्रयास जारी थे। 1907 में नवाब राय ने भी देशभक्ति से भरी कहानियों का संग्रह सोजे वतन निकाला, जो अंग्रेज सरकार को पसंद नहीं आया। हमीरपुर के कलेक्टर जेम्स सैमुअल स्टीवेंसन ने राजद्रोह के आरोप में सोजे वतन को प्रतिबंधित कर सारी प्रतियां जला डाली।
5: क्या तुम ही नवाब राय हो?
6: जी मैं ही नवाब राय हूँ।
5: सोजे वतन तुमने लिखा है?
6: जी मैंने ही लिखा है।
5: सरकारी आदमी होकर भी सरकार के खिलाफ लोगों को भड़काते हो?
6: मेरा काम केवल लोगों को सही राह दिखाना है।
5: शराब सरकार बहादुर की नजर में ये राजद्रोह है। तुम्हारी किताब लोगों में विद्रोह फैला रही है, इसलिए इसे जब्त किया जाता है। सिपाहियों इसके कमरे की तलाशी लो, सोजे वतन की सारी प्रतियां जला डालो।
1: सोजे वतन की 500 प्रतियां जब्त कर जला डाली गईं। उस समय धनपत राय उर्फ नवाब राय हमीरपुर में डिप्टी स्कूल इंस्पेक्टर के तौर पर कार्यरत थे। जिला कलेक्टर को नाराज करने का मतलब नौकरी से हाथ धोना था, लेकिन लिखना छोड़ देना भी उन्हें गवारा नहीं था। तब मुंशी दया नारायण निगम की सलाह पर धनपत राय ने नवाब राय की जगह प्रेमचंद नाम अपनाया। इसी के साथ उन्होंने उर्दू की जगह हिंदी में लिखना शुरू किया। प्रेमचंद के रूप में हिंदी को अपना सिरमौर लेखक मिला, जिसने साहित्य की दशा और दिशा ही बदल दी। यही नाम भारतीय साहित्य की सबसे बड़ी पहचान बना।
0: प्रेमचंद ने रूढ़ियों के लिए समाज को झकझोरा, पाखंड के लिए धर्माधिकारियों को ललकारा, दलितों के उत्थान की आवाज बुलंद की, स्त्रियों की दशा सुधारने की राह दिखाई। राजाओं, सामंतों, पंडितों, पुरोहितों और पटवारी अधिकारियों को शोषक दिखाकर मजदूर, किसान, दलित, शोषित, विधवा, अशक्त स्त्रियों को अपनी कहानियों और उपन्यासों का मुख्य पात्र बनाया। साहित्य को केवल मनोरंजन का माध्यम नहीं माना, बल्कि उसे समाज का दर्पण और परिवर्तन का साधन बनाया। गोदान, गबन, निर्मला, कर्मभूमि, रंगभूमि जैसी कालजयी कृतियां लिखकर लोगों को मनुष्यता, न्याय और संवेदना का पाठ पढ़ाया।
1: एक साधारण अध्यापक असाधारण लेखक

0: बन गया। संघर्ष और मुश्किलों के आगे वह टूटा नहीं, बल्कि समाज को राह दिखाने वाला सामर्थ्यवान किस्सागो बन गया। रूढ़ियों, अतार्किक रिवाजों की मुखालिफत कर सार्थक साहित्य के निर्माण को अपना धर्म बना लिया।
1: देश में आजादी के आंदोलन ने रफ्तार पकड़ ली। महात्मा गांधी ने सरकार का सहयोग छोड़ने का आह्वान किया। प्रेमचंद ने उस पर अमल किया। खुद अस्वस्थ होने, दो बच्चों और गर्भवती पत्नी के भरण पोषण की जिम्मेदारी होने के बावजूद उन्होंने नौकरी से त्यागपत्र दे दिया।
0: इसके बाद साहित्य का निर्माण ही उनके जीवन का मुख्य ध्येय हो गया। 1906 से 1936 के बीच लिखा गया प्रेमचंद का साहित्य इन 30 वर्षों का सामाजिक सांस्कृतिक दस्तावेज है, जिसे प्रेमचंद युग के नाम से जाना जाता है। उनकी रचनाओं में उस दौर के समाज सुधारक आंदोलनों, स्वाधीनता संग्राम और प्रगतिवादी अभियानों के सामाजिक प्रभावों का स्पष्ट चित्रण है। दहेज, अनमेल विवाह, पराधीनता, लगान, छुआछूत, जाति भेद, विधवा विवाह, अंधविश्वास बनाम आधुनिकता, स्त्री पुरुष समानता जैसी सभी प्रमुख समस्याओं पर उन्होंने अपनी लेखनी चलाई।
1: 1936 में लखनऊ में आयोजित प्रगतिशील लेखक संघ के प्रथम अधिवेशन में अध्यक्षीय भाषण देते हुए प्रेमचंद ने भाषा और साहित्य के उद्देश्य पर सटीक बातें की, जो आज भी मानक और प्रासंगिक है।
2: भाषा साधन है, साध्य नहीं। अब हमारी भाषा ने वो रूप प्राप्त कर लिया है कि हम भाषा से आगे बढ़कर भाव की ओर ध्यान दें और इस पर विचार करें कि जिस उद्देश्य से ये निर्माण कार्य आरंभ किया गया था वो क्यों कर पूरा हो। जो दलित हैं, पीड़ित हैं, चाहे वो व्यक्ति हो या समूह, उसकी हिमायत और वकालत करना साहित्यकार का फर्ज है। साहित्य की बहुत सी परिभाषाएं की गई हैं, पर मेरे विचार से उसकी सर्वोत्तम परिभाषा जीवन की आलोचना है, चाहे वो निबंध के रूप में हो, चाहे कहानियों के या काव्य के। उसे हमारे जीवन की आलोचना और व्याख्या करनी चाहिए। हम साहित्य को केवल मनोरंजन और विलासिता की वस्तु नहीं समझते। हमारी कसौटी पर वही साहित्य खरा उतरेगा जिसमें उच्च चिंतन हो, स्वाधीनता का भाव हो, सौंदर्य का सार हो, सृजन की आत्मा हो, जीवन की सच्चाइयों का प्रकाश हो, जो हम में गति और बेचैनी पैदा करे। सुलाए नहीं, क्योंकि अब और ज्यादा सोना मृत्यु का लक्षण है। कौन?
3: बाबूजी, मैं हल्कू।
2: अरे हल्कू, कैसे हो भाई?
3: हाड़ तोड़ मेहनत के बावजूद न खेत सुरक्षित है न फसल। बाबूजी, तब भी भूखा था, आज भी भूखा हूँ। क्या मेरी कहानी कभी नहीं बदलेगी?
2: कहानी अकेले समाज नहीं बदलती हल्कू, वो समाज को सोचने पर विवश करती है। लेकिन यदि लोग सोचना समझना छोड़ दें तो कहानी कैसे बदलेगी भला? अरे निर्मला, तुम इतनी दूर सकुचाई क्यों खड़ी हो? क्या बात है?
4: दहेज की आग में जीवन जल रहे हैं, परिवार टूट रहे हैं। मेरी पीड़ा जस की तस है भैया जी।
2: जब तक बेटी बोझ बनी रहेगी, विवाह में सौदेबाजी होती रहेगी, तब तक तुम्हारी कहानी नहीं बदल सकती निर्मला। लोभ और दिखावा जीवन को नष्ट कर देते हैं, चरित्र को गिरा देते हैं।
5: सर नमस्कार।
2: ओहो प्रोफेसर मालती, क्या हाल है?
5: संतोषजनक नहीं है।
2: वो क्यों भला? अब तो महिलाएं पढ़ लिख कर ऊंचे और जिम्मेदार पदों पर पहुंच रही हैं।
5: हाँ, मगर उन्हें सिर्फ अपना विकास दिखाई दे रहा है। सेवा और त्याग को तो पितृसत्ता की चोचले समझती हैं। अच्छी नौकरी, आला परिवेश के कारण उनका इनकलाब सिर्फ आलेखों, गोष्ठियों और मंचों तक सीमित हो गया है। अब धनिया, झुनिया, सिलिया के दुखों और संघर्षों से उनका कोई वास्ता नहीं रह गया है।
2: हमारी वास्तविक स्त्री शक्ति तो खेतों, खदानों और कारखानों में खप रही है।

0: हाट बाजारों में, मेलों में बिखरे बालों, मैले कुचैले कपड़ों और पसीनों से लथपथ माँ बहनों के प्रति जब तक सम्मान और जिम्मेदारी का भाव नहीं आएगा, विकास की कोई भी झलक अधूरी रहेगी। उनकी स्थिति में बेहतरी के लिए यहाँ उन उपासकों की आवश्यकता है जिन्होंने सेवा को ही अपने जीवन की सार्थकता मान लिया हो, जिनके दिल में दर्द की तड़प हो और मोहब्बत का जोश हो। अपनी इज्जत तो अपने हाथ है।
1: प्रेमचंद की लेखनी ने देश को सिर्फ कहानियां और उपन्यास नहीं दिए बल्कि सोचने की दृष्टि दी, अन्याय के विरुद्ध खड़े होने का साहस दिया।
2: आप लोग कृपया शांत हो जाइए, हमारे सम्मानित अतिथि सभागार में मौजूद हैं। आप सबके प्रश्नों की पर्चियां हमें मिल गई हैं, अब एक एक कर हम उनके जवाब जानेंगे। तो सबसे पहले प्रेमचंद के चहेते लेखक और उनके मित्र जैनेन्द्र कुमार से प्रश्न पूछते हैं। जैनेन्द्र जी, प्रेमचंद को आप किस रूप में जानते हैं?
3: देखिए, प्रेमचंद महान यथार्थवादी थे। वैचारिक दृढ़ता और मानवीय संवेदनाओं के मामले में उनका कोई सानी नहीं, वे साहित्य के पुरखा हैं।
2: इसे थोड़ा और स्पष्ट करें।
3: प्रेमचंद साहित्य में केवल समस्याओं का उल्लेख नहीं करते बल्कि उन समस्याओं की तह तक जाकर मानवीय मन के सत्य को छूते हैं।
2: एक साहित्यकार के बारे में उनके क्या विचार थे?
3: लेखन के उद्देश्य के बारे में उनके दृष्टिकोण से मैं बेहद प्रभावित रहा। वह स्पष्ट कहते थे कि साहित्यकार को जीवन की सच्चाइयों से पर्दा हटाने में पीछे नहीं हटना चाहिए।
2: अच्छा जैनेन्द्र जी, एक शब्द में प्रेमचंद को आप क्या कहेंगे?
3: भारत का मैक्सिम गोर्की।
2: और अब सवाल प्रेमचंद साहित्य के अध्येता डॉक्टर इंद्रनाथ मदान से। मदान जी, प्रेमचंद जी ने कहानियां क्यों लिखी?
4: देखिए, प्रेमचंद ने पाठकों के मनोरंजन या वासना संबंधी जिज्ञासा शांत करने के लिए कहानियां नहीं लिखी। उनके लिए कला का स्तर बहुत ऊंचा था, जहां कहानियां और उपन्यास जीवन की सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक समस्याओं को व्यक्त करने के साधन थे।
2: अच्छा, वो आदर्श और यथार्थ का संतुलन कैसे करते थे?
4: प्रेमचंद का साहित्य एक ओर जहां शोषित और पीड़ित वर्ग की समस्याओं का यथार्थ चित्रण करता है, वहीं वो समाज में नैतिकता, सेवा, त्याग और पवित्रता का आदर्श भी स्थापित करते हैं।
2: बिल्कुल। अच्छा, प्रेमचंद स्त्रियों के बारे में क्या सोचते थे?
4: प्रेमचंद स्त्री के कामुक या विलासिनी रूप की अपेक्षा उस छवि को महत्व देते हैं जो परिवार और समाज की धुरी है। मेरे अनुसार प्रेमचंद के साहित्य में आदर्श, त्याग, सेवा और पवित्रता ही नारी का वास्तविक आदर्श है।
2: आप प्रेमचंद को किस रूप में देखते हैं?
4: प्रेमचंद ऐसे यथार्थवादी और प्रगतिशील रचनाकार थे जो साहित्य को समाज परिवर्तन और जन जागरूकता का माध्यम मानते थे।
2: बिल्कुल।
0: सौभाग्य से अब हमारे बीच प्रेमचंद की धर्म पत्नी शिवरानी देवी मौजूद हैं, जो खुद भी अच्छी लेखिका हैं। आइए उनसे ही जानते हैं कि वो प्रेमचंद को किस नजर से देखती हैं। शिवरानी जी, कृपया बताइए।
5: मैं तो उनकी सहधर्मिनी रही अच्छा ही कहूंगी। खैर, मजाक की बात अलग है। वास्तव में प्रेमचंद बेहद सादा जीवन जीने वाले, संवेदनशील और स्त्रियों की स्वतंत्रता के प्रबल समर्थक थे।
0: अच्छा, उनकी पसंद क्या थी?
5: उन्हें धन दौलत की बजाय ज्ञान प्राप्त करना और समाज सेवा करना बहुत प्रिय था। आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होने के बावजूद वो अपनी छोटी मोटी कमाई भी अक्सर जरूरतमंदों में बांट देते थे।
0: और उनका स्वभाव कैसा था?
5: अगर आप उनके स्वभाव की बात करें तो मैं तो बस यही कहूँगी कि वे केवल एक लेखक नहीं थे, वो आम लोगों के प्रति गहरी सहानुभूति रखने वाले इंसान थे। दूसरों के दुख को देखकर द्रवित हो जाया करते थे।
0: वो आपके साथ कैसा व्यवहार करते थे?
5: अगर मेरे प्रति उनके व्यवहार की बात है तो मैं तो समझती हूँ कि मुझे एक स्वतंत्र व्यक्तित्व मानते थे। घर परिवार के महत्वपूर्ण निर्णयों में मेरी राय का वो पूरा सम्मान करते थे।
0: आपको कभी लगा नहीं कि वो

0: पितृसत्ता के पोषक हैं?
1: नहीं, कभी नहीं। अपनी प्रसिद्धि के साये में कभी मुझे उन्होंने दबने नहीं दिया। मैं खुद एक लेखिका थी, स्वतंत्रता सेनानी भी रही। प्रेमचंद जी मेरी इस साहसी और स्वतंत्र छवि का बहुत आदर करते थे, सम्मान करते थे। मैं एक साधारण शिक्षक की बीवी थी, मुझे घर की स्थिति का भान था, उसे संवारना मेरी जिम्मेदारी थी।
0: पर घर संवारना तो दोनों की जिम्मेदारी बनती है।
1: देखिए, आप क्या कहना चाहते हैं वो मैं खूब समझती हूँ। इतना जान लीजिए, आधुनिकता का मतलब सहभागिता को भुला देना नहीं है। बालक और किशोर प्रेमचंद ने अपनी दादी, अम्मा और बहन से बहुत कुछ सीखा, लेकिन सौतेली माँ और पहली बीवी ने उन्हें अच्छी तरह से सिखा दिया। यही फर्क है जिसे प्रेमचंद जीवन भर नहीं भूले। आप भी मत भूलिए।
0: बिल्कुल सही कहा, किसी को नहीं भूलना चाहिए। अब हम प्रेमचंद के बेटे अमृत राय जी से जानना चाहेंगे कि वो उनके बारे में क्या सोचते हैं। कलम का सिपाही लिखकर उन्होंने अपना पक्ष हम सबके सामने रख दिया है, फिर भी आज उनके मुख से ही सुनेंगे। अमृत राय जी,
2: बिल्कुल, प्रेमचंद जी कोई शांत या समझौतावादी लेखक नहीं थे, बल्कि एक योद्धा थे। उनकी कलम ने हमेशा समाज की बुराइयों, शोषितों की पीड़ा और सामाजिक असमानता के खिलाफ हथियार की तरह काम किया था।
0: अच्छा, उनमें कुछ कमियां भी थीं?
2: देखिए, हर इंसान में कुछ कमियां जरूर रहती हैं। अपनी कमियों के साथ बेहतर प्रदर्शन करने वाला ही तो महान बनता है।
0: बिल्कुल।
2: उनकी जीवनी में मैंने प्रेमचंद को केवल महिमा मंडित ही नहीं किया है, बल्कि उनकी कमियां, उनके आर्थिक संघर्ष और उनके जीवन की असफलताओं को भी पूरी ईमानदारी से सबके सामने रखा है।
0: अच्छा, वो कितने साहसी थे?
2: बिल्कुल साहसी थे, साथ ही साथ प्रेमचंद्र में अपने सिद्धांतों के लिए किसी का भी विरोध करने का साहस था। यहाँ तक कि वे महात्मा गांधी के विचारों से भी असहमति रखने पर अपनी बात मजबूती से रखते थे, जबकि गांधी जी के आह्वान पर ही उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ी थी।
0: अच्छा, उनका जीवन कैसा था?
2: बिल्कुल सादा और आम लोगों जैसा था, लेकिन उनके विचार, सिद्धांतों के प्रति उनकी अटूट निष्ठा और साहस उन्हें असाधारण बनाते थे। इसीलिए मैं उनको आज भी असाधारण आम आदमी कहता हूँ।
0: अच्छा, वो हिंदी उर्दू दोनों में सक्रिय थे, कैसे सामंजस्य बिठाते थे?
2: प्रेमचंद जी हिंदी और उर्दू दोनों भाषाओं और संस्कृतियों के बीच एक महत्वपूर्ण सेतु थे। दोनों भाषाओं के उत्थान और उनकी एकता के प्रबल समर्थक थे। इसीलिए तो दोनों तरफ के लेखक माने गए हैं। उनकी लगभग सारी रचनाएं हिंदी और उर्दू दोनों में ही उपलब्ध हैं। प्रगतिशील लेखक संघ के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता को सौंपा जाना भी उनकी सर्वस्वीकार्यता और विश्वसनीयता का प्रमाण है।
0: बिल्कुल।
3: हिंदी में लिखी प्रेमचंद की पहली कहानी सौत दिसंबर 1915 में प्रतिष्ठित पत्रिका सरस्वती में छपी और पहला कथा संग्रह सप्त सरोज जून 1917 में प्रकाशित हुआ। 1918 में हिंदी में पहला उपन्यास सेवा सदन प्रकाशित हुआ, जिसकी अपार लोकप्रियता ने प्रेमचंद को उर्दू से हिंदी का कथाकार बना दिया।
4: नौकरी छोड़ने के बाद 18 मार्च 1921 को प्रेमचंद गोरखपुर से बनारस वापस चले गए और जीवन के आखिरी क्षणों तक साहित्य सेवा में लगे रहे। इस बीच उन्होंने सरस्वती प्रेस स्थापित किया, हंस पत्रिका शुरू की, जागरण, मर्यादा और माधुरी पत्रिकाओं का संपादन किया।
3: हर नई रचना के साथ उनका लेखन निरंतर उच्च स्तर प्राप्त करता रहा। उन्होंने निरंतरता के साथ प्रेमाश्रम, रंगभूमि, निर्मला, कायाकल्प, प्रतिज्ञा, गबन, कर्मभूमि और गोदान की रचना की। मंगलसूत्र उपन्यास अधूरा रह गया। उन्होंने करीब 300 कहानियां लिखी।
4: प्रेमचंद ने 3 नाटक भी लिखे, संग्राम, करबला और प्रेम की वेदी। वो सफल निबंधकार भी थे। टॉलस्टॉय की कहानियां, गॉल्सवर्दी के 3 नाटकों हड़ताल, चांदी की डिबिया, न्याय और रतननाथ सरसार के उपन्यास फसानाए आजाद का भी अनुवाद किया।
3: सिनेमा में अपनी किस्मत आजमाने के लिए प्रेमचंद 1934 में बंबई पहुंचे। अजंता सिनेटोन प्रोडक्शन

0: हाउस में पटकथा लेखन का काम स्वीकार किया इस उम्मीद से कि 8,000 रुपए का वार्षिक वेतन उनकी आर्थिक परेशानियों को दूर करने में मदद करेगा। फिल्म मजदूर की पटकथा लिखी और मजदूर नेता का छोटा रोल भी किया, लेकिन व्यापारियों और मिल मालिकों ने फिल्म पर रोक लगवा दी। दुर्योग रहा कि उनके खुद के सरस्वती प्रेस में मजदूरों ने हड़ताल कर दी।
1: बेहद संवेदनशील और ईमानदार रचनाकार को बॉम्बे फिल्म उद्योग का गैर साहित्यिक व्यवसायिक वातावरण पसंद नहीं आया। अनुबंध के एक साल पूरा होने से पहले ही प्रेमचंद ने 4 अप्रैल 1935 को बॉम्बे छोड़ दिया। बॉम्बे टॉकीज के संस्थापक हिमांशु राय ने मनाने की पूरी कोशिश की, लेकिन वो असफल रहे। अंततः प्रेमचंद बॉम्बे से बनारस लौट आए।
0: लेकिन सिनेमा के दिग्गज निर्देशकों ने प्रेमचंद की रचनाओं को पूरा सम्मान दिया। उनके देहांत के 2 साल बाद 1938 में सुब्रमण्यम ने उपन्यास सेवा सदन पर फिल्म बनाई, जिसमें सुब्बा लक्ष्मी ने भूमिका निभाई थी। सत्यजीत राय ने उनकी 2 कहानियों पर यादगार फिल्में बनाई, शतरंज के खिलाड़ी और सदगति। रणाल सेन ने कफन कहानी पर तेलुगु में फिल्म बनाई। गोदान और गबन उपन्यास पर भी फिल्में बनी। 1980 में उपन्यास निर्मला पर टीवी धारावाहिक बहुत लोकप्रिय हुआ।
1: बॉम्बे छोड़ने के बाद प्रेमचंद इलाहाबाद में बसना चाहते थे, जहां उनके बेटे श्रीपत राय और अमृत राय पढ़ाई कर रहे थे। यहीं से हंस प्रकाशित करने की योजना भी बनाई थी, लेकिन आर्थिक स्थिति और खराब स्वास्थ्य के कारण उन्हें हंस को भारतीय साहित्य परिषद को सौंपना पड़ा और बनारस लौट जाना पड़ा।
0: 1936 में लखनऊ में आयोजित प्रगतिशील लेखक संघ के पहले अधिवेशन में सर्वसम्मति से प्रेमचंद को अध्यक्ष चुना गया। भाषा, साहित्य और लेखक के उद्देश्य पर दिए गए प्रेमचंद के अध्यक्षीय भाषण को आज भी मानक माना जाता है। इस वक्त तक प्रेमचंद भारतीय साहित्य के शीर्षस्थ रचनाकार मान लिए गए थे।
1: संघर्ष और शरीर की भी एक हद होती है। आर्थिक परेशानी में फंसे प्रेमचंद की सेहत धीरे धीरे बिगड़ने लगी। शरीर थक गया था, कोई उपचार काम न आया। आखिरकार 8 अक्टूबर 1936 को आश्विन कृष्ण पक्ष नवमी के दिन हिंदुस्तानी साहित्य के महान कथाशिल्पी ने सदा के लिए आंखें बंद कर ली।
0: धार्मिक सामाजिक पाखंड, राजनीतिक स्वार्थ, भ्रष्टाचार, छुआछूत, स्त्रियों के साथ नाइंसाफी, गरीबों किसानों के शोषण के खिलाफ बेखौफ कलम चलाने वाले भारत के चितेरी रचयिता प्रेमचंद ने गरिमापूर्ण संघर्ष और ईमानदारी के रास्ते दिखाए, जिन पर चलकर मनुष्य होने का कर्तव्य निभाया जा सकता है।
2: अभी आप सुन रहे थे रणविजय सिंह सत्यकेतु का लिखा रूपक साहित्य के उन नायक मुंशी प्रेमचंद। वाचन स्वर था अतुल कुमार यादव और निखत सिद्दकी का। प्रतिभागी थे विनय श्रीवास्तव, अभयकांत तिवारी, अभिनव प्रज्ञ पांडे, वंदना राठौर, रीता रानी, कंचन पांडे, रितेश शुक्ल, दुर्गेश यादव और ओम श्रीवास्तव। संपादन विनय श्रीवास्तव का था। प्रस्तुति थी दीपक राय की। आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्स पर और FM 100.3 मेगाहर्ट्स पर। थोड़ी देर में आप समाचार सुनेंगे, जिन्हें हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

0: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। संसद ने अधिकरण प्रणाली में दक्षता और पारदर्शिता लाने के लिए विधेयक पारित किया। राष्ट्रीय अधिकरण आयोग का प्रस्ताव रखा। लोकसभा ने केरल राज्य का नाम बदलकर केरलम करने वाले विधेयक को विपक्ष के हंगामे के बीच मंजूरी दी। सहकारी विकास के दायरे को व्यापक बनाने वाले राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक को भी स्वीकृति दी। भारत ने कहा, चीन के साथ मजबूत संबंधों के लिए सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और स्थिरता आवश्यक। दोहराया कि अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न अंग। नासा ने आर्टेमिस समझौते के अंतर्गत अपने महत्वाकांक्षी मून बेस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए इसरो को आमंत्रित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से स्वतंत्रता दिवस गर्व के साथ मनाने और विकसित भारत के निर्माण का संकल्प लेने को कहा। और पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में सरकार प्रायोजित आतंक को दुनिया के सामने लाने के लिए बृहस्पतिवार से वैश्विक स्तर पर विरोध प्रदर्शन। अब समाचार विस्तार से। संसद ने अधिकरण सुधार विधेयक 2026 पारित कर दिया है। इसे आज राज्यसभा ने मंजूरी दी। लोकसभा पहले ही विधेयक को पारित कर चुकी है। विधेयक का उद्देश्य विभिन्न अधिकरणों के अध्यक्षों और सदस्यों की योग्यता, नियुक्ति और प्रशासन तथा कार्यप्रणाली में दक्षता सुधार, स्वतंत्रता, पारदर्शिता और एकरूपता सुनिश्चित करना है। विधेयक में राष्ट्रीय अधिकरण आयोग की स्थापना का भी प्रस्ताव है। विधि और न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि ये विधेयक आधुनिक, स्वतंत्र और एक रूप अधिकरण प्रणाली स्थापित करने के लिए लाया गया है।
2: यह विधेयक विभिन्न अधिकरणों के अध्यक्ष और सदस्यों की योग्यताओं, नियुक्तियों, सेवा की शर्तों और नियमों में दक्षता, स्वतंत्रता, पारदर्शिता और एकरूपता सुनिश्चित करने, अधिकरणों के प्रशासन और कामकाज को बेहतर बनाने, एक राष्ट्रीय अधिकरण आयोग की स्थापना करने तथा उससे जुड़े मामलों के लिए, जैसा कि लोकसभा द्वारा पारित किया गया है, इस विधेयक पर विचार किया जाए।
1: लोकसभा ने केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। विधेयक के अंतर्गत संविधान की प्रथम अनुसूची में केरल राज्य का नाम बदलकर केरलम करने का प्रावधान है। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि केरल विधानसभा ने 2024 में एक प्रस्ताव पारित कर केंद्र सरकार से राज्य का नाम बदलने का अनुरोध किया था, क्योंकि मलयालम में राज्य का नाम केरलम है। उन्होंने केरल के कांग्रेस सांसदों पर विधेयक का समर्थन नहीं करने का आरोप लगाया।
3: कांग्रेस के कुछ सांसद जब आज पारित करने का प्रस्ताव करा रहे थे तो केरल के कांग्रेस के लोगों ने इसका समर्थन नहीं किया। कांग्रेस स्पष्ट करे कि क्या केरल का नाम केरलम करने में उनको क्या आपत्ति है।
1: लोकसभा ने राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक 2026 भी पारित कर दिया है। ये विधेयक निगम को औद्योगिक वस्तुओं के क्षेत्र में अपनी गतिविधियां संचालित करने की अनुमति देता है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई समेत कई मुद्दों पर हंगामे के कारण कल तक के लिए स्थगित कर दी गई है।
4: संसद में आज भी विभिन्न मुद्दों को लेकर लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही बाधित हुई। केंद्र सरकार की ओर से छात्रों के मुद्दे पर विस्तृत चर्चा और गृह मंत्री द्वारा जवाब देने के आश्वासन दिए जाने के बावजूद कांग्रेस समेत विपक्षी दलों ने नारेबाजी जारी रखी। विपक्ष के हंगामे के कारण दोनों सदनों में आज भी प्रश्नकाल नहीं हो सका। विपक्ष की दोनों प्रमुख मांगे स्वीकार किए जाने के बावजूद सदन की कार्यवाही में बार बार हो रहे व्यवधान पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने दुख व्यक्त

0: करते हुए कहा कि सदन संवाद और सहयोग के माध्यम से चलता है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कांग्रेस और विपक्षी दलों पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन पर चर्चा से भागने का आरोप लगाया है। संसद परिसर में उन्होंने कहा कि सरकार इस मुद्दे पर विस्तृत चर्चा के लिए तैयार है।
2: राहुल गांधी जी कई दिनों से गृह मंत्री अमित शाह का जवाब मांग रहे हैं सदन में। अब जब सरकार तैयार है, गृह मंत्री जी पूरे घटनाओं का बहुत डिटेल में जवाब देने के तैयार है, फिर राहुल गांधी जी भाग रहे हैं। मैंने इसलिए सदन में कहा कि भागना नहीं है।
1: भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर छात्रों के मुद्दे पर राजनीति करने का आरोप लगाया है। आज नई दिल्ली में राज्यसभा सांसद और भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने ये बात कही।
3: रांची में अनुशासित मर्यादित आंदोलन करने वाले छात्रों के साथ जो व्यवहार हो रहा है उसके ऊपर राहुल गांधी जी के कान पूरी तरीके से बंद है। रांची के छात्रों की गूंज उन्हें सुनाई नहीं दे रही है। यह साफ हो जाता है कि छात्र हितों से उनका कोई लेना देना नहीं है, केवल शुद्ध राजनीति करनी है और संसद के सदन को अपनी सनक और उद्दंडता का बंधक बनाकर रखना है।
1: इस बीच झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षा विवाद को लेकर छात्रों का आंदोलन 18वें दिन भी जारी है। राज्य में भाजपा के आह्वान पर बंद के चलते आज राज्य के कई हिस्सों में जनजीवन प्रभावित रहा। रांची में एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के विरोध में पुरानी विधानसभा से नई विधानसभा की ओर मार्च करने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक दिया और हिरासत में ले लिया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। भारत ने दोहराया है कि अरुणाचल प्रदेश भारत का अविभाज्य तथा अभिन्न अंग है और इस निर्विवाद वास्तविकता को कोई नहीं बदल सकता। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि चीन के साथ मजबूत संबंधों के लिए सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और स्थिरता आवश्यक है।
4: भारत और चीन के बीच सीमावर्ती क्षेत्रों से जुड़े मामले में हमने हमेशा चीन के साथ चर्चाओं में यह बात पर जोर दिया है कि हम इन मुद्दों को बेहद गंभीर मानते हैं। द्विपक्षीय संबंधों के समग्र विकास के लिए सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और स्थिरता बनाए रखना बहुत आवश्यक है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर गलतफहमी और गलत आकलन से बचने और बाकी बचे हुए मुद्दों को सुलझाने के लिए स्थानीय कमांडर स्तर की बैठकें और अन्य तंत्रों सहित मौजूदा कूटनीतिक माध्यमों का उपयोग जारी रखा जाएगा।
1: श्री जायसवाल ने कहा कि पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में बड़े पैमाने पर मानवाधिकारों का हनन हुआ है।
4: पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में अभी कुछ महीनों में जो वहां पर मानवाधिकार का हनन हुआ, जिस प्रकार से लोग मारे गए, एक बार फिर से इस बात को उजागर करता है। और जहां तक लोगों के मानवाधिकार के पक्ष को गारंटी करने की बात आती है, उसमें पाकिस्तान को बहुत कुछ करना है। और हमको लगता है कि जो अभी हाल ही के हिंसा में इतने लोग मारे गए हैं, उस पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को चिंता करने की जरूरत है और साथ ही साथ में पाकिस्तान को जवाबदेही ठहराए जाने की जरूरत है।
1: इस बीच पाकिस्तान सरकार प्रायोजित आतंक को दुनिया के सामने लाने के लिए पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में 13 अगस्त से वैश्विक स्तर पर विरोध प्रदर्शन किए जाएंगे। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि सुरक्षा बलों की कार्रवाई में 60 से अधिक लोग मारे गए हैं और 500 से अधिक लोग घायल हुए हैं। बलूच नेता मीर यार बलूच ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से बलूचिस्तान की स्वतंत्रता को मान्यता देने का आग्रह किया है। उन्होंने पाकिस्तानी सरकार की दमन करने की कार्रवाई की कड़ी निंदा की है। अमरीकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो को अपने मून बेस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है। ये आमंत्रण आर्टेमिस समझौते के अंतर्गत दोनों देशों की साझेदारी को और मजबूत करता है। दोनों देशों ने समझौते के अंतर्गत वैज्ञानिक आंकड़े साझा करने पर सहयोग के लिए चर्चा को आगे बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा है कि शहर केवल ईंट और कंक्रीट से बनी इमारतें नहीं हैं, बल्कि किसी राष्ट्र के आर्थिक प्रगति के विकास के इंजन हैं। मुंबई में आयोजित ब्रिक्स मैत्री नगर सम्मेलन में उन्होंने ब्रिक्स देशों से आग्रह किया कि वे 21वीं सदी के लिए नागरिक केंद्रित शहर बनाने के लिए अपने अनुभव, प्रौद्योगिकी और नवाचार साझा करें। केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई ने आज पश्चिम बंगाल से घोषित अपराधी गोपाल दास को गिरफ्तार कर लिया। वो पश्चिम बंगाल में 2021 के चुनावों के बाद हुई हिंसा और हत्याकांड में शामिल था। आरोपी को बाद में कलकत्ता की अदालत ने न्यायिक हिरासत में भेज दिया। पंजाब पुलिस ने पिछले 5 दिनों में फिरोजपुर और अमृतसर के सीमावर्ती जिलों से 10 आरोपियों से करोड़ों रुपए की 80 किलो से अधिक हेरोइन बरामद की है। एंटी नार्कोटिक्स टास्क फोर्स ने आज फिरोजपुर में सीमा

0: पर मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले एक गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 30 किलो से अधिक हेरोइन की खेप बरामद की और 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध है। ये आकाशवाणी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से स्वतंत्रता दिवस गर्व के साथ मनाने और विकसित भारत के निर्माण का संकल्प लेने को कहा है।
1: आइए 15 अगस्त को आन बान शान से मनाए, स्वतंत्र सेनानियों को श्रद्धांजलि दें, विकसित भारत का संकल्प लें। हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा, हर मन तिरंगा। आइए हर घर पर तिरंगा लहराइए।
0: देश भर में हर घर तिरंगा अभियान उत्साह के साथ चलाया जा रहा है। 17 अगस्त तक चलने वाले इस अभियान का उद्देश्य देशवासियों को अपने घरों पर तिरंगा फहराने और देशभक्ति तथा राष्ट्रीय एकता से जुड़े कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करना है।

0: जम्मू कश्मीर में नियंत्रण रेखा के पास आज कुपवाड़ा जिले में करनाह क्षेत्र के टीतवाल में एक विशाल तिरंगा रैली का आयोजन किया गया। रैली में 1200 मीटर लंबा राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया। रैली में स्कूली छात्र, शिक्षक, पूर्व सैनिक, नागरिक और पुलिस अधिकारी, समाज के सदस्य और स्थानीय निवासी शामिल हुए। वैश्विक रेटिंग एजेंसी फिच रेटिंग्स ने भारत की सॉवरेन रेटिंग BBB- पर यथावत रखी है। एजेंसी ने कहा है कि ये भारत की प्रबल विकास संभावनाओं और सशक्त बाह्य वित्तीय बुनियादी स्थिति को दर्शाता है। फिच ने कहा है कि पश्चिम एशिया संकट की चुनौतियों के बावजूद भारत की घरेलू अर्थव्यवस्था की स्थिति बेहतर बनी हुई है। एजेंसी का अनुमान है कि अगले वर्ष मार्च में समाप्त होने वाले वित्त वर्ष में GDP वृद्धि 6.4% रहेगी। आयकर विभाग ने इस महीने की 10 तारीख तक वित्त वर्ष 2026-27 के लिए 8,11,000 करोड़ रुपए से अधिक का शुद्ध प्रत्यक्ष कर एकत्र किया है। ये वित्त वर्ष 2025-26 की इसी अवधि की तुलना में 23.09% अधिक है। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर ने भारतीय बैंकों से नवाचार, जवाबदेही और ग्राहक विश्वास पर स्पष्ट ध्यान केंद्रित करने पर बल देते हुए AI को अपनाने का आह्वान किया है। मुंबई में RBI गवर्नर ने कहा कि AI ऋण वितरण, ग्राहक सेवा, वित्तीय समावेशन, परिचालन दक्षता और धोखाधड़ी का पता लगाने में सुधार करके भारतीय बैंकिंग में क्रांति ला सकता है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं निखिल कुमार।
1: घरेलू शेयर बाजार के मुख्य सूचकांक आज लगभग 0.5% की गिरावट के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 388 अंक नीचे आकर 78,154 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 112 अंक गिरकर 24,472 पर पहुंच गया। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज $1 की तुलना में 15 पैसे कमजोर हुआ और 95.44 रुपए पर बंद हुआ।
0: और अब बात मौसम की। मौसम विभाग ने कल पूर्वी राजस्थान, गंगा के मैदानी पश्चिम बंगाल, मध्य महाराष्ट्र और ओडिशा में मूसलाधार बारिश का पूर्वानुमान व्यक्त किया है। विभाग के अनुसार पंजाब, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, गुजरात, पश्चिमी मध्य प्रदेश, पश्चिमी राजस्थान, गोवा और पूर्वोत्तर राज्यों में तेज बारिश की संभावना है। हिमाचल प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में रुक रुक कर हो रही बारिश से कई स्थानों पर जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। तेज बारिश के कारण भूस्खलन से राज्य के 2 राष्ट्रीय राजमार्ग और 204 अन्य सड़कें यातायात के लिए अवरुद्ध हो गई हैं। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के दौरान 5 जिलों में कुछ स्थानों पर मूसलाधार वर्षा की चेतावनी जारी की है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू वर्ष 2024 और 2025 के लिए 115 कलाकारों को बृहस्पतिवार को संगीत नाटक अकादमी की छात्रवृत्तियां और पुरस्कार प्रदान करेंगी। संस्कृति मंत्रालय ने कहा है कि देश के विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से चयनित ये छात्रवृत्ति और पुरस्कार विजेता पूरे देश का प्रतिनिधित्व करते हैं। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद ने अधिकरण प्रणाली में दक्षता और पारदर्शिता लाने के लिए विधेयक पारित किया। राष्ट्रीय अधिकरण आयोग का प्रस्ताव रखा। लोकसभा ने केरल राज्य का नाम बदलकर केरलम करने वाले विधेयक को विपक्ष के हंगामे के बीच मंजूरी दी। सहकारी विकास के दायरे को व्यापक बनाने वाले राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक को भी स्वीकृति दी। भारत ने कहा, चीन के साथ मजबूत संबंधों के लिए सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और स्थिरता आवश्यक।

कि अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न अंग। नासा ने आर्टेमिस समझौते के अंतर्गत अपने महत्वाकांक्षी मून बेस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए इसरो को आमंत्रित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से स्वतंत्रता दिवस गर्व के साथ मनाने और विकसित भारत के निर्माण का संकल्प लेने को कहा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: के लिए आलमी सतह पर रैलियों पर जोर दिया गया है। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
1: आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज पर और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज पर प्रस्तुत है गजलों पर आधारित कार्यक्रम कहकशा। श्रोताओं, हुस्न की बात हो और मोहब्बत का जिक्र ना हो, ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि हुस्न आंखों को अच्छा लगता है और मोहब्बत दिल को अपना बना लेती है। वो सामने हो तो दिल को सुकून आता है, नजर उठती है तो बस उनका ख्याल आता है। श्रोताओं, कभी कभी कोई चेहरा सिर्फ चेहरा नहीं रहता, वो एक एहसास बन जाता है, एक खूबसूरत याद बन जाता है, और जब यही एहसास गजल के लफ्जों में ढलता है तो दिल उसे सिर्फ सुनता नहीं, महसूस करता है। इश्क में महबूब की खूबसूरती का बयान करना भी अपने आप में एक कला है। हुस्न ऐसा कि निगाहें भी ठहर जाएं, और जहां इश्क ऐसा कि जमाना भी भुला बैठे। इब्राहिम अश्क की खूबसूरत अल्फाज और तलत अजीज की पुरकशिश नर्म और दिल को छू लेने वाली गजल लीजिए, सुनिए।

कहते हैं कि जो महफिल में हंगामा हो तो वजह जरूर होती है, मगर कभी कभी हंगामा किसी बात का नहीं, बस अंदाजे बयां का होता है। और जब बात हो अकबर इलाहाबादी की शायरी की, तो उनके यहाँ जिंदगी के छोटे छोटे सवाल भी मुस्कुराते हुए सामने आते हैं। अंदाज ऐसा रखिए कि दिल भी बहलता रहे, बात गहरी हो मगर चेहरा मुस्कुराता रहे। अकबर इलाहाबादी की शायरी की यही खूबी है, जो बात कहते ही सीधे दिल पर चोट नहीं करते, बल्कि मुस्कुराते हुए सोचने पर मजबूर करते हैं। और फिर उस शायरी की आवाज़ को मिले गज़ल की दुनिया के बेहद ख़ास फ़नकार गुलाम अली की।

आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से आप सुन रहे हैं गजलों पर आधारित कार्यक्रम कहकशां। श्रोताओं, कभी कभी मोहब्बत को इजहार की जरूरत नहीं होती, एक नज़र काफ़ी होती है, एक मुस्कुराहट काफ़ी होती है, और कभी कभी तो खामोशी ही दिल की पूरी दास्तान कह देती है। उनकी एक मुस्कान पर दुनिया लुटा बैठे, हम तो खामोशी को भी अपना पैगाम समझ बैठे। गज़ल की दुनिया में कुछ अल्फाज ऐसे होते हैं जो कानों से होकर सीधे दिल में उतरते हैं, और जब उन अल्फाज को आवाज़ मिलती है जगजीत सिंह की, तो एहसास और भी गहरे हो जाते हैं।

कहते हैं आंखें दिल का आईना होती है, जो बात होंठों तक नहीं आ पाती उसे आंखें बड़ी खामोशी से कह देती हैं। नजर से नजर मिली तो कोई बात बन गई, खामोशी में छुपी हुई मुलाकात बन गई। श्रोताओं, आंखों की अपनी एक जुबान होती है, न कोई लफ्ज न कोई आवाज, फिर भी कई नजर में पूरी कहानी कह जाती है। आज की गजल में भी आंखों की इसी जादू की बात है। वो आंखें क्या मिली, मौसम बदल गया, दिल था जहां ठहरा फिर वहीं मचल गया। इस खूबसूरत एहसास को अपनी आवाज से अमर करने वाले हैं गजल गायकी के बेमिसाल फनकार मेहंदी हसन। जिया अमरोही की कलम से निकले अल्फाज और मेहंदी हसन की गहरी ठहरी हुई आवाज, दोनों मिलकर एक ऐसी तस्वीर बनाते हैं जिसे सिर्फ आंखें नहीं दिल देखता है।

इस गजल के साथ ही कार्यक्रम कहकशा अब समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है, मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलो हर्ट्ज पर। हमारा अगला कार्यक्रम बस थोड़ी ही देर में, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: बनी है। अभी आप आज राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान हुई कार्यवाही की रिकॉर्डिंग सुनेंगे। दिस इज द दिल्ली स्टेशन ऑफ आकाशवाणी। प्लीज स्टैंड बाय फॉर आवर नेक्स्ट ब्रॉडकास्ट। यू विल नाउ लिसन टू द प्रोसीडिंग्स ड्यूरिंग द क्वेश्चन आवर इन राज्यसभा टुडे।
1: माननीय माननीय सभापति जी,
2: प्रश्न संख्या 241, क्या नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री ये बताने की कृपा करेंगे कि 30 जून 2026 की स्थिति के अनुसार अब तटीय पवन ऊर्जा परियोजनाओं की आवंटित निर्माणाधीन और चालू क्षमता संबंधी राज्यवार स्थिति क्या है, प्रत्येक परियोजना के अंतर्गत जुटाया गया निवेश कितना है, और ग्रिड संपर्क पारेषण

0: क्या नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री ये बताने की कृपा करेंगे कि 30 जून 2026 की स्थिति के अनुसार अब तटीय पवन ऊर्जा परियोजनाओं की आवंटित निर्माणाधीन और चालू क्षमता संबंधी राज्यवार स्थिति क्या है, प्रत्येक परियोजना के अंतर्गत जुटाया गया निवेश कितना है और ग्रिड संपर्क पारेषण ट्रांसमिशन और संरचना और पर्यावरणीय मंजूरी के संबंध में किन किन बाधाओं की पहचान की गई है।
1: Now, Honorable Minister,
2: you are under the pressure of the
1: government. Speaker, sir, they never pressurize me. You are always pressurizing me. I am never under the pressure of them. I am always under the pressure of you. No, I am not under the pressure of anyone. I am not under the pressure of anyone except Gargeji. I am always under the pressure of Gargeji, not of anybody else. Honorable Minister, First Supplementary Dr. Lakshmikant Bajpai Ji.
3: Sir!
1: Then First Supplementary GC Chandrasekhar Ji. You take your seat, I am calling him.
3: Sir, Mike.
1: You take your seat, I am calling him.
3: Mike.
1: First Supplementary Sriman GC Chandrasekhar Ji.
3: Sir, kindly do not off the mic till you complete my question, sir.
1: I'm allowing you. I am calling the second supplementary, Dr. Lakshmikant Bajpai Ji.
4: आपके माध्यम से जानना चाहता हूँ मंत्री से कि ऑफ शोर एनर्जी के क्या फायदे हैं और इनके लिए क्या सरकार ने कोई राष्ट्रीय नीति बनाई है।
0: श्रीपद यशो नाइक, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री।
5: सभापति महोदय, भारत के लिए ऑफ शोर विंड एनर्जी कई स्ट्रेटेजिक एडवांटेजेस प्रदान करती है, उसमें से हायर कैपेसिटी यूटिलाइजेशन फैक्टर तमिलनाडु में लगभग 50-54% और गुजरात में 30-40% तक सीयूएफ उपलब्ध है, जिसमें इंस्टॉल्ड कैपेसिटी प्रत्येक मेगावाट से अधिक एनर्जी जनरेशन उसकी संभावना होती है। माननीय अध्यक्ष महोदय, ऑफशोर विंड जो है तो ऑफशोर विंड की तुलना में अनेक जनरेशन और वहां पैदा होते हैं और उसकी कम वेरिएबिलिटी को प्रदान करता है। तीसरा है सोलर पावर को विंड एनर्जी कॉम्प्लीमेंट करती है अध्यक्ष महोदय। चौथा है तो स्कैर लैंड की आवश्यकता उसमें नहीं होती है और इसे लैंड एक्विजिशन के राइट ऑफ वे हो, इससे जुड़ी कई कंस्ट्रेंसेस सभी बच जाते हैं जो लैंड बेस्ड रिन्यूअल प्रोजेक्ट में सामने आ जाती है। कोस्टल इकोनॉमी को बूस्ट करता है और ऑफशोर विंड से डेवलपमेंट से पोर्ट वेजल फैब्रिकेशन मरीन लॉजिस्टिक और कोस्टल इंडस्ट्रीज को बढ़ावा मिलता है, इससे नए एम्प्लॉयमेंट की जनरेशन पैदा होती है।
1: द थर्ड सप्लीमेंट्री श्रीमती सुधा मूर्ति जी।
6: सर, ड्यू टू द चेंज ऑफ क्लाइमेट एंड अनफोर्सीन सर्कमस्टेंसेस द रिन्यूएबल एनर्जी इन हाइड्रल प्रोजेक्ट एज वेल एज इन विंड प्रोजेक्ट हाउ मच इट इज अफेक्टेड, इज देयर एनी लॉसेस, इफ इट इज देयर हैव इट बीन मेजर्ड, एंड आई वुड लाइक टू नो हाउ एवरी स्टेट इज अफेक्टेड बाय ड्रॉट and cyclone and hurricane and floods and renewable energy with respect to that. Thank you, sir.
1: Honorable Minister,
5: माने सदस्य ने जो प्रश्न पूछा है तो इस प्रश्न से संबंधित नहीं है, तो ये जो प्रश्न है
0: अभी आप आज राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान हुई कार्रवाई की रिकॉर्डिंग सुन रहे थे। यू वर लिसनिंग टू द प्रोसीडिंग्स ड्यूरिंग द क्वेश्चन आवर इन राज्यसभा टुडे। दिस ब्रॉडकास्ट केम टू यू फ्रॉम द दिल्ली स्टेशन ऑफ आकाशवाणी।

0: आकाशवाणी का ये लखनऊ केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है हमारा राज्य स्तरीय कार्यक्रम खेल दर्पण। आज का खेल दर्पण आकाशवाणी के ओबरा केंद्र की प्रस्तुति है।
1: खेल दर्पण।
2: श्रोताओं नमस्कार, खेल दर्पण कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है। आज इस अंक में प्रस्तुति आकाशवाणी ओबरा की। श्रोताओं, खेल केवल प्रतिस्पर्धा का माध्यम नहीं बल्कि अनुशासन, समर्पण, आत्मविश्वास और स्वस्थ जीवन की पहचान भी है। किसी भी खिलाड़ी की सफलता की शुरुआत बड़े मंच से नहीं बल्कि छोटे छोटे अवसरों से होती है। जिला और मंडल स्तर पर आयोजित चयन प्रतियोगिताएं ऐसे ही अवसर प्रदान करती हैं, जहां स्थानीय प्रतिभाएं अपनी क्षमता का प्रदर्शन कर प्रदेश स्तर पर पहुंचने का मार्ग प्रशस्त करती हैं। तो चलिए इस कार्यक्रम में सबसे पहले हम बात करते हैं जनपद सोनभद्र में हाल ही में आयोजित विभिन्न खेलों की चयन प्रतियोगिताओं और उनसे जुड़ी महत्वपूर्ण गतिविधियों के बारे में। श्रोताओं, जिला खेल कार्यालय सोनभद्र द्वारा खेल निदेशालय उत्तर प्रदेश और संबंधित खेल संघों के निर्देशानुसार प्रदेश स्तरीय प्रतियोगिताओं के लिए जिला एवं मंडल स्तर पर चयन और ट्रायल का आयोजन किया गया। इस क्रम में सबसे पहले हम बात करते हैं सीनियर महिला बास्केटबॉल की। इस प्रतियोगिता के लिए जिला स्तरीय चयन 21 जुलाई को तियरा स्टेडियम रॉबर्ट्सगंज सोनभद्र में आयोजित किया गया। इसके उपरांत 22 जुलाई को मिर्जापुर स्थित स्पोर्ट्स स्टेडियम में मंडल स्तरीय चयन संपन्न हुआ। इस चयन प्रक्रियाओं के आधार पर चयनित खिलाड़ी ने 27 से 19 जुलाई तक अयोध्या में आयोजित प्रदेश स्तरीय प्रतियोगिता में जनपद और मंडल का प्रतिनिधित्व किया। इसी क्रम में सीनियर महिला हैंडबॉल खिलाड़ियों का जिला स्तरीय चयन 22 जुलाई को तियरा स्टेडियम रॉबर्ट्सगंज सोनभद्र में संपन्न हुआ और इसी दिन मिर्जापुर में मंडल स्तरीय ट्रायल आयोजित किया गया। चयनित खिलाड़ियों ने 27 से 29 जुलाई तक अयोध्या में आयोजित प्रदेश स्तरीय प्रतियोगिता में भाग लेकर अपने खेल कौशल का प्रदर्शन किया। और अब बात करते हैं जूनियर बालक फुटबॉल की। इस वर्ग का जिला स्तरीय चयन 21 जुलाई को आयोजित किया गया और 23 जुलाई को मिर्जापुर में मंडल स्तरीय ट्रायल संपन्न हुआ। इस चयन प्रक्रियाओं के आधार पर चयनित खिलाड़ियों ने 1 से 8 अगस्त तक मऊ में आयोजित प्रदेश स्तरीय प्रतियोगिता में जनपद सोनभद्र का प्रतिनिधित्व करते हुए अपनी प्रतिभा का उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। और वहीं जूनियर बालिका फुटबॉल के लिए भी जिला खेल कार्यालय द्वारा चयन प्रक्रिया आयोजित की गई। 7 अगस्त को तीरा स्टेडियम रॉबर्ट्सगंज में जिला स्तरीय चयन और उसी दिन मिर्जापुर में मंडल स्तरीय ट्रायल संपन्न हुआ। इन चयन प्रक्रियाओं के आधार पर चयनित खिलाड़ी 10 से 17 अगस्त तक अमेठी में आयोजित प्रदेश स्तरीय जूनियर बालिका फुटबॉल प्रतियोगिता में जनपद सोनभद्र का प्रतिनिधित्व करेंगे और अपने खेल कौशल का प्रदर्शन भी करेंगे। तो श्रोताओं, निश्चित रूप से जिला खेल कार्यालय द्वारा समय समय पर आयोजित ऐसी चयन प्रतियोगिताएं जनपद के खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा निखारने और प्रदेश स्तर पर पहुंचने का महत्वपूर्ण अवसर प्रदान कर रही हैं। और हमें ये विश्वास है कि हमारे खिलाड़ी अपने उत्कृष्ट प्रदर्शन से न केवल जनपद सोनभद्र बल्कि पूरे प्रदेश का नाम भी गौरवान्वित करेंगे। और अब खेल दर्पण कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ रहे हैं विनय कुमार श्रीवास्तव जी, जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश योगासन स्पोर्ट्स एसोसिएशन के संयुक्त सचिव हैं, एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया सोनभद्र के संयुक्त सचिव, साथ ही सोनभद्र योगासन स्पोर्ट्स एसोसिएशन के सचिव

0: के रूप में खेलों के विकास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। सर, कार्यक्रम खेल दर्पण में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: धन्यवाद सर, आप सभी को मेरा नमस्कार।
0: जी सर। सर, सबसे पहले हम आपसे यह जानना चाहेंगे, आपका जुड़ाव खेल से कब और कैसे शुरू हुआ, क्या दिशा रही, क्या संकल्प रहे, क्या प्रेरणा रही इस बात के लिए आपकी?
1: पहले मैं कंपनी में काम करता था, तो मैं देखता था कि बच्चे खेल रहे हैं, आगे निकल रहे हैं, तो मुझे भी अच्छा लगता था। तो फिर मैंने कॉमनवेल्थ गेम मैंने 2014 में मैंने देखा कि उसमें काफी बच्चों ने गोल्ड मेडल लाया, जिसमें भारत का नाम बहुत आगे था। उसमें गोल्ड मेडल में भी काफी बच्चे थे, सिल्वर मेडल में भी थे और हमारे ब्रॉन्ज में भी थे। काफी इस बार बच्चों ने बहुत अच्छा गेम किया, उनको देख करके मुझे भी लगा कि मुझे भी खेल में जाना चाहिए। उससे ऑब्वियसली क्या है, शरीर में स्फूर्ति रहती है, एनर्जेटिक रहती है, तो दिन भर बॉडी में एनर्जी रहती है। तो मैंने फिर खेलना फिर शुरू किया। मैं पहले क्रिकेट में मैं रेलवे स्टेडियम की तरफ से पहले मैं खेलता था क्रिकेट, फिर मुझे लगा कि इसमें कुछ और चीजें ऐड करनी चाहिए, तो फिर मैंने धीरे धीरे करके फिर और गेमों में मैंने जुड़ना शुरू किया। फिर मैंने सोचा कि अगर इतना एनर्जी महसूस कर सकता हूँ, तो ऑब्वियसली हमारे देश के जो बच्चे हैं, जो अभी नई युवा पीढ़ी है, तो उनको आगे बढ़ाने में भी हमें अपना योगदान देना चाहिए।
0: बिल्कुल सर।
1: अपने साथ साथ फिर मैंने बच्चों को भी खेलने के लिए आगे प्रेरित करना शुरू किया। शुरुआत में फिर मैंने योगा में मास्टर्स किया, फिर उसके बाद मैंने फिर बीपीएड किया। फिर मुझे सबसे पहले जिम्मेदारी दी गई उत्तर प्रदेश की, जिससे मुझे योगासन खेल को आगे बढ़ाने के लिए मुझे कहा गया कि आप बच्चों को जोड़िए, बच्चों को समझाइए। तो उस तरीके से फिर मैंने योग के प्रति जागरूक करने के लिए फिर मैंने स्कूलों में, संस्थाओं में जा करके फिर मैंने स्कूलों के प्रिंसिपल से बात करके फिर मैंने बच्चों से फिर बात की। तो उस तरीके से फिर धीरे धीरे करके इसी तरीके से खेल की शुरुआत हुई।
0: यानी कि एक क्रम बनता चला गया, आपने देखा, समझा और अंदर लगा कि नहीं, जो मेरे अंदर है और इस चीज का संकल्प लेकर हम आगे बढ़े तो दिशा स्टेप बाय स्टेप मिलती ही चली जाती है।
1: जी जी, बस मेन क्या होता है कि अगर आप किसी भी काम में अगर लगे, तो अगर उसमें एक बार आपको लाइन मिल जाए तो आप उसमें आगे बढ़ते चले जाएंगे।
0: बिल्कुल। अच्छा, इतने बड़े पद पर है, इतनी जिम्मेदारियां हैं, कैसे बैलेंस करते हैं सारी चीजों को आप?
1: सर, बैलेंस खेल एक ऐसा बॉडी में एनर्जी फील करता है ना, कि उसमें लगता है कि अब किसी काम में अगर लगो तो ऑफिसली करते चलो।
0: बिल्कुल।
1: तो बहुत अच्छा फील होता है खेल के साथ जुड़ने में, और मुझे लगता है कि ऑफिसली सभी बच्चों को खेल से जुड़ना चाहिए, जिससे उनका अच्छा विकास हो सके।
0: जी। और जब नियंत्रण की ही सर हम बात कर रहे हैं, तो आप योगासन और एथलेटिक्स दोनों ही क्षेत्रों में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, जैसा कि आपने अभी बताया, तो क्या सामंजस्य दोनों में आप देखते हैं?
1: सर, खेल और जैसे योगा है और एथलेटिक्स है, योगा क्या होता है कि वो बॉडी में लचीलापन आ जाता है, बॉडी में मजबूत आ जाती है। अब जैसे योगासन की भूमिका में अगर हम देखें तो उसमें मानसिक शांति जरूरी होती है। योग में क्या होता है, मन को शांत करने के लिए होता है, दिखाया जाता है, तनाव को दूर भगाता है वो। अब एकाग्रता भी जरूरी होती है, अगर हम ध्यान को लगाएंगे तभी तो शक्ति को बढ़ाता है वो।
0: बिल्कुल।
1: उसमें आपका पढ़ाई और काम दोनों चीजें होती है, तो उसमें सुधार होता है काफी।
0: बिल्कुल।
1: और उसके बाद आंतरिक स्वास्थ्य भी जरूरी होता है। योग जो होता है वो हमारे अंदर जो अंग होते हैं उनको स्वस्थ रखते हैं। योग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है वो, या जीवन में संयम और नियमितता को लाना सिखाता है। एथलेटिक की भूमिका में क्या होता है कि बच्चे उस शारीरिक फिट रहते हैं, जैसे दौड़ना हो गया, कूदना हो गया, तो उसमें शरीर में शक्ति होती है, गति और सहनशीलता को बढ़ाता है एथलेटिक्स। उसके बाद इसका एक दूसरी भी पहलू है कि टीम भावना। एथलेटिक जो होता है वो समूह में रहना सिखाता है, क्योंकि जब एक टीम बनती है तो ऑब्वियसली उसमें एक दूसरे को सामंजस्य स्थापित करना जरूरी होता है, क्योंकि क्या, अगर हम टीम भावना से नहीं खेलेंगे तो टीम आपकी कभी आगे बढ़ेगी ही नहीं।
0: बिल्कुल।
1: तो ये चीजें जरूरी होती है एथलेटिक्स में। फिर संघर्ष क्षमता होती है, कि वो हार जीत को दोनों तरह समान भाव से वो देखें। अब ऐसा नहीं कि आप एक बार हार गए तो आपने खेलना छोड़ दिया। अब आज की डेट में हारने की डिफिनेशन ये होती कि आप हारने से सीखोगे, ऐसा नहीं होता कि आप हार गए तो आप दोबारा नहीं खेलोगे। आप उसमें सीखो कि आपने क्या गलतियां की, ताकि हम जिससे हम आगे जा करके हम उस गलतियों को अपनी हटा सकें और अपने लक्ष्य की प्राप्ति को हम पा सकें।
0: बिल्कुल सही बात कि अगर कुछ नहीं होगा तो अनुभव तो होगा ही होगा, और अनुभव ही हमें जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा भी देते हैं और एक अच्छे खिलाड़ी के रूप में आगे बढ़ने के लिए भी प्रेरित करते हैं। अच्छा सर, एक लंबा समय आपको खेल प्रशासन से जुड़े हुए हो गया, तो आपके अनुभव में किसी भी जनपद में, या अपने जनपद सोनभद्र की ही हम बात करें, तो खेल संस्कृति को विकसित करने में प्रशासन, विद्यालय और समाज, इन तीनों की भूमिका किस प्रकार से एक दूसरे से जुड़ी हुई है, क्या कहते हैं इस बारे में आप?
1: मैं जब से खेल में जुड़ा हूँ, आज मेरे पास उत्तर प्रदेश के 47 जिले ऐसे हैं जिनमें बच्चे

0: उनमें योग और एथलेटिक्स दोनों खेल में बच्चे भाग ले रहे हैं। आज मैं अभी इस समय 437 बच्चे ऐसे हैं जिनको मैं खुद ट्रेंड कर रहा हूँ। जो बच्चे हर खेल में आगे निकल रहे हैं, खो खो में हो गया, योगा में हो गया, रेस में हो गया, जैवलिन थ्रो हो गया, डिस्कस थ्रो हो गया, बैक थ्रो हो गया, बैडमिंटन हो गया, तो काफी खेलों में बच्चे अब इस समय आगे निकल रहे हैं। खिलाड़ियों में अब जैसे कहे कि सोनभद्र हमारा पिछड़ा है, यहाँ पे आदिवासी लोग ज्यादा हैं, ग्रामीण अंचल में क्या है संभावनाओं का बहुत अभाव है यहाँ पे, तो इसके लिए क्या है कि खेल में संस्थाओं, विद्यालयों और समाज को बेहतर समन्वय की बहुत आवश्यकता है यहाँ पे। जब तक ये तीनों मिलकर काम नहीं करेंगे तो इसमें युवाओं को सही मंच और सहायता नहीं मिल सकती। इसमें इनके संसाधनों को दूर करने के लिए इसमें विद्यालयों और खेल संस्थाओं को मिलकर बुनियादी ढांचा को इसमें तैयार करना होगा, जिससे कि ग्रामीण के बच्चे भी आगे आकर के अपनी अपनी प्रतिभा को आगे पहचान दें अपनी। उसमें आर्थिक सहयोग भी बहुत जरूरी है, समाज और स्थानीय खेलों को मिलकर खिलाड़ियों को उसको स्पॉन्सर करें जिससे बच्चे हमारे आगे जाकर के खेलें। सोनभद्र क्या है, हमारा पिछड़ा इलाका है, यहाँ पे खेल को लेकर के अब जो मतलब जैसे कहें कि जो सोच है वो थोड़ी कम है यहाँ पे। मेन यहाँ पे क्या होता है कि खेलों को ये लगता है कि अरे खेलेंगे कूदेंगे तो यार हम पढ़ाई कब करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। आज की डेट में जितना पढ़ाई आपके लिए जरूरी है उतना आपके लिए खेल भी जरूरी है। आपका पढ़ाई से भी विकास होता है, आपका खेल से भी विकास होता है। खेलना भी इसलिए जरूरी है कि जब तक आप पढ़ाई नहीं करोगे तो आप खेलोगे कैसे, और बॉडी को बैलेंस में लाने के लिए आपको खेलना भी जरूरी है और पढ़ना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। अब इसमें विद्यालयों का भी योगदान बहुत जरूरी है, विद्यालय अपने बच्चों को खेलने के लिए प्रेरित करें, उनको भेजें कि बच्चों को खेलो तुम लोग ताकि उसमें तुम लोग आगे निकलो। इस तरह की संभावना यहाँ पे बहुत कम है, तो इसमें प्रशासन को मिलकर के स्कूलों के साथ मिलकर के ऐसा आगे मतलब कोशिश करें कि जिससे हमारे बच्चे खेल में भी आगे निकले।
1: अच्छा सर, राष्ट्रीय शिक्षा नीति में खेलों को शिक्षा का अभिन्न अंग भी माना गया है, तो आपके हिसाब से इस सोच को व्यवहारिक रूप देने के लिए स्थानीय स्तर पर किस तरह के प्रयासों की आवश्यकता है?
0: राष्ट्रीय शिक्षा नीति में जैसे जो खेलों को अभिन्न शिक्षा का अभिन्न अंग माना गया है, अब सोच को लेकर के जितने भी स्थानीय स्तर पर व्यवहारिक रूप में देने के लिए जमीनी स्तर से इनको खेल के लिए बच्चों को प्रेरित करना पड़ेगा। खेल के विद्वानों का अच्छा विकास हो, स्थानीय कोचों की नियुक्ति हो, स्कूल और पंचायतों के बीच सहयोग हो, और सामुदायिक खेल आयोजनों की आवश्यकता बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक ये चीजें नहीं होंगी तब तक बच्चों में आगे खेल की भावना जागरूक नहीं होगी। उसमें बुनियादी ढांचे की बहुत ज्यादा जरूरत है, जैसे हर पंचायत हो गया, वार्ड हो गया, वहाँ पे खेल का मैदान बने जिससे बच्चे उसमें खेलें जा करके। उसके बाद स्कूलों की बुनियाद में भी खेली उपकरण की बहुत ज्यादा सुरक्षित भी रहना चाहिए। और अब जैसे क्या होता है कुछ बच्चों को चोट लग जाती है, अब उनको लगता है अरे अब हम आगे नहीं खेल पाएंगे, तो इस तरीके से उनको ऐसी चीजें बताई जाए या उपलब्ध उनको कराई जाए जिससे बच्चों को अगर कुछ दिक्कत भी होती है तो वो आगे जाकर के खेल के लिए ऐसा ना हो कि उनका अंदर से
1: मन विकास कम
0: हो, मजबूत हो जाए, जिससे वो अंदर वो आगे देश का नाम रोशन कर सके।
1: बिल्कुल सर। और जैसे सर अभी थोड़ी देर पहले आपने ये भी कहा कि हमारा जनपद सोनभद्र जो है काफी पिछड़ा हुआ है, अभी भी यहाँ से बहुत सी कमियां हैं, बहुत ही संसाधनों की कहीं ना कहीं बाधक बनती है एक अच्छे खिलाड़ी के प्रदर्शन में, जबकि हमारा सोनभद्र प्राकृतिक रूप से बहुत समृद्ध है। ऐसे में क्या लगता है कि यहाँ की जो खेल प्रतिभाएं हैं अगर उसे राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचना है या पहुंच सकता है वो खिलाड़ी, तो सबसे बड़ी बाधा आपको क्या लगती है इस बारे में?
0: मेन देखिए सबसे क्या होता, सबसे जरूरी चीज होता है पहले जो भी बच्चा होता है वो पहले घर से शुरुआत करता है। जैसे युवा खिलाड़ी जितने भी होते हैं, अब उसमें क्या होता है जब तक उनके माता पिता उनको प्रेरित नहीं करेंगे तब तक वो बच्चा आगे कैसे निकलेगा। तो उसमें खिलाड़ियों के लिए भी सबसे पहले माँ बाप उनके होते हैं जो उनको खेल के लिए प्रेरित करें कि बेटा तुम खेलो भी, पढ़ाई भी करो, खेलो कूदो भी। पहले होता था ना पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे होगे खराब, तो ऐसा कुछ नहीं है। इसमें क्या होता है, एक तो बच्चों को उनको प्रेरित करें कि रोज वो डेली अभ्यास करें खेलों के लिए। अगर आप हार भी जाते तो ये मत सीखो कि अरे हम हार गए तो हम दोबारा नहीं खेल पाएंगे, आप उससे और अच्छा करने की कोशिश करो, अनुशासन में रहो, समय पर आए और अपने कोच की बात सुने, जो भी आपको कोच बता रहा है उसको सीखो किस तरीके से नियम होते हैं, उसके बाद हमेशा ईमानदारी से खेलने के लिए सीखो।
1: अच्छा सर, इतने साल का आपका अनुभव है और आप खेल के साथ जुड़े हैं, खिलाड़ियों के साथ जुड़े हैं और अभी आप सोनभद्र में हैं, तो यहाँ की जो स्थिति परिस्थितियों को समझते हुए अगर आपको खेल के विकास के प्रति एक दीर्घकालिक कार्य योजना तैयार करनी हो तो उसमें आपकी क्या प्राथमिकता होगी?
0: देखिए आज भी खेल का बहुत अभाव है, प्रतिभाएं आगे बढ़ ही नहीं पा रही क्योंकि उनको सुविधा नहीं मिल पा रही है। बच्चों को स्थानीय खेल संस्थाओं, विद्यालयों में, समाज में आज भी क्या है कि समन्वय

0: अच्छे से स्थापित नहीं हो पा रहा है, जिससे ये आई नहीं पा रहे हैं। तो जब तक ये तीनों मिलकर काम नहीं करेंगे, तब तक युवाओं में सही मंच और सहायता उनको नहीं मिल सकती। अच्छा समन्वय स्थापित करने से पहला काम कि उनको संसाधनों की कमी को दूर करना पड़ेगा, जिसमें विद्यालय और खेल संस्थाएं मिलकर खेल का सामान और बुनियादी ढांचों को तैयार करें, जिससे बच्चे खेल में आगे निकलें। फिर अच्छे प्रतिभा की खोज करें, सही समय पर मार्गदर्शन करें बच्चों को, बच्चों का ट्रायल समय समय पर करवाएं, ताकि बच्चे उससे ट्रायल में छट करके वो आगे जाएं। आर्थिक सहायता भी बच्चों को बहुत जरूरी है। जैसे बच्चों को कहीं जाना है खेलने के लिए, अब गरीब बच्चे हैं तो उनको कहीं से कोई सहायता मिल नहीं पाती, वो बच्चे अपने प्रतिभा को वो दिखाई नहीं पाते, तो उस कारण से बच्चे आगे जा ही नहीं पाते हैं। अब उनका खर्च उठाने के लिए भी उनको चाहिए ना, जब तक उसको कोई स्पॉन्सर नहीं करेगा या प्रशासन उनका साथ नहीं देगा, तो कैसे बच्चे आगे जाएंगे।
1: बिल्कुल, ये ऐसी कुछ चीजें हैं जिनके बारे में हमें विचार करना होगा और यही प्राथमिकता होगी।
0: खिलाड़ियों को निखारने के लिए जब तक हम आगे नहीं आएंगे तो खिलाड़ी कैसे आगे निकलेगा।
1: बिल्कुल। और अब सर आपसे ये जानना चाहेंगे कि जनपद में जो अभी हमारे युवा खिलाड़ी हैं उनकी आगामी क्या तैयारियां हैं, कहां कहां उनका प्रदर्शन है और क्या इस बारे में तैयारी हो रही है, सर इसके बारे में विस्तार से बताएं। सर
0: अभी हमारे सोनभद्र में क्लस्टर चल रहा है, जिसमें हर तरह के गेम उसमें रखे गए हैं, जिनमें खो खो है, योगा है, चेस है, वेट लिफ्टिंग है, ताइकांडो है, डिस्कस थ्रो है, शॉटपुट है। तो इन खेलों को लेकर के अभी क्लस्टर शुरू हुआ है, तो अभी सारे बच्चे इस समय खेल में, कोई यहाँ पे है सोनभद्र में है, कोई बाहर जा रहा है खेलने के लिए, तो उस तरीके से अभी सारी चीजें स्टार्ट हो गई हैं 1 तारीख से। तो अभी सब गेम इस तरीके से चलाया जा रहा है, जैसे अभी आगे आने वालों में अभी योगा का गेम होने जा रहा है, योगा के बाद ताइकांडो है, ये अभी क्लस्टर शुरू होने जा रहा है। बाकी सरकार की तरफ से भी, जिला खेल अधिकारी की तरफ से भी फुटबॉल के लिए इसमें शुरुआत की गई है बालिका के लिए। अभी इसके पहले जो खेल हुआ है वो बास्केटबॉल का ट्रायल किया गया 21 जुलाई को, जिसमें ट्रायल के बाद हमने इसमें मंडल स्तर पे बच्चों को भेजा है। 22 तारीख को इनका मंडल पे ट्रायल था, क्योंकि इनका प्रदेश स्तर पे खेल होना था 27 से 29 जुलाई के लिए
1: जी।
0: तो हमने बच्चों का चयन करके फिर हमने वहां पे भेजा है। इसी के साथ हमने हैंडबॉल में भी सेम यही प्रोसेस हमने किया, जिसमें 21 को ट्रायल करवाया, ट्रायल के बाद मंडल, मंडल के बाद फिर हम प्रदेश स्तर पे बच्चों को भेजते हैं। इसी प्रकार हमने बालक में भी फुटबॉल के जूनियर बालक को भी हमने तैयार किया है, जिसमें हमने यहाँ पे ट्रायल करवाया, जिसमें बच्चे प्रतिभाग कर रहे हैं। अभी हमारा कल से एक ट्रायल शुरू हो रहा है जूनियर बालिका के लिए। बालिका में भी हमने मंडल स्तर पे पहले रखा है, पहले ट्रायल होगा जिला स्तर पे, फिर वो जिला स्तर से वो मंडल स्तर पे ट्रायल लेने जाएंगे, तब उनका प्रदेश स्तरीय में उनका सिलेक्शन होगा, जो कि 10 से 17 अगस्त में होना है।
1: बच्चों के अंदर कैसा जज्बा दिख रहा है, किस तरीके की उनसे उम्मीद आप लोग कर रहे हैं?
0: बच्चे बहुत अच्छा कोशिश कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। क्या होता है कि बच्चे जब एक दूसरे को देखते हैं कि अरे उसको आज गोल्ड मेडल मिला, उसको आज सिल्वर मेडल मिला, तो ऑब्वियसली बच्चों के अंदर क्यूरियोसिटी जागती है।
1: बिल्कुल।
0: कि अगर हम भी ऐसा करेंगे तो हमें भी मिलेगा। तो इस समय बच्चे खूब मेहनत कर रहे हैं, क्लस्टर में भी कर रहे हैं, उसके अलावा भी बच्चे डेली प्रैक्टिस कर रहे हैं, जिसमें बच्चे हमारे आगे में बहुत अच्छे निकलेंगे।
1: बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और हम चाहेंगे भी सर कि जनपद के जो बच्चे हैं आगे आए और देश का नाम रोशन करें। चूंकि आपने ये बात कही कि जनपद सोनभद्र काफी पिछड़ा है, बहुत सी सुविधाएं यहाँ पर बच्चों को उपलब्ध नहीं है, बहुत सी चुनौतियां हैं जिनका बच्चे सामना करते हैं, और ऐसी विकट परिस्थितियों में, ऐसी विपरीत परिस्थितियों में अगर बच्चे अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, अच्छा खेल रहे हैं, और सबसे बड़ी बात कि उनके अंदर जज्बा है और आप जैसे लोग जुड़े हुए हैं बच्चों के साथ जो उनका मनोबल बढ़ा रहे हैं, ये भी हमारे लिए, हमारे जनपद के लिए खेल प्रेमी के तौर पर बहुत बड़ी बात हो जाती है।
0: ये तो देखिए, जब तक हम बच्चों के साथ लगेंगे नहीं तो बच्चे आगे कैसे निकलेंगे। बच्चों को मार्गदर्शन बहुत जरूरी है।
1: बिल्कुल। और अब अंत में सर, आकाशवाणी के माध्यम से आप सोनभद्र के जो हमारे युवा खिलाड़ी हैं, जिस वक्त आपको इस कार्यक्रम के माध्यम से सुन रहे हैं, उनको और उनके अभिभावकों और जो हमारे खेल प्रेमी हैं जो इस कार्यक्रम से अभी आपसे जुड़े हुए हैं, उनको क्या संदेश देंगे आप?
0: मैं अपने युवा खिलाड़ी और अभिभावकों को ये संदेश देना चाहता हूं कि आप बच्चों के देखें कि वो क्या कर रहे हैं, वो किस खेल में भाग ले रहे हैं, वो किस चीज में वो रुचि कर रहे हैं, जिससे कि उनको आगे बढ़ने में उनको उनको अच्छा लगे।
1: बिल्कुल।
0: आप उनका हौसला बढ़ाइए, खेल में संतुलन रखिए, ऑब्वियसली दोनों चीजें ही जरूरी है, क्योंकि आज की डेट में दोनों ही बराबर हैं।
1: बिल्कुल सही।
0: कभी भी बच्चे पे दबाव मत डालें कि नहीं तुम पढ़ते नहीं हो, पढ़ते नहीं हो, खेलते नहीं हो, खेलते नहीं हो, ऐसा नहीं है। बच्चों को आराम से उनसे बातें करें, उनको चीजों को समझे। जब तक आप बच्चों को जानेंगे नहीं उनको क्या चाहिए या वो किस चीज में आगे जाना चाहते हैं, तब तक बच्चे आगे निकलने की कोशिश नहीं करेंगे, क्योंकि बच्चों की पहली सीढ़ी उनके माँ बाप ही होते हैं, क्योंकि माँ बाप जैसा सिखाएंगे बच्चे वैसे ही आगे जाएंगे। वो
1: बहुत अच्छा संदेश रहा सर आपका कि बच्चों के साथ

0: लगे रहिए, क्योंकि ये वही उम्र है जब उनका हाथ थामने की आवश्यकता होती है, और निश्चित एक हार कभी न कभी एक जीत में जरूर परिवर्तित होगी, ये बात समझने और समझाने की आवश्यकता है। बातचीत के लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
1: बहुत बहुत धन्यवाद सर।
0: और अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आपको मिलवा रहे हैं जनपद सोनभद्र के अंतर्राष्ट्रीय ताइक्वांडो खिलाड़ी श्री रवि सिंह से, जिन्होंने थाईलैंड, नेपाल और हाल ही में रोमानिया में आयोजित विश्व स्तरीय प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए अनेक पद अर्जित कर जनपद और देश का नाम रोशन किया है। रवि जी, कार्यक्रम खेल दर्पण में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
2: सबसे पहले आकाशवाणी ओबरा के सभी श्रद्धालुओं को मेरा सर नमस्ते, जय हिंद। मैं हिंडाल्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड रेणुकूट के बॉयलर को जनरेशन विभाग में कार्यरत हूं, और पिछले कई वर्षों से मैं ताइक्वांडो के माध्यम से भारत का नाम रोशन कर रहा हूं। और जब मैंने फर्स्ट टाइम 2016 में स्टेट खेला था, तभी मैंने यह फैसला कर लिया था कि कठिनाइयां कितनी भी आए पर लक्ष्य मेरा एक ही रहेगा, कभी ना कभी विश्व स्तर पर मैं भारत का नाम रोशन करूंगा और तिरंगे को लहराऊंगा।
0: बिल्कुल, और ईश्वर ने आपको वो मौका भी दिया, और कहते भी ना कि जहाँ सच्ची लगन हो वो चीजें, वो मुरादें जरूर पूरी होती हैं, और जाहिर सी बात है कि उसमें आपकी मेहनत भी शामिल है, आपके पेरेंट्स हैं, आपके जो गुरुजन हैं, जो कोच हैं, उनका भी आशीर्वाद है। तो बताइए, सबसे पहले तो हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि ताइक्वांडो से आपका जुड़ाव कैसे हुआ।
2: स्कूल टाइम में जब मैं हायर सेकेंडरी में पढ़ने के लिए गया था, तो स्कूल में हमारे पीटी टीचर ने बोला कि आज सभी बच्चों जाओ, आज मार्शल आर्ट सीखना है। तो हम लोग पीटी टीचर भेजते हैं पीटी करने के लिए, तो हम लोग कि बोले कि आज चलो आज सीखेंगे मार्शल आर्ट, उड़ उड़ के मारना सीखेंगे। तो बस एक उसी लक्ष्य से हमने गए कि मार्शल आर्ट में उड़ उड़ के मारना सीखने जाएंगे। पहले दिन गए तो सर ने केवल एक वार्म अप करना सिखाया, दूसरे दिन गए तो वार्म अप करना सिखाया, मतलब ऐसे ही करते करते उसमें कब वो रुचि बन गई, कब एक अनुशासन में बंध गए और समय कब बीत गया पता ही नहीं चला।
0: और जैसा कि आपने बताया कि हिंडाल्को में आप बॉयलर कॉर्पोरेशन में एक ऑपरेटर के पद पर आप कार्यरत हैं, और दूसरी तरफ देश प्रति इतनी बड़ी जिम्मेदारी, अपने खेल को लेकर के साथ चलना, तो इन दोनों का बैलेंस आपने कैसे मेंटेन किया?
2: सर, चुनौतियां तो बहुत बड़ी है। कहते हैं कि दो नाव पे चलेंगे तो ना इधर के होंगे ना उधर के होंगे, मेरे सामने भी ऐसी सिचुएशन है, बार बार आती है, क्योंकि एक प्राइवेट सेक्टर में काम करते हुए 8 घंटे आप जॉब को भी देना है, फैमिली को भी साथ में देना, और अपने खेल को भी रुचि रखना है। पर मैं कहता हूँ कि दो नाव पे चलना ये बहुत बड़ी बहादुरी नहीं है। आप अगर आपके अंदर एक लक्ष्य हो तो आप कुछ भी संभव कर सकते हैं। तो मैं जिसके प्रति मैं 8 घंटे जॉब करने के बाद जब भी मुझे समय मिलता था, जैसे मेरी ए शिफ्ट ड्यूटी रहती थी तो मैं रात में प्रैक्टिस करता था, और जब मेरी नाइट ड्यूटी रहती थी तो मैं दोपहर में प्रैक्टिस करता था। जब मैं वर्ल्ड चैंपियनशिप खेलने गया था तो वहां का मौसम बारहो मास ठंडी रहता है, उस ठंडी को माहौल को ढलने के लिए मैं रात में 1 बजे 2 बजे जग के रनिंग करता था कि अब मेरी इंड्योरेंस उस माहौल में ढल सकूं मैं। तो घर में मम्मी भी बोलती थी कि मेरा बेटा पागल हो गया क्या कि रात में जग के ये 1:30-2 बजे जॉगिंग कर रहा जा रहा है। तो वो सब चीजें को मतलब मेरे लिए वो ताकत रही, और जो आज मैं इतने देश का नाम रोशन कर पा रहा हूं यही मेरे लिए बहुत बड़ी
0: बहुत खुशी की बात। यही होता है ना कि जीत के पीछे कितनी कड़ी मेहनत होती है, अगर हम उस कड़ी मेहनत को देखें, उस जज्बे को समझें, तभी हम कुछ करने का हौसला अपने अंदर रख पाते हैं। और बहुत अच्छा लग रहा है कि जो युवा खिलाड़ी इस वक्त आपको कार्यक्रम के माध्यम से सुन रहे होंगे, तो उन्होंने भी इस बात को महसूस किया होगा कि जीत इतनी आसान नहीं होती, नींद हारनी पड़ती है, समय हारना पड़ता है, तब जाकर के गोल्ड, सिल्वर, ये सारे मेडल्स हम देश के लिए ला पाते हैं।
2: पिछले कई वर्षों से लगातार मेरी मेहनत थी, आज वो मेहनत मेरे हकीकत में बदल चुके हैं। और जैसा कि मुझे लग रहा, अभी मैं कुछ अपने रिसेंट का अगर मैं बताऊं तो मेरी नेपाल देश में मेरा गोल्ड मेडल था, रोमानिया वर्ल्ड चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल था, और अभी हाल ही में थाईलैंड में मेरा ब्रॉन्ज मेडल था। तो ये सब मेरी अपॉर्चुनिटी रही, मेरी अचीवमेंट रहे, और इतनी आसान नहीं थी, इसके लिए मैंने कड़ी मेरी कई वर्षों की मेहनत थी और माता पिता का आशीर्वाद था, क्योंकि उनके आशीर्वाद के बिना ये चीज संभव नहीं था।
0: बिल्कुल सही बात, और वो आप पे विश्वास करते हैं, बिलीव करते हैं, तो हमारी जो क्षमता होती है प्रदर्शन की वो और भी बेहतर हो जाती है। अच्छा, अंतर्राष्ट्रीय मंच पर देश की जर्सी पहनकर उतरने का जो ये अनुभव था कैसा रहा, उसके बारे में बताइए, वो जो फीलिंग थी वो हमारे श्रोताओं को बताइए।
2: सर, भारत का जर्सी पहनकर खिलाड़ियों का एक पहना एक सपना होता है, बहुत बड़ी एक चुनौती होती है, और जब तिरंगे का सीने पर जब हमारे होता है तो हमारी जज्बा होती है, वो बहुत ही एक ही उम्मीद रहती है कि आप हमको भारत के लिए सर्वश्रेष्ठ अपना प्रदर्शन करना है, और देश के प्रति वो अनुभव में वो शब्द बयान नहीं कर सकता, क्योंकि सर एक खिलाड़ी का ना एक हर सपना होता है कि वो इंडिया पीछे लिखा हो और आगे हमारा तिरंगा हो, और बस

0: वेस्ट करना है, वेस्ट करना है, और देश का हमें बस परचम नहलाना है और तिरंगे को लहराना और अपने मेडल तालिका में भारत को आगे ले जाना है।
1: बहुत अच्छी बात हो, आप बोल रहे हैं हमारे रोंगटे खड़े हो रहे हैं आपकी बातें सुनकर की। ये जो जज्बा आपकी बातों से झलक रहा है कि आपने मतलब बोला तो ऐसा लग रहा है जैसे आंखों के सामने वो सारा दृश्य चल रहा है कि आप परफॉर्म कर रहे हैं और आपको गोल्ड मेडल मिल रहा है और आप देश का नाम अपने सीने पर महसूस कर रहे हैं, कितनी बड़ी बात है। सच में एक खिलाड़ी के लिए इससे बड़े गर्व की बात भला क्या ही हो सकती है। अच्छा, आपने जैसा कि हम जानते हैं आपने अब तक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई महत्वपूर्ण पदक अपने नाम किए और आपने बताया भी, लेकिन अगर इनमें से किसी एक उपलब्धि की बात करें जो आपको हमेशा यादगार रहेगी तो वो कौन सी उपलब्धि होगी?
0: रोमानिया में आयोजित वर्ल्ड क्वान किडो चैंपियनशिप जो कि यूरोप के देश में हुआ था, वो मैंने वहां पर रजत पदक जीता। वो मेरे लिए लाइफ का सबसे बड़ा वो मोमेंट रहा, क्योंकि मेरी फरवरी में ही मेरे पापा की देहांत हुआ था और उसी समय मुझे पता चला था कि मेरा सिलेक्शन वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए हुआ है। एक तरफ पापा का वो दर्द था और एक तरफ पूरे भारतवर्षों का जो एक जज्बा था कि देश के लिए भी कुछ करना है। तो मैं वहां जब गया था तो मैं बस एक ही लक्ष्य था कि मैं देश के लिए पदक जीतूं। और जब मेरी फाइट जब जर्मनी के साथ हुई थी तो मैं वहां पर मेरे इंजर्ड भी हो गया था, मेरा हाथ भी फ्रैक्चर हो गया था। जब मैं गिर गया तो मेरे कोच ने बोला कि बस रवि, तो मैं उधर देखा तो बस तिरंगा, तो मैं बस एक ही मेरे अंदर में एक अलग सी एक एनर्जी आ गई और बस मैं यही बस देखा कि अब कुछ भी हो जाए बस मुझे वेस्ट करना, वेस्ट करना। मेरे हाथ फ्रैक्चर होने के बाद भी कहते ना सर कि अगर रेस में आगे बढ़ना है या तो उससे तेज दौड़ जाओ या तो बगल वाले को लंगी मार के गिरा दो। तो उन्होंने भी वही सेम कंडीशन किया, मेरे को उन्होंने इंजर्ड किया, अपने पॉइंट्स एक उन्होंने खोए, पर मैं इंजर्ड होने के बाद भी मैंने रोमानिया में वर्ल्ड चैंपियनशिप में देश के लिए सिल्वर मेडल जीता, क्योंकि वहां पर 37 देशों के खिलाड़ी आए थे। उस बीच में मैंने तिरंगे को लहराया, वो मेरे लिए वो सबसे मेरे लिए महत्वपूर्ण वो रहा सर।
1: गिर कर उठने का हौसला आपने जो आगे बढ़ करके दिखाया और वो भी अपने देश का राष्ट्रीय ध्वज देखा, जज्बा और ज्यादा 100 गुना हो गया। उस वक्त आप इंजरी भूल गए, लगा कि नहीं बस यही मौका है और करके दिखाना है।
0: जब भी सर एक क्वानक्यूडो की वर्ल्ड चैंपियनशिप में रिकॉर्ड खोला जाएगा तो अपने जनपद सोनभद्र का भी नाम वो जरूर आएगा, तो मुझे बहुत खुशियां होती है और संघर्षों से भरा रहा सर। इतनी मतलब कि कहते ना सर, क्योंकि इस बीच में जनपद सोनभद्र से आगे बढ़ना, क्योंकि खिलाड़ियों को सर ना जब आप आगे बढ़ते हैं तो कोई सपोर्ट नहीं करता है, ये सच्चाई है सर। जब आप जीत जाते हैं तो आपको हर वो खुशियां मिलती है।
1: बिल्कुल, उगते सूरज को दुनिया प्रणाम करती है। और जिस समय आपका संघर्ष का समय था आपने संयम रखा, और जैसा आपने बताया कि आप ऐसे विकट परिस्थिति में थे जब आपके पिताजी का देहांत हुआ, फिर भी आप लड़े, हिम्मत बनाए रखे, घर वालों का विश्वास जीतने का प्रयास किया और इन सब के बीच आपने देश का नाम रोशन कर लिया, अपने जनपद का नाम रोशन कर लिया। सबसे बड़ी बात कि आपने अपने माता पिता का नाम रोशन कर लिया, ये बहुत बड़ी बात है। आगे की आपकी खेल यात्रा और उसका क्या लक्ष्य है, क्या प्लानिंग है आगे की?
0: आने वाले वर्षों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मैं भारत के लिए स्वर्ण पदक जीतना चाह रहा हूँ, क्योंकि जैसा कहते ना स्वर्ण पदक जीतेंगे तो एक धुन बजती है, वो राष्ट्र का सर धुन बजती है। तो बस मैं अपने पूरे हिंदुस्तान का वो राष्ट्र धौन में सुनना चाहता हूँ और देशवासियों को सुनाना चाहता हूँ, और आने वाले में मैं वो जरूर मैं अपने पूरे देशवासियों को वो राष्ट्रीय ध्वज सुनाई देगी। और मेरा लक्ष्य भी आगे है, मैं इतने से हार नहीं मानूंगा और मैं बस एक ही बस मैं अपने इस आकाशवाणी ओबरा के माध्यम से बस यही करना चाह रहा हूँ। जो मेरी महिलाएं हैं, युवाएं हैं या लड़कियां हैं जो अपने इस मेरे सुन रही है, तो बस मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा, आप लुक से ज्यादा अपने बुक पर ध्यान दें।
1: बहुत ही अच्छा संदेश भी आपने दिया कि लुक से ज्यादा बुक पर ध्यान दें और एजुकेशन के साथ साथ आपके अंदर जो भी कुछ कर गुजरने की क्षमता है, जहां और जिससे भी आप अपना, अपने घर परिवार का, अपनी जगह का, अपने देश का नाम रोशन करते हैं, तो ये आपके पूरे व्यक्तित्व में सबसे बड़ी बात हो जाती है। बहुत बहुत शुभकामनाएं रवि जी।
0: धन्यवाद सर।
1: खेल दर्पण कार्यक्रम में ये था आज का अंक, ये प्रस्तुति थी आकाशवाणी ओबरा की।
2: दर्पण।

आलाप और गत विलंबित और द्रुत रचना में है। विलंबित और द्रुत रचना रूपक ताल में निबद्ध है। तो आइए सुनते हैं ब्रजनारायण का सरोद पर बजाया राग जोग।

आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम। आज इसमें सुनिए पंडित ब्रज नारायण का सरोद वादन, राग है जोग

शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे पंडित ब्रज नारायण का सरोद वादन, राग था चोक, विलंबित और द्रुत रचना रूपक ताल में निबद्ध थी। आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है, मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलो हर्ट्स पर और FM 100.3 मेगा हर्ट्स पर। थोड़ी देर में आप समाचार सुनेंगे जिन्हें हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले कर रहे हैं।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अरुण कुमार। संसद ने अधिकरण सुधार विधेयक 2026 पारित कर दिया है। इसे आज राज्यसभा ने मंजूरी दी। लोकसभा पहले ही विधेयक को पारित कर चुकी है। विधेयक का उद्देश्य विभिन्न अधिकरणों के अध्यक्षों और सदस्यों की योग्यता, नियुक्ति और प्रशासन तथा कार्यप्रणाली में दक्षता सुधार, स्वतंत्रता, पारदर्शिता और एकरूपता सुनिश्चित करना है। विधेयक में राष्ट्रीय न्यायाधिकरण आयोग की स्थापना

का भी प्रस्ताव है। विधि और न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि ये विधेयक आधुनिक स्वतंत्र और एक रूप अधिकरण प्रणाली स्थापित करने के लिए लाया गया है। लोकसभा ने केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। विधेयक के अंतर्गत संविधान की प्रथम अनुसूची में केरल राज्य का नाम बदलकर केरलम करने का प्रावधान है। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि केरल विधानसभा ने 2024 में एक प्रस्ताव पारित कर केंद्र सरकार से राज्य का नाम बदलने का अनुरोध किया था, क्योंकि मलयालम में राज्य का नाम केरलम है।

0: नित्यानंद राय ने कहा कि केरल विधानसभा ने 2024 में एक प्रस्ताव पारित कर केंद्र सरकार से राज्य का नाम बदलने का अनुरोध किया था, क्योंकि मलयालम में राज्य का नाम केरलम है। उन्होंने केरल के कांग्रेस सांसदों पर विधेयक का समर्थन नहीं करने का आरोप लगाया।
1: कांग्रेस के कुछ सांसद जब आज पारित करने का प्रस्ताव करा रहे थे तो केरल के कांग्रेस के लोगों ने इसका समर्थन नहीं किया।
0: लोकसभा ने राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक 2026 भी पारित कर दिया है। ये विधेयक निगम को औद्योगिक वस्तुओं के क्षेत्र में अपनी गतिविधियां संचालित करने की अनुमति देता है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही, विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कार्रवाई समेत कई मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण कल तक के लिए स्थगित कर दी गई है।
2: संसद में आज भी विभिन्न मुद्दों को लेकर लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही बाधित हुई। केंद्र सरकार की ओर से छात्रों के मुद्दे पर विस्तृत चर्चा और गृह मंत्री द्वारा जवाब देने के आश्वासन दिए जाने के बावजूद कांग्रेस समेत विपक्षी दलों ने नारेबाजी जारी रखी। विपक्ष के हंगामे के कारण दोनों सदनों में आज भी प्रश्नकाल नहीं हो सका। विपक्ष की दोनों प्रमुख मांगे स्वीकार किए जाने के बावजूद सदन की कार्यवाही में बार बार हो रहे व्यवधान पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने दुख व्यक्त करते हुए कहा कि सदन संवाद और सहयोग के माध्यम से चलता है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कांग्रेस और विपक्षी दलों पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन पर चर्चा से भागने का आरोप लगाया है। संसद परिसर में उन्होंने कहा कि सरकार इस मुद्दे पर विस्तृत चर्चा के लिए तैयार है। झारखंड में भाजपा के आह्वान पर बंद के चलते आज राज्य के कई हिस्सों में जनजीवन प्रभावित रहा। रांची में एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने पुरानी विधानसभा से नई विधानसभा की ओर मार्च करने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक दिया और हिरासत में ले लिया। इस बीच झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षा विवाद को लेकर छात्रों का आंदोलन 18वें दिन भी जारी है। कल विधानसभा घेराव के दौरान हुए लाठीचार्ज और झड़प के बाद छात्र नेताओं ने आंदोलन और तेज करने की घोषणा की थी। भारत ने दोहराया है कि अरुणाचल प्रदेश भारत का अविभाज्य तथा अभिन्न अंग है और इस निर्विवाद वास्तविकता का कोई इसे बदल नहीं सकता। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि चीन के साथ मजबूत संबंधों के लिए सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और स्थिरता आवश्यक है। श्री जायसवाल ने कहा कि पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में बड़े पैमाने पर मानवाधिकारों का हनन हुआ है। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान सरकार द्वारा प्रायोजित आतंकवाद को दुनिया के सामने लाने के लिए 13 अगस्त से वैश्विक स्तर पर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। अवामी एक्शन कमेटी ने दुनिया भर के कश्मीरियों से रैलियां करने और पीओजेके के लोगों के खिलाफ पाकिस्तान सरकार द्वारा किए जा रहे अत्याचार की ओर दुनिया का ध्यान आकर्षित करने का आग्रह किया है। पीओजेके में 2 महीने से ज्यादा समय से विरोध प्रदर्शन जारी हैं। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि सुरक्षा बलों ने 90 से ज्यादा लोगों की जान ली है और 500 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो को अपने चंद्र बेस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है। ये आमंत्रण आर्टेमिस समझौते के अंतर्गत दोनों देशों की साझेदारी को और मजबूत करता है। मौसम विभाग ने कल पूर्वी राजस्थान, गंगा के मैदानी, पश्चिमी बंगाल, मध्य महाराष्ट्र और ओडिशा में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग के अनुसार पंजाब, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, गुजरात, गोवा और पूर्वोत्तर राज्यों में तेज बारिश होने की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अभिनीत शुक्ला। The Parliament passed the Tribunals Reforms Bill 2026 with the Rajya Sabha approving it today. Lok Sabha has already passed the bill. The legislation aims to improve efficiency, ensure independence, transparency and uniformity in the qualifications, appointment of service of chairpersons and members of various tribunals, as well as the administration and functioning of the tribunals. It also proposes to establish a National Tribunals Commission. When the upper house met at 2 p.m. after the second adjournment, Minister of State for Law and Justice Arjun Ram Meghwal moved the bill. Replying to discussion on the bill, Mr. Meghwal said, the new bill has a provision to establish the National Tribunals Commission, which will be chaired by a former judge of the Supreme Court or a former Chief Justice of a High Court. the Rajya Sabha was